0: Talks with Ketan.
1: नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, आपका स्वागत करते हैं आज के इस खूबसूरत दिन के नए दिन, एक्चुअली आखिरी दिन है आज, लेकिन ये नया हफ्ता तो है, कल से नया महीना शुरू हो जाएगा। 31st ऑफ अगस्त है ये आखिरी दिन ऑफ दिस, एंड यस ऑफ कोर्स एज यू ऑल नो दैट सितंबर स्प्रिंग आता है, राइट? सितंबर से स्प्रिंग शुरू होता है, और वैसे ये महीना इसलिए भी खास है कि हम एक घंटा जहाँ से भी आप हैं, चाहे इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, श्रीलंका से, नेपाल से, कहीं से भी हो, डिस्टेंस जो है एक घंटा और ऊपर बढ़ने वाला है, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर इंडिया की बात करूं तो 6.5 से 7.5 घंटे होने वाले। पर यस, मेरा नाम केतन है और बने रहिए, मैं अभी से लेकर 3 बजे तक हूँ, बहुत सारी बातें होने वाली है इस आर में। आपको होम सिक रेमेडीज से बात शुरू होगी और उसके साथ चलते चलते आपको लेटेस्ट खबर के बारे में पता पड़ेगा, एंड अगर कुछ नया अपडेट आया है रिगार्डिंग द नेपाल फ्लड्स उसके बारे में भी आपसे बात होगी। पर यस, मेक श्योर आप फोन उठाएं व्हेनेवर यू आर, व्हेनेवर यू आर फ्री, एंड डू मैसेज मी, फ्लिक मी अ मैसेज ऑन 5599। होम सिक रेमेडीज के लिए, यानी कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, उसके बारे में बात होगी यहाँ पे। कुछ कॉम्पिटिशन्स भी हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा, बट बने रहिए, एंजॉय करिए बहुत ही प्यारा गाना।
0: बचाओ क्या?

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू लंच बॉक्स। मेरा नाम केतन है और बात करते हैं होमसिक रेमेडीज के सेगमेंट की। यहाँ पे मैंने एक मैसेज जो है वो शॉर्टलिस्ट किया है और वो मैसेज मुझे मिला है बाय देव भाई। देव भाई का मैसेज है, वो कहते हैं यो केतन, turned 27 yesterday and honestly it was the quietest birthday of my life. Back home in Nadi, Fiji, birthdays meant a full house, aunties cooking all day, cousins bargaining in without asking and a proper gathering that lasted till midnight. Yesterday in Auckland, I spent my birthday evening sitting in my cold flat eating a $6 supermarket cupcake alone with answering work emails. Sure, family called on WhatsApp, but after hanging up, the silence in the room hit so hard. Celebrating another year away from home just made me realize how much I missed that family warmth. And how do you handle birthday when you are thousands of miles away from everyone who loves you? काफ़ी पता की बात की है, ऐसा तो होता ही है। देखिए, आई एम नॉट श्योर, यहाँ पे वैसे आपने मेंशन नहीं किया कि कितने टाइम हुआ है आपको यहाँ पे न्यूजीलैंड में, बट लुक्स लाइक अनदर ईयर, दैट कुड बी ईदर 2 ईयर्स और सेकेंड ईयर रनिंग। सो देव भाई, पहले तो सबसे पहले बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। द लंच बॉक्स शो की पूरी टीम की तरफ से आपको हैप्पी बर्थडे, एक्चुअली नॉट जस्ट लंच बॉक्स बट यस हम FM की तरफ से आपको बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। एंड आपका ये मैसेज जो है पढ़कर सच में थोड़ा तो मुझे फील हुआ कि यार आई नो किस तरह से आपको फील हुआ होगा कल, बट अकेले शहर में बर्थडे होना, वो भी जब दोस्त और परिवार जो है उनका शोर शराबा मिसिंग हो, तो डेफिनेटली और कुछ ज़्यादा ही हिट करता ही है। बट अगेन एट द सेम टाइम, व्हाट आई वुड हाईली रिकमेंड इज, ये सभी के साथ होता है, ये यू आर नॉट द फर्स्ट वन, बट आई वुड से जस्ट गेट आउट एंड यू नो meet with people, go and take part in community events, or aise karke aapke dost bhi banenge, and then definitely you will have a few friends over here. Ho sakta hai un friends ki family ke saath bhi aapke saath acche connections ban jaye, so you might have some family over here in New Zealand as well. Fir unke saath definitely aapka jo next year ka jo birthday hoga, definitely it will going to be so great. That's what we pray for. But thank you again, Dev bhai, thank you so much for your message, and keep listening to us and keep getting entertained by us, of course. And of course, हमारे जो एक से बढ़कर गाने आते हैं वो भी आप सुनते रहिए और ऐसे ही हमें ढेर सारे मैसेज करते रहिए।
1: Lunchbox with Ketan.
2: मुझे पसंद है लड़का। अब तक डैड आपकी क्लास लेते थे, लेकिन अब बारी है रिवर्स ग्रिल की।
1: इस फादर्स डे हम पर डैड से होंगे मॉडर्न स्लैंग, पॉप कल्चर और टेक के सवाल।
2: हर सही जवाब को मिलेगी ड्रॉ में एंट्री और एक लकी डैड जीतेंगे $500 कैश।
1: साथ में सोशल मीडिया पर पार्ट लीजिए डैड्स AI अपग्रेड में और जीतिए $300। डैड को रेडी करो, खुश करो।
2: फादर्स डे ऑन हम ब्रॉट यू बाय आई विलेज एट विक्टोरिया, इंडियन किचन एंड बार, PFSL providing the best home loan advice for the last 20 years. Amma's food, 100% authentic and pure as mother's love. And Indelible Homes, your building experts known for subdivisions.
3: Wo Indelible Homes wali kahani sunao na.
4: The story begins in 2007. Claude has a vision for a building company. It aims to become an expert in providing affordable homes with modern designs. With a 10-year Master Builder Guarantee, awards pour in.
5: And award goes to Indelible Homes.
4: Trust of the customers builds. Indelible Homes becomes New Zealand's favorite Master Builder.
6: Kahani of Indelible Homes.
7: Shine Dental has a fresh new look with more space and the same caring team. New patients ke liye ultrasonic scale and polish from $99 or one tooth acrylic denture sirf $599 mein. Plus free dental examinations for new and existing patients, free wins and ACC codes. Or under 18s ke liye free treatment. Visit Shine Dental at 574 Great South Road, Manukau. Book today on 09-277-6644. T's and C's apply.
8: किसी प्रियजन को खोना परिवार या मित्र के लिए कठिन समय हो सकता है। जीवन में मृत्यु को छोड़कर सभी चीजें अनिश्चित है। हम सभी को मृत्यु की वास्तविकता का सामना करना पड़ता है और गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार सेवा के माध्यम से प्रियजन के जीवन की अंतिम यात्रा भी करना महत्वपूर्ण है। We are Auckland's one-stop funeral service provider where responsible options and prices are offered. Anne's Funeral Home and on-site cremations. 11 Boulderwood Place, Wiri. Call 24/7 on 0927-88600.
7: What if your next holiday wasn't just a holiday, but the adventure everyone's still talking about? This Easter, Bali and Bangkok. One epic trip. 5-star all-inclusive stays. Breakfast, lunch, dinner sorted. Return flights from Auckland to Bali to Bangkok and back. Sightseeing, activities, even dinner cruises in both cities all included. Come, explore with Sun Tours and a whole group of fellow travelers. Call 0800 Sun Tours for affordable prices. Spaces are limited. Your story starts here.
9: Zero
10: with an X.
11: You started your business for a reason, remember? Then all of a sudden, invoices and bills and payroll started getting in the way. And that is where Xero comes in. Connect your invoicing, bank feeds, bills and payments in one place. Real-time cash flow without all the added chaos. Xero takes care of the numbers so you can get back to doing what you love. Search X-E-R-O today.
1: Non-stop Bollywood.
12: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं.
1: हम playing Bollywood's biggest hits.
2: Lunchbox with Ketan.
13: हीरा लड़का है. टेलीस्कोप लेके ढूंढेगा तो भी इससे बेटर लड़का नहीं मिलेगा तुझे.
0: Well, I wish मैं लंच टाइम रेंट लाइन के लिए सॉरी ऑफिस शाउट आउट के लिए मैसेज पढ़ता, बट आज कोई मैसेज नहीं आया है. बट दैट्स फाइन. मैं आपको बता देता हूँ, जस्ट अ रिमाइंडर कि रोआ ऐप डाउनलोड कर लीजिए अपने फ़ोन ऐप से, चाहे प्ले स्टोर हो या फिर ऐप स्टोर हो. कम्प्लीटली फ्री है, कम्प्लीटली फ्री ऑफ एंटरटेनमेंट है वहाँ पे. बट यस, अगर आप हमें लिसन करते हैं तो डाउनलोड करना फ्री है डेफिनेटली, बट आप जब हमें सुनते हैं तो वो टेक्निकली वैसा फ्री नहीं है. आई मीन अगेन यू नो इट विल गोइंग टू कॉस्ट यू द डेटा, बट लेट मी मेक इट क्लियर कि आप एक दिन का जो 20 सेकेंड का जो स्टोरी डालते हैं, सिर्फ 20 सेकेंड की जो स्टोरी डालते हैं अपने सोशल मीडिया पे, दैट इज इक्विवेलेंट टू लिसनिंग टू अस थ्रू रोवा फॉर एन आर. यानी कि आप हमें उसी 20 सेकेंड के जो स्टोरी आप जो डालते हैं विदाउट थिंकिंग एनी मच अबाउट डेटा, आप हमें एक घंटे के लिए सुन सकते हैं रोवा ऐप पे. और मैं इसलिए भी हाईली रिकमेंड करता हूँ बिकॉज सबसे बेस्ट फ्रीक्वेंसी आती है वहाँ पे. एंड सेकेंड इज ऑफकोर्स जितने भी कॉम्पिटिशन आते हैं वो सारी चीज़ें आप वहाँ से सुन सकते हैं, समझ सकते हैं. एंड ऑफकोर्स पॉडकास्ट हो गए, ये सारी चीज़ें जो इन्फॉर्मेटिव कॉन्टेंट हम लेके आते हैं उसे भी आप आराम से सुन सकते हैं. और सबसे खास बात बताया क्या, विदाउट एड्स आपको ये भी मिलेंगे. हम रिवाइंड यानी कि 1960s 70s के अगर गाने आपको पसंद है तो वो वहाँ पे मिल सकते हैं आपको. 80 दशक के गाने भी आपको वहाँ मिल सकते हैं. हमने बहुत ही मेहनत करके आपके लिए प्लेलिस्ट बनाई है. कुछ फीजी भजन, फीजी कीर्तन भी आपको वहाँ मिलेगा जो कि दुनिया का पहला 24/7 चलने वाला ये फीजी भजन एंड फीजी कीर्तन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म बनाया आप सभी के लिए. चढ़ती कला, पंजाबी हिट्स, एक से बढ़कर एक पंजाबी गाने, और फिर राहत फतेह अली खान जी के गाने भी यहाँ पे चलेंगे. उनकी भी प्लेलिस्ट बहुत अच्छी सी है और वो अभी अभी जाके अभी अभी आए थे ऑकलैंड में. बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस थी एंड अमेजिंग. बट यस, मेक श्योर आप डाउनलोड करें आज ही और बताइए. वैसे यस, आप कहीं मत जाइए बिकॉज न्यूजीलैंड में आज की हिस्ट्री के बारे में जानते हैं कुछ ही देर में. स्टे ट्यून्ड एंड कीप लिसनिंग टू अस.
1: Top hit of the hour, brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

वेलकम बैक। चलिए हिस्ट्री ऑफ न्यूजीलैंड पे नजर डालते हैं। आज के दिन यानी कि 31 अगस्त 1894 की बात है ये, मतलब कैलकुलेट करो एक कितने हो गए, 132 ईयर्स पहले की ये बात है जब न्यूजीलैंड में एक लॉ पास हुआ था जिसमें एम था वर्कर्स और एम्प्लॉयर्स के बीच के कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करना। वर्कर्स अपनी प्रॉब्लम के लिए स्ट्राइक करते थे, गवर्नमेंट ने स्ट्राइक को कंट्रोल करके डिस्प्यूट को नेगोशिएशन और आर्बिट्रेशन से सॉल्व करने का सिस्टम भी बनाया। ट्रेड यूनियंस को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज भी किया गया और अगर वर्कर्स और एम्प्लॉयर्स एग्री नहीं करते ये कोई भी पॉइंट्स को लेके तो मैटर कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जा सकता था। न्यूजीलैंड दुनिया का पहला कंट्री बना जहां कंपलसरी आर्बिट्रेशन का सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था। जी हाँ, 1894, आज से होपफुली मेरी कैलकुलेशन गलत नहीं है, बढ़िया नंबर आते थे मैथ्स में मेरे, पूरे खैर छोड़ो बता नहीं सकता मैं, ऐसे नंबर आते थे, बट 1894 ही कहानी आती है। 132 ईयर्स पहले की ये, नहीं यार 132 कैसे हुए भाई, हाँ नहीं सही कैलकुलेट किया मैंने। So yes, अगर मैंने गलत कैलकुलेट किया तो मुझे बताइए 5599 पे। But yes, this is the history of New Zealand which has happened today.

0: क्या आप न्यूजीलैंड में नए हैं या फिर ऑकलैंड में आप अभी भी आए हैं या फिर यहीं पे हैं लेकिन आपको पता नहीं है कि कृष्ण जन्माष्टमी के लिए कहाँ जाना है, तो ये रही इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले तो ऑफकोर्स दिव्य शक्ति चैरिटेबल ट्रस्ट आप सभी के लिए लेके आए हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी, जो कि 29 अगस्त यानी कि परसों से शुरू हो चुका है। 4th of September द खेव 557 कैविनिश ड्राइव मनुकाव में होने वाला है, हो रहा है एक्चुअली। 7:30 बजे के बाद आप जा सकते हैं अपने परिवार के साथ और एंजॉय कर सकते हैं कृष्ण जन्माष्टमी। उसके बाद राम कृष्ण मंदिर 25 ऑनस्लो एवेन्यू मनुकाव में भी आप सभी भक्तों को इन्वाइट किया जाता है। 29 से शुरू हो चुका है, 4th of September तक ये चल रहा है राम कृष्ण मंदिर 25 ऑनस्लो एवेन्यू मनुकाव, सेम टाइम 7:30 बजे के बाद। श्री हनुमान मंदिर नॉर्थ शोर में कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव भी सेलिब्रेट किया जा रहा है 29 अगस्त से 4th of September तक के बीच। एंड कृष्ण जन्मोत्सव विल बी सेलिब्रेटेड ऑन द 4th रात के, ये 4th अर्ली मॉर्निंग हुआ राइट, 12 बजे से 12:30 बजे के बीच। तो आई थिंक दे आर ट्राइंग टू सेलिब्रेट एट द सेम टाइम जब कृष्ण भगवान श्री कृष्ण पैदा हुए थे। एंड आखिरी है कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव, जो कि माँ दुर्गा टेम्पल पापाटोटो है 4/3 ऑनस्लो एवेन्यू पापाटोटो, ये भी सेलिब्रेट किया जा रहा है शाम के 7 से 8:30 बजे के बीच फ्राइडे 4th September को फ्रॉम 8:30 to 12 AM के बीच।
1: लंच बॉक्स विद केतन,
2: इसके पीछे ना 3-4 लड़कियां पड़ी हुई हैं।
1: इसके पीछे
3: वो दिन जब मोहब्बत खतों में होती थी,
4: ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर के तुम नाराज ना होना,
3: और गानों में

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: side. Sif Rovapur.
1: Jackie didn't think she needed a DVS system.
2: Our home is brand new.
1: Does your new home have condensation? And can it get a bit stuffy sometimes?
2: Yeah, it does.
1: New homes are built tight. They don't breathe very well. DVS can help with that. We have innovative ventilation solutions for all types of homes, new or not so new. Say yes to DVS for a drier, more comfortable home.
3: The heart of a healthy home, DVS.
4: Zero
5: with an X.
6: You started your business for a reason, remember? Then all of a sudden, invoices and bills and payroll started getting in the way. And that is where Xero comes in. Connect your invoicing, bank feeds, bills and payments in one place. Real-time cash flow without all the added chaos. Xero takes care of the numbers so you can get back to doing what you love. Search X-E-R-O today.
7: And then Mrs. Singh se maine pucha, "Enna achha khane ke saath kitchen mein reels aur TikTok kaise bana leti ho?" Boli, "Bas, mera focus hai."
8: "Achha,
7: batao, tuhanda focus, sada kuch nahi."
8: "Shh, Mrs. Singh."
9: "Are pammi ji, mera focus means mere ghar ka kitchen, jisko design kiya hai Focus Kitchens ne."
10: Modern classic shaker style kitchens, Focus Kitchens, Unit K, 33 Wansley Road, Otahuhu. Call 09281-3050 or visit focuskitchens.co.in.
11: Lunchbox with Ketan.
12: ऐसा बजाऊंगा ना कि तेरे कानों में रोज मेरी आवाज गूंजेगी.
13: Chutney Shots.
14: Welcome back. ये रही अभी की लेटेस्ट खबर. ऑकलैंड के नॉर्थ शोर के ग्लेनफील्ड एरिया में फ्राइडे को एक फैमिली के घर में एक बहुत ही भयानक आग लग गई थी और इस फायर की वजह से फैमिली ने अपने घर और बहुत सारे जो ट्रेजर्स थे उसे खो दिए हैं. नॉट अ ग्रेट न्यूज ऑफ कोर्स एंड नो वन वांट दिस टू हैपन इन एनीवनस लाइफ. बट यस, इस फैमिली में करीबन 7 एडल्ट और बच्चे हैं जिनकी एज जो है वो 1 से 17 साल के बीच की है और अब उन्हें अपनी नॉर्मल लाइफ दोबारा स्टार्ट करने और घर को रीबिल्ड करने की जरूरत है. वैसे यस, फैमिली की हेल्प के लिए एक ऑनलाइन फंड रेजर लॉन्च किया गया है एंड इफ एनीवन ओवर हियर हु वुड लाइक टू डोनेट एनीथिंग और कंट्रीब्यूट एनीथिंग तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं. बेसिक नीड्स और रीबिल्डिंग के एक्सपेंसेस में फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिल सके, इस वजह से उन्होंने फंड रेजर जो है वो क्रिएट किया है. सो यस, अगर आप चाहते हैं कोई भी हल्का फुल्का यू नो यू वांट टू डोनेट तो आप कर सकते हैं. गिव लिटिल पे जाइए और वहां पे आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. गिव लिटिल पेज पे.
11: दिल से दिल तक. अनलॉक योर प्रॉपर्टीज ट्रू सेल वैल्यू विद NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स. फॉर अ फ्री साइट असेसमेंट विजिट nzpmi.co.nz और कॉल 0800 4NZPMI.

0: Bollywood.
1: World's best हमारी कोई branch नहीं है.
0: Throwback. Brought to you by 0800 Rachna. इधर उधर जाने से बचना. Call करो 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
2: स्वागत करता हूँ फिर से. लेकिन यस, यहाँ पे आप सभी के लिए कॉम्पिटिशन लेके आ गया हूँ. एक डायलॉग मैं यहाँ पे प्ले करने वाला हूँ. बॉलीवुड की फिल्म में काफ़ी पॉपुलर गाना है, पॉपुलर है और इनफैक्ट ये उनका अब तकिया कलाम हो चुका है. जी हाँ, वो डायलॉग चलाने से पहले जस्ट अ रिमाइंडर, बोर्डिंग कॉल का मैं क्यू चलाने वाला हूँ नेक्स्ट आवर में बिटवीन 1 to 2 PM के बीच. यानी कि आपको क्या करना है, आपको बस एक्टिव रहना है और काफ़ी फोकस होके मुझे सुनना है ताकि आप वो जो क्यू सुनते ही मिस ना करें. डू यू वॉन्ट मी टू प्ले दैट क्यू ताकि आप मिस ना करें, यानी यू विल गेट एन आइडिया कि ये किस तरह का सुनाई देता है. चलिए मैं एक बार अभी प्ले करता हूँ. बट यस, प्ले ही कर रहा हूँ अभी, आपको कुछ नहीं करना है. ठीक है, देयर यू गो. आई एम नॉट श्योर ये साउंड आया नहीं आया, बट क्यों नहीं आया, आना तो चाहिए. बट एनी वेज, अगर साउंड नहीं आ रहा है तो लेट मी ट्राई टू फिक्स इट. बट येस, आप बस रेडी रहेगा और कॉल क्यू, बोर्डिंग कॉल क्यू जो है वो चलने वाला है बिटवीन 1 to 2 PM. और उसके बीच जब जैसे ही आपको सुनाई देता, आपके पास पूरा का पूरा एक आर होगा जब आपको सुनाई देता है. और आपको फट से रोवा ऐप पे जाना है और वहाँ पे बोर्डिंग नाउ टाइप करके कोड वर्ड जो है बोर्ड नाउ और उसको आपको सबमिट कर देना, बिकॉज उसके साथ ही आप ड्रॉ में शामिल हो जाएंगे और जीतेंगे दो रिटर्न एयर टिकट टू वनुआतु विद सोलोमन एयरलाइंस और साथ में $1,000 का आपको स्पेंडिंग मनी.

0: 2027, एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी।
1: रुजबे, टिकट्स बुक हो गए।
2: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा है।
1: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी।
2: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन।
1: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी।
3: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड।
4: हेलो एवरीबॉडी।
0: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
5: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
0: टेक्स्ट ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टोल प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुजबे, ओनली ऑन हम।
6: सुनो, बिल्स बढ़ते जा रहे हैं और महंगाई भी।
7: हाँ, मॉर्गेज भरना भी मुश्किल हो रहा है। सोच रहा हूँ घर बेच के छोटा घर ले लें।
6: घर बेचने से पहले NZPMI की पॉलिसी बात कीजिए। मेरे दोस्त ने भी की थी, अपनी जमीन पर नया घर और दो और घर बनवाए। अब रेंट भी आ रहा है।
7: पर डेवलपमेंट के पैसे
6: आपको नहीं लगाने, NZPMI सब संभाल लेगा।
8: NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट। फ्री साइट असेसमेंट के लिए विजिट NZPMI.co.nz या कॉल 0800 4NZPMI।

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: वेदर का हाल चाल जान लेते हैं। आज 17 डिग्रीज मैक्सिमम टेम्परेचर आने वाला है, 12 डिग्रीज आज का मिनिमम टेम्परेचर रहेगा। आज 30% चांस है बारिश के, 0.4 mm बारिश रिकॉर्ड होगी और आज का सेंसर होगा 6:01 पे।
0: लंच बॉक्स विद केतन,
2: ऐसा बजाऊंगा ना कि तेरे कानों में रोज मेरी आवाज गूंजेगी।
0: लंच के मंच पे
1: नमस्ते, वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू लंच बॉक्स। एक आर के सेगमेंट में अब ये 1 बजे बज रही है, 1:00 थोड़ा सा कुछ सेकंड्स हो गए, मिनट हो गए ऊपर। बढ़िया साहब बने रहिए। इस आर में लंच टाइम रेंट लाइन की बातें होगी, यानी कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिसने आपको बहुत ही ज़्यादा परेशान किया है इस वीकेंड पे, ये आप मुझे बता सकते हैं। 5:55 में बताऊंगा कब, लेकिन यस, उसके अलावा आपको और एक और नई खबर सुनने का मौका मिलेगा। और यस, फादर्स डे के बारे में भी आपसे बात करनी है, तो यस आप कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिए बिकॉज। और एक और चीज, वो जो बोर्डिंग कॉल का मैंने वो बोला था ना, वो इस आर में कभी भी आ सकता है। स्टे ट्यून एंड कीप लिसनिंग टू माई शो।
0: बचाओ क्या,

0: Welcome back. It's normal to feel low sometimes, just like the weather changes. Pay attention to your feelings. Reach in and check how you are doing. Reach out and talk to a trusted professional. Support is available at Asian Family Support Services. Asian Family Services. Call Asian for helpline on 0800-862-342. 0800-862-342 for free and confidential mental health support. तो ये था इनकी तरफ से मैसेज. डेफिनेटली अगर आप ऐसा कुछ फील करते हैं या फिर इफ यू नो समवन हु इज गोइंग थ्रू विद सच सिचुएशन, तो उन्हें कहिए एशियन फैमिली सर्विसेज को कॉल करें और उनसे बात करें. फ्री एंड कॉन्फिडेंशियल रहेगा उनके साथ. बट यस, लंच टाइम फ्रंट लाइन के लिए आप मुझे मैसेज भेज दीजिए 5599 पे.
1: लंच बॉक्स विद केतन.
2: इसके पीछे ना तीन चार लड़कियां पड़ी हुई हैं.
1: इसके पीछे
3: हम. We gotta go. Are you ready?
4: Come and take a trip on me.
5: Your attention, please. We are now inviting all passengers booked on flight Hum 104.2 to the tropical paradise of Vanuatu with Solomon Airlines to begin boarding immediately. Please have your phone ready, your Rova app open, and your excitement switched on for inspection. Your boarding pass for this exclusive flight is easy. Listen out for the special hum boarding call on air. That's your cue to open Rova app and enter board now to lock in your entry to win two return air tickets to Vanuatu flying with Solomon Airlines plus $1,000 spending money.
6: Hum boarding call thanks to Solomon Airlines, flying four times each week non-stop from Auckland to Vanuatu.
7: Let's go.
6: Visit flysolomons.com. T's and C's apply. When life becomes overwhelming, you don't have to face it alone. For over 28 years, Asian Family Services has supported Asian communities across New Zealand, offering mental health, addiction, gambling, and social support by professionals who understand your language and culture. Now launching Reach In, Reach Out, a national campaign to encourage open conversations about mental health, because a simple conversation can make a real difference. Call Asian Helpline 0800-862-342 or visit asianfamilieservices.nz for free and confidential mental health support.
8: No matter how you wrap it, make Dad's Day with the perfect gift from Mitre 10. Get a sweet deal on a Bosch 3.6 volt cordless air compressor pump, now $79. Or pick up a 150 litre number 8 heavy duty storage box for only $35. And for the lawn obsessed dads, grab a 140cc Lawnmaster petrol lawnmower, now just $529. Or let Dad decide with a gift card. Shop now at Mitre 10.
9: बूढ़ा हो गया हूँ माते, घर ढूंढते ढूंढते.
10: इनको तो अब तक घर मिल गया होगा.
11: अब हमारा क्या होगा?
12: घर ढूंढना है तो लोन लेने की टेंशन से बचना, फालतू की बातों से बचना.
10: तो क्या करें?
13: लोग कहते हैं इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 0800 रचना. दैट्स 0800-722-462 फॉर फर्स्ट होम बायर्स, इन्वेस्टर्स, बिजनेस लोन, कमर्शियल लोन और कंस्ट्रक्शन.
14: नया हाइब्रिड ढूंढ रहे हो तो हैवेल ही लो. राइट नाउ एंड्रू सिम्स मेलोगांव में ब्रेड न्यू हैवेल हाइव 6 हाइब्रिड ड्राइव अवे सिर्फ 40,990 से, प्लस ऑन रोड कॉस्ट, नो डिपॉजिट फाइनेंस लो. अपनी ट्रेडिंग के लिए जबरदस्त प्राइस पाओ और डिस्कवर करो कि क्यों ज्यादा किविज हैवेल चूज कर रहे हैं. स्टाइलिश, स्पेशियस और टेक्नोलॉजी से भरा हुआ, वो भी हाइब्रिड एफिशिएंसी के साथ. आज ही विजिट करो एंड्रू सिम्स JWM मेलोगांव. हैवेल हाइब्रिड, मोर फॉर योर मनी. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
15: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 21 branches across Auckland and Hamilton, ये हमेशा आपके पास हैं. Go Bananas Childcare brings you a crazy offer with 6 months completely free and the following 6 months 50% off on fees for all ages. Offer ends 30th September. Limited spaces. First come, first served. तो देर मत कीजिए. Call 0800-46-26-26 today. Terms and conditions apply.
1: Lunchbox with Ketan.
16: मुझे पसंद है लड़का.
1: हम. Lunchtime rant line.
0: ये रहा lunchtime rant line का message जो मैंने pick किया है. सबसे पहले तो शुक्रिया सुनने के लिए और thank you so much for keep listening to me. Hi Ketan, I am Raj from Manukau. I am ranting about people who don't clean up after themselves at office kitchen. Today I went to make my lunch and the sink was full of dirt, dirty cups and plates. There was even food left on the bench. Everyone just walked away like someone else was going to clean it. I ended up washing everything before I could even make my lunch. Seriously, if you use it, just clean it. That is so true. आप अगर use कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं किसी चीज़ का, and of course that is not your personal. मैं तो कहूँगा कि अगर आपको personal भी नहीं, फिर still आपको साफ करना चाहिए, because यार मेहनत सभी कर रहे हैं और सभी को you know साफ सफाई तो रखनी चाहिए. So whenever you are using any kind of dishes or even the microwave, आप कृपया करके साफ करें और राज भाई को खुश रखें. नहीं बट ऑनेस्टली लाइक यू नो जो उन्होंने बात की है वो सचमुच पते की है. कुछ भी 1% भी, आई डोंट नॉट जस्ट थिंकिंग बट यस आई एम डैम श्योर कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं बोला है. बट अगर यहाँ पे कोई है जो सचमुच सेम चीज़ से जूझ रहा है, यानी कि सेम थिंग फेस करता है इन योर ऑफिस, तो मुझे बता सकते हैं 5599 पे.
1: लंच के मंच पे टॉप हिट ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, बिल्ड योर ड्रीम्स.

0: स्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स
2: वेलकम बैक एक नई खबर लेके आया हूँ एक एनर्जी कंपनी है उस एनर्जी के सीईओ मैल्कम जॉन्स ने कंपनी को तुरंत जेन टेलर मॉडल को डिफेंड किया है। जेन टेलर के मुताबिक है एक ही कंपनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट भी करती है और कस्टमर को इलेक्ट्रिसिटी सेल भी करती है। कुछ लोग कहते हैं कि न्यूजीलैंड की बड़ी पावर कंपनीज को स्प्लिट कर दिया जाए, जनरेशन और रिटेल बिजनेसेस को अलग अलग कंपनीज बनाया जाए। उनका मानना है कि इससे कंपटीशन बढ़ेगा और इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस भी कम हो सकती है। लेकिन जेनेसिस के पास उनका कहना है कि करंट मॉडल को ब्रेकअप करना नेसेसरली कस्टमर्स के लिए बेटर नहीं होगा। उन्होंने एलएनजी इंपोर्ट टर्मिनल पर भी बात की है जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को सपोर्ट करने के लिए प्रपोज्ड है। वैसे प्रॉब्लम ये है कि इस $1 billion एलएनजी टर्मिनल का कॉस्ट जो है इवेंचुअली इलेक्ट्रिसिटी बिल्स पर कितना इम्पैक्ट करेगा, इसका एग्जैक्ट आंसर अभी क्लियर नहीं हो पाया। पहले मेरी कोशिश तो ये थी कि मैं कंपनी का नाम नहीं लूँ, बट इन बिटवीन मैंने ले ही लिया, तो आई वॉज लाइक नेवर माइंड, कोई बात नहीं। सो ये उस कंपनी की बात है जो मैंने आपके साथ शेयर की है।

0: विद केतन।
1: हीरा लड़का है, टेलीस्कोप लेके ढूंढेगा तो भी इससे बेटर लड़का नहीं मिलेगा तुझे।
0: हम
2: लेडीज एंड जेंटलमैन
3: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिस्पे, क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं। यहाँ कहानियाँ होती हैं रॉ, इमोशंस होते हैं रियल और कॉन्वर्सेशंस होते हैं बिना मास्क के।
4: राजा मंत्री चोर सिपाही सब यहाँ थे।
3: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिस्पे ऑन रोवा, स्पॉटिफाई और एनीवेयर यू गेट योर पॉडकास्ट।
5: हे नेहा, कांग्रेचुलेशंस ऑन योर फर्स्ट होम। तूने तो कहा था कि दो दो बैंक्स ने लोन देने से और एक फेमस ब्रोकर ने तो केस लेने से ही मना कर दिया था, ये घर कैसे?
6: अरे ये तो लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला का कमाल है। एक रियल एस्टेट वाले ने उन्हें सजेस्ट किया, मैंने उन्हें फेसबुक पर ढूंढा और डायरेक्टली कॉन्टेक्ट किया।
5: नेहा, अब तो मुझे भी उनसे मिलवाओ।
7: फर्स्ट होम बाया बनना है या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेनी है तो आज ही कॉल करें लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला को ऑन 0800 लॉजिक गुरु।
8: It's a mum wanting a free kid's haircut for her adult son. It's another chewing gum and hair mishap. It's someone asking if frosted tips are back in fashion. There's a lot on the line starting a business. To see how ANZ can help, search ANZ How To. Eligibility criteria, T's and C's apply.
9: Farmers has the best gifts for dad, with great grooming products, skincare and the latest fragrance, and casual styling from top to toe. There's coffee machines, cocktail makers and barbecue sets too, plus Lego sets for grown-ups. Farmers has the best gifts for dad.
10: A proud member of New Zealand's Master Builder, building high-quality standalone and terraced houses. We're one of the award-winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800-233-111.
11: Indelible Homes, your building expert.
12: Indelible Homes.
3: Lunchbox with Kaitan.
13: इसके पीछे ना तीन चार लड़कियां पड़ी हुई हैं।
1: इसके पीछे
0: हम
3: लंच के मंच पे
14: बॉलीवुड की बात कर लेते हैं। टॉक्सिक मूवी की रिव्यू पे टॉक्सिक स्टारिंग यश, कियारा आडवाणी, तारा सुतारिया नैनथरा थिएटर्स में करीबन 26 अगस्त को रिलीज हुई थी और पब्लिक रिएक्शन इज मिक्स्ड। कुछ रिव्यूज व्यूअर्स का यश का स्वैग जो है, एक्शन सीक्वेंस और विजुअल्स काफी इंप्रेसिव लगे, लेकिन कुछ लोगों ने मूवी की स्टोरी, स्क्रीन प्ले और पेसिंग को काफी वीक बताया। सो यस, अगर कहें तो यश की स्क्रीन प्रेजेंस और एक्टिंग काफी स्ट्रांग लगी। मूवी विजुअली ग्रैंड है बट स्टोरी थोड़ी कंफ्यूजिंग और स्लो फील हो सकती है। सो एक बॉलीवुड का वेल नोन जो कंपनी है, क्रिटिक कंपनी, उन्होंने उन्हें उसे 2 star out of 5 दिए हैं, जो कि बिलो एवरेज, बिलो 50%, यानी कि 40% ही उनको अच्छी लगी, यानी कि बट अगेन जब तक देखोगे नहीं तब तक पता नहीं पड़ेगा। एज आई ऑलवेज से दैट रिव्यू इज गुड टू हियर बट डोंट डिसाइड, डोंट जज द फिल्म और डोंट मेक योर डिसीजन After listening to the review. Review is just for you to know कि हाँ भाई क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है. That's it. That ये मेरा thought process है.
3: Ladies and gentlemen, this is the boarding call for Solomon Airlines flight number Hum 104.2 FM to Vanuatu. Boarding is now in progress. Please proceed to Rova and enter board now.
15: Thanks to Solomon Airlines, flying 4 times each week, non-stop, from Auckland to Vanuatu. Visit flysolomons.com.
3: Dil se, dil tak. Unlock your property's true sale value with NZPMI, your local development experts. For a free site assessment, visit nzpmi.co.nz or call 0800 4NZPMI.

0: 800 रचना इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 0800 रचना, दैट्स 0800-722-462 फॉर फर्स्ट होम बायर्स, इन्वेस्टर्स, बिजनेस लोन, कमर्शियल लोन और कंस्ट्रक्शन।
1: वेल यस, लास्ट आवर में मैंने एक सवाल किया था आप सभी से, और वो सवाल मैंने आपको मूवी डायलॉग सुनाया था और उसके बेस पर आपने मुझे जवाब भेजे थे। और मोस्टली सभी को पता है, बिकॉज ये डायलॉग ही जो 2.5 किलो का हाथ वाला जो डायलॉग है ना, वो एक्चुअली 2.5 किलो जितना वजन है, और सभी ने सही जवाब दिया। सो यस, 2.5 किलो का हाथ वाला जो डायलॉग मैंने चलाया था वो बेसिकली सनी देओल डिलीवर कर रहे थे, आई थिंक इट इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि मेरे को दिखा नहीं तो मेरे को शायद ऐसा क्यों लग रहा है कि अमरीश पुरी तो नहीं होंगे आई गेस, और मे भी हो सकता हो वो भी हो, बट यस ये दामिनी फिल्म का डायलॉग है, काफ़ी बढ़िया है। और मेरे ख्याल से यही फिल्म थी ना जिसमें वो भी डायलॉग है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। सो या, बट मेरा अगला सवाल पता है क्या है, काफ़ी हटके, बॉलीवुड से हटके है, और लेट्स सी यार आपकी जनरल नॉलेज जो है वो कितनी स्ट्रांग है। ईस्टर आइलैंड जो है वो कौन से नेशन को बिलोंग करता है? ईस्टर आइलैंड बिलोंग्स टू विच नेशन? आप मुझे जवाब भेज सकते हैं 555 99 पे।

0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
1: बुरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: 0 to 800 kilometers per hour. That's a massive.
3: That is very that is a very acceleration.
2: That's a very acceleration. Yeah.
3: Amazing acceleration.
2: This
3: record,
2: is my fancy English. That's a very.
3: अरे होता है यार, सब चलता है. आधी नींद में हूँ मैं.
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.

0: गूंजेगी।
1: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू लंच बॉक्स। मेरा नाम केतन है और यस, इस आर में आपको स्पोर्ट्स से लेके लेटेस्ट खबर तक एंड यस फादर्स डे का क्या अपडेट है, यानी कि कैसे आप हिस्सा ले सकते हैं इस कंपटीशन में, उसके बारे में बात होगी। तो बस बने रहिए, सुनते रहिए आज का लंच बॉक्स शो अंटिल 3। बचाओ क्या

0: स्वागत करते हैं फिर से आज के लंच बॉक्स शो में। अभी वैसे बने रहिए, मैं हूं 3 बजे तक, उसके बाद सैंडी जुड़ जाएगी फॉर द कॉफी ब्रेक एंड उसके बाद रुस्बे उनका साथ देंगे इन द ड्राइव शो। बट यस, डैड्स रिवर्स ग्रिल, यानी कि फादर्स डे को थोड़ा सा कॉम्पिटिशन जो है ना बच्चों के लिए नहीं, फादर्स के लिए करते हैं। तो यस, एक कॉम्पिटिशन आपको हम आपके लिए हम लेके आए हैं जहां पे हम अनाउंसर आपसे सवाल पूछ सकते हैं और अगर सवाल का जवाब आपने सही दिया तो आपको डेफिनेटली मौका मिल जाएगा टू गेट इन टू ड्रॉ एंड वो आपको $500 जीतने का मौका दे सकती है। बट यस, ये तब होगा जब आप हमें कॉल करेंगे। तो यस, व्हेनेवर द अनाउंसर आस्क यू, यू नीड टू कॉल देम एंड यू नीड टू गिव द आंसर टू बी पार्ट ऑफ दिस कॉम्पिटिशन। और 4 सितंबर को इसका डिस्क्लोजर होगा कि विजेता कौन है। और $500 इज अ बिग मनी यार, इज अ बिग मनी। आप सोचिए क्या कुछ कर सकते हैं। इनफैक्ट आप अपने बच्चों को रिटर्न गिफ्ट भी दे सकते हैं। बट यस, जितना जल्दी हो सके आप मतलब बस एकदम फोकस करके सुनिए बिकॉज कभी भी आ सकता है आप सभी के लिए ये कॉम्पिटिशन की अनाउंसमेंट। और इसके साथ ही बच्चों के लिए भी कॉम्पिटिशन है, यानी कि अगर आप डैड हैं तो आपके बच्चों के लिए कॉम्पिटिशन, या फिर ऑब्वियसली आप खुद भी कर सकते हैं अपने डैड के लिए। यानी कि अपने डैड की फोटो लीजिए, उसे सुपर हीरो बना दीजिए AI को यूज़ करके। इनफैक्ट अगर आप AI से थोड़ा सा दोस्ती नहीं करना चाहते हैं तो आप खुद अपने फादर को कहिए कि मस्त सी सुपर हीरो वाली ड्रेस पहन लें और आप वहाँ पे हमारे कमेंट सेक्शन में फेसबुक के पेज पे जाइए, उसके कमेंट सेक्शन में आपको ऑब्वियसली फीचर फोल्डर दिख जाएगा और वहाँ पे आपको कमेंट सेक्शन में उन्हें टैग भी करना है और वो सुपर हीरो वाली फ़ोटो भी डाल देनी है बिकॉज इस ड्रॉ के साथ आप जीत सकते हैं $300 कैश। वाओ,
1: लंच बॉक्स विद केतन। हीरा लड़का है, टेलीस्कोप लेके ढूंढेगा ना तो भी इससे बड़े लड़का नहीं मिलेगा तुझे।
2: अब तक डैड आपकी क्लास लेते थे लेकिन अब बारी है रिवर्स ग्रिल की।
3: इस फादर्स डे हम पर डैड से होंगे मॉडर्न स्लैंग, पॉप कल्चर और टेक के सवाल।
2: हर सही जवाब को मिलेगी ड्रॉ में एंट्री और एक लकी डैड जीतेंगे $500 कैश।
3: साथ में सोशल मीडिया पर पार्ट लीजिए डैड्स AI अपग्रेड में और जीतिए $300। डैड को रेडी करो, खुश करो।
2: फादर्स डे ऑन हम ब्रॉट टू यू बाय आई विलेज एट विक्टोरिया, इंडियन किचन एंड बार, PFSL providing the best home loan advice for the last 20 years. Amma's food, 100% authentic and pure as mother's love. And Indelible Homes, your building experts known for subdivisions.
4: A proud member of New Zealand's Master Builder, building high-quality standalone and terraced houses. We're one of the award-winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800-233-111. Indelible Homes, your building expert.

0: Lunchbox with Ketan.
1: इसके पीछे ना तीन चार लड़कियां पड़ी हुई हैं।
0: इसके पीछे
2: हम
0: skip या replay.
3: वेलकम बैक. अभी के लिए खबर यह है कि ऑकलैंड के फ्लैटबुश एरिया में कल आफ्टरनून को एक कार और ई मोटरसाइकिल के बीच सीरियस कोलिजन हुआ और पुलिस को अराउंड 1:35 PM पे इरोस रोड पर क्रैश की इंफॉर्मेशन मिली. इनिशियली एक पर्सन को क्रिटिकल इंजरीज के साथ इमरजेंसी सर्विस में ले जाया गया और ट्रीटमेंट भी दिया गया. बाद में पर्सन की डेथ भी हो गई. क्रैश के बाद रोड को क्लोज कर दिया गया और मोटरिस्ट को डिलेज एक्सपेक्ट करने को कहा गया है. सीरियस क्रैश यूनिट इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि एक्सीडेंट एग्जैक्टली कैसे हुआ, तो ये प्रोसेस चल रहा है. बट ऑफ कोर्स अभी तो रोड क्लियर हो चुके होंगे. बट दिस इज़ व्हाट हैज हैपेंड. इसलिए कहते हैं कि काफ़ी सतर्क रही है और काफ़ी फोकस होकर कार या फिर बाइक जो भी आपको चलाना है वो आप चलाइए. एंड ऑफ कोर्स एट द सेम टाइम आप बाकियों का भी ध्यान करिए, बिकॉज आप जो रोड है वो शेयरिंग वाली रोड है. जस्ट टू पुट यू इन योर
0: माइंड. टॉप हिट ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स. बिल्ड योर ड्रीम्स.

स्पोर्ट्स से खबर आई है, कल अनाउंसमेंट हुआ था रिगार्डिंग इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम के लिए एशिया कप और एशियन गेम्स, दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है, ये एशिया में होने वाला है एशियन कंट्रीज के बीच में, जिसमें आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान ये हिस्सा लेती हैं, और बहुत ही जल्द ये कॉम्पिटिशन जो है वो शुरू होने वाला है। But yes, let me just make it clear a little bit more. कहाँ गया भाई, अभी तो यहीं था, there you go. Well yes, Indian Women's Cricket Team के लिए Asia Cup जो है वो Asian Games दोनों काफ़ी important है, Asia Cup भी और Asian Games भी। टूर्नामेंट आ रहा है, इंडिया ने रिसेंट टाइम में वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता है और लॉर्ड्स में टेस्ट मैच भी विन किया, इसीलिए टीम का जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ही हाई है। 30th अगस्त 2026 को इंडिया ने वुमेन्स एशिया कप कैंपेन थाईलैंड के अगेंस्ट स्टार्ट किया था। इंडिया एशिया कप की 7 time चैंपियनशिप बनी है, चैंपियंस बनी है, सो टीम से काफ़ी एक्सपेक्टेशन है, और एशिया कप के बाद फोकस एशियन गेम्स इन जापान पर होगा। क्रिकेट वहाँ September 2026 में होगा और इंडिया दोनों मेंस और वुमेन्स इवेंट में डिफेंडिंग चैंपियन है। वाओ, लेट्स सी क्या रिजल्ट रहता है।

0: पर एक सवाल है, हर इंसान एक दूसरे को पूछता है या फिर हर इंसान अपने बड़ों से ये सुनता आया है, जब आपकी नींद पूरी नहीं होती है तो कहते हैं कि कम से कम 7 या 8 घंटे की नींद तो आपकी होनी ही चाहिए फॉर अ गुड एंड हेल्दी लाइफ। ये काफी बढ़िया आर्टिकल आया है जहां पे वन न्यूज की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हर पर्सन को एग्जैक्टली 8 घंटे की नींद जो है वो जरूरी नहीं होती है। स्लीप रिक्वायरमेंट पर्सन की एज, लाइफस्टाइल और बॉडी के अकॉर्डिंग डिफरेंट हो सकती है। रिसर्च में कुछ कम्युनिटीज के लोग नेचुरली अराउंड 5.7 टू 7.1 आवर्स सोते हुए मिले, जबकि अदर स्टडीज सजेस्ट करती है कि हेल्दी स्लीप को स्वीट स्पॉट का लोगों के लिए 8 आवर्स से थोड़ा कम हो सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कम सोना बेटर है, बहुत कम या बहुत ज़्यादा स्लीप दोनों हेल्थ प्रॉब्लम से लिंक हो सकते हैं। एडल्ट्स के लिए जनरली 7 to 9 आवर्स रिकमेंडेड होता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए 6 से 10 घंटे भी अप्रोप्रिएट हो सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्लीप टाइमिंग और रेगुलरिटी। वीक में स्लीप मिस हो जाए तो वीकेंड में थोड़ा कैचअप करना काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। यहाँ पे मेरा सवाल आपसे ये है, एंड पहले बोल रहा हूँ मैं जज नहीं करने वाला किसी को, बट बताइए आप पर डे कितने घंटे सोते हैं, ये मुझे आप बता सकते हैं 5599। टू बी ऑनेस्ट, मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं अराउंड बिटवीन 11 to 1 PM के बीच इस टाइम पे सोता हूँ रात को, डिपेंड ऑन कितना काम का लोड है, और उसके बाद सुबह हमारे महाराज, हमारे राजकुमार उठा देते हैं हमें 5 बजे मतलब एकदम से तो नहीं, बट टुकड़ों टुकड़ों में उठाते रहते हैं, फिर वो भी हमारे साथ सुर लड़ाते हैं, तो बस ऐसे चलता है कारवां। तो देख लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए कितने आज की मैं स्लीप करता हूँ। बीच में अगर दिन में अगर मौका मिलता है तो नैप लेने की कोशिश करता हूँ, बट आप मुझे बताइए आप कितने आज की स्लीप कवर करते हैं। 5599 इज द नंबर। लंच बॉक्स विद केतन। मुझे पसंद है लड़का। हम ड्राइविंग यू होम।
1: Drive show with Sandy and Rusby. ये वही इंसान है जो 600 का हेडफोन खरीद के बैठा हो।
2: ये गलत बोल दिया यार।
1: और पहनता भी नहीं है उसको।
2: बाल जा रहे हैं ना मेरे यार, वो पहन के यार क्या करूँ मैं, अभी बेचने के लिए कोई लेगा क्या? रुस्बे प्री ओन्ड हेडफोन्स 750 में सिर्फ।
1: इंटरेस्ट
3: ब्रांड हो गया
2: अभी, अभी ब्रांड हो गया ना
1: रुस्बे के बाल लगे उस।
4: The Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us Monaco and Poke Koi, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us Monaco and Poke Koi, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura J Crew.
5: सुनो, बिल्स बढ़ते जा रहे हैं और महंगाई भी।
6: हाँ, मॉर्गेज भरना भी मुश्किल हो रहा है, सोच रहा हूँ घर बेच के छोटा कर ले लें।
5: घर बेचने से पहले NZPMI की पॉल से बात कीजिए, मेरे दोस्त ने भी की थी, अपनी जमीन पर नया घर और 2 और घर बनवाए, अब रेंट भी आ रहा है।
6: पर डेवलपमेंट के पैसे
5: आपको नहीं लगाने, NZPMI सब संभाल लेगा। NZPMI योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट। फ्री साइट असेसमेंट के लिए विजिट nzpmi.co.nz या कॉल 0800-4-NZPMI.
7: SmartPay is now Shift 4 Dakota.nz Global Commerce Local Service.
8: Waiting weeks for your FPOS setup? That's lost revenue. Shift 4 gets your business up and running and taking payments in under a week. Tailor your setup from day one with flexible plans and customizable options that can bring business costs down. Make the shift today.
7: Shift 4
9: इसके पीछे ना 3-4 लड़कियां पड़ी हुई हैं।
10: इसके पीछे हम
0: टॉक। एक टेक्नोलॉजी वाली खबर लेके आया हूँ। चाइना में AI बहुत रैपिडली ग्रो हो रहा है, लेकिन इसके साथ वर्कर्स को अपनी जॉब्स जो है वो भी लूज करनी पड़ रही है। एग्जाम्पल के लिए, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम फेई जाओ जून को उसके बॉस ने पूछा था कि क्या AI कोडिंग जॉब्स को रिप्लेस कर सकती है। सिर्फ 2 वीक बाद फेई और उसके अराउंड 160 कलीग्स को जॉब से हटा दिया गया। AI अब सिर्फ कोडिंग में नहीं बल्कि ट्रांसलेशन, कॉन्टेंट क्रिएशन, डिलीवरी और फैक्ट्रीज में भी यूज हो रहा है। और चाइना और चाइना में AI यूज करने वाली इंडस्ट्री कंपनीज के शेयर्स जो है वो 2024 के 9.6% से बढ़कर 2025 में 47.5% हो चुका है। कितना बढ़िया बड़ा जंप हुआ है, वो भी सिर्फ एक साल में। लेकिन स्टोरी का दूसरा साइड भी है, कुछ वर्कर्स AI को थ्रेट की बजाय टूल की तरह यूज करते हैं और न्यू वर्क अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट कर रहे हैं। दिस इज व्हाट आई ऑलवेज टेल यू कि आप इसे AI से दोस्ती करें और इसे समझें, इसे सीखें और इसी को अपना टूल समझ के आगे बढ़िए। अगर आपको याद हो, आज से काफ़ी सालों पहले हमारे शहर में, लाइक बैक इन इंडिया, लाइक मैं अगर इंडिया की बात करूं तो वहाँ पे काफ़ी टाइम पहले कार्स जब नहीं थी, ऑब्वियसली मैं तो तब नहीं था, मैं पैदा नहीं हुआ था, बट ऑब्वियसली स्टोरीज हमें सबको पता है कि पहले घोड़ा गाड़ी, हमने घोड़े को यूज़ होता था, कैटल्स यूज़ होती थी, गाय एंड ये सारी चीज़ें यूज़ होती थी टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इनफैक्ट मतलब मैं बात कर रहा हूँ टैक्सी ड्राइवर्स की, तो उस केस में वो चीज़ करते थे। लेकिन ऑब्वियसली जब कार्स आई, टैक्सी ड्राइवर आए, तो ऑब्वियसली इनिशियली उनको बहुत ही बुरा लगा कि क्या है, हमारी जॉब जाएगी, ये सब है। बट एट द एंड उनके पास ऑप्शन था नहीं और उन्होंने उसे सीखा, दे गॉट द लाइसेंस, दे अंडरस्टूड हाउ टू ड्राइव, एंड ऑफ कोर्स अब तो फिर तो और ज़्यादा पैसा कमाने लगे। सो दिस इज हाउ इट इज, आप दोस्ती करें उससे, डरे ना, डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं काफ़ी हेल्प करेगा ये।
5: Lock your property's true sale value with NZPMI, your local development experts. For a free site assessment, visit nzpmi.co.nz or call 0800 4NZPMI.

0: यू बाई 0800 रचना। इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 0800 रचना, दैट्स 0800-722-462 फॉर फर्स्ट होम बायर्स, इन्वेस्टर्स, बिजनेस लोन, कमर्शियल लोन और कंस्ट्रक्शन।
1: एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। बहुत ही बढ़िया आज की बातें, आज का समय, आज की कहानियां और आज के जो मैंने आपको मौके दिए वो सब के लिए। सो आप बस बने रहिए। सैंडी विल बी जॉइनिंग शॉर्टली इन द कॉफी ब्रेक और उसके बाद रुज भी उनका साथ देंगे इन द ड्राइव शो। मैं निकलता हूं और मैं मिलूंगा कल सेम टाइम 12 से 3। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू।

0: भाग दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फीजी कीर्तन पसंद है, लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फीजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फीजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फीजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।
1: Looking for more ways to save on a new car? Choose the deal that suits you best at West City Omura Jeku. Drive away in a new Omura C5, Omura 9 or selected Jeku J7 models and choose between $2,000 cashback or 3.9% per annum finance for 36 months with a 10% deposit. It's your choice, your way, but only for a limited time. Visit West City Omura Jeku in Henderson today. Ask for more ways to save. Terms, conditions and lending criteria apply.
2: Shine Dental has a fresh new look with more space and the same caring team. New patients ke liye ultrasonic scale and polish from $99 or one tooth acrylic denture sirf $599 mein. Plus free dental examinations for new and existing patients. Free wins and ACC codes or under 18s ke liye free treatment. Visit Shine Dental at 574 Great South Road, Manukau. Book today on 09-277-6644. T's and C's apply.
3: When India comes to town, Aotearoa feels different. Join the Cricket Nation pre-sale at nzc.nz and secure your tickets first, because this isn't cricket. This is Black Caps versus India.
4: Kia ora. If you're enrolled to vote and we have your email or mobile number, you'll get a reminder email or text from our team soon.
5: Just check your details are correct by 25 October and you're good to go. Brought to you by the Electoral Commission.
6: A proud member of New Zealand's Master Builder, building high-quality standalone and terraced houses. We're one of the award-winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800-233-111.
7: Indelible Homes, your building expert.
8: Logic Finance Limited, changing lives with logic.
9: Good afternoon, I'm Bridget Hasty with the latest at 3. The fuel excise hike planned for next year has been scrapped. The government says cancelling the 12 cent increase will give Kiwis more time to recover from post-COVID pain and the situation in the Middle East. The next rise of 5 cents a litre will take effect from January 2028. Labor is pledging to provide a job for every New Zealand-trained graduate nurse. Its latest election policy would cost $525 million over 4 years, taken out of funding put aside for cost pressures. Health spokesperson Aisha Verrill says they want to fix the current situation.
10: What we're proposing is actually a return to normal. It used to be the case that almost all the graduates got jobs in the New Zealand health system. This creates each year 200 more roles than is currently the case under the national government.
9: A major Otago road will stay closed overnight due to snow. NZTA says an update on State Highway 87 from Outram to Middlemarch is expected tomorrow. State Highway 1 north of Dunedin has now reopened. Further north, strong winds have whipped up multiple vegetation fires in central Hawke's Bay. At least 22 trucks are working across two of the blazes, with extra crews being brought in for another two. To sport, Kiwi golf star Ryan Fox's stellar year continues. He's an automatic selection to play the President's Cup against the Americans in just over 3 weeks. And fellow Kiwi Stephen Alka has gone back-to-back on the PGA Champions Tour, winning the Alley Championship in Michigan by 3 shots. And the final tennis Grand Slam of the year, first round of the US Open, four-time champion Novak Djokovic is up 2-1 over Argentine Mariano Navone. Two-time champion Venus Williams is on later.
8: Sports News.
11: Brought to you by Sona Sansar, Papatoy and Mount Roskill. Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
12: मौसम के हालचाल मेट सर्विस के अनुसार इस समय टेम्परेचर बाहर का 14.7 डिग्रीज और आज को वनाइट 12 डिग्रीज टेम्परेचर रहने वाला है. ऑलमोस्ट फाइन वेदर, थोड़ा विंडी है. सनसेट आज का 6:01 पर.
11: द बीट ऑफ बॉलीवुड
13: वर्ल्ड्स बेस्ट हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
14: Coffee Break with Sandy.
12: 3:03 हो चुके हैं और वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू यू. कॉफी ब्रेक आपके लिए शुरू हो चुका है. यू हमिंग अलोंग विद सैंडी और अभी से लेके 4 बजे तक मेरा और आपका साथ है कॉफी ब्रेक में. और 4 बजे के बाद ड्राइव शो में मेरा साथ यहाँ पे हो जाएगा रुजबे के साथ. सो कैसे हैं आप और आपका वीकेंड कैसा गया है? वीकेंड के बाद आप आज आपका डे कैसा जा रहा है ज़रूर यहाँ पे शेयर कर सकते हैं. एंड ओवर द सुपर सिटी क्या क्या हो रहा है, ये सब टाइम में क्या हुआ, इसके ऊपर भी देखेंगे कि क्या क्या हो रहा है. कीवी कंज्यूमर जो है क्या ज़्यादा खा रहे हैं, किसके ऊपर ज़्यादा मनी स्पेंड कर रहे हैं, ये आर्टिकल भी आया है, इसके ऊपर बात करेंगे. एंड यस, कुछ कॉम्पिटिशन्स भी है. रक्षाबंधन आई होप आपने अच्छे से सेलिब्रेट किया. नाउ फादर्स डे अभी पेंडिंग है, इसी फ्राइडे को फादर्स डे के कॉम्पिटिशन के विनर का नाम भी अनाउंस होने वाला है, उसके लिए भी स्टे ट्यून्ड. तो बहुत अच्छा मौका है अभी भी सोशल मीडिया पर जाके पार्टिसिपेट करने के लिए. उस कॉम्पिटिशन की डिटेल्स मैं आपके साथ थोड़ी देर में यहाँ पर शेयर करने वाली हूँ. बट येस, अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हैं यहाँ पे, फील फ्री टू मैसेज ऑन 5599.

3:12 यहाँ पे हो चुके हैं और एक नई रिपोर्ट आई है अबाउट द कंजम्पशन, यहाँ पे जो खाने की कंजम्पशन की जाती है, चिकन के बारे में रिपोर्ट आई है. सो चिकन इज नाउ अकाउंट फॉर अबाउट हाफ ऑफ ऑल द मीट न्यूजीलैंडर्स ईट. सो आउट ऑफ जितने भी मीट यहाँ पे न्यूजीलैंडर्स जो खाते हैं, चिकन जो है इसकी कंजम्पशन सबसे ज़्यादा है. कीवीज आर ईटिंग अराउंड लाइक 41 to 42 केजी ऑफ चिकन पर पर्सन ईच ईयर. सो रफली कह सकते हैं 20 चिकन्स पर पर्सन. इन 2008 जो फिगर था वो अराउंड 35 केजी पर पर्सन, जहाँ पे सिग्निफिकेंट लॉन्ग टर्म इंक्रीज हुआ है ये. सो राइजिंग प्राइसेस ऑफ अदर प्रोटीन्स जो है ये भी वन ऑफ द रीज़न हो सकते हैं कि जो काफ़ी कंज्यूमर्स है ये चिकन की और स्विच कर रहे हैं, जो बाकी मीट है उससे चिकन की ओर स्विच कर रहे हैं. सो चिकन इज़ बीइंग फेवर्ड बिकॉज अफोर्डेबल इस समय पर मीट में से चिकन है, वर्सेटाइल है बनाने के लिए, रिलायबल भी है, एज इन कि अगर कोई यू नो डाइटिंग पे भी है तो गुड प्रोटीन के हिसाब से भी. ट्रेंड्स जो है इज़न जस्ट हैपनिंग इन न्यूजीलैंड, US में भी चिकन कंजम्पशन जो है हैज़ ओवरटेकन मैनी अदर मीट्स. सो विद प्राइस एंड हेल्थ कंसर्न जो है ये रेड मीट की और ज़्यादा शिफ्ट होता है. सो चिकन जो है ये प्रोटीन के लिए भी काफ़ी ऑफकोर्स काफ़ी लोगों के लिए, जो लोगों ने बोला है प्रोटीन इज़ अ मेजर रीज़न बिकॉज हमारी करीज में आ जाता है चिकन, दैन स्टर फ्राई भी होता है, बर्गर्स में भी, दैन सैलड, सैंडविच, टेकअवेज. इवन जो लार्ज फूड चेन्स हैं उन्होंने भी ये बोला है कि उनके जो बर्गर्स सबसे ज़्यादा जाते हैं वो चिकन के बर्गर जो है फ़िलहाल वो जा रहे हैं. सो या आपसे पूछना चाहूँगी, आर यू द कॉन्ट्रीब्यूटर? ये जो 41 to 42 केजी ऑफ चिकन पर पर्सन ईच ईयर कंज्यूम हो रहा है, आपको क्या लगता है कि रफली, जैसे इसमें बोला गया है इस आर्टिकल में कि इस हिसाब से रफली 20 चिकन्स पर पर्सन जा रहे हैं इन अ ईयर, व्हाट डू यू थिंक, हाउ मेनी चिकन्स आर यू कंज्यूमिंग इफ़ यू ईट नॉन वेजिटेरियन? अगर आप चिकन खाते हैं तो आप कितने चिकन खाते होंगे एक साल में? ऐसा रफ आइडिया ऐसा सोच के कि कितने हो सकते हैं, लाइक दिस इज़ एवरेज ऑफ 20 चिकन्स पर पर्सन. Do you think you are one of them जो 20 chickens per year खा रहे हैं? Like I'm talking about whole chicken, but 20 पूरा का पूरा chicken. Of course उसको आप parts में ही खा रहे हैं, but आपको क्या लगता है कि आपका number क्या हो सकता है? ये 20 लिखा है तो मुझे लगता है कि मेरा 10 हो सकता है, या I don't think से इतना ज़्यादा होगा, 10 हो सकता है मेरा, 8 या 10 हो सकता है, I think so. सो वट इज़ योर नंबर ऑफ चिकन अगर आप खाते हैं चिकन पर पर्सन? 5599 पर मैसेज करके बता सकते हैं.

3:32 एट द मोमेंट यहाँ पे हो चुके हैं बॉलीवुड मोस्ट वांटेड में ये ब्यूटीफुल सॉन्ग आप यहाँ पे सुन रहे थे. नेपाल फ्लड के बाद जो 5 न्यूजीलैंडर्स जो है ये अभी भी मिसिंग है. डेडली फ्लैश फ्लड जो हुआ था नेपाल चाइना बॉर्डर में लास्ट वीक. सो टोटल ऑफ 289 फॉरेन नेशनल जो है दे हैव बीन रेस्क्यूड सो फार. सो इसमें न्यूजीलैंडर कोई अभी इंक्लूडेड नहीं है. द मिसिंग न्यूजीलैंडर्स आर स्टिल द सेम जिसमें डेजन का नाम है, देन श्वेता महात्रे है, मिहिर पटेल है, केनरी पटेल है, सुहासिनी रेड्डी है. इनके बारे में अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन एक्चुअली में नहीं मिल पाया है. सो ये जो एक्चुअली में टाइम था वहाँ पे काफ़ी लोग जाते हैं, काफ़ी टूरिस्ट जाते हैं वहाँ पे कैलाश मानसरोवर में वहाँ पे जाते हैं. तो दीज न्यूजीलैंडर्स वर बिलीव टू बी ट्रैवलिंग एज पार्ट ऑफ दैट ओनली. एंड ईशा फाउंडेशन में भी आई थिंक वन ऑफ द पर्सन वॉज इन्वॉल्व जहाँ पे उनके एक ट्रूप के साथ वो गए थे एंड जिसके कारण काफ़ी लोग मिसिंग हैं. MFAT इन्होंने बोला है कि मिसिंग जो लोग हैं उनकी फैमिलीज़ के साथ उनके वो इन कॉन्टैक्ट है एंड अथॉरिटीज़ नेपाल ऑल्सो एंड कंटिन्यूसली इसके बारे में वो अपडेट उनको दे रहे हैं. फ्लडिंग जो थी ये एक्स्ट्रा ऑर्डनरी पावरफुल थी एक्चुअली में, जिसमें विलेजेस होम्स टोटल डिस्ट्रॉय हो चुके हैं. रोड्स एंड ब्रिजेस, 19 ब्रिजेस आर लाइक जस्ट स्वेप्ट अवे इन दिस डिज़ास्टर. हाइड्रो पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, बॉर्डर फैसिलिटीज़ बिटवीन नेपाल चाइना is all destroyed. Vehicles and buildings along the river, वो सब भी destroy हो चुके हैं. So scientist का belief है कि ये जो ice and rock avalanche था from glacier, it triggered surge of water. So experts ने record किया है कि जो Trishuli river है is rising by as much as 9 meters in just half an hour. So yeah, अभी तक ये सब update है. थाउजेंड्स लोग इस समय पर वहाँ पे ट्रैवल करते हैं बिकॉज वो जो एरिया है इट इज़ अ की रूट टुवर्ड्स माउंट कैलाश. सो इसीलिए काफ़ी लोग उस समय पर डिफरेंट यू नो वर्ल्ड से, इंडिया से काफ़ी लोग वहाँ पे पहुँचे हुए थे. सो इनिशियल रिपोर्ट्स आइडेंटिफाइड कि हंड्रेड्स ऑफ फॉरेन नेशनल्स आर ऑल्सो मिसिंग फ्रॉम इंडिया, US, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन एंड कैनेडा एज वेल. सो न्यूजीलैंड सेफ ट्रैवल जो है इन्होंने अपनी सर्विस को अपग्रेड किया है आफ्टर दिस फ्लडिंग. उन्होंने लेवल 4 कर दिया है वहाँ पे विजिट करने के लिए. सामने लिखा है लेवल 4 मीन्स कि डू नॉट ट्रैवल बिकॉज अभी वहाँ पे कंटिन्यू रिस्क हो सकता है फ्लडिंग एंड डिफिकल्ट कंडीशंस का. सो फॉर न्यूजीलैंडर्स हु मे हैव फैमिली और फ्रेंड्स इन नेपाल, द गवर्नमेंट इज एडवाइजिंग कीप इन कॉन्टैक्ट विद फैमिली एंड ट्रैवल कंपनीज. रजिस्टर, जब भी आप कहीं पर ट्रैवल प्लान करते हैं हमेशा आपको सेफ ट्रैवल पे रजिस्टर करना चाहिए बिकॉज सेफ ट्रैवल पे जब आप रजिस्टर करते हो योर डाटा इज सेफ देयर कि आप इस तारीख से यहाँ से गए हो बाहर, कहाँ पे आप जाने वाले हो, आपका डाटा पूरा का पूरा वहाँ पे होता है. सो मेक श्योर कि आप जब भी कहीं पे ट्रैवल करते हैं, कोई भी ट्रिप करते हैं, चाहे वो छोटा ट्रिप हो, हमसे कि चाहे आप फीजी जा रहे हैं, आपको लगता है कि यार इतने से आवर की फ़्लाइट है या ऑस्ट्रेलिया की छोटी फ़्लाइट है तो इसमें क्या ही करना है, बट नहीं, आपको फिर भी हमेशा सेफ ट्रैवल में अपना डाटा जो है ये इनपुट वहाँ पे करना है. एंड यप, सो इसके बारे में और अपडेट्स होंगी. काफ़ी लोग डोनेशंस के बारे में भी पूछ रहे हैं. सो दे आर फ्यू रिलायबल चैनल्स जहाँ पे आप अगर डोनेशन करना चाहते हैं तो आप डोनेशन कर सकते हैं बिकॉज अभी वहाँ पे बिल्डअप करने के लिए ऑफकोर्स काफ़ी डोनेशन चाहिए होगी. हेल्प आउट करने के लिए भी काफ़ी डोनेशन चाहिए होगी. दे आर वेरियस वेज. रेड क्रॉस न्यूजीलैंड हमारे लिए एक, मेरे को लगता है कि डायरेक्ट वे है हमारे अकाउंट्स के लिए जहाँ पे हम हेल्प कर सकते हैं बिकॉज रेड क्रॉस न्यूजीलैंड जो है इज़ ऑन द ग्राउंड ओवर देयर, दे आर वर्किंग. सो ऑल्सो अगर आप उनका जो प्राइम मिनिस्टर है नेपाल का बालन शाह, उन्होंने एक अकाउंट नंबर बनाया है जहाँ पे ओवरसीज से भी लोग जो है ये ट्रांसफ़र कर सकते हैं. तो बालन शाह उनके इंस्टा हैंडल का नाम है, तो वहाँ पे जो अकाउंट नंबर है ये भी आपको दिखाई देगा. तो वहाँ पे जाके भी आप कोई डोनेशन अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं. थिंग इज़ कि डोनेशन नॉट नेसेसरी हैज़ टू बी लाइक एक हैवी अमाउंट. जब आप छोटी छोटी डोनेशन भी करते हैं ना, फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपने अकाउंट से $1, $2 भी अगर आप दे रहे हो, वो आपको लग रहा है कि शायद आपकी ओर से वो एक छोटी अमाउंट है, बट वो अगर काफ़ी लोग उतना अमाउंट डोनेट कर रहे हैं तो इवेंचुअली वो एक बड़ी डोनेशन ज़रूर बन सकती है किसी की हेल्प के लिए. सो अगर आपको लगता है कि आप
काबिल है उतना करने के लिए तो आप ज़रूर इसके लिए कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि आप रिलायबल चैनल्स पे ही जा रहे हैं।

0: स्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स
2: कीप काम बिकॉज़ पंजाबी स्वैग इज ऑन

मोबाइल 0800 रचना, इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 0800 रचना, दैट्स 0800-722-462 फॉर फर्स्ट होम बायर्स, इन्वेस्टर्स, बिजनेस लोन, कमर्शियल लोन और कंस्ट्रक्शन।

0: Download from apnafm.com.
1: The beat of Bollywood.
2: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है।
3: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।
4: Accurate traffic.
5: Century Batteries, New Zealand's trusted battery.
6: Partly cloudy with moderate westerlies for Auckland, a low of 12. Out of the city, the southern to Manukau taking 32 minutes. We're building Ellerslie to Highbrook Drive. It's slow into Tererangi Drive. It's a jury, 47 minutes. Heavy patches after Papakura. On the northern to Constellation Drive, half an hour. And Silverdale, 40 minutes. We're slow Esmond Road to Wairoa Valley. And the same for Sunnynook. And Tomasi, 23. Heavy patches, Waterview to Lincoln Road.
5: Start strong on cold mornings with Century Batteries, New Zealand's trusted battery.
7: सुनो, बिल्स बढ़ते जा रहे हैं और महंगाई भी।
8: हाँ, मॉर्गेज भरना भी मुश्किल हो रहा है। सोच रहा हूँ घर बेच के छोटा घर ले लें।
7: घर बेचने से पहले NZPMI की पॉल से बात कीजिए। मेरे दोस्त ने भी की थी, अपनी जमीन पर नया घर और दो और घर बनवाए। अब रेंट भी आ रहा है।
8: पर डेवलपमेंट के पैसे
7: आपको नहीं लगाने।

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: Feels like 15. Overnight temperature is going to be as low as 12 degrees. Barish hone wali hai dher sari aaj sham ko bhi. 6:01 pe hoga sunset. Strong southwesterlies jo hai wo ease out hone wali hai evening mein. And kal ka din mila jula sa rahega. Kal afternoon beautiful, badhiya, bright rahega.
2: The Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us Manukau and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us Manukau and Pukekohe and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
0: Super Se Upar, brought to you by Reliance Ventilation Systems Limited. The Drive Show with Sandy and Rusbe.
3: Masti karenge, mauj katenge, garda paar denge.
1: Final day of August, 31st of August है आज 4:03 and August महीने के final drive show में आपका स्वागत है.
4: A very very good afternoon. I will say 2026 की final winter को आपका स्वागत है.
1: Winter थोड़ी final अभी.
4: Officially 1st September is spring.
1: ऑफिशियली ना
4: ऑफिशियली
1: अभी हो रहा नहीं है लेकिन ऑफिशियल के हिसाब से कुछ
4: फील कैसा हो रहा है बात अलग है लेकिन डेट्स के हिसाब से 1st सितंबर इज स्प्रिंग.
1: एक्चुअली मैं यू आर राइट बिकॉज कल से टेम्परेचर्स आर लाइक ये पूरा वीक टेम्परेचर इज गोइंग टू बी अबाउट 10 डिग्रीज 10-12 डिग्रीज व्हिच इज नॉट बैड. स्प्रिंग टेम्परेचर हो गया वैसे
4: स्प्रिंग टेम्परेचर और मेरे को लगता है कि यू नो देर आर टू चार्ट जो फॉलो किए जाते हैं. एक तो ये ऑफिशियल 3 वेदर सिस्टम यहाँ पे फॉलो किया जाता है कि स्प्रिंग जो है 1st सितंबर से शुरू होती है
1: और 1st दिसंबर से समर.
4: या लेकिन एक और चार्ट है जिसमें फॉलो किया जाता है लुकिंग एट द ट्रेंड ऑफ न्यूजीलैंड एंड एवरीथिंग दैट्स द और वो डेट है 23rd सितंबर.
1: ओह 23rd सितंबर है.
4: 23rd सितंबर को एक्चुअली में फील होनी शुरू हो जाती है स्प्रिंग बिकॉज जितनी भी सर्दी वगैरह ये थोड़ी बहुत होती है वो निकल जाती है.
1: ओके
4: सो वो लॉजिक है.
1: मुझे तो ऐसा लगता है कि सर्दी वैसे तो नवंबर एंड दिसंबर तक नहीं निकलती. दिसंबर में अचानक से समर फील आता है. लाइक यू नो दिसंबर 1st दिसंबर पर सडनली विंड्स बिकम वार्मर.
4: या
1: मोस्ट टाइम्स.
4: या
1: उससे पहले सब ठंडा ठंडा ही लगता है. सितंबर में भी मुझे तो ठंडा ठंडा ही लगता है काफी बार.
4: पिछले साल अच्छी खासी गर्मी पड़ी थी फॉर लॉन्ग टर्म. एक्चुअली में गर्मी पड़ी थी मतलब काफी लंबे समय के लिए.
1: इस साल तो मुझे लग रहा है विंटर हुआ ही नहीं कुछ ऐसा.
4: लेट शुरू हुआ लेकिन थोड़े दिन कितनी ठंड थी यार.
1: बस थोड़े दिन थी यार.
4: या
1: बीमार ज्यादा हुए बार विंटर में. ठंड इतनी नहीं थी शायद.
4: या मुझे भी वो लगता है. एंड ये ओवरऑल ट्रेंड है वर्ल्ड का. दुनिया में ही ऐसा हो रहा है.
1: बहुत हो रहा है ना बवाल
4: कि विंटर भी थोड़े टाइम की होती है एकदम ज्यादा और गर्मी भी. तो अगर गर्मी हो रही है कुछ ज्यादा ही हो रही है.
1: एक क्रेजी मूवी देखी सैंडी वीकेंड पे और मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि यार ये मूवी 2008 की बनी हुई मूवी है. ये कैसे इतना फार थिंकिंग अहेड वाली मतलब बहुत ही सॉलिड मूवी है.
4: व्हाट वाज इट अबाउट.
1: मूवी का नाम है वॉल-ई. अगर आप लोगों ने किसी ने देखी है यहाँ पे कॉल करके एक्सप्लेन कीजिए इस मूवी को. वॉल-ई बहुत ही बढ़िया मूवी है. लाइक एकदम फ्यूचरिस्टिक मूवी है. 2008 में उन्होंने बताया कि हमारा फ्यूचर कैसा होने वाला है.
4: ओह वाओ.
1: या इट्स वेरी स्कैरी टू बी ऑनेस्ट लुकिंग एट व्हाट फ्यूचर वी आर गेटिंग टुवर्ड्स. और वो मूवी देखते देखते मैं हमारा स्नैकिंग चलता है ना यूजुअली. स्नैकिंग कर रहा था तो मुझे वही फील आ रहा था कि ओह नो आई एम ऑलमोस्ट देयर आई एम रीचिंग दैट प्लेस. बढ़िया वॉल-ई मूवी का नाम है. अगर आपने नहीं देखी है तो देखिएगा जरूर. बहुत ही बढ़िया मूवी है.
4: या कूल. सो आपने भी वीकेंड पे और क्या देखा यहाँ पे ज़रूर शेयर कर सकते हैं. एंड और न्यूज़ अराउंड क्या हो रहा है इसके बारे में शेयर करेंगे. लेबर ने कुछ प्लेज किया है एंड करंट गवर्नमेंट कुछ अनाउंसमेंट्स कर रही है. वी गोना शेयर दैट एज वेल.

0: विशाल ददलानी की आवाज, यू आर लिस्निंग टू हम प्लेइंग बॉलीवुड बिगेस्ट हिट्स। आपके लिए हम यहाँ पे गाने लेकर आते हैं, इसके साथ साथ थोड़ी बहुत बातें भी लेकर आते हैं।
1: इलेक्शंस का समय है तो ऐसे मौके में बहुत सारी पार्टीज प्लेज कर रही है वो क्या क्या कर सकती है। लेबर ने अनाउंस किया है आज कि इलेक्शन प्लेज उन्होंने लिया है टू गारंटी जॉब्स इन द पब्लिक हेल्थ सिस्टम फॉर एलिजिबल नर्सेज हु ग्रेजुएट फ्रॉम न्यूजीलैंड नर्सिंग प्रोग्राम्स। सो एवरी एलिजिबल न्यूजीलैंड ट्रेन नर्सिंग ग्रेजुएट विल रिसीव अ जॉब ऑफर पब्लिक हेल्थ सेक्टर में। एंड लेबर एस्टिमेट्स अराउंड 2400 नर्सेज ग्रेजुएट ईच ईयर। So policy is estimated to cost $525 million. Yeah. तो इसमें qualify वो होंगे basically जो complete करे nursing qualification at New Zealand Tertiary Institute. वो qualify होंगे इसमें. And they pass their state final examination of course.
0: तो मतलब ये कहीं ना कहीं labor indirectly जो international students हैं उनको भी promote कर रहे हैं मतलब.
1: Yeah, उनको promote कर रहे हैं. On the same note वैसे नेशनल ने बोला है इफ़ यू स्टे न्यूजीलैंड आफ्टर यू ग्रेजुएट नेशनल वॉन्ट्स टू गिव योर बैक पॉकेट अ बूस्ट वी विल रिड्यूस योर स्टूडेंट लोन रीपेमेंट्स फ्रॉम 12% टू 10%।
0: ये इंटरेस्टिंग टाइम शुरू हो गया है यहाँ पे अभी हम लोग को अलग अलग जगह से इनके सेल्स पिचेस मिलेंगे।
1: अब आपको आपके हाथ में होगा कि भाई सबसे बेस्ट पिच कहाँ से मिल रही है वहाँ पे आप
0: जो आपको कंसर्न कर रहा है बेसिकली लाइक फॉर एग्जांपल अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट ने एक और चीज किया ना कैंसल्स फ्यूल टैक्स हाइक प्लान फॉर 2027। तो फ्यूल टैक्स का जो हाइक है वो नहीं होगा 2027 में। इसके बारे में नेशनल बात कर रही है।
1: सो इसमें यहाँ इंटरेस्टिंग रहेगा कि हर किसी की यू नो जो वो प्लेज कर रहे हैं कि अगर वो जीतते हैं वो ये करेंगे तो आपको क्या उस कैटेगरी में क्या कंसर्न करता है डायरेक्टली।
0: वही नेशनल है जो पहले बोलती थी कि हम लोग को हमारे रिजर्व्स बढ़ाने हैं हमको टैक्स करना ज़रूरी है ये करना है। अब इस इलेक्शन के बाद वो बोलते हैं कि नहीं अभी हम टैक्स निकाल देंगे क्योंकि शायद वो कॉन्फिडेंट है कि वो नहीं आने वाले हैं गवर्नमेंट में। ऐसा है शायद पता नहीं
1: कुछ भी हो सकता है। और मेरा सवाल ये भी रहेगा अभी लिसनर से कि आप क्या चाहते हैं कि कोई भी जो पार्टीज आउट देयर है वो क्या अनाउंसमेंट करे जो आपको इंटरेस्ट करेगा। यू नो आपके इंटरेस्ट की क्या अभी तक अनाउंसमेंट हुई है कोई आपको क्या लगता है कि किस चीज़ के बारे में अनाउंसमेंट होनी चाहिए कि जो आपको लगता है कि आपको बेनिफिट करेगी। इट कैन बी फ्यूल थिंग इट कैन बी ग्रॉसरी थिंग इट कैन बी एजुकेशन सेक्टर इट कैन बी हेल्थ सेक्टर कुछ भी हो सकता है। वो आपको क्या लगता है कि आपको जो बेनिफिट करेगा वो ऐसी अनाउंसमेंट क्या होनी चाहिए कि अगर ये पार्टी ये करती है ना अगर कोई पार्टी ये अनाउंस करती है तो मेरा वोट उनको जाता है। क्या है आपका कंसर्न?
0: इट कुड बी समथिंग फनी आल्सो
1: एनीथिंग या
0: कुड बी समथिंग कूल
1: या एनीथिंग। 0800 00 हम पर कॉल कीजिए 0800 00 4866 या फिर मैसेज करो 5599 पर क्या चाहते हैं कि क्या पार्टी बोले कि भाई ये करोगे तो देन यू वाले कि भाई ये बोल दिया तुमने बस ये लो मेरी वोट।
0: मेरा वोट उसको जाएगा जो सामने आके जो भी पार्टी बोलेगा कि हम हम खुद के ऊपर जो भी हमने मतलब बेसिकली व्हाट आई विल से इज दैट वी विल बी फुल ऑनेस्ट और हम ऑनेस्ट आके हमारा खुद का भी रोस्ट करेंगे वहाँ पे। सो बेसिकली जो डिबेट होगा ना उसमें जो पार्टी बोलते हैं ना कि हम लोग खुद के ऊपर जोक्स मारेंगे और हमने जो हगा है वो सब हम बोलेंगे उसके बारे में। एंड वी विल स्टार्ट ऑफ विथ ऑनेस्टी। माय वोट गोज टू दैट
1: ऑनेस्टी बिकॉज़ इफ यू आर ऑनेस्ट बोलते हैं कि हमने ये या हुआ है हमसे गलती तो हो गई गलती एक्सेप्टेंस।
0: एक का आया मैसेज यहाँ पे दे शुड स्टॉप गिविंग बेनिफिट्स इफ समवन इज डिसेबल्ड देन शुड गिव बेनिफिट्स बट हूएवर इज एबल टू वर्क देन शुड नॉट गिव बेनिफिट्स। हाय आपका भी स्वागत है।
2: हाय मैं हमेशा ही पॉलिटिकल जब टॉपिक आप निकाल रहे हो तभी फोन करती हूँ।
0: अच्छा,
2: पर मेरा वो सबको चाहेगा जो वर्किंग क्लास को सपोर्ट करेंगे लाइक चाइल्ड केयर फैमिली टैक्स क्रेडिट या एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे जो लोग काम करते चाहे वो बिजनेसमैन हो या चाहे वो जॉब करते हो और इवन स्टूडेंट्स लाइक अपस्किल करने के लिए अगर उनको सपोर्ट कर रहे थे आई वुड एक्चुअली गो फॉर दोज values whichever क्या बोलते political parties promoting
0: working class का बोल रहे हो आप।
1: Very interesting. Okay.
0: Unfortunately, the decision makers usually are in the business class, na?
1: Yeah.
0: नहीं ये
2: पर उनको भी ये सारी बेसिक चीजों की जरूरत पड़ती है ना वो बिजनेस क्लास में आने के लिए
0: नहीं नहीं बट
2: प्रॉब्लम चाहिए ना
0: प्रॉब्लम क्या होता है मालूम है देखो मोस्ट टाइम्स जो वर्किंग क्लास में होता है ना जो मतलब वर्किंग के ऊपर फोकस है जिसका वो है उसके पास ना टाइम है नहीं बाकी सारे ऐसे चीज़ों में टाइम पास करने का जैसे कि जो अभी काफ़ी पॉलिटिकल इवेंट्स हो रहे हैं जहाँ पे पॉलिटिशियन आते हैं सेल्फी देते हैं साथ में वो सब करने का वर्किंग क्लास के पास टाइम नहीं है वो टाइम पास करने का टाइम सिर्फ बिजनेस क्लास के पास है क्योंकि उनके लिए कोई और का पैसा कमा रहा है ना मतलब
1: अनफॉर्चुनेटली
0: So,
2: पर वो बिजनेस वालों को भी बिजनेस बिल्ड भी तो करना पड़ता है ना बिकॉज वी हैव अ बिजनेस आल्सो एंड वी आर आई एम एन एम्प्लॉई एज वेल तो आई अंडरस्टैंड बोथ साइड्स ऑफ द कॉइन कि वो ऐसे ही ना बिजनेस नहीं चलने पड़ता है उसके लिए यू हैव टू इन्वेस्ट इन दैट बिजनेस एंड देन इट वर्क्स फॉर यू आफ्टर 10 इयर्स और 5 इयर्स और व्हाटएवर पर उसके लिए भी तो टाइम चाहिए ना एफर्ट डालने के लिए भी तो सपोर्ट चाहिए ना तुमको क्योंकि फैमिली तो है नहीं सपोर्ट करने के लिए हमें
0: That's right. Yeah. Hopefully we listen to more of such, like working class problems. Or I think the reason the change will be when the working class starts to vote, starts to ask questions. Like you have asked.
1: अब मेरे को लगता है वही अभी lag कर रहा है कि बहुत सारी और problems तो सामने आती है कि business में क्या होता है कि नहीं होता है working class अपनी problems ज़्यादा नहीं बता पाते
0: क्योंकि वो बोलते हैं कि हमारे बोलने से वैसे भी क्या change होने वाला है ऐसा approach हो जाता है ना काफी बार
2: grocery वैसे भी ऊपर जाने वाली है
0: वो ही ना क्या फर्क पड़ता है हर कोई चोर है मतलब ऐसा usually working class से हम सुनते
1: ऐसा रूस में नहीं बोल रहा है
0: ऐसा बोल रहा नहीं हूँ usually these are the comments that you hear
2: पर I agree with रूस में क्योंकि मुझे याद है GST जब 12.5% से 15 करना था हमने बहुत बोल्ड रिवोल्ट किया था पर कुछ नहीं हुआ उसका
1: yeah. कुछ भी नहीं पर देखो अभी समय है इलेक्शन ईयर है ये मतलब इलेक्शन टाइम आने वाला है ईयर क्या मतलब अभी महीना और है दो महीने हैं दो महीने में बस इलेक्शन है सितंबर अक्टूबर नवंबर या 8 नवंबर को है वो भी दिवाली के टाइम पे
0: वी हैव टू स्टार्ट आवर क्या बोलते हैं इन्वेस्टिगेशन वेरी सून नाउ
1: या
0: आइडेंटिफाई करने को कि कौन सी पार्टी
1: मैं तो कहती हूँ कि अब हर एक वर्किंग क्लास को जाके हर एक बिजनेस पर्सन को जाके वोट करना चाहिए ऑफ आवर कम्युनिटी
0: जो वोट कर सकते हैं एटलीस्ट
2: पर एक ऐसा प्रोसेस भी होना चाहिए जहाँ हमें ये प्रोपेगेंडा में कंट्रीब्यूट करने को मिले जो उनका प्रोपेगेंडा है उसमें हम लोग भी कुछ कंट्रीब्यूट कर सके तभी तो वो लोग राइट डायरेक्शन में जाएंगे ना
0: हाँ तो वो तभी होगा ना जब उनको पता चलेगा कि भाई मैक्सिमम वोटर्स वर्किंग क्लास लोग हैं या फिर यू नो
1: एथनिसिटी कौन सी है
0: एथनिसिटी के है तभी तो अपनी आवाज विल बी हर्ड इसलिए तो हम कहते हैं ना कि
1: वो जो स्टैट्स आते हैं कई बार आपको पता होगा कि कई बार हमारी एथनिसिटी के बहुत लो वोट्स आती है उसमें दिस इज द रीजन कि हमारी एथनिसिटी को आगे जाके वोट करना बहुत जरूरी है ताकि हमारी रियल प्रॉब्लम सामने आए
0: क्योंकि अभी हम लोग क्या सोचेंगे कि अरे अपना तो दिवाली है अभी दिवाली के टाइम पे कौन बाहर जाके वोट करेगा
1: वही ना
2: तो यार दिवाली पार्टी में सब लाएंगे वोट करने कोई नहीं जाएगा
1: वही
0: वही तो
1: नाइस
2: टोटली
0: या या
1: बट थैंक्स सो मच फॉर कॉलिंग
2: एंड यूजुअल
1: थैंक यू बाय बाय
0: धवल बोलते हैं कि जो मेडिकल सिस्टम ठीक कर देगा उसको
1: तो धवल का जाता है जो मेडिकल सिस्टम के ऊपर कुछ
0: आपका तो 2050 में वोट करना पड़ेगा आपको सीधा
1: एंड प्रशांत का भी है रिड्यूसिंग रिटायरमेंट एज एंड स्टॉप डोल टू यंग पीपल ओके
0: डोल बोलना चाह रहे वो
1: ओके
0: और दीप्तेश ने इफ रेंट मेक्स फोर्टनाइटली
1: एवरीवन कैन सेव एंड लिव अ बेटर लाइफ उनका कहना है कि ओ दिस इज सो क्या होता है ना कि बीच में जो रेंटल्स पे होते हैं उनकी प्रॉब्लम्स कई बार अक्सर खो जाती है
0: अच्छा
1: उनकी भी वॉइस कई बार खो जाती है तो ही सेइंग कि अगर रेंट फोर्टनाइटली हो तो या ये उनका कहना है सो आप भी बताइए
0: तो रेंट फोर्टनाइटली होता है वीकली होता है अभी
1: वीकली होता है
0: राइट राइट
1: सो आप भी बताइए आपका क्या आपको क्या लगता है कि क्या इश्यू रेज होना चाहिए और किसके ऊपर काम होना चाहिए फिर आपकी वोट उस पार्टी को जाएगी

0: You're listening to Humbling Bollywood's biggest hits, Chartbusters. आपको हम सुनाएंगे. इसके पहले हमको बता दे सैंडी क्या-क्या इवेंट्स हो रहे हैं यार हमारे कम्युनिटी में.
1: इवेंट्स के बारे में भी बात करेंगे एंड ये भी आपको बता दे कि 5 बजे के बाद यहाँ पे हम बोर्डिंग कॉल का क्यूट कॉल भी प्ले होने वाला है. यू कैन विन 2 रिटर्न एयर टिकट्स टू 102 विद सोलोमन एयरलाइंस प्लस $1,000 स्पेंडिंग मनी एज वेल. आपको करना क्या है, सुनते रहना है. बिटवीन 8 AM टू 9 AM आपके लिए क्यू टू कॉल प्ले होता है, बोर्डिंग कॉल प्ले होता है यहाँ पे. बिटवीन 11 AM टू 12 PM, देन 1 PM टू 2 PM के बीच में एंड 5 PM टू 6 PM के बीच में जैसे ही प्ले होगा, जिसमें बोला गया होता है कि इट इज़ टाइम टू बोर्ड नाउ, गो टू रोवा, राइट बोर्ड नाउ एंड डू द सबमिट. आपके पास 60 मिनट्स का टाइम होता है रोवा ऐप पे जाके, जो कॉम्पिटिशन पेज है हम बोर्डिंग कॉल, वहाँ पे जैसे अभी 5 बजे के बाद होगा तो 5 बजे के आगे बोर्ड नाउ लिखो और सबमिट करो. अगर आपको कंपटीशन पेज लिंक चाहिए, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, जस्ट राइट BC ऑन 5599, यू विल गेट द लिंक. हम बोर्डिंग कॉल थैंक्स टू सोलोमन एयरलाइंस फ्लाइंग 4 times ईच वीक नॉन स्टॉप फ्रॉम ऑकलैंड टू 102. विजिट flysolomons.com. टर्म्स एंड कंडीशंस डू अप्लाई.
0: इसके साथ साथ आपको बता दें कि फादर्स डे कॉम्पिटिशन में पार्ट लेने का मौका भी आपको मिलने वाला है 5 बजे के बाद, जहाँ पे यू कैन गिव अस अ कॉल 0800 004866 इस नंबर पे. एंड आप यहाँ पे कॉल करके डैड्स एक्चुअली यहाँ पे कॉल करके पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जहाँ पे हम आपको पूछेंगे कुछ लिंगोस के बारे में जो आपके बच्चे यूज़ करते हैं शायद, तो उनके बारे में आपको पूछेंगे, आपको उसका मतलब यहाँ पे बताना है एंड आपका नाम ड्रॉ में शामिल हो जाएगा.
1: वेरी सिंपल. मैंने पोस्ट पढ़ी, यू नो अभी रिसेंट अभी हम बात कर रहे थे मेडिकल्स के बारे में कि सिस्टम अच्छा हो जाए. आई नो ये यहाँ पे फिजिबल तो नहीं होगा. किसी ने पोस्ट किया है, ड्यू टू द राइजिंग कॉस्ट ऑफ मेडिकल टेस्ट जस्ट पी अंडर अ ट्री एंड वेट अ बिट. अगर वहाँ पे चींटियाँ आती है तो डायबिटीज है. अगर जो ग्रास है वो ड्राई अप हो जाती है तो हाई सॉल्ट है. इफ इट स्मेल्स लाइक बारबेक्यू इट्स हाई कोलेस्ट्रॉल. एंड इफ यू फॉरगॉट टू पुल अप योर पेंस तो अलग प्रॉब्लम है. या इट्स जस्ट अ फनी पोस्ट.
0: नाइस. Please don't try this outside your home.
1: Yeah.
0: It might be risky. But यहाँ पे message आ रहा है, Rizbe, since you love cricket, you should go for India versus. अरे India versus New Zealand के matches, yes for sure man.
1: Yes, I'll definitely go for it.
0: And if you're feeling a bit generous, then please send the tickets through on 5599. Attention to Rizbe only.
1: And also जो हमने सवाल पूछा था कि ऐसा आप क्या करवाना चाहोगे, कि आप क्या डिमांड क्या है कि ये पार्टी अगर ये करती है उसको आप वोट दोगे. एक ने मैसेज किया है, जो पार्टी रोज रोड से ऑरेंज कोन्स हटा लेगा, माई वोट गोज टू दैट पार्टी. Genuine है उसका भी.
0: ये भी सही बात है. Very nice. Thank you so much for participating in that.

0: with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us Manukau and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us Manukau and Pukekohe, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
1: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
2: Buri planning se aaye hain, shat pratishat tumko subah yahan se le jayenge.
3: 0 to 800 kilometers per hour. That's a massive.
4: That is a very acceleration.
3: Yeah.
4: Amazing acceleration.
3: This is my fancy English. That's a very.
4: अरे होता है यार सब चलता है आधी नींद में हूँ मैं.
1: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
0: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living at Beds R Us Manukau. English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
1: Weekdays 6 to 10 a.m.
0: Accurate traffic.
5: Trust the experts at Alloy Wheel Repair.
6: A lot going on for Auckland. Partly cloudy, moderate westerlies, and a low of 12 out of the city on the southwestern. Due to a breakdown, the right southbound lane is blocked before Lambie Drive. And the rest of the way to Stat Highway 1 crawling at the moment on the northern to Constellation Drive, taking 32 minutes. It's slow off the Harbour Bridge to Wairua Valley and the southern to Monaco, 32 minutes. It's moderate to heavy Ellerslie down to Highbrook Drive.
5: Curbed your wheel? Restore it to factory finish today. Search Alloy Wheel Repair.
7: Hey Neha, congratulations on your first home. तूने तो कहा था कि दो banks ने loan देने से और एक famous broker ने तो case लेने से ही मना कर दिया था. ये घर कैसे?
8: अरे ये तो लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला का कमाल है. एक रियल एस्टेट वाले ने उन्हें सजेस्ट किया. मैंने उन्हें फेसबुक पर ढूंढा और डायरेक्टली कांटेक्ट किया.
7: नेहा अब तो मुझे भी उनसे मिलवाओ.
9: फर्स्ट होम बाया बनना है या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेनी है तो आज ही कॉल करें लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला को ऑन 0800 लॉजिक गुरु.
0: There's never been a better time to drive GWM at West City Auto Group. For a limited time, save $2,000 across the GWM Canon Ute range and $2,000 across the Havel SUV range. Plus, if you choose a GWM plug-in hybrid, you'll receive a complimentary home wall charger backed by a 7-year unlimited kilometer warranty. Visit West City Auto Group GWM in Westgate today or check out the latest offers at westcityautogroup.co.nz. Terms and conditions apply.
10: किसी प्रियजन को खोना परिवार या मित्र के लिए कठिन समय हो सकता है. जीवन में मृत्यु को छोड़कर सभी चीजें अनिश्चित है. हम सभी को मृत्यु की वास्तविकता का सामना करना पड़ता है और गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार सेवा के माध्यम से प्रियजन के जीवन की अंतिम यात्रा भी करना महत्वपूर्ण है. We are Auckland's one-stop funeral service provider where responsible options and prices are offered. Anne's Funeral Home and On-Site Cremations. 11 Boulderwood Place, Wiri. Call 24/7 on 0927-88600.
11: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो. बोली बस मेरा फोकस है.
12: हाँ. अच्छा
11: बताओ तुम्हारा फोकस फोकस साडा कुछ नहीं.
12: मिसेस सिंह
13: अरे पम्मी जी मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने.
14: मॉडर्न क्लासिक शेकर स्टाइल किचन्स फोकस किचन्स यूनिट के 33 वॉन्सली रोड ओटाहू. कॉल 0928130 और विजिट focuskitchens.co.in.
15: A Kogan TV is just like a TV. Both TVs do very similar TV things, but with slightly different little logos, remote shapes, and legs. One's a Kogan 55-inch LED 4K Smart Google TV. The other TV costs an arm and a leg. Get what you want for less with Kogan. Available from Mighty Ape, Dick Smith, and Kogan.com. Clickin' awesome.

0: से ऊपर brought to you by Reliance Ventilation Systems Limited.
1: सुपर से ऊपर ये शो आपके लिए जारी है. वैसे 5 बजे के बाद पावर ड्राइव एट 5 में आज हम आपके लिए ये लेकर आने वाले हैं.
0: देसी और नॉट सो देसी.
1: तो एक बिहेवियर के बारे में आपको बताएंगे और आपको बताना है कि ये देसी बिहेवियर है या नॉट सो देसी बिहेवियर है.
2: यस. एंड अगर आप कुछ ऐसा सवाल पूछना चाहते हो तो अभी मैसेज कर सकते हैं. 5599 इज अ नंबर.
1: हां, कोई देखो, हर किसी के लाइफ में कोई ना कोई किस्से होते हैं ना. तो अगर वीकेंड पे आपके साथ भी कोई ऐसे कुछ आपने एक्सपीरियंस किया है जो आप बोलते हो कि यार ये मैंने ना देखा, ये सिर्फ देसी लोगों के साथ होता है या सिर्फ नॉन देसी लोगों के साथ होता है, तो वो
2: या फिर हमारे देसी ऐसा नहीं करते हैं
1: या वो, हाँ, वो आप यहाँ पे कॉल करके हमारे साथ शेयर कीजिए, मैसेज करके हमें बताइए एंड वील गेट टू सी कि जनता क्या इसके बारे में सोचती है.
2: तो आप मैसेज कर सकते हैं 5599 पर या फिर कॉल कीजिए 0800 00 हम पर. फिलहाल आपके लिए एक सवाल है. तब तक अगर आपको टाइम पास करना है, सवाल आपके लिए, व्हाट इज दिस, आई कैन मेक पीपल टर्न अराउंड विदाउट टचिंग देम.
1: आई कैन मेक पीपल टर्न अराउंड
2: विदाउट टचिंग देम. तुम्हें आंसर नहीं देना है. हाँ, तुम लेकिन सोचो. आई कैन मेक पीपल टर्न अराउंड विदाउट टचिंग देम. ये क्या है? 5599 पर सिर्फ इसका आपको मैसेज करके बताना है ड्राइव कीवर्ड के साथ, सो दैट आपको हमारा पॉडकास्ट का लिंक भी मिल जाए.
1: इंटरेस्टिंग है यार ये. आई कैन मेक पीपल टर्न अराउंड विदाउट टचिंग देम.
2: मेरे को संजना याद आ गई.
1: संजना क्यों?
2: राज मूवी की.
1: ओह अच्छा. आपको anyway, याद है उसका नाम संजना था.
2: ये इसीलिए याद है क्योंकि जिस वजह से उसको बुलाया था विस्पर करके.
1: ओह राइट राइट.
2: या प्रोमिनेंट नाम है वो. सो या आई कैन मेक पीपल टर्न अराउंड विदाउट टचिंग देम. क्या हो सकता है? 5599 पर ड्राइव कीवर्ड के साथ लिख के बताओ. ये क्या है? एक ने लिखा है.
1: ये बोल रहे हैं कि जस्ट कॉल हिम.
2: एक ने लिखा है विमेन. ओके, सो या 5599 इज द नंबर. आपको जो भी आंसर है, हमें समझ नहीं आया.
1: विमेन कैन मेक पीपल टर्न अराउंड ना. अरे सैंडी,
2: ओके,
1: यू डोंट अंडरस्टैंड.
2: शाउट आउट जेरे लिखा है. आप भी बताइए. बी क्रिएटिव गाइस. कुछ और भी आंसर भेजिए ना यहाँ पे. क्या हो सकता है? आई कैन मेक पीपल टर्न अराउंड विदाउट टचिंग देम. लेट्स सी.
3: लेट्स गो
0: स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट. Unlock your property's true sale value with NZPMI.

0: Download Rova to listen Hum 80s Jukebox.
1: Accurate traffic.
2: Looking for your next Toyota?
3: Partly cloudy, moderate westerlies for Auckland, a low of 12 degrees. Out of the city, we're still really busy on the southwestern. There's still a left lane blocked due to a breakdown. We're crawling out of town southbound to Massey Road. On the southern, 35 to Monaco, 47 to Drury. It's moderate heavy green lane to Mount Wellington and slow there to Monaco. And the northern Constellation Drive, 25 minutes and 45 to Silverdale. It was slow before Esmond Road to Sunnynook.
2: Top prices paid for quality Toyotas. Get a free appraisal at Monaco Toyota today.
4: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो
5: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स नोटरी पब्लिक बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स
6: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी लीजेस सब डिविजन इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 09272 or visit legalassociates.co.nz.
7: TradeDepot.co.nz. Spend $30 at Trade Depot and get fast free delivery. Kukar Smart QLED TVs from $249. Eurotech soundbars just $1.

0: 1129. Cordless stick vacuums, only $99. Shop online now at Trade Depot. Spend $30 and get fast, free delivery anywhere in Auckland. Tiny T's and C's apply. TradeDepot.co.nz.
1: Professional Financials hai saath aapke. Loan aur insurance ek chhat ke niche. No broker charge, bas trusted advice. Har deal banaye perfect right.
2: Refinance ke liye compare kare different banks. Loan process so simple and frank.
1: Business finance ya income protection ho, har step par guidance perfect ho. Sab kuch milega yahi. Apna future secure banaye.
2: Professional Financial Solutions. Your future, our priority. Call 09846-9934 or search PFSL. T's and C's, lending and credit criteria apply.
3: You filled the pinata before I sealed it, right?
4: No, you did.
3: Oh, I thought you did.
5: Get groceries in as little as 60 minutes with New World Express Delivery. Participating North Island stores only. See online for T's and C's.
6: Fuel prices got you feeling? Score 6 cents per litre off every fill with Caltex pumped, plus more on Super Pump Days. Fill up, scan your Caltex app or Kodu card and save instantly. Discount applies up to 50 litres. Caltex pump T's and C's apply. See caltex.co.nz.
7: Thinking of renovating or extending your home? Greystone Builders specializes in renovations and extensions of kitchen and bathrooms, decks and fences, and offer professional house painting. Licensed builders providing quality work at reasonable prices. Call Greystone Builders on 021-165-9362. That's 021-165-9362 for a free quote. Or visit greystonebuilders.co.nz.
8: Check. Hum News, brought to you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
9: Good evening, I'm Bridget Hasty with the latest at 5. The brakes have been pumped on next year's fuel tax hike. The government has scrapped the increase planned for January, with a smaller rise now scheduled for 2028. In the meantime, Minister Chris Bishop says they'll be topping up the National Land Transport Fund.
10: We're giving motorists a full year without the fuel tax increase they were expecting, while protecting investment in our transport system and putting it on a more sustainable funding path.
9: Dry and windy conditions are fanning a large blaze near Taupō. Broadlands Road in Tauhara has been shut as crews work to bring the fire under control. Drivers are urged to steer clear of the area, including where Broadlands Road meets State Highway 1. Labor's vowing to offer every New Zealand-trained nursing graduate a public health job if elected. Health spokesperson Aisha Verrill hopes it will stop them from heading overseas.
11: The policy will come into place after our first budget in government, and we'll be able to offer these jobs to those who graduate in the 2027 year.
9: However, National says Labor's claim that it can pay for the policy out of existing cost pressure funding is not credible. It's hoped State Highway 6 between Makarora and Lake Hawea can reopen to escorted convoys tomorrow. NZTA says good progress is being made in clearing slips following last week's rain. To sport, a shock first-round exit for an ailing Novak Djokovic at the US Tennis Open. The four-time champion has been beaten in five sets by Argentine Mariano Navone. It's the first time Djokovic has lost in the US Open first round, and it has been 20 years since he lost in the first round of a major. And another career ambition fulfilled for Kiwi golf star Ryan Fox. He's one of the automatic selections to play the President's Cup against the Americans in just over 3 weeks.
8: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill. The beat of Bollywood.
12: World's best, hamari good brands nahi hai.
8: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
13: Feels like 15.4 actual temperature, and overnight temperature is going to be as low as 12 degrees. Aaj barish hone wali hai, strong southwesterlies ka bhi saath rahega jo ease out ho jayenge thode time mein, but 6:01 pe aaj hoga sunset. Kal ki subah barish aap experience karenge. Dopahar se things are clearing out.
14: The Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us Manukau and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us Manukau and Pukekohe, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
8: Power Drive at 5. Brought to you by Focus Kitchens. Quality kitchens with modernized, customized designs for your dream kitchen. Drive Show with Sandy and Rusbe.
15: Masti karenge, mauj katenge, garda paal denge.
13: 5:03 on the 31st of August. Good evening. Hi, Sandy.
15: Hi, Ruzbe. A very, very good evening to you. इस सवर में Father's Day के competition में participate करने का आपको मौका मिलने वाला है. And सवाल एक पूछा था आपसे कि you know, ऐसा क्या है कि बिना टच के किसी को टर्न लेने में ऐसा मजबूर कर सकता है, पीछे मुड़ने में मजबूर कर सकता है.
13: सृष्टि ने मैसेज किया सैंडी उसके ऊपर.
15: Yeah.
13: Changing lanes. पीछे देखना पड़ता है ना.
15: Yeah.
13: That's right.
15: It's very nice actually, सृष्टि. हम यही देख रहे थे कि कितना कोई क्रिएटिव हो रहा है.
13: रोड ब्लॉक साइन नो एंट्री. चेंजिंग रूम मिरर. चेंजिंग रूम मिरर क्यों आपको पीछे मुड़वा रहा है?
15: बिकॉज आप देखते हो ना अपने आप को,
13: आप हर जगह देखते हो ना
15: पीछे. Yeah. कि कैसा लग रहा है ये कपड़ा, ये वो सब आप चेक करते हो.
13: हम लड़के यूजुअली सब सामने से देखते हैं.
15: ओके. नए लड़कियां पूरी फिट चेक करती है कि हाउ इज इट फिटिंग, हाउ इज इट लुकिंग.
13: यस.
15: सो या वीर का कहना है कॉलिंग आउट समवन बाय द नेम. या दिस वाज एक्चुअली जो मेरे पास था, लेकिन काफी आंसर्स आए हैं यार. चेंजिंग रूम, देन शाउट आउट जय ने बोला है, जस्ट कॉल देम. वैसे तो नाम लो तो वुमेन समझ में नहीं आया मुझे, जिसने वुमेन लिखा है.
13: कैसे नहीं समझ में आया सैंडी? अगर आप चल रहे हो, आप नहीं चल रहे हो, इमेजिन करो कोई लड़का चल रहा है, ठीक है.
15: हाँ.
13: मैं भी नहीं, कोई और लड़का चल रहा है.
15: हाँ.
13: ठीक है, वो वॉक कर रहा है और सामने से आप चल रहे हो.
15: अच्छा, कोई भी वुमेन आई है तो ऐसे निकल के जाती है तो वो पीछे मुड़ने पे मजबूर हो जाएंगे. पलट वाला सीन है ये.
13: दैट्स राइट.
15: पलट जाएंगे वापस. सही है ये.
13: बट ये मतलब काफी मेन के साथ होता होगा, कुछ के साथ नहीं होता है.
15: हाँ हाँ हाँ, काफी के साथ होता है. जब
13: डोंट जनरलाइज इट.
15: जब कोई शादी कर लेता है उसके साथ नहीं होता है.
13: नहीं, जब कोई नया नया शादी करता है उसके साथ नहीं होता.
15: एटलीस्ट 2-3 साल तक तो नहीं होता है. 5 साल चलो लेके चलो,
13: होता रहेगा. मेरे साथ तो
15: नई शादी कब तक होती है? वो नई शादी का मतलब क्या टेन्योर होता है, कोई बताएगा कॉल करके यहाँ पे?
13: नो आइडिया.
15: जब हम कहते हैं कि इसकी नई नई शादी हुई है, व्हाट इज नई नई शादी?
13: नई शादी मतलब कितना?
15: हाँ, कितना टाइम होता है नई शादी में?
13: देखो, डिपेंड करता है ना आप किससे बात कर रहे हो. अभी यहाँ पे कोई कॉल करेगा जो जिसकी 30 साल की शादी है,
15: उसके लिए वो भी नहीं है.
13: नहीं नहीं नहीं, वो बोलेगा कि 5 साल इज नई नई वाली शादी.
15: नहीं, हर मतलब हर किसी का इसको समझने का डिफरेंट होगा ना. तुम्हारे लिए तो 10 साल इज नई नई शादी.
13: मेरे लिए फॉरएवर इज नई नई, बिकॉज़ एवरीडे इज अ न्यू डे.
15: या एग्जैक्टली, तो इसीलिए.
13: या
15: हर किसी का डिफरेंट होगा. आप भी कॉल कीजिए यहाँ पे 0800004866 इज अ नंबर. कि नई शादी मतलब
13: कितने साल होते हैं नई शादी?
15: कोई महीने भी बोलेगा शायद ना.
13: हाँ, कि इनकी नई नई शादी हुई है, तो मतलब आप कितने सालों तक या कितने महीनों तक उसको नई नई कंसिडर करते हो?
15: या
13: हाँ, और फिर कितने टाइम के बाद आप नई नई कंसिडर करते हो
15: नई शादी? मुझे नहीं लगता कि कॉल करके इतना रिस्क लेगा. अब मैसेज कर सकते हैं 5599 पर,
13: या मैसेज कीजिए एनोनिमस होकर.
15: एंड देसी नॉट सो देसी हमें मेघा ने भेजा है यहाँ पे कि ये सवाल पूछने के लिए, तो थैंक यू मेघा.
13: एक गाने के बाद पूछते हैं वो सवाल.

0: देसी और नॉट सो देसी में एक बिहेवियर आज हमारी लिसनर ने हमें यहाँ पे भेजा है,
1: मेघा
0: आपने थैंक यू ये भेजने के लिए. एंड दिस इज एक्चुअली क्वाइट अ कंफ्यूजिंग वन, क्योंकि मैं कुछ कुछ जगहों पे देखता हूँ कि वो लोग गिफ्ट्स एक्चुअली मैं हम पढ़ लेते ना पहले उन्होंने क्या बोला है. उन्होंने बोला है कि ओपनिंग प्रेजेंट्स या गिफ्ट्स इन फ्रंट ऑफ एवरी वन इज इट देसी और नॉट सो देसी बिहेवियर. तो मुझे पता नहीं है, मुझे तो लगता था बचपन से कि देसी बिहेवियर इज टू नॉट ओपन गिफ्ट्स.
1: मुझे भी ये लगता है, ऐसा ही होता है.
0: एंड नॉट सो देसी इज टू ओपन गिफ्ट्स.
1: मुझे ऐसा लगता है कि ओपनिंग प्रेजेंट्स इन फ्रंट ऑफ एवरीवन इज नॉट अ देसी बिहेवियर, इट इज अ नॉन देसी. मुझे ऐसा लगता है.
0: मुझे भी ऐसा लगता है. आपको क्या लगता है? 0800-004-866, क्योंकि बचपन में यार हम लोग बर्थडे पार्टीज में जाते थे कभी.
1: क्या ना होता कि हमारे में उसको साइड पे रख देते हैं ना,
0: साइड में रख देते हैं और बाद में देखेंगे खोल के. बट हमारे देसी बिहेवियर इज टू मेक श्योर दैट यू पुट द नेम डाउन.
1: ओ या
0: के भाई याद रखना मैंने तेरे को ये दिया था.
1: या नाम तो मेरे को लगता है सारे लिखते ही हैं. हाँ. जरूरी होता है नाम लिखना. सो नाम तो लिखते ही है तो. लेकिन अगर आपको लगता है कि ये देसी लोग देसी भी करते हैं और करते होंगे ना, मुझे
0: करते होंगे
1: लगता
0: यार,
1: है कि...
0: आप कॉल करके बताइए हमें यहाँ पे. आपके इसमें नहीं होता था ना गिफ्ट खोलने का?
1: नहीं, सामने कभी नहीं खोले हैं.
0: हमने भी सामने कभी नहीं खोले, लेकिन मैं कुछ कुछ ऐसे इसमें गया. इनफैक्ट ना मुझे इफ यू आस्क मी माय प्रेफरेंस मुझे सामने
1: क्योंकि बाद में पता चलता है ना, हो ये कप का सेट फिर से किसने दे दिया, रीगिफ्ट करके ये किसने दिया वो किसने, वो तो आप बाद में खोलते हो देखते हो.
0: और फिर बाद में ये भी हो जाता है ना, अगर सबके सामने गिफ्ट खोले हमने तो वो ग्रुप में से किसी को भी तुम रीगिफ्ट नहीं कर पाओगे.
1: एग्जैक्टली. और दिवाली के टाइम पे भी ऐसा बहुत होता है ना. कि दिवाली के टाइम पे चीजें जो है जो घर पे काफी समय से होती है वो रीगिफ्ट हो जाती है. मुझे लगता है क्रॉकरी सिस्टम इज वन थिंग, मतलब
0: सस्टेनेबल बिहेवियर, इट इज फॉर द एनवायरनमेंट
1: 100%.
0: क्योंकि हम उसको खोल के यूज करके वेस्ट क्यों करें ना, जब हम किसी और को यूज में ला सकते हैं.
1: मिक्सी हो गया घर पे, जूसर वगैरह.
0: मिक्सी नहीं मिला ऐसा मेरे को गिफ्ट.
1: ये इंडिया में ये बहुत कॉमन था, मिक्सी जूसर बर्तन हो गए, मतलब यू नो क्रॉकरी सेट.
0: यहाँ पे अगर मेरे को कोई दे रहा ब्लेंडर वेंडर, मेरे को अभी क्या चाहिए मालूम है गिफ्ट में? मुझे वो चाहिए, वो एक नया आइटम आया है, नया नहीं अभी पुराना हो गया, जिसमें स्लशी बनता है, आइसक्रीम बनता है. सैंडी यार, अगर आप मेरे को दिवाली पे गिफ्ट देना चाहो, I would like that slushy maker.
1: I don't believe in giving gifts.
0: Same.
1: तो हमारा तो हो गया. तो आप बताइए गाइस, व्हाट डू यू थिंक ओपनिंग गिफ्ट इन फ्रंट ऑफ एवरीवन? फॉर एग्जांपल आपका बर्थडे है, सब आ रहे हैं, आपको गिफ्ट दे रहे हैं, हैप्पी बर्थडे. डू यू ओपन इन फ्रंट ऑफ देम और डू यू लाइक कीप इट साइड पे? और हम आज के टाइम की बात कर रहे हैं, नॉट योर जो बचपन छोड़ो, अभी के टाइम पे क्या करते हो आप? डू यू ओपन रुजबित? ऐसे तुम्हारे फ्रेंड्स आते हैं तो सामने तुम ओपन करते हो क्या?
0: सामने कभी नहीं करता हूँ मैं. क्योंकि फिर मेरे को फिर प्रिटेंड भी करना पड़ेगा ना कि अरे क्या बढ़िया यार, मेरे को यही चाहिए था यार, दिस इज सो कूल.
1: दिस वाज ऑन माय लिस्ट.
0: मुझे एक बात बताओ, आप कौन ऐसा सामने गिफ्ट, मतलब मेरे को तो पहले तो ये भी क्वेश्चन बहुत रिडंडेंट लगता है. जब भी आपको कोई खाने पे बुलाता है और फिर आप उनको पूछते हो कि खाना कैसा लगा, कोई बोलेगा कि नमक ज्यादा था या नमक कम था? कोई बोलेगा क्या?
1: नहीं, या बहुत कम है.
0: आइडियली तो कोई नहीं बोलेगा, कुछ लोग बोलते सैंडी की तरह, लेकिन उन्होंने सैंडी बहुत सैवेज है, मैंने अभी फाइंड आउट किया ये रिसेंट में. तो
1: खाने के मामले में मैं कुछ नहीं बोलती.
0: मुझे ऐसा लगता है कि किसी को पूछना ही नहीं चाहिए कभी कि ये कैसा लगा कैसा नहीं लगा. अगर उन्होंने कुछ नहीं बोला है तो समझ जाओ.
1: अगर तारीफ करे तो अच्छा है, अगर कुछ नहीं बोला है तो मतलब
0: नहीं. ऐसा कुछ नहीं, मैं कभी कुछ नहीं बोलता हूँ. बट मेरे को हमेशा बहुत अच्छा, क्योंकि मैं खो जाता हूँ खाने में. मेरे को लगता है बॉडी लैंग्वेज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है ना. तो अगर कुछ नहीं बोला किसी ने तो समझ जाओ कि वो एंजॉय कर रहे हैं. अगर उन्होंने स्पेशली टाइम निकाल के बोला है मतलब उनको नहीं अच्छा लगा है.
1: नहीं, ऐसा भी नहीं होता है.
0: काफी बार ऐसे ही होता है.
1: So
0: भाई मैं कवर कर देती हूँ, फटाफट बोल देती हूँ कि नहीं बहुत अच्छा है. वेरी इंटरेस्टिंग.
1: देसी और नॉट सो देसी बिहेवियर बताइए ओपनिंग गिफ्ट इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, व्हाट डू यू थिंक?
0: इट्स अ देसी एक्ट, प्रशांत बोल रहे हैं. ओपनिंग गिफ्ट इन फ्रंट ऑफ एवरीवन.

0: inviting all passengers booked on flight Hub 104.2 to the tropical paradise of Vanuatu with Solomon Airlines to begin boarding immediately. Please have your phone ready, your Rova app open, and your excitement switched on for inspection. Your boarding pass for this exclusive flight is easy. Listen out for the special hum boarding call on air. That's your cue to open Rova app and enter Board Now to lock in your entry to win. To return air tickets to Vanuatu flying with Solomon Airlines plus $1,000 spending money. Vacation.
1: Hum boarding call, thanks to Solomon Airlines, flying four times each week, non-stop, from Auckland to Vanuatu.
2: Let's go.
1: Visit flysolomons.com. T's and C's apply. Hum, accurate traffic.
2: Auckland Home Show, 10 to 13 September.
3: Partly cloudy, moderate westerlies for Auckland, a low of 12 degrees. Out of the city, we're still really busy on the southwestern. There's still a left lane blocked due to a breakdown. We're crawling out of town southbound to Massey Road. On the southern, 35 to Monaco, 47 to Drury. It's moderate heavy green lane to Mount Wellington and slow there to Monaco. And the northern, Constellation Drive, 25 minutes and 45 to Silverdale. Episode before Esmond Road to Sunninook.
2: Auckland Home Show and Garden Showcase, 10 to 13 September at Auckland Showgrounds.
4: When your car starts making a funny noise, bringing it into Mita stops your mind spinning. With thoughts like, should you just ignore it? Pray? Ask your sister's husband's mate's cousin Greg to look at it? Hang around Henderson with a hood up, hoping a friendly Brogan will offer advice? Or hope your local mechanic doesn't find extra stuff to fix? Which brings us back to praying. So save the mental gymnastics and bring it into Mita's for straight answers and mates rates prices. Mita's, for peace of mind motoring.
0: Shine Dental has a fresh new look with more space and the same caring team. New patients ke liye ultrasonic scale and polish from $99 or one tooth acrylic denture sirf $599 mein. Plus free dental examinations for new and existing patients. Free wins and ACC codes or under 18s ke liye free treatment. Visit Shine Dental at 574 Great South Road, Manukau. Book today on 09277644. T's and C's apply.
5: Pick up a treat and a Smeg bonus sticker at New World North Island when you get Lindt Lindor Pouch Packs, $9.99 each, or Oreo Cookies Select Size, 4 for $6. Now that's New World value. Sizes, limits, exclusions apply.
6: Gym, swim and move for under $10 a week for the first 12 weeks. That's less than a couple of coffees. And there's no joining fee. Search Auckland Council Pools and Leisure. T's and C's apply. Tāmaki Turiki. All together Auckland.
0: It's dream season at Beds R Us. Save up to 50% on selected sleepyhead beds like the Swiss Tech Precision. Half price, queen size, now $4,299. Check out these dream deals and more at Beds R Us Manukau and Kukekwe, where dreams begin.
7: Are you ready to go home?
1: The Drive Show with Sandy and Ruzbane, brought to you by Beds R Us Manukau and Kukekwe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us Manukau and Kukekwe, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
8: Power Drive at 5.
9: Brought to you by Focus Kitchens. Quality kitchens with modernized, customized designs for your dream kitchen.
10: You're listening to Hum, playing Bollywood's biggest hit. And now it's time. आप यहाँ पे हमें call करें Father's Day competition में part लेने के लिए. Fathers, अगर आप हमें सुन रहे हैं अभी, $500 आपके नाम हो सकते हैं for Father's Day. बस आपको call करना है यहाँ पे और हमारे कुछ एक test है. उस test को आपने pass करना है.
11: Yes, हम कुछ यहाँ पे slang words बोलने वाले हैं और आपको बताना है कि ये जो slang words है, इसका मतलब क्या है? जो आजकल use होते हैं बहुत ज़्यादा. सो डिपेंड करता है जब आप कॉल करेंगे आपके बच्चे किस एज के हैं उसके ऊपर हमारे स्लैंग वर्ड्स डिपेंड करेंगे.
10: नहीं ऐसा नहीं है, इतना कस्टमाइज्ड
11: इज लाइक इतना भी सर्च नहीं किया मैंने, रुक जाओ.
10: इतना भी कस्टमाइज नहीं है, जो है ये है.
11: सो कॉल करो 0800 00 हम. इस कॉम्पिटिशन में होगा क्या आपको बताते हैं. आप यहाँ पे कॉल करोगे, आपका नाम इस ड्रॉ में शामिल हो जाएगा जहाँ पे यू कैन विन $500 कैश इसी फ्राइडे को 4 सितंबर को. ये आप जी सकते हैं. रिमेंबर हमारा संडे जो है इस फादर्स डे, सो यू कैन बी $500 रिचर दिस फादर्स डे. ये आपके लिए हो सकता है. सो करना क्या है, जस्ट कॉल नाउ 0800 00 4866. आपके पास अनदर 1 मिनट है यहाँ पे कॉल करने के लिए. तब तक बता देते हैं रुजबे. अच्छा कॉल आ गई तो फिर बाद में बताती हूँ मैं.
10: हाय
12: कैसे हो रुजबे?
10: बहुत ही बढ़िया, कैसे हो आप?
11: एकदम बढ़िया.
12: बहुत बढ़िया, थैंक यू यार.
10: बहुत बढ़िया, दैट्स गुड.
12: पूछो सवाल.
10: अच्छा तो आप पहले बताइए, आपके बच्चे कितने साल के हैं?
12: भाई तूने खुद ही बोला कि एज रेफरेंस करना ही नहीं है.
11: डिसाइड कर लो रुजबे.
10: मैंने थोड़ी बोला एज रेफरेंस नहीं करना,
11: मतलब बेसिकली आपके बच्चे हैं ना.
10: बच्चे हैं ना.
12: हां जी, 15 ईयर ओल्ड, 14 ईयर ओल्ड एंड अ 4 ईयर ओल्ड.
10: क्या बात कर रहे हो. ओहो हो, आपकी आवाज से तो ऐसा लग रहा है कि आप खुद ही 25 साल के हो. सब कुछ पता ही रहेगा. तो मेरे को एक बताइए, इसका मतलब क्या है चॉप्ड अंक?
11: क्या
10: नहीं पता आपको चॉप्ड अंक?
11: चॉप्ड अंक,
12: चॉप्ड अंक,
10: हाँ.
11: UNC.
12: चलो मेरे क्वेश्चन से.
10: आपके ऊपर यूज होगा ये, नहीं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं, लेकिन इट इज ऑलवेज गुड टू नो बिकॉज बच्चों को लगता है हम अनकूल है. देखो मैं हम बोल दिया, खुद को भी ऐड कर दिया इसमें. कितना करना पड़ता है कवर करने के लिए यार.
11: मैंने एक स्टेटमेंट बोलती हूँ, उसमें एक वर्ड है. हाँ. तो उसका अगर आपको पता है, रेंट फ्री बेसिकली काफी ये जो जनरेशन है यूज करते हैं. सो लाइक दिस वीडियो इज लिविंग इन माय हेड रेंट फ्री. जब ऐसा कोई बोलता है तो उसका मतलब क्या है?
12: बेसिकली उनको वो चीज पसंद है, वो उनके दिमाग में घर कर गई है बेसिकली.
10: मतलब
11: अच्छा तुम वो खत्म नहीं हुआ था
10: कहाँ पे? अभी तो मैं बस डिस्क्लेमर दे रहा था कि इनको बुरा ना लगे, लेकिन चॉप्ड अंक का मतलब ये है कि बैड या फिर बैड लुकिंग या फिर अनकूल, और अंक का मतलब है एन ओल्ड आउट ऑफ टच अंकल.
11: तो याद रखना ये, कोई आगे सामने बोले चॉप्ड अंक.
12: अच्छा,
10: हाँ.
11: क्या होता है ये?
10: नहीं नहीं, मुझे मैं एक इवेंट पे गया था, वहाँ पे बच्चे बोल रहे थे तो मेरे को
11: ऐसा बोला तुम्हें.
12: ये आप बीती है.
10: नहीं रे, तुम्हें लगता है क्या? मैं ऐसा बस सेल्फ डेप्रिकेटिंग ह्यूमर करता हूँ एंटरटेनमेंट के लिए.
11: Okay.
10: मैं बहुत कूल हूँ बच्चों के सामने. क्या है यार. एनीवे मंदीप,
12: एक बार बच्चे ही बता सकते हैं भाई.
10: अरे बच्चे
11: ये भी बात है,
10: बच्चों का फेवरेट हूँ मैं होपफुली. उससे याद आया मेरे को एक बात बताइए, आपको टच ग्रास का मतलब पता है क्या?
12: टच ग्रास मैंने सुना है, बच्चे बहुत कहते हैं टच ग्रास. आई थिंक रियलिस्टिक होना या फिर ये टच बोर्ड को टच ग्रास बना दिया उन्होंने आजकल.
10: ओह वाओ दैट्स कूल. नहीं, टच ग्रास का मतलब ये होता है के टेलिंग समवन टू स्टेप अवे फ्रॉम देयर स्क्रीन और ऑब्सेसिव थॉट्स एंड गो आउटसाइड टू कनेक्ट विद रियलिटी.
11: सो कूल.
10: गो एंड टच सम ग्रास. एक्चुअली हमारे जमाने में टच वुड बोलते थे ना.
11: हम टच वुड,
10: अब टच ग्रास बोल रहे हैं. वुड का शॉर्टेज हो गया.
12: वुड महंगी हो गई, ग्रास
10: वुड महंगी.
11: वुड पे तो सर पे हाथ लगा लेते थे, लेकिन अभी ग्रास में कहा.
10: वो आपके केस में सैंडी भूसा होता है.
11: कोई बात नहीं मंदीप, आज वो खुद की गाड़ी में आया है. थैंक यू मंदीप फॉर कॉलिंग.
10: मंदीप थैंक्स फॉर कॉल. आपका नाम ड्रॉ में शामिल कर दिया हमने.
12: थैंक यू सो मच.
10: थैंक्स मैन. थैंक्स. अच्छा तो आज का यहाँ पे फादर्स डे कॉम्पिटिशन समाप्त होता है.
11: सो थैंक यू सो मच यहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए. रिमेंबर, वैसे हमारे सोशल मीडिया के बारे में मैं बता दूँ रुजबे यहाँ पे, इससे पहले कि हम आगे बढ़े. सोशल मीडिया पे ना जो एक बहुत इंटरेस्टिंग कंपटीशन है, डैड का AI अपग्रेड करना है आपको. फॉर एग्जांपल, अगर आप सोचते हैं कि आपके डैड ना सुपर हीरो है एंड योर डैड इज़ डूइंग मल्टीपल जॉब्स, तो ये आप उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. वहाँ पे हमने एक ऑलरेडी AI जनरेटेड डैड की फ़ोटो डाली है, सुपर हीरो काइंड ऑफ फ़ोटो डाली है. तो आपको उसके नीचे AI जनरेटेड सुपर हीरो फ़ोटो डालनी है अपने डैड की. सो AI पे जाइए, वहाँ पे प्रॉम्प्ट देने होते हैं कि मैं अपने डैड को एज अ सुपर हीरो दिखाना चाहता हूँ, चाहती हूँ, एंड माय डैड इज़ डूइंग दीज जॉब्स. फॉर एग्जांपल DIY हो गया, कुकिंग हो गया, या शॉपिंग हो गया, या कुछ भी हो गया, एनीथिंग दैट फिट्स देयर. उसके बाद जो इमेज आएगी वो वहाँ पे जाके कमेंट सेक्शन में जाके पोस्ट कर दीजिए. टैग योर डैड अगर आपके डैड सोशल मीडिया पे है एंड गेट योर फ्रेंड्स एंड फैमिली टू लाइक योर डैड्स फोटो दैट्स इट और आपका नाम इस ड्रॉ में जाएगा जहाँ पे $300 कैश आपके नाम हो सकता है
10: जी तो फटाफट पार्टिसिपेट कीजिएगा इसमें सोशल मीडिया के थ्रू और भी बातें करेंगे आपके साथ अभी के लिए बॉलीवुड्स मोस्ट वांटेड में कॉकटेल 2 का ये गाना
9: बॉलीवुड्स मोस्ट वांटेड
13: गुंडी खड़ जाओ या सीधा अंदर आओ
14: मैं लाऊं अपना ए गेम
9: ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स बिल्ड योर ड्रीम्स

0: your boy Badshah
1: की ओर से आप सुन रहे थे सैंडी के ऊपर फीचर ये गाना
0: शुभोय बादशाह
2: गाने का टाइटल मेरी ऊपर नहीं फीचर है ये
1: नहीं सच्चे नहीं
2: एनीवे तुम्हें जिस सेगमेंट के लिए बोला था वो करना है अभी कि नहीं करना है
1: कौन सा सेगमेंट करना है
2: हाँ तो फिर भी नाइस
1: सो बेसिकली अभी मैं बस ऐसे इंस्टाग्राम देख रहा था और उसमें मैंने देखा कि जैसे तैसे मर मर के अब मैं 4000 पे पहुंच रहा हूँ
2: 4000 फॉलोअर्स पे
1: 4000 फॉलोअर्स पे पहुंच रहा हूँ मैं
2: एंड ही इज टॉकिंग अबाउट इंस्टाग्राम इंस्टा हैंडल
1: मेरा पर्सनल इंस्टा हैंडल
2: नाम क्या है
1: अभी तक नहीं पहुंचा हूं मैं
2: रुजबे_दबावा
1: हाँ यार यही प्रॉब्लम है मेरा नाम बहुत डिफिकल्ट है इसलिए नहीं आ रहे फॉलोअर नहीं तो कैसे आ जाते
2: 4000 में कितने शॉट हो
1: अभी मैं 30 शॉट हूं सैंडी
2: 30 शॉट तो 30 लोग तो हमें सुन ही रहे हैं
1: 30 लोग जो इंस्टाग्राम पे है
2: वो तो हमें सुन ही रहे हैं
1: फॉलो करने में इंटरेस्ट होंगे फ्री है फॉलो करना वैसे
2: हाँ
1: अगर इमेजिन करो एवरी फॉलोअर यू गेट $1
2: नहीं यहाँ नहीं मिल रहा है
1: हाँ.
2: तो प्लीज गो एंड शो लव एंड अगर उसबे का नाम ढूंढना आपको इतना डिफिकल्ट हो रहा है गो एंड सर्च सैंडी सेको
1: और फिर सैंडी सेको के थ्रू मिल जाएगा
2: हाँ, क्योंकि वहाँ पे सारी वीडियोस जो है वो कोलैबोरेशन में है रुजबे के साथ
1: डिस्क्रिप्शन में डालो ना डूइंग बायो में डालो ना डूइंग ड्राइव शो विद रुजबे और मेरा को टैग करो ना वहाँ से तो इजी रहेगा ना ढूंढना
2: ओके तो यू हैव टू गो टू सैंडी सेको SANDYSEKOHON सो सैंडी सेको तो ढूंढोगे आप तो या थोड़े मेरे भी बढ़ जाएंगे तो जाके मुझे फॉलो करो और
1: सैंडी के कितने 9000
2: नहीं नहीं नहीं 8048
1: है आपके भाई यही तो है ना 14 इयर्स से कर रही है रेडियो
2: 14 इयर्स से इंस्टा भी नहीं मेरा ओपन था बढ़िया गाइस आपको करना क्या है और वहां पे आपको सुपर पोस्ट मिलेगी जहां पे केतन मैं और रुजबे हम तीनों की फोटो है फिफ्थ क्लास का ड्रीम टेंथ क्लास का ड्रीम
1: केतन ने क्या किया है
2: क्या
1: केतन ने हम दोनों को पतला कर दिया उसमें और जो भी हमारा फैट निकला है वो आपके ऐड कर दिया है
2: हाँ, हाँ? मेरे को कुछ ज्यादा गोलू मोलू कर दिया हाँ? टेंशन हो गई मुझे वो देख के कल ही वेट चेक किया
1: मैं वही सोचूं कि सैंडी ने ये देखकर कोई एतराज कैसे नहीं किया
2: अभी कर दिया तो अभी कर दिया क्या ये एतराज करूं मैं उसको मेरे को मेरे फ्रेंड का मैसेज भी है ये ए जनरेटेड है ना मैंने बोला यस ऑफ कोर्स
1: इसलिए तो मैं इतनी मोटी लग रही हूं ना तो मैं तो पतली हूं
2: बहुत एनीवे
1: तो एनीवे अभी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं
2: तो आप जाइए इंस्टा पे सैंडी
1: सेको आप जाके करते हो फॉलो तो हम अभी के अभी आपको शाउट आउट भी देंगे देखो हम भी रिटर्न में कुछ देंगे ना आपको तो अभी मुझे आया है
2: किसी का नहीं
1: सुनील ने किया है मुझे अभी फॉलो
2: सुनील ने किया है ओके
1: नहीं बट वो एक घंटे पहले है तो अभी तो कोई नहीं किया रिसेंटली
2: तो कोई भी अभी सुन के वहां पे नहीं गया उस पे
1: नहीं नहीं अभी किया ना स्टार्टेड फॉलोइंग सॉरी डिल्जी काइको
2: ओके
1: सही बोला ना मैंने हाँ दिल के आपने किया है यहाँ पे थैंक यू
2: आपका भी इसी नोट पे आपको याद दिला दूँ हमारे पॉडकास्ट के बारे में भी सो हमने इस बार जो पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया हमने हरजोत सिंह एंड गगन संधु के साथ रिकॉर्ड किया एंड ये जो पॉडकास्ट है इस में हमने बातें की बिकॉज दे आर द क्रिएटर्स बिहाइंड द ग्राउंड ब्रेकिंग डॉक्यूमेंट्री पंजाब टू न्यूजीलैंड आउतरेवा एंड दे शेयर न्यूजीलैंड की काफ़ी सारी स्टोरीज अनटोल्ड स्टोरीज जो हमारी कम्युनिटी की यहाँ पे है ऑफ करेज सेक्रीफाइस एंड बिलोंगिंग्स की स्टोरी बिकॉज जब भी कोई यहाँ पे आता है तो एक बिलोंगिंग की बात होती है कि वेयर डू यू बिलोंग सो इन दिस एपिसोड 100 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री के बारे में बातें हुई है रिसर्च एंड पैशन तो रुजबे थोड़ा सा सुनाना चाहोगे ये एपिसोड क्या
1: हाँ सुना चाहूँगा लेकिन उससे पहले मैं थैंक्स भी कहना चाहता हूँ हमें यहाँ पे काफ़ी हमारे लोगों ने सुनकर फॉलो किया है
2: शाय सिंह ने भी जाके किया है
1: पूजा कपूर थैंक यू सो मच शामीज अली एंड कैथरीन ने भी यहाँ पे
2: और बेन एफ ने कमेंट भी किया जाके
1: वो पोस्ट पे कमेंट किया
2: या
1: अच्छा ओके तो चलो अभी हम आपको सुनाते हैं ये हमारा एपिसोड ये एक्चुअली एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है इसमें काफ़ी रोस्ट हुआ हूँ मैं पंजाब टू आउतरेवा में सुनते हैं अभी
3: वो कल्चर थोड़ा सा मिक्स हो जाता है तो वो अच्छा रहता है यू नो स्पेशली इन कंट्री लाइक आप एक ना जजमेंटल पोजीशन में आ जाते हो, आप जज बहुत करने लग जाते हो. और मैं अभी चलो बात को डिफरेंट लेवल पे चलेंगे, मैं यहाँ एक वॉलंटरी सॉकर टीम को ट्रेन कर रहा हूँ बच्चों की ना, उसमें 10-11 साल के, उसमें मौरी भी हैं, उसमें आयरलैंडर भी है, चाइनीज भी है, और मेरा बच्चा भी है ना इंडियन भी, सब चलते हैं ना. अच्छा पेरेंट्स जब आते हैं वो पूरा टीम को सपोर्ट करते हैं, कुछ लगता नहीं कोई ये है, वो एक दूसरे को ला के देंगे ये वो करेंगे, मतलब बहुत ज्यादा वेलकमिंग, और यू नो बाद में बच्चों को स्वीट वगैरह सारे बच्चों को अपने को सपोर्ट कर रहे हैं, जैसा वो अपने बच्चे को सपोर्ट कर रहे हैं वैसा उनको कर रहे हैं. तो वो फैमिली सी लगती है ना, ऐसे लगता ही नहीं हम कोई भाई डिफरेंट कम्युनिटी से हैं, वो बल्कि अच्छा लगता है ना भाई आप एक भी चलो इनिशिएटिव ले रहे हो ना अभी कम्युनिटी के प्रोजेक्ट के लिए, तो बच्चे आ रहे हैं तो आप उनको सपोर्ट कर रहे हो ना भी, चलो इन फ्यूचर में कभी बच्चे कहेंगे भी हम कहीं ट्रेनिंग करते होते हैं ना, तो फिर कभी लगता है यार चलो भाई गॉड ग्रेस भी हम भाई चलो हमें ब्लेस्ड है भी हमें ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है. कितने ही हमारी कम्युनिटी के बंदे हैं जो इस चीज़ से ना वाकिफ है, वो कभी समझ ही नहीं सकेंगे ना. हमारे अभी चक्कर क्या पड़ गया, एक तो ग्रीड है, तो जो फ्रेंकली बोलूँ ना ब्लंटली बोलूँगा, हमारी कम्युनिटी में कहीं ना कहीं ग्रीड आ गई है. फोजरी के जितने केसेस हमारी कम्युनिटी में आ गए ना, है ना, तो जो एक्सेप्ट करना बनता है ना, अगर फिर उस पर कोई पॉइंट आउट करता है हम उसको रेशली ले लेते हैं ना, ठीक है ना, भी हमें रेशली ये किया है ना, फिर हम कंपेयर करते हैं अभी बाकी कम्युनिटी का भी ये, हम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा, अगर हम बाहर से आए हैं कहीं हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा बनती है, ठीक है. तो हमारी उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए हम क्या करते हैं, अगर कोई कम्युनिटी वर्क करते हैं अपनी कम्युनिटी में बोल के बोलते हैं हमने कम्युनिटी वर्क कराया, दैट्स नॉट अबाउट कम्युनिटी वर्क, इट्स अ फेम वर्क. अगर हमने डॉक्यूमेंट्री बनाई, अगर इसने बोला भी नहीं इंग्लिश में ही रखेंगे, उसका पर्पज़ था. अगर हम ये सोचते यार इसके व्यू ज़्यादा आएंगे, लोग ज़्यादा देखेंगे, इसमें हिंदी ऐड कर लो, पंजाबी हुर्म कर लो, भाई ज़्यादा व्यू आ जाएंगे, लाइक आ जाएंगे, वो कर लेंगे, फिर हमारी शूट सोच छोटी है.
1: बहुत ही डीप कॉन्वर्सेशन रहा हमारा
2: एक्चुअली द रीजन के साथ, या व्हाई ही वाज सेइंग ऑल दिस वाज बिकॉज इट स्टार्टेड फ्रॉम द कन्वर्सेशन कि यू नो 100 इयर्स अगो जब हमारी कम्युनिटी के लोग यहाँ पे आए तो उन्होंने यहाँ के कल्चर को एक्सेप्ट करके यहाँ के कल्चर के बारे में भी सोचा, अपनी चीज़ें भी रखी लेकिन यहाँ का भी सोचा, और बहुत इंक्लूसिव हो गए. जब वो चीज़ें कर रहे थे वो पूरी के पूरे न्यूजीलैंड को देख के कर रहे थे, सिर्फ अपना सोच के नहीं कर रहे थे कि भाई कम्युनिटी वर्क कर रहे हैं तो सिर्फ अपने ही लोगों के लिए कर रहे हैं, बट दे वर डूइंग फॉर एवरीवन
1: अराउंड. सो Like they were considering the whole community to be one community.
2: Yes.
1: और ऐसे fragmented communities नहीं थे. And I think that is the essence of this podcast as well. And also the documentary you should definitely go and check it out. In the meanwhile, मेरे को shout out भी देना है. Roslyn Sharma, thank you so much. आपने भी यहाँ पे आके follow किया है. Bin Jogan.
2: ये Ori.
1: Bin Jogan.
2: Yeah.
1: हाँ. अच्छा. फिर हमें आया है शाई सिंह ने भी फॉलो किया. थैंक यू सो मच यार, थैंक यू फॉर योर लव, विल नॉट डिसअपॉइंट योर फॉलो,
2: मतलब रिज़बे विल पोस्ट समथिंग,
1: वी विल या वी आई विल डू समथिंग. द ड्राइव शो विद सैंडी एंड रिज़बे ब्रॉट टू यू बाय बेड्स आर अस मोनाको एंड पोकेकोई, वेयर स्लीपी हेड कंफर्ट मीट्स एक्सेप्शनल वैल्यू. बेड्स आर अस मोनाको एंड पोकेकोई एंड जिमी टेलर एंड टीम फ्रॉम वेस्ट सिटी ऑटो ग्रुप, द होम ऑफ GWM Havel एंड ओमुडा जेकू. हम एक्यूरेट ट्रैफिक.
4: कोगन मोबाइल.
5: Partly cloudy, moderate westerlies for Auckland, a low of 12 degrees. Out of the city, the southern motorway, all lanes are back open after an earlier breakdown. A heavy massive road through to State Highway 1. On the northern to Constellation Drive, 30 minutes for heavy Esmond Road to Northcote Road and to Silverdale 41. It's getting heavy Albany and through Dairy Flat. And the southern, mainly slow Mount Wellington to Monaco. It's taking 31 minutes.
4: Honest Aussie value. Yearly prepay plans from just $160. Search Kogan Mobile. T's and C's apply.
6: Professional financials has saath aapke. Loan or insurance. एक छत के नीचे, नो ब्रोकर चार्ज, बस ट्रस्टेड एडवाइस. हर डील बनाए परफेक्ट राइट.
7: रीफाइनेंस के लिए कंपेयर करें डिफरेंट बैंक्स. लोन प्रोसेस हो सिंपल एंड फ्रैंक.
6: बिजनेस फाइनेंस या इनकम प्रोटेक्शन हो, हर स्टेप पर गाइडेंस परफेक्ट हो, सब कुछ मिलेगा यही. अपना फ्यूचर सिक्योर बनाए.
7: प्रोफेशनल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस, योर फ्यूचर आवर प्रायोरिटी. कॉल 09846-9934 और सर्च PFSL. T's and C's, लेंडिंग एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई.
8: Gym, swim and move for under $10 a week for the first 12 weeks. That's less than a couple of coffees. And there's no joining fee. Search Auckland Council Pools and Leisure. T's and C's apply. Tāmaki Turiki. All together, Auckland.
7: नया हाइब्रिड ढूंढ रहे हो तो हैवेल ही लो। राइट नाउ एंड्रू सिम्स मेलुकाव में ब्रांड न्यू हैवेल H6 हाइब्रिड ड्राइव हुए सिर्फ 40,990 से प्लस ऑन रोड कॉस्ट, नो डिपॉजिट फाइनेंस लो। अपनी ट्रेड इन के लिए जबरदस्त प्राइस पाओ और डिस्कवर करो कि क्यों ज्यादा किविज हैवेल चूज कर रहे हैं। स्टाइलिश, स्पेशियस और टेक्नोलॉजी से भरा हुआ, वो भी हाइब्रिड एफिशिएंसी के साथ। आज ही विजिट करो एंड्रू सिम्स JWM मेलुकाव। हैवेल हाइब्रिड, मोर फॉर योर मनी। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
9: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहाँ आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 21 branches across Auckland and Hamilton, ये हमेशा आपके पास हैं. Go Bananas Childcare brings you a crazy offer with 6 months completely free and the following 6 months 50% off on fees for all ages. Offer ends 30th September. Limited spaces. First come, first served. तो देर मत कीजिए. Call 0800-46-26-26 today. Terms and conditions apply.
10: It's Woolworths Mighty Meat Week. Get mighty cuts and mighty savings. Our New Zealand fresh beef mince, 1 kg, $17.99 each. And our New Zealand fresh chicken drumsticks, $4.79 a kg. TCs and exclusions apply.
11: Are you ready to go home?
12: The Drive Show with Sandy and Rusbe. Brought to you by Beds R Us, Manukau and Pukekohe. Where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us, Manukau and Pukekohe. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group. The home of GWM Havel and Omura Jaiku.
13: Power Drive at 5.
14: Brought to you by Focus Kitchens. Quality kitchens with modernized, customized designs for your dream kitchen.
15: Let's go.
16: Straight from the heart.
17: Unlock your property's true sale value with NZPMI, your local

0: Amal Malik ki awaaz along with Shreya Ghoshal. You're listening to Hum playing Bollywood's biggest hits, Yahi Guzar Du. What a beautiful track, yeah. Haan, Sandy?
1: Yes, it is beautiful track. And bahut achhi music
0: hai. Sung by a beautiful person.
1: Yeah, and also Shreya Ghoshal.
0: And also, main Shreya Ghoshal ki baat kar raha tha.
1: Yeah, yeah.
0: Beautiful person mein.
1: Of course, she is beautiful, na.
0: Yeah, so and kyun bola apne Shreya Ghoshal?
1: नहीं मैंने
0: oh,
1: बोला
0: अमाल,
1: कि
0: अमाल भी ब्यूटीफुल ही है सैंडी यस यस
1: ओह माय गॉड
0: देखने का नजरिया होता है ना
1: एनीवे अब आगे बढ़ते हैं आपको बताते हैं कि 6 बजे के बाद आज आप क्या सुनने वाले हैं
0: जी 6 बजे के बाद आज सैंडी क्या है ऐसा मतलब कुछ ट्रेंड मेकर्स में हम हमेशा थीम लेकर आते हैं आपके लिए एक अलग अलग कोई थीम होती है आज की क्या थीम है
1: बैक एट वर्क
0: ओह
1: बैक एट वर्क थीम सो बैक एट वर्क जब आपको होता है कि यार अभी काम पे जाना है वापस तो कौन से गाने सुनने पसंद करते हो आप वैसे तो आज का दिन आपका निकल गया वो बट स्टिल बैक एट वर्क जब आप सोचते हो तो जैसे फॉर एग्जांपल आई विल गिव यू वन एग्जांपल ऑल इज वेल थ्री इडियट्स का गाना
0: बैक एट वर्क ऑल इज वेल नहीं होता है
1: क्यों नहीं होता है वो
0: बैक एट वर्क व्हेन ऑल इज नॉट वेल दैट्स व्हाई
1: आई नो बट यू हैव टू से टू योर हार्ट रिमेंबर इसमें क्या बोला था आमिर खान के कैरेक्टर ने कि आपको ऐसे दिल पे हाथ रख के बोलना होता है ऑल इज वेल ऑल इज वेल
0: वैसा राइट राइट राइट
1: या सो आपको सब सही लगता है सो ऐसे गाने जो आज आप मंडे के दिन में सुनना चाहते हैं टू फील सो दैट आपको अगले वाला जो पूरा हफ्ता है उसके लिए पंप मिले कौन से गाने हैं 5599 इज द नंबर जहां पे मैसेज करो 6 बजे के बाद ये सारे गाने आपके लिए हम लेके आएंगे
0: और कौन से ऐसे गाने जो आपको लगते हैं कि यू नो वर्क रिलेटेड हो सकते हैं
1: काम के रिलेटेड आपको लगता है कि और कौन से गाने हो सकते हैं सो
0: या बैक टू वर्क
1: बैक हां
0: बैक टू वर्क ना
1: बैक टू वर्क वाले गाने
0: सोचता हूं मैं भी यार ये काफी इंटरेस्टिंग जॉनर है
1: या
0: सो कौन सा गाना ऐसा हो सकता है
1: कुछ भी हो सकता है यू कैन एनी सॉन्ग मुझे लगता है इलाही भी बहुत सूट करता है
0: इलाही तो मेरे को बहुत पसंद है और वो मेरे लिए वर्क सॉन्ग से ही रिलेट होता है काफी बार
1: यू नो दोस काइंड ऑफ सॉन्ग्स मेरे को तो लगता है कि 90s का वो गाना जो है ये दिल दीवाना इवन दैट सॉन्ग इज की जब आप ड्राइव करते हो वर्क पे जाते हैं इट विल गिव यू अ डिफरेंट काइंड ऑफ वाइब एंड फीलिंग टू गो एंड एनर्जाइज सो मतलब एनर्जी देता है वो गाना भी डिफरेंट वाइब देता है So you can go
0: songs
1: and
0: that pump you up, na?
1: Pump you up. It matlab not necessary ki dance numbers. Any song that pumps you up.
0: राइट बताइए
1: यहाँ पे वर्क
0: 5599 पे बताइए या फिर आज हमारी प्लेलिस्ट को चेकआउट कीजिएगा 6 बजे से 7 बजे के बीच Throwback. Brought to you by 0800 Rachna. इधर उधर जाने से बचना कॉल करो 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction. एक बढ़िया सा मैसेज आया है वो उन्होंने कहा है सैंडी ये कहाँ हम
1: तुम कहाँ चले गए थे
0: ये बोल रहे वो गाना वो भी है
1: कहाँ भाई अटक गया ये
0: मेरे सुर देखो क्या मस्त मैच हो रहे हैं
1: बहुत ज्यादा
0: anyway,
1: केतन की याद आ गई मुझे
0: ओए यार ऐसा मत करो केतन के लिए बहुत बड़ा इंसल्ट है वो यार प्लीज
1: मानते हो तुम
0: हाँ मैं मानता हूँ 100% बट एनीवे आई एम सेइंग दैट मेटर सर्विसेज के अनुसार बारिश हो रही है बाहर शायद बारिश का माहौल है तो जेम्स की आवाज तो बनती है
1: ऑसम सिंगर यार बॉलीवुड में ज्यादा नहीं गाया ना इसने
0: जितना गाया कमाल गाया

0: Kitchens. Quality kitchens with modernized, customized designs for your dream kitchen.
1: Accurate traffic.
2: Yamaha, the best in boating.
3: Highly cloudy, moderate westerlies for Auckland, a low of 12 degrees. Out of the city, the Southern Motorway, all lanes are back open after an earlier breakdown. We're heavy Massey Road through to State Highway 1. On the northern to Constellation Drive, 30 minutes. We're heavy Esmond Road to Northcote Road and to Silverdale 41. It's getting heavy Albany and through Dairy Flat. And the southern, mainly slow Mount Wellington to Monaco, it's taking 31 minutes.
2: Trusted Yamaha performance reliability. Promotions available now on Yamaha 150 to 200 horsepower outboards.
4: Hey, Neha. Congratulations on your first home. तूने तो कहा था कि दो-दो banks ने loan देने से और एक famous broker ने तो case लेने से ही मना कर दिया था। ये घर कैसे?
5: अरे ये तो Logic Finance के गुरु कैंडोला का कमाल है। एक real estate वाले ने उन्हें suggest किया। मैंने उन्हें Facebook पर ढूंढा और directly contact किया।
4: नेहा, अब तो मुझे भी उनसे मिलवाओ।
6: First home buyer बनना है या investment property लेनी है? तो आज ही call करें Logic Finance के गुरु कैंडोला को on 0800 Logic Guru.
7: डॉक्टर ने क्या बोला?
8: बीपी और कोलेस्ट्रॉल दोनों बढ़ गए।
7: गुड थिंग हम चेकअप के लिए गए, वरना पता भी नहीं चलता।
9: दैट कन्वर्सेशन इज हैपनिंग इन मोर टीवी होम्स देन यू थिंक। हाय, आई एम नितेश हीरा फ्रॉम अशोर वन। माय जॉब इजंट टू जस्ट सेल पॉलिसीज, इट इज टू हेल्प यू अंडरस्टैंड योर ऑप्शंस एंड मेक श्योर योर फैमिली इज प्रोटेक्टेड।
10: बुक योर फ्री इंश्योरेंस रिव्यू टुडे। कॉल अशोर वन ऑन 0800-77-HEERA, दैट्स HIRA, और विजिट ashore1.co.nz। नॉर्थ एंडल एडवाइजरी लिमिटेड, ट्रेडिंग एज अशोर वन, इज अ लाइसेंस्ड फाइनेंशियल एडवाइस प्रोवाइडर।
11: A safe night can change everything. That's why Contact donates the energy to power Women's Refuge. This winter, when you donate a safe night for someone seeking safety, we'll match it up to 5,000 nights. Donate now at safenight.nz.
12: आपके मुश्किल घड़ी में हम आपके साथ हैं। पिछले 28 सालों से एशियन फैमिली सर्विसेज न्यूजीलैंड में एशियन कम्युनिटीज को उनकी भाषा में मेंटल हेल्थ, एडिक्शन, गैम्बलिंग और सोशल सपोर्ट प्रोवाइड करता आ रहा है। अब शुरू हो रहा है रीच इन रीच आउट, एक नेशनल कैंपेन जो मेंटल हेल्थ पर खुलकर बात करने पर इनकरेज करता है। कॉल एशियन फैमिली सर्विसेज हेल्पलाइन एट 0800-862-342 या विजिट करें asianfamilieservices.nz फॉर फ्री एंड कॉन्फिडेंशियल मेंटल हेल्थ सपोर्ट।
13: गोवा की गलियों में एक नया बच्चा जन्म ले रहा है। टॉक्सिक, अ फेरी टेल फॉर ग्रोन अप्स, स्टारिंग रॉकिंग

0: starred Yash, Mayim Pala, Kiara Advani, Tara Suparia, and Huma Qureshi.
1: Hello, Daddy.
0: Toxic, now showing in cinemas.
2: It's time. I'm coming!
0: Distribution partner, Forum Films, rating TBC.
3: Want to be rewarded 5 times faster? Boost your offers in the Everyday Rewards app, spend with our partners and scan your card to enjoy more points. Download the Everyday Rewards app today and boost away. TCs and exclusions apply.
4: Time check. To you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
5: Good evening, I'm Bridget Hasty with the latest at 6. Police in Central Hawke's Bay are warning drivers to take extra care as high winds slam the district. School buses were cancelled this afternoon due to the conditions, and police are currently at a crash involving a blown over caravan hitting a car. It's believed there are injuries and the Waipawa Bridge will be closed for some time in both directions. Fire crews have also been battling several vegetation blazes in the area. And Taupo police are urging the public to keep away from a fire in the eastern suburb of Tauhara. Broadlands Road to the State Highway 1 East Taupo arterial is shut as crews work to bring the blaze under control. Drivers are getting a reprieve from next year's planned fuel excise increase. The government has cancelled a 12 cent per litre hike due in January, opting instead for smaller increases starting in 2028. Prime Minister Christopher Luxon says it's a sensible approach given the current landscape.
6: When you have an Iranian fuel crisis and New Zealand people are doing it tough, you've seen our government respond in a balanced way of trying to have temporary, timely, targeted support, but also keeping an eye on the long term and the medium term.
5: Global ratings agency S&P has affirmed New Zealand's AA+ credit rating. It's forecasting the Kiwi economy to grow 2.5% in the year ending June 2027. To sport, tennis great Novak Djokovic has lost in the first round of the US Open for the first time. This afternoon, the ailing 39-year-old was beaten in 5 sets by Argentine Mariano Navone. American great Venus Williams is a set down and deep into the second set against Sofia Kenin. It's 2 o'clock in the morning in New York. And the Hurricanes have confirmed that Chiefs assistant coach Roger Randall will join the club as an assistant coach for next season.
4: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papatoy and Mount Roskill.
7: Hum par shok suchnaye aap tak late hai. Anne's Funeral Home and On-Site Cremations.
8: Sujit kiya jata hai. Auckland ki Govind Gounder tatha Naren Sami ki maa. Kheleloa Nandi Fiji ke Minachi ki mrityu Nandi Fiji mein ho gai. अंतिम संस्कार बुधवार वेनसडे 2 सितंबर को फिजी समय अनुसार नांदी फिजी में किया जाएगा। जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप 022-029-5506 पर कॉल कर सकते हैं। ऑकलैंड के गोविंद काउंडर तथा नरेन सामी की मां केलेलुआ नांदी फिजी के मिनाची की मृत्यु नांदी फिजी में हो गई। अंतिम संस्कार बुधवार वेनसडे 2 सितंबर को फिजी समय अनुसार नांदी फिजी में किया जाएगा। जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप 022-029-5506 पर कॉल कर सकते हैं।
7: शोक सूचनाएं वीकडेज पर सुबह 6 तथा 11 बजे, शाम 6 बजे और वीकेंड्स पर दोपहर 12 बजे पर प्रसारित की जाएगी।
4: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
9: जो कि करते शिद्दत के साथ करते हैं।
4: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स। Drive Show with Sandy and Ruzbe, brought to you by Beds R Us, Manukau and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us, Manukau and Pukekohe, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
10: Let's go! 3, 2, 1!
4: Trend Makers. The Drive Show with Sandy and Ruzbe.
11: Masti karenge, mauj katenge, garda paar denge.
8: 6:03, you're listening to The Drive Show with Sandy and Ruzbe. Hi Sandy, good evening, welcome to Trendmakers.
12: A very very good evening, yes, Trendmakers aap ke liye shuru ho chuka hai. Aur aaj ki jo theme is about back to work, jab aap jaate hain, to kaise gaane aapko motivate karte hain?
8: To
12: aaj kya gaane aap sunte hain raste mein?
8: तो बेसिकली हम लोग आप सोच रहे होंगे कि यार ये तो अभी दिन खत्म हो गया, अभी फिर से काम पे क्यों भेज रही है, लेकिन ये इसको हम काट के जब आपके लिए ट्रेंड मेकर्स में लेकर आएंगे जो हमारा रोवा ऐप पे म्यूजिक स्टेशन है, तब आपको समझ में आएगा कि क्या मजा ही आ गया ये प्लेलिस्ट
12: सुनकर। मजा आ गया और क्या है ना कि मतलब कईयों का कल से भी डे शुरू होगा ना,
8: तो कई लोगों का अभी रात को डे शुरू होगा,
12: कईयों का रात को भी डे शुरू होगा, काम कईयों का मतलब अभी फ्लेक्सिबल आवर्स हो चुके हैं सबके,
8: रात का डे शुरू हो जाएगा भाई, एकदम ऐसा राहुल गांधी टाइप फील है मेरे को।
12: या आप भी ये गाने सुनेगा सजेस्ट कीजिए और कौन से गाने इस लिस्ट में आप सुनना चाहेंगे। बाय द वे मैंने न्यूज पढ़ी रुजबे कि ट्विटर विल बी ऑफिशियली बैक बट इलॉन मस्क का वर्जन नहीं। सो स्टार्टअप कॉल्ड ऑपरेशन ब्लू बर्ड इन्होंने लॉन्च किया है ट्विटर, अभी तो एक्स है ना वो,
8: सो एक्स अलग है ना, ट्विटर अलग है।
12: हाँ, लेकिन अभी ट्विटर विल बी बैक, अ न्यू सोशल नेटवर्क बिल्ट अराउंड द ओल्ड ट्विटर नेम एंड ब्रांडिंग।
8: वाओ,
12: सो दे आर्ग्यू कि मस्क रीनेम ट्विटर टू एक्स एंड अबैंडन काफी ओल्ड ब्रांडिंग एक्स की। सो नाउ लेट्स सी कि ये होता है कि नहीं होता है, बिकॉज ऑफ कोर्स मुझे लगता है कि ये इजी प्रोसेस नहीं होगा कि ट्विटर को वापस लेके आना है, एंड स्पेशली व्हेन इलॉन मस्क ने उसको खरीद के उसको चेंज किया था। इट वॉन्ट बी ईजी थिंग, बट ऑपरेशन ब्लू बर्ड का कहना है कि दे गोना डू इट एनी वे।
8: चलो बढ़िया, लेट्स सी यार, आई थिंक वी नीड मोर मोर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, एंड द रीजन आई एम सेइंग दैट इज बिकॉज करंटली हमारा पूरा कंटेंट एक हाथ दो जगहों पे ही पूरा रिस्ट्रिक्टेड है, जैसे फॉर एग्जांपल मेटा ओन्स इंस्टाग्राम फेसबुक, और वो बहुत ड्राइव करता है कि मतलब यू नो तुमको कौन सा टाइप का कंटेंट कंज्यूम करना है,
12: ऑडियंस भी,
8: ऑडियंस वो पूरा वो मतलब मनूवर करते हैं ना सारी चीज़ें, हमने देखा ये प्रोटेस्ट के टाइम पे भी और बाकी चीज़ों के टाइम पे भी हम एक ही टाइप के रील्स देखने लगते हैं काफ़ी बार, एंड इट्स ऑल एल्गोरिथम। एंड मेटा ओन्स अ लॉट ऑफ थिंग्स, एंड देन दूसरे साइड पे वी हैव स्नैपचैट है जो यू नो कुछ बच्चे यूज करते हैं उसको,
12: स्नैपचैट या काफी लोग यूज करते हैं,
8: काफी लोग यूज करते हैं उसको भी, तो वो भी है। एंड देन देयर इज एक्स, जो मुझे नहीं लगता आप यूज करते हो, आप तो बहुत एक्टिव थे ना एक्स,
12: मैं एक्स पे एक टाइम पे काफी ज्यादा एक्टिव थी,
8: ट्विटर पे आप एक्टिव थे,
12: ट्विटर पे एक्टिव थी नॉट ऑन एक्स, सो ट्विटर आई हैव यूज्ड अ लॉट लाइक, एंड उसे बहुत
8: सारी की आपने,
12: एक्स नहीं मैंने यूज किया है, बट आई डू गो टू एक्स एंड चेक फ्यू थिंग्स, वहाँ पे काफी कुछ होता है। थ्रेड्स इज अनदर वन, थ्रेड्स भी है, तो थ्रेड्स में जाके समटाइम्स इट्स वेरी डिफरेंट टू एक्स, आई विल से वो ट्विटर से बहुत डिफरेंट है।
8: मुझे तो एक्स पूरा इंस्टाग्राम का ही लाइट वर्जन लगता है यार, क्योंकि वो इंस्टाग्राम पे ऑप्शन आता है ना पोस्ट ऑन थ्रेड्स आल्सो, पोस्ट ऑन फेसबुक आल्सो, तो वो सब यार सेम कंटेंट ही जा रहा है हर जगह मेरे हिसाब से, बट एनीवे
12: आप क्या सबसे ज्यादा यूज करते हैं? आर यू इंस्टा पर्सन, आर यू टिकटॉक पर्सन, फेसबुक पर्सन, आप भी एक्स पे जाते हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स आप कंज्यूम कर रहे हैं, आप सबसे ज्यादा टाइम जो है ये किस ऐप के ऊपर स्पेंड करते हैं? ये सोशल नेटवर्किंग एप्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, नॉट एनी अदर, कौन से सोशल नेटवर्किंग ऐप के ऊपर आप सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूम करते हैं?
8: नहीं, कुछ लोगों का होगा डेटिंग ऐप भी ना।
12: नहीं, मैं सोशल नेटवर्किंग मतलब कि ये स्क्रॉलिंग वाली
8: सोशल नेटवर्किंग ही अभी,
12: वो तो सिर्फ लेफ्ट राइट है, दिस इज अबाउट कि यू नो व्हाट रील्स वीडियोस कंटेंट इज देयर, वो काइंड ऑफ मैं एप्स के बारे में बात कर रही हूँ,
8: उसमें भी पता चल रहा है ना कि व्हाट टाइप ऑफ कंटेंट इज देयर।
12: खैर आप इनमें से बताइए फिलहाल तो।
8: Well, anyway, getting back to work, आज का प्लेलिस्ट है और उसमें ये गाना नहीं हो ऐसा हो ही नहीं सकता, मोहित चौहान की आवाज and a song that pumps us up for sure, hopefully it pumps you up as well. ये जवानी है दीवानी का गाना है ये।

0: You're listening to Trendmakers. आज आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं Get Back to Work songs. तो कुछ ऐसे गाने आप भी यहाँ पे मैसेज करके बता सकते हो कौन से गाने आपको ऐसा फील देते हैं कि यू नो व्हेन यू गेटिंग बैक टू वर्क. आई नो काफ़ी जोकिंग वाले सॉन्ग्स भी आ रहे हैं यहाँ पे. वो बन गया कुत्ता देखो बन.
1: वो तो मेरे को लगता है उसके लिए डिफरेंट थीम है ना.
0: बट हाँ, बट ये
1: बैक टू वर्क वाली.
0: वी आर टॉकिंग अबाउट बैक टू वर्क एज इन सॉन्ग्स दैट पंप यू अप टू गेट टू वर्क.
1: या
0: मुझे लगता है सैंडी वो गाना भी होना चाहिए लिस्ट में यार.
1: कौन सा?
0: जय जय मने.
1: ओ जय जय मनी भी होना चाहिए. क्यों पैसा पैसा करती है,
0: क्यों पैसा पैसा करती है,
1: ये गाना भी होना चाहिए.
0: वो भी होना चाहिए.
1: मनी रिलेटेड तो कोई भी गाना होना चाहिए.
0: मनी रिलेटेड गाने.
1: ब्लफ मास्टर भी होना चाहिए उसमें. बहुत ब्लफ होते
0: हैं. ना बीवी ना बच्चा ना बाप. सबसे बड़ा रुपया.
1: सबसे बड़ा रुपया. मे बी. और मे बी पैसे के ऊपर एक और थीम करेंगे.
0: एक्चुअली पैसे के ऊपर एक अलग से थीम कर सकते हैं हम लोग.
1: या और ऐसी कौन सी थीम्स आप यहाँ पे सुनना चाहते हैं गाइस, वो भी आप लिख के भेजिए. यहाँ पे 5599 इज अ नंबर. और यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग होता रहता है आपके आसपास वो भी आपके साथ वैसे हम शेयर करते रहते हैं. फॉर एग्जांपल, आई रेड अबाउट दिस न्यूज़ रुज़बे. 89 ईयर ओल्ड वुमेन, शी इज़ बैंड फ्रॉम हर लाइब्रेरी बिकॉज शी वॉज रनिंग अ साइलेंट गॉसिप नेटवर्क.
0: इसके बारे में और भी बातें करेंगे बस ये मैसेजेस के बाद.
2: अब तक डैड आपकी क्लास लेते थे लेकिन अब बारी है रिवर्स ग्रिल की.
3: इस फादर्स डे हम पर डैड से होंगे मॉडर्न स्लैंग, पॉप कल्चर और टेक के सवाल.
2: हर सही जवाब को मिलेगी ड्रॉ में एंट्री और एक लकी डैड जीतेंगे $500 कैश.
3: साथ में सोशल मीडिया पर पार्ट लीजिए डैड्स AI अपग्रेड में और जीतिए $300. डैड को रेडी करो, खुश करो.
2: फादर्स डे ऑन हम ब्रॉट यू बाय आई विलेज एट विक्टोरिया, इंडियन किचन एंड बार, PFSL providing the best home loan advice for the last 20 years. Amma's food, 100% authentic and pure as mother's love. And Indelible Homes, your building experts known for subdivisions.
4: सुनो, बिल्स बढ़ते जा रहे हैं और महंगाई भी.
5: हाँ, मॉर्गेज भरना भी मुश्किल हो रहा है. सोच रहा हूँ घर बेच के छोटा कर ले लें.
4: घर बेचने से पहले NZPMI की पॉल से बात कीजिए. मेरे दोस्त ने भी की थी. अपनी जमीन पर नया घर और दो और घर बनवाए. अब रेंट भी आ रहा है.
5: पर डेवलपमेंट के पैसे
4: आपको नहीं लगाने. NZPMI सब संभाल लेगा. NZPMI योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट. फ्री साइट असेसमेंट के लिए विजिट nzpmi.co.nz या कॉल 0800-4NZPMI.
6: 1921 से इंडियन फैमिलीज ने मॉरिसन्स फ्यूनरल्स पर भरोसा किया है क्योंकि वो आपके ट्रेडिशंस को अच्छी तरह से समझते हैं. पंडित जी के साथ मिलकर हर सेरेमनी आपके तरीके से ऑर्गेनाइज करना, बड़े ग्रुप्स के लिए फ्लेक्सिबल स्पेसेस, ऑन साइट कैटरिंग विद वेजिटेरियन और एग फ्री ऑप्शंस, और आपकी परंपराओं का सम्मान करने के लिए ऑन साइट क्रेमेटोरियम. और जब भी जरूरत हो, दिन हो या रात, हमेशा फोन के दूसरी तरफ कोई ना कोई मदद के लिए तैयार रहेगा. मॉरिसन्स फ्यूनरल्स को कॉल कीजिए.
7: What if your next holiday wasn't just a holiday, but the adventure everyone's still talking about? This Easter, Bali and Bangkok, one epic trip. 5-star all-inclusive stays, breakfast, lunch, dinner, sorted. Return flights from Auckland to Bali, to Bangkok and back. Sightseeing, activities, even dinner cruises in both cities, all included. Come, explore with Sun Tours and a whole group of fellow travelers. Call 0800 Sun Tours for affordable prices. Spaces are limited. Your story starts here.
8: TradeDepot.co.nz. Spend $30 at Trade Depot and get fast free delivery. Kukar Smart QLED TVs from $249. Eurotech soundbars just $129. Cordless stick vacuums only $99. Shop online now at Trade Depot. Spend $30 and get fast free delivery anywhere in Auckland. Tiny T's and C's apply. TradeDepot.co.nz.
9: When life becomes overwhelming, you don't have to face it alone. For over 28 years, Asian Family Services has supported Asian communities across New Zealand, offering mental health, addiction, gambling, and social support by professionals who understand your language and culture. Now launching Reach In, Reach Out, a national campaign to encourage open conversations about mental health, because a simple conversation can make a real difference. Call Asian Helpline 0800-862-342 or visit asianfamilieservices.nz for free and confidential mental health support.
10: The beat of Bollywood.
11: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
10: Are you ready to go home?
11: The Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us, Manukau and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us, Manukau and Pukekohe, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWN Havel and Omura Jaiku.
1: 89-year-old woman is banned from her library because usne wahan pe ek silent gossip network chalaya.
0: You're listening to the Drive Show, Trendmakers jari hai aapke liye, jahan pe back to work aaj team lekar aa rahe hain. Aur ye interesting story, Sandy, aap lekar aa rahe ho na, 89
1: years old. Specifically, ye gossip network maine isliye bola because isne so library mein chalaya, kafi log apne kaam pe bhi chalate hai na. Matlab har kisi ke groups hote
0: hain. That's right.
1: Ki theek hai, boss alag hai, lekin apna group banate hain jahan pe hum puri gossip share karenge. Kya hua aaj kaam pe, ye hua, vent out karenge. Matlab hota hai na har kisi ke kaam pe.
0: Haan, Sandy, hota hai. Arre, aap acha justification har kisi ke kaam pe hota hai. Sirf aapke saath nahi aisa ho raha hai.
1: सिर्फ या एनीवे सो दिस 89 ईयर ओल्ड वुमन क्या हुआ कि इसने ना क्या किया था कि एक गॉसिप नेटवर्क कैसे चलाया तो इनका एक नेटवर्क था लेकिन सबको बुलाने के लिए वो हैंड रिटन नोट्स रखती थी बुक्स में लाइब्रेरी में ड्रॉप पॉइंट्स होते थे जिसमें फॉर एग्जांपल कि अगर गॉसिप अर्जेंट है कि रूटीन है तो सिग्नल होते थे वो बुक मार्क्स ऐसे रखती थी वो बुक्स में
0: अच्छा.
1: तो जैसे मैं बुक रीड कर रही हूँ उसके ऊपर अगर लिखा है अर्जेंट तो मीन्स दिस सेशन गोना बी वेरी अर्जेंट यू हैव टू रीच देयर एंड अगर रूटीन है तो मतलब नॉर्मल गॉसिप है यू कैन अटेंड और नॉट अटेंड
0: अच्छा
1: सो ऐसे उसने हैंड रिटन नोट्स रखे हुए थे
0: मुझे लगता है गॉसिप ऐसी चीज होती है जिसमें एवरीथिंग इज अर्जेंट सैंडी व्हाट डू यू थिंक
1: क्योंकि
0: फॉर एग्जाम्पल आपके इसमें रूटीन जो आप बोलोगे शायद किसी और के लिए वो अर्जेंट हो आपके लिए तो सारे अर्जेंट ही है वैसे बट इन जनरल
1: किसी के लिए या वो हो सकता है 100% सो लेकिन क्या हुआ कि बीच में से किसी स्टाफ को पता चल गया लाइब्रेरी में उसने रिपोर्ट किया एंड वो बैन हो गए लाइब्रेरी से पर लाइब्रेरी शांति से बैठ के बुक पढ़ने के लिए होता है गॉसिप चलाने के लिए नहीं होता है तो इसलिए उस बेचारी को बैन कर दिया
0: ये तो बहुत गलत कर दिया यार
1: गलत कर दिया
0: यार 89 ईयर ओल्ड उसका मेन मतलब मेरे को लग रहा है बहुत कम ऐसे 80 प्लस ईयर ओल्ड होंगे जिनको इतना फन करने का मौका मिलता होगा
1: ये बेचारी फन कर रही थी यार
0: ना
1: तुम्हारा बस चले तुम कैसी सीक्रेट सोसाइटी चलाओ इफ यू हैड टू ओपन अ सीक्रेट सोसाइटी ऑफ समथिंग हैव यू सीन दैट मूवी डेड पोएट्स सोसाइटी
0: नहीं मैंने नहीं देखी वो
1: बहुत अच्छी मूवी है रॉबिन विलियम्स की मूवी है वो क्लास मूवी है वो मतलब मुझे लगता है कि हर किसी को अपनी लाइफ में ना वो मूवी एक बार तो देखनी चाहिए
0: ओके
1: वेरी नाइस मूवी सो उसमें सोसाइटी होती है कि जहाँ पे यू राइम द पोइम्स ऑफ डेड पोएट्स तो वो डेड पोएट सोसाइटी होती है और बेसिकली एक ऐसे स्कूल में एक ऐसे हॉस्टल में जहाँ पे ये सब ज़्यादा अलाउड नहीं है
0: राइट
1: तो इसलिए वो सोसाइटी सीक्रेट सोसाइटी होती है बट इट्स मोर देन दैट इन दैट मूवी तुम्हें आना अगर बस चले तुम कौन सी सीक्रेट सोसाइटी चलाओ
0: कौन सी सीक्रेट सोसाइटी
1: किस चीज़ को लेके
0: मैं चलाऊँ सोसाइटी एक सीक्रेट क्लब वेयर पीपल कैन शेयर देयर feelings about relationships.
1: Anonymous, okay. We don't judge you and you can just talk
0: about it. You can just talk about anything, yeah. And mainly, मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी बार ऐसा होता है जो जितना मेरा limited experience रहा है उसमें कि लोग अपने अंदर बहुत सारी फीलिंग्स को कंप्रेस करके रखते हैं दे डोंट शेयर इट आउट विद द फियर कि सोसाइटी में इसके बारे में अगर ये बाहर चला गया तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे यू नो ऐसे बहुत सारे क्या बोलते हैं उसको कुछ बोलते हैं एक टर्म है ना उसके
1: लिए स्टिग्मा होता है
0: नहीं नहीं तुम्हारे ऐसे हिडन फीलिंग्स जो है उनको बाहर निकालना बहुत जरूरी होता है मुझे लगता है इट इज इम्पोर्टेंट टू टेक इट आउट
1: आई थिंक लोग इसलिए भी हो चुके हैं कि बिकॉज दे आर स्केयर्ड कि आजकल के लोग आर बिकमिंग टू लाइक जजमेंटल एज वेल जैसे वही तुमने बोला दे आर वेरी वो कि बोलेंगे तो ये लोग जज करेंगे शायद से
0: मे
1: बी या अंडरस्टैंड नहीं करेंगे बिकॉज आजकल ना प्रॉपर लिसनर्स बहुत कम रह चुके हैं एडवाइस नहीं चाहिए होती किसी को समटाइम इज जस्ट लिसनिंग सुना और ख़त्म That's it.
0: So that
1: because
0: would
1: they themselves know advice क्या है उनको पता है
0: एक ज्ञान मत दे ऐसा मतलब वो ऐसा approach होता है ना
1: उनको ये होता है कि बस निकालना है सुनो ज्ञान नहीं चाहिए
0: ज्ञान नहीं चाहिए
1: वो आजकल कम होता है
0: That's right.
1: So इसलिए लोगों को वो आगे से उससे, सुनने को ही मिलेगा छोड़ो
0: उससे ज्यादा एक और चीज क्या हो जाती है पता है क्या कि lot of times people are not willing to share because unke wo jab aap share karte ho that means aap vulnerable ho. That it's a sign of weakness.
1: Yeah.
0: और काफी लोग उस weakness का गलत फायदा उठाने की कोशिश करते हैं.
1: Yeah.
0: And that is where हमको हमारे जो ancestors हैं उन्होंने भी कहा है कि कभी ज़्यादा खुल के मत share करो. इसलिए उनको therapy नहीं समझ में आती है.
1: Yeah.
0: बोलते तुम क्यों तुम्हारी weakness बाहर वालों को किसी को बता रहे हो? वो उनको उसका फायदा उठाएंगे.
1: But therapy is the most important I think thing is कि
0: उनको नहीं समझ में आता है ना कि नॉन डिस्क्लोजर होता है और वो सारी चीजें कॉन्फिडेंशियलिटी होती है वो सब नहीं उनको समझ में आता है. उनका पॉइंट ये है कि भाई ज्यादा खुल के मत बात करो बाहर वालों से क्योंकि वो तुम्हारे उस फायदा उस सिचुएशन का फायदा उठाएंगे जो तुम्हारे लिए सही नहीं होगा विच इज ऑल्सो राइट फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू. बट अनोनिमस होकर अगर हम ये सारी चीजें शेयर करें
1: तो मेरे को लगता है अच्छा रहेगा.
0: दैट वे पीपल विल बी मोर
1: So you will build a secret society, anonymous secret society, jahan pe you come and just share the issues in relation you're facing.
0: Yeah.
1: Anything.
0: Anything.
1: Because when you hear same kind of issues, then you feel at least ki chalo, I'm not alone
0: not just
1: in the boat.
0: Me, yeah. It's not just me. Baakiyon ko bhi. Yeah. So that would be my thing.
1: Anyway, hum podcast nahi kar rahe Ruzbe, so let's get into another song. Suraj

0: The Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us Manukau and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us Manukau and Pukekohe and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku. March 2027, ek kahani jo badlegi aapki zindagi.
1: Rusbe, tickets book ho gaye.
2: To phir der kis baat ki? Bali bula raha.
1: Sunset, beach club और थोड़ा सा सुकून भी,
2: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती. बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन,
1: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी.
3: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड.
4: हेलो एवरीबॉडी.
0: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा.
5: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी.
0: टेक्स ड्राइव ऑन 5599 फॉर द ऑल इंक्लूसिव टो प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी. बाली and Bangkok getaway with Sandy and Rusbe, only on Hum. Hum, accurate traffic.
6: Switch to AMI car insurance.
7: Partly cloudy with moderate westerlies for Auckland, a low of 12 degrees. Out of the city, the motorway network has eased pretty nicely. Western line services are currently suspended. All scheduled buses are accepting rail tickets. Also a reminder, Southern line and Onehunga line services are replaced by bus from 9:30pm tonight. On the northern at the moment, 17 minutes to Constellation Drive, and Manukau, it's all clear, 22 there.
6: AMI roadside rescue is free with every AMI comprehensive car policy. T's and C's apply.
8: Harrington Living Manukau, home of everyday luxury. Electric recliner lounge suites from just 2,699. Harrington Living, luxury for less. Visit Harrington Living Manukau Supercentre, Cavendish Drive, Manukau.
0: When India comes to town, Ayodhya Rowa ka feel hi kuch alag ho jata hai. Cricket Nation ke pre-sale mein shamil ho. NZC.nz pe aur apne tickets sabse pehle book karo. Kyunki ye sirf cricket nahi, ye hai Black Caps vs India.
9: नया हाइब्रिड ढूंढ रहे हो तो हैवेल ही लो. राइट नाउ एंड्रू सिम्स मेलुकाओ में ब्रेड न्यू हैवेल H6 हाइब्रिड ड्राइव हुए सिर्फ 40,990 से, प्लस ऑन रोड कॉस्ट, नो डिपॉजिट फाइनेंस लो. अपनी ट्रेड इन के लिए जबरदस्त प्राइस पाओ और डिस्कवर करो कि क्यों ज्यादा क्यूज हैवेल चूज कर रहे हैं. स्टाइलिश, स्पेशियस और टेक्नोलॉजी से भरा हुआ, वो भी हाइब्रिड एफिशिएंसी के साथ. आज ही विजिट करो एंड्रू सिम्स GWM मेलुकाओ. हैवेल हाइब्रिड, मोर फॉर योर मनी. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
10: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 21 branches across Auckland and Hamilton, ये हमेशा आपके पास हैं. Go Bananas Childcare brings you a crazy offer with 6 months completely free and the following 6 months 50% off on fees for all ages. Offer ends 30th September. Limited spaces. First come, first served. तो देर मत कीजिए. Call 0800-46-26-26 today. Terms and conditions apply.
0: The Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us Manukau and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us Manukau and Pukekohe and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
11: Let's go! 3, 2, 1.
12: Trend Makers.
13: You're listening to Hum 104.2 FM पे Rowa app के जरिए आप कहीं से भी हमें सुन सकते हैं. स्वागत है आपका अगर अभी अभी आपने join in किया. सैंडी और मैं यहाँ पे आपके साथ 7 बजे तक रहेंगे और 7 बजे के बाद यहाँ पे हैप्पी आवर शुरू हो जाएगा और उसके बाद 8 बजे से नाइट कैफे, जिसमें आज
14: अविनीत को आप सुनने वाले हैं.
13: अविनीत होने वाले हैं आज शाम को. बहुत ही बढ़िया शो ये लेकर आएंगे आपके लिए विथ सम मेलोडियस सॉन्ग्स एंड अ ग्रेट वाइब, तो जरूर सुनिएगा.
14: सो हमारे पास कई बार मैसेजेस भी आए हैं अबाउट नेपाल, रुजबे, कि नेपाल की फ्लडिंग के लिए अगर उनको कुछ करना है तो वो क्या कर सकते हैं. वहाँ से ऑलरेडी स्टोरीज काफ़ी आ रही है, यू नो 5 कीवी इंडियंस जो है वो अभी भी मिसिंग है बाय द वे. सो इसलिए तो काफ़ी लोग जो है वो उसके लिए पूछ रहे हैं, फंडिंग के लिए पूछ रहे हैं.
13: राइट.
14: तो यू कैन गो फॉर रेड क्रॉस न्यूजीलैंड.
13: रेड क्रॉस न्यूजीलैंड जाइए और वहाँ पे आप डोनेट करने का देख सकते हैं. ऑप्शंस, अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल है.
14: या वो आप कर सकते हैं या फिर यू कैन जस्ट गो टू बालन शाह इंस्टा हैंडल, जो कि उनके प्राइम मिनिस्टर हैं नेपाल के. उन्होंने कुछ अकाउंट्स वहाँ पे डाले हैं. इफ़ यू वॉन्ट टू गो फॉर द डोनेशंस, मेक श्योर कि आप राइट चैनल के थ्रू ज़रूर जा रहे हैं. वैसे ओवर द वीकेंड रुजबे तुमने एक और हेडफोन के ऊपर इन्वेस्ट कर लिया.
13: अरे यार,
14: 600 का हेडफोन अभी पड़ा हुआ था. अनदर आ गया, 800 हो गया तुम्हारा।
13: ऐसा नहीं है सैंडी, वो मैंने ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप कर दिया उसका।
14: ओके,
13: दैट्स गॉन टू माय ब्यूटीफुल वाइफ, वो यूज करने वाली है सोनस।
14: तो अभी तुम नहीं करने वाले वो
13: यूज? अब मैं नहीं यूज करूंगा ना।
14: ओके, सो नया हेडफोन में क्या खास बात है तुम्हारी?
13: ये है, मेरे को क्यों बेचने लगा रहे हो ये हेडफोन?
14: तुम नाम थोड़ा लेना उसका,
13: नाम नहीं, बट ये ही एक कंपनी है जो ये टेक्नोलॉजी करती है।
14: क्या टेक्नोलॉजी है?
13: वो ही तो प्रमोट हो जाएगा ना वो। हाँ, तो एनीवे ये अच्छे हेडफोन्स हैं।
14: इसमें इसके बाल नहीं जाएंगे?
13: इसमें मेरे बाल नहीं जाएंगे और ये मेरे कान भी नहीं जाएंगे, बिकॉज कानों का हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये बेसिकली ऐसे है जो कान में वॉल्यूम नहीं देते, ये कान के ऊपर बैठते। बोन ट्रांसफर कुछ टेक्नोलॉजी है ये।
14: ओके, नाइस।
13: हाँ, बोन कुछ तो भी ऐसा।
14: So first day in, yeah.
13: First check. Day in sounds good, yeah, yeah.
14: Okay, check. इसी नोट पे अब आपको हम कहते हैं टाटा बाय बाय।
13: अच्छा, बाय बाय बोलने का टाइम आ गया ना?
14: Yeah.
13: Okay, have a wonderful rest of your evening. हमारे पॉडकास्ट जरूर चेकआउट कीजिए रोवा ऐप पे या फिर स्पॉटिफाई पे जाके, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट सुनते रहिए हमें। वैसे आज हमने रिक्वेस्ट की थी मेरे इंस्टाग्राम पे, बस थोड़े ही फॉलोअर्स बाकी, मतलब थोड़े ही फॉलोअर्स चाहिए टू कम्प्लीट 4000 फॉलोअर्स।
14: So, एक बार फिर से बोलो रुज़बे, तो थोड़े
13: गरीब की मदद कर दो। 0800 क्या बोल रहा हूँ, रुज़बे अंडरस्कोर द बावा, RUZBEH अंडरस्कोर द बावा, इसको आप जाके आज फॉलो कीजिए या शेयर वेयर कीजिए।
14: सैंडी सेखो इंस्टा हैंडल भी मिलेगा, तो वहाँ पे जाके भी फॉलो कीजिए।
13: देखो, सैंडी सेखो ऑलरेडी 8-9 हज़ार पे पहुंच गई है, उसको नहीं भी करोगे तो चल जाएगा। मेरे को कर दो यार पहले प्लीज।
14: या प्लीज जरूर जाके करो,
13: इम्पोर्टेंट
14: है। रुज़बे अंडरस्कोर द बावा।
13: या अभी तक देखो, अभी दिल्ली बहुत दूर है, अभी तक हमारे सिर्फ 3978 है।
14: तो कितने बोलने के बाद तुम्हारे कितने और फॉलोअर्स आए?
13: 8 आए बस अभी के लिए।
14: 8, 30 चाहिए इस बंदे को। प्लीज गो एंड शो सम लव।
13: ऐसे अगर एक दिन में 8 आ रहे हैं तो मुझे कितना दिन बोलना पड़ेगा 30 लाने के लिए सैंडी?
14: गुड क्वेश्चन।
13: अच्छा, आप सोचो इसके बारे में।

सब क्या बोल रहे सब लोग एमवे बनता है मालूम है ना मचाएंगे जो नहीं नाचते उसको भी नचाएंगे लेट्स डू इट

deliver this message, eh?

0: मतलब है?
1: By the way, तुम्हें क्या करना है?
0: By the way, कुछ वादे करने हैं, उन्हें पूरा करना है, संग जीना है, संग मरना है।
1: तो कर लो ना जो करना है, don't bother me.
0: Really?

हम पर नाइट कैफे में अभी का साथ है और जबकि कृष्ण जन्माष्टमी का जो उत्सव है ये चल रहा है, सेलिब्रेट किया जा रहा है काफ़ी जगहों पर। तो आपको लगे हाथ कम्युनिटी न्यूज़ में बता दूं कि कौन कौन सी जगह आप जाकर सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले दिव्य शक्ति चैरिटेबल ट्रस्ट श्री कृष्ण जन्माष्टमी को सेलिब्रेट कर रहे हैं टिल द 4th of September फ्राइडे एट द केव, जो सिचुएटेड है 5x57 कैवेंडिश ड्राइव मेनिकाओ में, जस्ट ऑपोजिट वेयर हाउस, जहाँ पर हर रात्रि को आप 7:30 PM से जाकर इस कथा में भाग ले सकते हैं। इसके अलावा रामकृष्ण मंदिर 25 ओनस्लो एवेन्यू मेनिकाओ में है, ये भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी को सेलिब्रेट कर रहे हैं टिल द 4th of September। आप जा सकते हैं हर इवनिंग, यहाँ पर भी जो कथा है 7:30 PM से इसकी शुरुआत होती है। इसके अलावा न्यूजीलैंड संगम आपको इनवाइट कर रही है कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव में, जो सेलिब्रेट किया जाएगा टिल द 4th of September एट द डिको ऑफ एलिगेंस, ये है 16 Lemmy Drive मेनिकाओ में। यहाँ पर हर इवनिंग 7:30 PM से जो कथा है इसकी शुरुआत होगी और कथा व्यास रहेंगे नलेश नायडू। इसके अलावा जो चौथी जगह है इसके बारे में भी आपको जल्द से बता दे ताकि आपको पता रहे कि आपके सबसे आसपास कौन सी जगह है जहां पर आप जाकर इसमें भाग ले सकते हैं। श्री राम मंदिर 11 Brick Street हेंडरसन में है, ये भी कृष्ण जन्माष्टमी को बड़े ही धूमधाम से सेलिब्रेट कर रहे हैं टिल द 4th of September और 3rd of September तक जो यहाँ पर प्रोग्राम है 6 PM पूजा के साथ में आरंभ होगी, और जो फ्राइडे 4th September का जो प्रोग्राम है ये कुछ 5 बजे से पूजा के साथ में आरंभ होगी, उसके बाद में कथा है ये चलती रहेगी। इसके अलावा एक और एक जगह है जहाँ पर आप जा सकते हैं, ये है आउतरवा सनातन संगम संस्था, जो कि लेकर आए हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व को मना रहे हैं पंडित कृष्णिल शेखर महाराज की अगुवाई में। यहाँ पर 29th August से लेकर 4th September तक जो प्रोग्राम है ये चलती रहेगी और ऐसे में 7 PM से लेकर 9 PM तक यहाँ पर जो कथा है रहेगी। वुमन केयर ट्रस्ट बिल्डिंग ही आपको जाना है, 2 Sutton Crescent पपटवे ओकलैंड न्यूजीलैंड में। और कई जगह है जहाँ पर इसे सेलिब्रेट किया जा रहा है, इसके बारे में बस थोड़ी देर में आपको बताएंगे।

0: कैफे ऑन हम।
1: अब तक डैड आपकी क्लास लेते थे, लेकिन अब बारी है रिवर्स ग्रिल की।
2: इस फादर्स डे हम पर डैड से होंगे मॉडर्न स्लैंग, पॉप कल्चर और टेक के सवाल।
1: हर सही जवाब को मिलेगी ड्रॉ में एंट्री और एक लकी डैड जीतेंगे $500 कैश।
2: साथ में सोशल मीडिया पर पार्ट लीजिए डैड्स AI अपग्रेड में और जीतिए $300। डैड को रेडी करो, खुश करो।
1: फादर्स डे ऑन हम ब्रॉट टू यू बाय आई विलेज एट विक्टोरिया, इंडियन किचन एंड बार, PFSL providing the best home loan advice for the last 20 years. Amma's food, 100% authentic and pure as mother's love. And Indelible Homes, your building experts known for subdivisions. Looking for more ways to save on a new car? Choose the deal that suits you best at West City Omura Jeku. Drive away in a new Omura C5, Omura 9 or selected Jeku J7 models and choose between $2,000 cashback or 3.9% per annum finance for 36 months with a 10% deposit. It's your choice, your way, but only for a limited time. Visit West City Omura Jeku in Henderson today. Ask for more ways to save. Terms, conditions and lending criteria apply.
3: Do you know why so many of your neighbors are installing a shower dome shower top? Just watch the demo video at showerdome.co.nz. You'll see how a shower dome stops steam misting up your mirrors, stops mold and mildew, and saves energy. No extractor fans required. The best thing you can do for your home is install a shower dome. Available now from your local installer.
4: Showerdome.co.nz.
5: सुनो, बिल्स बढ़ते जा रहे हैं और महंगाई भी।
6: हाँ, मॉर्गेज भरना भी मुश्किल हो रहा है। सोच रहा हूँ घर बेच के छोटा घर ले लें।
5: घर बेचने से पहले NZPMI की पॉल से बात कीजिए। मेरे दोस्त ने भी की थी, अपनी जमीन पर नया घर और दो और घर बनवाए। अब रेंट भी आ रहा है।
6: पर डेवलपमेंट के पैसे
5: आपको नहीं लगाने, NZPMI सब संभाल लेगा। NZPMI योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट। फ्री साइट असेसमेंट के लिए विजिट nzpmi.co.nz या कॉल 0800-4-NZPMI.
7: The beat of Bollywood.
8: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है।
7: हम Night Cafe on Hum.
9: हम पर नाइट कैफे में अभी का साथ है, जबकि नो लॉजिक मंडे है, तो हमने आपसे वादा किया था कि कुछ अतरंगी खबर आपके लिए लेकर आएंगे जिसे आप भी सुनकर वंडर करेंगे. नाउ हाउ डिड दिस हैपन? एक्चुअल न्यूज है, जबकि 2003 में एक सीनियर म्यूजिक प्रोड्यूसर थे डेविड मको, जिन्होंने अपना वेलिंगटन टाउन हॉल का जो स्वाइप कार्ड है ये खो दिया था 2003 में, जबकि इनकी गाड़ी में ब्रेक इन हुई थी, और ये कार्ड इनको वापस 2016 में मिली. और ये सुनकर आपको हैरानी होगी, जबकि वेलिंगटन में ये कार्ड खोई थी, इन्होंने खोया था अपना कार्ड वेलिंगटन में, लेकिन ये कार्ड वापस 2016 में इनको मिली इन एंटार्क्टिका. जी हाँ, किसी ने इस कार्ड को वापस पाया इन 2016 इन एंटार्क्टिका, और तब इनको जाकर खबर मिली जो डेविड मको को कि आपका कार्ड यहाँ एंटार्क्टिका में है इन 2016. दैट इज 13 ईयर्स लेटर एंड ऑल द वे फ्रॉम वेलिंगटन टू एंटार्क्टिका. पता नहीं कैसे इस कार्ड किसने इसे यहाँ तक पहुँचाया, और 13 साल लगे जबकि वापस ये कार्ड इनको मिला एंड ऑल द वे इन एंटार्क्टिका. सम वियर्ड थिंग्स डू हैपन.

0: You're listening to Avineet.
1: हम पर मैं हूँ अभी आपका साथी रात को जस्ट आफ्टर 9 अभी से लेकर 12 तक हमारा और आपका साथ रहेगा इस हवा पर भी आपके साथ में कुछ इंटरेस्टिंग खबरें रहेंगी जो शेयर करेंगे और इसके अलावा आपको ढेर सारे ऐसे हॉट एंड हैपनिंग गाने भी सुनवाते रहेंगे ये सभी कुछ हमारे साथ में रहेगा कीप हमिंग और साथ देते रहिए

0: कंप्यूटर पे।
1: हम पर मैं हूं अभी आपके साथ में, और आपको बता दूं जबकि श्री हनुमान मंदिर नोट शो में कृष्ण जन्माष्टमी सेलिब्रेशन जो है 4 सितंबर तक रहेगी, और 4 सितंबर का जो सेलिब्रेशन है ये रहेगा मध्य रात्रि से 12 बजे रात से लेकर 12:30 बजे तक। इसके अलावा यहां पर आप जा सकते हैं माँ दुर्गा टेम्पल पापाटोए 4/3 गोन्सलो एवेन्यू पापाटोए में, जहाँ पर 7 PM से लेकर 8:30 PM तक हर रात्रि को प्रोग्राम होती है, और जो फ्राइडे 4 सितंबर का जो फाइनल नाइट है ये रहेगा 8:30 PM से लेकर मध्य रात्रि तक। तो आपको सिर्फ माँ दुर्गा टेम्पल पापाटोए अगर जो आप इस इलाके में है 4/3 ओनस्लो एवेन्यू पापाटोए जाना होगा।

0: attention, please. We are now inviting all passengers booked on flight Hub 104.2 to the tropical paradise of Vanuatu with Solomon Airlines to begin boarding immediately. Please have your phone ready, your Rova app open, and your excitement switched on for inspection. Your boarding pass for this exclusive flight is easy. Listen out for the special hum boarding call on air. That's your cue to open Rova app and enter board now to lock in your entry to win two return air tickets to Vanuatu flying with Solomon Airlines plus $1,000 spending money.
1: Hum boarding call thanks to Solomon Airlines, flying four times each week non-stop from Auckland to Vanuatu.
2: Let's go.
1: Visit flysolomons.com. T's and C's apply.
3: Thinking of renovating or extending your home? Greystone Builders specializes in renovations and extensions of kitchen and bathrooms, decks and fences, and offer professional house painting. Licensed builders providing quality work at reasonable prices. Call Greystone Builders on 021-165-9362. That's 021-165-9362 for a free quote. Or visit greystonebuilders.co.nz.
4: It's Woolworths Mighty Meat Week. Get mighty cuts and mighty savings. Our New Zealand fresh beef mince, 1 kg, $17.99 each. And our New Zealand fresh chicken drumsticks, $4.79 a kg. T's and exclusions apply.
5: Bollywood ka asli blockbuster.
6: Pure sheher pe kabza hoga, raj hoga.
5: Playing Bollywood's biggest hits.
7: Hum.
5: Night Cafe on Hum.
8: हम पर मैं हूँ अभी आपके साथ में, ये है नाइट कैफे का सिलसिला और आज जबकि है नो लॉजिक मंडे, ऐसे में कुछ ऐसे वियर्ड न्यूज़ शेयर कर रहा हूँ विच मेड हेडलाइंस 2022 में माउंट मंगनुई में. आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एक सील ने घर के केट डोर्स को इस्तेमाल करके उसी से घर में घुसा और घुसने के बाद में उसको एक बड़ा सा काउच मिला और वहाँ जाकर उस वॉर्म काउच में वो सील जाकर सो गया. कुछ देर बाद जो होम ओनर्स थे ये वापस घर आए एंड दे वे क्वाइट शॉक्ड, अम्यूज्ड एंड सरप्राइज्ड एट द सेम टाइम टू फाइंड अ सील जो उनके काउच पर सो रहा था. और फिर उन्होंने हेल्प के लिए कॉल किया और ऐसे जाकर फिर उस सील को वहाँ से हटाया गया. आप इमेजिन कीजिए कि आप घर में आए और ऐसे ही काउच पर आप एक सील पाए, ओ व्हाट अ स्ट्रेंज साइट, और कितना अम्यूजिंग रहेगा आपके लिए. तो ऐसे ऐसे एक्चुअल न्यूज़ है जो घटे हैं यहाँ न्यूजीलैंड में और बिल्कुल वियर्ड भी है.

हम पर रवि का साथ है और आपको बता दूं हम बोर्डिंग कॉल 2026 जो प्रमोशन है बिल्कुल पैमाने पर जारी है, जहां पर आप एंटर कर सकते हैं। आपका जो ड्रीम आइलैंड एस्केप है इज जस्ट वन बोर्डिंग कॉल अवे, जहां पर आप जीत सकते हैं 2 रिटर्न एयर टिकट्स टू वनुआतू विद द काइंड कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ सोलोमन एयरलाइंस प्लस $1,000 स्पेंडिंग मनी। आपको वही करना है जो आप करते हैं, हमको एवरी वीकडे आप सुनते रहें। जो स्पेशल बोर्डिंग कॉल का क्यू है ये सुबह 8 के आसपास अराउंड 11 अराउंड 1 PM और साथ में आफ्टरनून 5 PM के आसपास आपके लिए रेडियो पर प्ले होगा। जैसे ही आप इस क्यू कॉल को सुने उसके बाद में आपके पास में 60 मिनट्स है टू हेड टू रोवा और वहां जाकर आप बोर्ड नाउ क्लिक करके सबमिट करें और इसके साथ में अपने आप को कॉम्पिटिशन में आप एंटर कर लोगे। अगर जो आपको कॉम्पिटिशन पेज लिंक चाहिए तो BC लिखकर 5599 पर भेजिए और यहां से आप उसको नेविगेट कर पाएंगे। दैट्स इट, आप ड्रॉ में शामिल हो जाएंगे फॉर एन अनफॉरगेटेबल वनुआतू गेटअवे। और आपको ये भी बता दूं कि जब आप रोवा पर जाए हम बोर्डिंग कॉल सर्च करें उसके बाद में बोर्ड नाउ लिखकर सबमिट करना है, बस इतना ही करना है, सिंपल है। हम बोर्डिंग कॉल थैंक्स टू सोलोमन एयरलाइंस फ्लाइंग 4 टाइम्स ईच वीक नॉन स्टॉप फ्रॉम ओकलैंड टू वनुआतू। विजिट flysolomons.com एंड T's & C's डू अप्लाई।

0: Night Cafe. You're listening to Avineet.
1: ये सिलसिला है नाइट कैफे का, हम पर, मैं हूँ अभी आपके साथ में। और लगे हाथों आपको बता दूँ फादर्स डे जो प्रमोशन चल रहा है ऑन एयर 2026 के बारे में, जहाँ पर आपके पास में मौका है इस वीक भी, जबकि फ्राइडे को ड्रॉ होगा तो मे बी थर्सडे तक आपके पास में मौका रहेगा। जबकि फादर्स डे ऑन एयर में डेड्स रिवर्स ग्रिल चालू है। और ये क्या है कि कुछ ऐसे सवाल पूछेंगे जो बिल्कुल मॉडर्न है, स्लैंग है या फिर कोई टर्म्स है, कोई लिंगो है जिसके बारे में शायद आपके बच्चों को ज़्यादा मालूम हो। तो डेड्स को क्या करना होगा, अपने बच्चों के साथ में टीम अप होकर इंतज़ार करना होगा। जितने भी हमारे आरजेज हैं अपने अपने शोज में पूछा करेंगे आपसे डेड्स रिवर्स ग्रिल में एक सवाल, थोड़ा सा ट्रिकी, जहां पर आप ऑन एयर आकर जवाब दे सकते हैं। और जवाब देने पर, सही जवाब देने पर आपके नाम को ड्रॉ में शामिल किया जाएगा, जहां पर ड्रॉ 4 सितंबर को होगा। और अगर जो आपका नाम ड्रॉ हुआ तो $500 का जो कैश इनाम है ये आपके हाथ लग जाएगा। तो आपको सिर्फ क्या करना है, हम पर हमारा साथ देना है। एंड जस्ट कीप वेटिंग फॉर डेट्स रिवर्स।

ग्रिल, जिसे आप तक लाते हैं हमारे जितने भी शोज के होस्ट है अपने अपने शो में, तो बस सुनते रहिए और जैसे ही मौका मिले कॉल करिए 800-004-866 पर, ताकि ये जो मैसिव इनाम है $500 कैश का, ये आपके हाथ लग सके।

0: स्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स नाइट कैफे ऑन हम

0: मेरा साइकिल।
1: हम पर जबकि आज मंडे है, तो वैसे नाइट कैफे में नो लॉजिक मंडे है, लेकिन कुछ लॉजिकल बात भी आपके साथ में करना बनता है। तो मैंने इसे कहीं पढ़ा है, आपके साथ में शेयर करने को सोच रहा था। तो चलो आपको बता दूं, जब आप अकेले हो तो माइंड योर थॉट्स, और जब आप दोस्तों के साथ हो तो माइंड योर टंग, और जब आप गुस्से में हो तो माइंड योर टेम्पर, और जब आप किसी एक ग्रुप में हो तो माइंड योर बिहेवियर, और जब आप ट्रबल में हो तो माइंड योर इमोशंस, और जब ऊपर वाला आपको नवाजने लगे, आपको ब्लेसिंग्स देने लगे, तो माइंड योर ईगो। है ना इंटरेस्टिंग टॉपिक।

0: तक डैड आपकी क्लास लेते थे, लेकिन अब बारी है रिवर्स ग्रिल की।
1: इस फादर्स डे हम पर डैड से होंगे मॉडर्न स्लैंग, पॉप कल्चर और टेक के सवाल।
0: हर सही जवाब को मिलेगी ड्रॉ में एंट्री और एक लकी डैड जीतेंगे $500 कैश।
1: साथ में सोशल मीडिया पर पार्ट लीजिए डैड्स AI अपग्रेड में और जीतिए $300। डैड को रेडी करो, खुश करो।
0: फादर्स डे ऑन हम ब्रॉट टू यू बाय आई विलेज एट विक्टोरिया, इंडियन किचन एंड बार, PFSL प्रोवाइडिंग द बेस्ट होम लोन एडवाइस फॉर द लास्ट 20 years, अम्मा'स फूड 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव, एंड इनडेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग experts known for subdivisions.
2: Right now, your team could be winning. Sprinting, pitching, kicking, sin-binning. And you need to know about it.
3: Join the Tribe!
2: The Tribe app brings you live scores, real-time updates, and text commentary as it happens. It's the world of sport in your pocket on one app. Tribe, your destination for sport. Download the app now and
3: join the Tribe!
4: The beat of Bollywood.
5: World's best, hamari good brands nahi hai.
6: Get ready!
1: Passengers, stand by. The next hum boarding call could be your ticket to paradise. Listen out and get ready for your chance to win 2 return air tickets to Vanuatu and $1,000 spending money.
0: Thanks to Solomon Airlines, flying 4 times each week, non-stop, from Auckland to Vanuatu. Visit flysolomons.com.
4: Night Cafe.
7: This is Hum और आप सुन रहे हैं Night Cafe with Avi. और आपको बता दूं कि अपने पॉडकास्ट में सिंडी और रुजबे ने अनफिल्टर्ड में बातें की हैं हरजोत सिंह के साथ में और साथ में गगन संधू के साथ में, जिन्होंने डिस्कस किया है 100 ईयर्स ऑफ रिजिलियंस, माइग्रेशन एंड आइडेंटिटी के बारे में, जहां पर पंजाबी कम्युनिटी जो न्यूजीलैंड में पिछले 100 सालों से रह रही है, किस तरह से यहां की इकोनॉमी को इन्होंने हेल्प किया है, कितना कॉन्ट्रीब्यूशन इन्होंने किया है, ये सभी कुछ हिस्ट्री को लेकर ये बातें की गई हैं। और जबकि गगन संधू डायरेक्टर हैं एक ऐसे डॉक्यूमेंट्री की जिसका नाम है पंजाब टू आउतेरवा, एक ऐसी डॉक्यूमेंट्री जो बिल्कुल प्रोफेशनली बनाई गई है ढेर सारा रिसर्च करके, और ये यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, तो अगर जो आपने इसे चेकआउट नहीं किया है तो चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा अनफिल्टर्ड पॉडकास्ट में आप इस डिस्कशन को सुन भी सकते हैं। 5599 पर आप ड्राइव लिख कर भेजे ताकि आपको यहां से लिंक मिल सके और फिर आप ये जो पॉडकास्ट है इसे चेकआउट कर सकते हैं।

0: हम पर मैं हूँ अभी आपके साथ में, और जबकि 11 बजे आपके लिए न्यूज रहेगा और उसके बाद में जो फाइनल आवाज है इसकी भी शुरुआत हो जाएगी, जबकि 12 तक हमारा और आपका साथ रहेगा 104.2 FM, साथ में रोवा पर आप हमें सुन रहे हैं। आप भी हमारी तरह नाइट शिफ्ट कर रहे हैं तो ऐसे में आपको भी याद करते हैं, कीप एंजॉइंग एंड कीप हमिंग, बस साथ देते रहिए और इसी तरह से एक दूसरे का साथ देते हुए इस सफर को भी हम तय कर लेंगे।
1: Yeah, uh-huh. Well, well, come on. Make way for my man. That's right. Check it out, yo. Come on. Play on. What?

0: Coffee on Hum. You're listening to Avineet.
1: नाइट कैफे में मैं हूं अभी आपके साथ में, और जबकि इट्स जस्ट आफ्टर 11, तो ऐसे में 12 तक हमारा और आपका साथ रहेगा. दिस इज द फाइनल आवर ऑफ द शो. आपका इस आवर पर भी खास स्वागत करते हैं. इंटरेस्टिंग लाइनअप ऑफ सॉन्ग्स हैं और बीच बीच में आपके साथ में बातें भी होती रहेंगी मजेदार. 104.2 FM साथ में रोवा पर साथ देते रहिए.

हम पर मैं हूं अभी आपके साथ में, और जबकि फ्राइडे 4th सितंबर को ड्रॉ होने वाला है फादर्स डे प्रमोशन का, तो ऐसे में अभी भी आपके पास में मौका है। आप हमारे हम FM फेसबुक पेज पर जाकर, हम 104.2 FM के फेसबुक पेज पर जाकर आप पार्ट ले सकते हैं डेड्स AI अपग्रेड कंपटीशन में, जहां पर आपके इतना ही करना होगा, अपने डेट के जितने भी अंदर के सुपर हीरो वाले क्वालिटीज़ हैं इनको बाहर से ही आपको दिखाना है बाय यूजिंग AI जनरेटेड सुपर हीरो इमेज। यानी कि अपने डेट की किसी भी तस्वीर को आप रीडू करें यूजिंग AI, उनको एक सुपर हीरो वाला कैप पहनाएं, और यहाँ पर जो लेटेस्ट फोटोग्राफ है आपको अपलोड करना है कमेंट सेक्शन में, और इतना ही करके आपके हाथ $300 कैश इनाम लग सकते हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि जैसे ही आप अपलोड करें पिक्चर, अपने फ्रेंड्स और फैमिली को एनकरेज करें कि डेट की फ़ोटो को लाइक करें और कंपटीशन पोस्ट को भी लाइक करें। लेकिन ये ज़रूरी बात है कि आपको ये याद रखना होगा, जितने लोग आपके डेट के सुपर हीरो फोटो को लाइक करेंगे, दे मस्ट बी फॉलोइंग हम फेसबुक पेज एज वेल, और कॉम्पटिशन पोस्ट को भी लाइक करना है। जो टीज एंड सीज है, इसके रिक्वायरमेंट्स को आप मीट कर लोगे, और जब आप $300 के इनाम के हकदार होंगे जो होगा फ्राइडे 4th सितंबर को, तो यू कैन स्पेंड इट विद योर डेड और ऑन योर डेड।

0: Download from upnafm.com.
1: Night Cafe on Hum.
2: We gotta go.
3: Are you ready?
4: Come and take a trip with me.
5: Your attention, please. We are now inviting all passengers booked on flight Hum 104.2 to the tropical paradise of Vanuatu with Solomon Airlines to begin boarding immediately. Please have your phone ready, your Rova app open, and your excitement switched on for inspection. Your boarding pass for this exclusive flight is easy. Listen out for the special Hum boarding call on air. That's your cue to open Rova app and enter Board Now to lock in your entry to win two return air tickets to Vanuatu flying with Solomon Airlines plus $1,000 spending money. Vacation.
1: Hum boarding call thanks to Solomon Airlines, flying four times each week non-stop from Auckland to Vanuatu.
6: Let's go.
1: Visit flysolomons.com. T's and C's apply.
7: A proud member of New Zealand's Master Builder, building high-quality standalone and terraced houses. We're one of the award-winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800-233-111.
8: Indelible Homes, your building expert.
9: डॉक्टर ने क्या बोला?
10: बीपी और कोलेस्ट्रॉल दोनों बढ़ गए.
9: गुड थिंग हम चेकअप के लिए गए, वरना पता भी नहीं चलता.
11: दैट कन्वर्सेशन इज हैपनिंग इन मोर टीवी होम्स देन यू थिंक. हाय, आई एम नितेश हीरा फ्रॉम अश्योर वन. माय जॉब इजंट टू जस्ट सेल पॉलिसीज, इट इज टू हेल्प यू अंडरस्टैंड योर ऑप्शंस एंड मेक श्योर योर फैमिली इज प्रोटेक्टेड.
12: बुक योर फ्री इंश्योरेंस रिव्यू टुडे. कॉल अश्योर वन ऑन 0800-77-HEERA. दैट्स HIRA. और विजिट ashurevan.co.nz. Northernville Advisory Limited, trading as Ashore One, is a licensed financial advice provider.
13: आपकी मुश्किल घड़ी में हम आपके साथ हैं. पिछले 28 सालों से एशियन फैमिली सर्विसेज न्यूजीलैंड में एशियन कम्युनिटीज को उनकी भाषा में मेंटल हेल्थ, एडिक्शन, गैम्बलिंग और सोशल सपोर्ट प्रोवाइड करता आ रहा है. अब शुरू हो रहा है रीच इन रीच आउट, एक नेशनल कैंपेन जो मेंटल हेल्थ पर खुलकर बात करने पर इनकरेज करता है. कॉल एशियन फैमिली सर्विसेज हेल्पलाइन एट 0800-862-342 या विजिट करें asianfamilyservices.nz फॉर फ्री एंड कॉन्फिडेंशियल मेंटल हेल्थ सपोर्ट.

0: कैफे ऑन हम।
1: हम पर यह है नाइट कैफे का कारवां। और कभी कभी आपको ऐसा भी लगता होगा ना कि हम 60s या 70s के गाने सुन सकते हैं या फिर 80s के गाने सुन सकते हैं। तो ये सभी कुछ अरेंजमेंट आपके लिए खास किया गया है रोवा पर हम म्यूजिक स्टेशंस के साथ में, जहां पर हम रिवाइंड पर आप 60s और 70s के अपने फेवरेट हिट सुन सकते हैं। इसके अलावा 80s जुकबॉक्स भी है, जहां पर 80s के इरा जो बॉलीवुड की थी, यहां पर जो शानदार म्यूजिक और गाने हैं ये भी आप सुन सकते हैं। इसके अलावा खास ध्यान रखा गया है, अगर जो आप फिजी भजन सुनना पसंद करते हैं तो इसका भी ऑप्शन अवेलेबल है बिल्कुल आपके लिए। और इसके साथ साथ में अगर जो आप पंपिंग पंजाबी हिट सुनना चाहते हैं तो खास आपके लिए चढ़दी कला है। इसके साथ में फिजी कीर्तन संग्रह भी है जिसे आप सुन सकते हैं। और इनके अलावा राहत फतेह अली खान, जितने भी आप राहत फतेह अली खान के फैंस हैं, आपके लिए खास उनके सूफी और कव्वालियों को स्टोक किया गया है। सो ये ऑप्शंस आपके लिए बिल्कुल अवेलेबल है ऑन आवर रोवा प्लेटफॉर्म।

आज के लिए नाइट कैफे में हमारी तरफ से बस इतना ही। आपने रात 8 से हमारा साथ दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। एक बार फिर दोबारा आपसे मुलाकात होगी, लेकिन इन द मीन टाइम यू डू टेक केयर। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। दिस इज मी अवि साइनिंग ऑफ। बाय।

0: तक डैड आपकी क्लास लेते थे, लेकिन अब बारी है रिवर्स ग्रिल की।
1: इस फादर्स डे हम पर डैड से होंगे मॉडर्न स्लैंग, पॉप कल्चर और टेक के सवाल।
0: हर सही जवाब को मिलेगी ड्रॉ में एंट्री और एक लकी डैड जीतेंगे $500 कैश।
1: साथ में सोशल मीडिया पर पार्ट लीजिए डैड्स AI अपग्रेड में और जीतिए $300। डैड को रेडी करो, खुश करो।
0: फादर्स डे ऑन हम ब्रॉट टू यू बाय आई विलेज एट विक्टोरिया, इंडियन किचन एंड बार, BFSL प्रोवाइडिंग द बेस्ट होम लोन एडवाइस फॉर द लास्ट 20 years, अम्मास फूड 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव एंड इनडेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स नोन फॉर सबडिविजन्स।
2: सुनो, बिल्स बढ़ते जा रहे हैं और महंगाई भी।
3: हाँ, मॉर्गेज भरना भी मुश्किल हो रहा है। सोच रहा हूँ घर बेच के छोटा घर ले लें।
2: घर बेचने से पहले NZPMI की पॉल से बात कीजिए। मेरे दोस्त ने भी की थी, अपनी जमीन पर नया घर और दो और घर बनवाए, अब रेंट भी आ रहा है।
3: पर डेवलपमेंट के पैसे
2: आपको नहीं लगाने, NZPMI सब संभाल लेगा। NZPMI योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट। फ्री साइट असेसमेंट के लिए विजिट nzpmi.go.nz या कॉल 0800-4-NZPMI।
4: Media Works Complaints. How can I help?
5: Yeah. Hello?
4: Hi.
5: Hi. Yeah. Can you guys take a radio jingle out of my brain?
4: Oh, you mean like a jingle extraction? It's our job to put advertising in there.
5: Well, okay. Well, what about something like a brain surgeon?
4: They'll probably just explain how repeat hearing puts things deep in your emotional memory, and I really don't think it's necessary. But yes, if you must, I do have the name of one.
5: Great. Sing it to me.
6: Advertise with
7: Media Works.
6: New Zealand listens to us.
8: Shine Dental has a fresh new look with more space and the same caring team. New patients ke liye ultrasonic scale and polish from $99 or one tooth acrylic denture sirf $599 mein, plus free dental examinations for new and existing patients, free wins and ACC codes, or under 18s ke liye free treatment. Visit Shine Dental at 574 Great South Road, Manukau. Book today on 09277-6644. T's and C's apply.

0: March 2027. एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी।
1: रुजबी, टिकट्स बुक हो गए।
2: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा है।
1: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी।
2: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन।
1: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी।
3: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड।
4: हेलो एवरीबॉडी।
0: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
5: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
0: टेक्स ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टो प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुजबे, ओनली ऑन हम।
6: किसी प्रियजन को खोना परिवार या मित्र के लिए कठिन समय हो सकता है। जीवन में मृत्यु को छोड़कर सभी चीजें अनिश्चित है। हम सभी को मृत्यु की वास्तविकता का सामना करना पड़ता है और गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार सेवा के माध्यम से प्रियजन के जीवन की अंतिम यात्रा भी करना

0: पे पूरे सौ, रात के बज गए पौने दो, जो होता है होने दो।
1: नॉन स्टॉप बॉलीवुड
2: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
1: हम। हाँ।

0: हमारी कोई ब्रांच नहीं है।
1: Wow.

उस पे, क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका

0: Deandra's Bay on Rova, Spotify or anywhere you get your podcast.
1: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं, जैसे खुद कोई गूगल हो।
2: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
3: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सबडिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटॉर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 09279439 और विजिट legalassociates.co.nz।
4: कभी कभी लो फील करना नॉर्मल है, बिल्कुल मौसम की तरह, कभी धूप कभी बादल। अपनी फीलिंग्स पे ध्यान दीजिए, रीच इन एंड चेक हाउ यू आर डूइंग, रीच आउट और किसी ट्रस्टेड प्रोफेशनल से बात कीजिए। सपोर्ट इज अवेलेबल एट एशियन फैमिली सर्विसेज, कॉल एशियन हेल्पलाइन ऑन 0800-862-342, दैट्स 0800-862-342 फॉर फ्री एंड कॉन्फिडेंशियल मेंटल हेल्थ सपोर्ट।
5: नया हाइब्रिड ढूंढ रहे हो तो हैवेल ही लो। राइट नाउ एंड्रो सिम्स मेलोकाउ में ब्रेड न्यू हैवेल 8.6 हाइब्रिड ड्राइव हुए सिर्फ 40,990 से, प्लस ऑन रोड कॉस्ट, नो डिपॉजिट फाइनेंस लो। अपनी ट्रेड इन के लिए जबरदस्त प्राइस पाओ और डिस्कवर करो कि क्यों ज्यादा किविज हैवेल चूज कर रहे हैं। स्टाइलिश, स्पेशियस और टेक्नोलॉजी से भरा हुआ, वो भी हाइब्रिड एफिशिएंसी के साथ। आज ही विजिट करो एंड्रो सिम्स JWM मेलोकाउ। हैवेल हाइब्रिड, मोर फॉर योर मनी। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
6: MediaWorks Complaints, how can I help?
7: Yeah, hi, you guys made some ads for my local business.
6: Nice.
7: And you talked me into creating this funny character.
6: Great.
7: And now everybody comes into the shop asking for Bobby. Yes.
6: Are you Bobby the Baker?
7: Yes.
6: What's that thing you do again?
7: Stop it.
6: You bring the mouth.
7: Stop it.
6: I'll bring the pie.
7: Stop it, please.
6: Okay.
7: Yeah, sure, I might have 3 stores now, but Bobby's more famous than me.
6: So what's the problem?
7: My name's Bruce.
8: Advertise with
9: MediaWorks.
8: New Zealand listens to us.

0: driving you home? Drive Show with Sandy and Rusby.
1: ये वही इंसान है जो 600 का हेडफोन खरीद के बैठा हुआ.
2: ये गलत बोल दिया यार.
1: और पहनता भी नहीं है उसको.
2: अब बाल जा रहे हैं ना मेरे यार, वो पहन के यार क्या करूँ मैं अभी बेचने के लिए. कोई लेगा क्या? रुस्बे प्री ओन्ड हेडफोन्स 750 में सिर्फ.
1: इंटरेस्ट
3: ब्रांड हो गया अभी वो.
2: अभी ब्रांड हो गया ना.
1: रुस्बे के बाल लगे उस.
0: The Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us, Manuku and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us, Manuku and Pukekohe, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura J Crew.
4: रेडियो पे गानों की फरमाइश की जा सकती है, अपनों के नाम संदेश भेजे जा सकते हैं, मगर रेडियो पे अपने ट्रेडिशन की खुशबू भेजनी हो तो नहीं भेज सकते ना. उसके लिए अपनों को खाने पे बुलाएं, रिश्तों को और करीब लाएं. कशिश प्रीमियम बासमती राइस. ईट बेटर, लिव बेटर. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लॉग इन टू www.kashishfood.co.nz. अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स.
5: हे नेहा, कांग्रेचुलेशंस ऑन योर फर्स्ट होम. तूने तो कहा था कि दो दो बैंक्स ने लोन देने से और एक फेमस ब्रोकर ने तो केस लेने से ही मना कर दिया था. ये घर कैसे?
6: अरे ये तो लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला का कमाल है. एक रियल एस्टेट वाले ने उन्हें सजेस्ट किया. मैंने उन्हें फेसबुक पर ढूंढा और डायरेक्टली कॉन्टेक्ट किया.
5: नेहा, अब तो मुझे भी उनसे मिलवाओ.
7: फर्स्ट होम बाया बनना है या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेनी है तो आज ही कॉल करें लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला को ऑन 0800 लॉजिक गुरु.

0: तक डैड आपकी क्लास लेते थे, लेकिन अब बारी है रिवर्स ग्रिल की।
1: इस फादर्स डे हम पर डैड से होंगे मॉडर्न स्लैंग, पॉप कल्चर और टेक के सवाल।
0: हर सही जवाब को मिलेगी ड्रॉ में एंट्री और एक लकी डैड जीतेंगे $500 कैश।
1: साथ में सोशल मीडिया पर पार्ट लीजिए डैड्स AI अपग्रेड में और जीतिए $300। डैड को रेडी करो, खुश करो।
0: फादर्स डे ऑन हम ब्रॉट यू बाय आई विलेज एट विक्टोरिया, इंडियन किचन एंड बार, PFSL प्रोवाइडिंग द बेस्ट होम लोन एडवाइस फॉर द लास्ट 20 years.

Flight on Hum. Bum chick bum chick bum bum bum chick chick.

0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
1: पूरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: 0 to 800 kilometers per hour. That's a massive.
3: That is very that is a very acceleration.
2: That's a very acceleration. Yeah.
3: Amazing acceleration.
2: This is my fancy English. That's a very.
3: अरे होता है यार, सब चलता है. आधी नींद में हूँ मैं.
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.

0: trip I made.
1: Your attention, please. We are now inviting all passengers booked on flight Hum 104.2 to the tropical paradise of Vanuatu with Solomon Airlines to begin boarding immediately. Please have your phone ready, your Rova app open, and your excitement switched on for inspection. Your boarding pass for this exclusive flight is easy. Listen out for the special hum boarding call on air. That's your cue to open Rova app and enter Board Now to lock in your entry to win to return air tickets to Vanuatu flying with Solomon Airlines plus $1,000 spending money. Vacation.
2: Hum boarding call thanks to Solomon Airlines, flying four times each week non-stop from Auckland to Vanuatu.
3: Let's go.
2: Visit flysolomons.com. T's and C's apply.
4: डॉक्टर ने क्या बोला?
5: बीपी और कोलेस्ट्रॉल दोनों बढ़ गए.
4: गुड थिंग हम चेकअप के लिए गए, वरना पता भी नहीं चलता.
6: दैट कन्वर्सेशन इज हैपनिंग इन मोर टीवी होम्स देन यू थिंक. हाय, आई एम नितेश हीरा फ्रॉम अशोर वन. माय जॉब इजंट टू जस्ट सेल पॉलिसीज, इट इज टू हेल्प यू अंडरस्टैंड योर ऑप्शंस एंड मेक श्योर योर फैमिली इज प्रोटेक्टेड.
1: बुक योर फ्री इंश्योरेंस रिव्यू टुडे. कॉल अशोर वन ऑन 0800-77-HEERA. दैट्स HIRA. और विजिट ashore1.co.nz. नॉर्थ एंडवेल एडवाइजरी लिमिटेड, ट्रेडिंग एज अशोर वन, इज अ लाइसेंस्ड फाइनेंशियल एडवाइस प्रोवाइडर.

0: तक डैड आपकी क्लास लेते थे, लेकिन अब बारी है रिवर्स ग्रिल की।
1: इस फादर्स डे हम पर डैड से होंगे मॉडर्न स्लैंग, पॉप कल्चर और टेक के सवाल।
0: हर सही जवाब को मिलेगी ड्रॉ में एंट्री और एक लकी डैड जीतेंगे $500 कैश।
1: साथ में सोशल मीडिया पर पार्ट लीजिए डैड्स AI अपग्रेड में और जीतिए $300। डैड को रेडी करो, खुश करो।
0: फादर्स डे ऑन हम ब्रॉट यू बाय आई विलेज एट विक्टोरिया, इंडियन किचन एंड बार, PFSL प्रोवाइडिंग द बेस्ट होम लोन एडवाइस फॉर द लास्ट 20 years, अम्मास फूड 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव एंड इनडेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स नोन फॉर सब डिविजन्स।
2: Playing Bollywood's biggest hits.

0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
1: बुरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: 0 to 800 kilometers per hour. That's a massive.
3: That is very that is a very acceleration.
2: That's a very acceleration. Yeah.
3: Amazing acceleration.
2: This is my fancy English. That's a very.
3: अरे होता है, सब चलता है. आधी नींद में हूँ मैं.
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.

0: नारायण सामी की मां यानी गेलेलुआ नैंडी फिजी की मीनाक्षी की मृत्यु नैंडी फिजी में हो गई। अंतिम संस्कार कल दिन में फिजी समयानुसार नैंडी फिजी में किया जाएगा। जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप 022-029-5506 पर कॉल कर सकते हैं।
1: शोक सूचनाएं वीकडेज पर सुबह 6 तथा 11 बजे, शाम 6 बजे और वीकेंड्स पर दोपहर 12 बजे पर प्रसारित की जाएगी।
2: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
3: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं।
2: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स। Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
0: Right now, Super City Auckland में temperature है 12.6 degrees, high of 15 expected है आज बाद में चलकर। Overnight temperature आज का 12 degrees रहेगा। मौसम के लिए कहा गया है cloudy periods with isolated showers, बादल ज्यादातर छाए रहेंगे। और आज सुबह के समय कहा गया है तेज रफ्तार से हवा चलने की भी चेतावनी लागू की जा रही है। सनराइज इसी घंटे 6:41 AM पर होगा और आज का सनसेट 6:01 PM पर होने को है।
2: With Vijay and Pooja.
4: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manco. English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
2: Breakfast catch up.
0: हेलो क्यूरा, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम टू हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स। आज है ट्यूसडे 1st of September, सितंबर महीने का पहला ये दिन और साथ ही साथ एक नए महीने के साथ एक नई सुबह के साथ शुरुआत तो हो रही है, लेकिन ऑफिशियली वी आर इनटू स्प्रिंग। गुड मॉर्निंग।
5: गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप?
0: आई एम ओके एंड व्हाट अबाउट यू?
5: आई एम ऑलराइट।
0: ओके ओके एंड ऑलराइट, आज करेंगे पूरा प्रोग्राम ना?
5: जी बिल्कुल, आज ट्यूसडे है एंड मे बी आज समथिंग स्पेशल है आपके लिए, तो ये सुबह आपको अनेकों बार शुभ और मुबारक हो। कल का वादा था तो आए हैं आज ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा आपका साथ देने के लिए।
0: अभी से लेकर ठीक दिन में 10 बजे तक हम आपके साथ जरूर बने रहेंगे और ऑफ कोर्स आपके लिए, जबकि हम लेकर आ रहे हैं द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा, ब्रेकफास्ट कैचअप से कर रहे हैं शुरुआत। सो क्विक कैचअप आप सभी के साथ और इसके अलावा और भी जरूरी चीजों के साथ हम इस घंटे करने वाले हैं। सो वेयरएवर यू आर, व्हाटएवर यू आर डूइंग, अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स 104.2 FM पर यूरोवेब पर फिलहाल अगर आप हमें सुन रहे हैं। वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग और आप सभी का स्पेशल वेलकम है आज के ब्रेकफास्ट शो के सफर में।

0: Sunnyside Up.
1: हर दिन कुछ न कुछ सनी साइड अप स्टोरीज जो है ये आपके लिए हम पर हम लेकर आते रहते हैं और आज भी एक कहानी है जहां पर ज़िंदगी को देखने का अलग नज़रिया जो है ये हमें मिलता है और आज एक वृद्ध बालक या एक वृद्ध व्यक्ति और एक नन्हे से लड़के की ये कहानी है किस तरह से गार्डन में खेलते खेलते बच्चा जो है उस बुज़ुर्ग के इतने करीब आ गया कि उन दोनों में एक गहरी दोस्ती जो है ये कायम हो गई। वृद्ध व्यक्ति जो है हर दिन गार्डन में वॉक्स के लिए जाता था और उनके जो अपने हैं वो उनसे बहुत दूर थे और शायद उनका ख्याल भी रखने के लिए नहीं आते थे, तो अपना सारा जीवन का गुज़र बसर जो है वो खुद ही कर रहे थे और ये बच्चा जो है वो भी हर शाम को पार्क में खेलने के लिए आता था और एक दूसरे को देखते देखते बाद में चलकर दोनों के बीच दोस्ती हुई और दोस्ती इतनी गहरी हुई कि एक रिश्ता सा बन गया, जैसे कि वो उसका दादा हो और लड़का उसका पोता हो। तो कभी कभी कहते हैं ना कि रिश्ते जो है सिर्फ बोलने से ही नहीं लेकिन निभाने से बनते हैं।
2: Vijay and Pooja.
3: Hey, dekho ma aa gaye.
4: We gotta go. Are you ready?
5: Come and take a trip with me.
6: Your attention, please. We are now inviting all passengers booked on flight Hub 104.2 to the tropical paradise of Vanuatu with Solomon Airlines to begin boarding immediately. Please have your phone ready, your Rova app open and your excitement switched on for inspection. Your boarding pass for this exclusive flight is easy. Listen out for the special hum boarding call on air. That's your cue to open Rova app and enter board now to lock in your entry to win. To return air tickets to Vanuatu flying with Solomon Airlines plus $1,000 spending money.
7: Hum boarding call thanks to Solomon Airlines, flying four times each week non-stop from Auckland to Vanuatu.
8: Let's go.
7: Visit flysolomons.com. T's and C's apply.
9: सुनो, बिल्स बढ़ते जा रहे हैं और महंगाई भी।
10: हाँ, मॉर्गेज भरना भी मुश्किल हो रहा है। सोच रहा हूँ घर बेच के छोटा घर ले लें।
9: घर बेचने से पहले NZPMI की पॉलिसी बात कीजिए। मेरे दोस्त ने भी की थी, अपनी जमीन पर नया घर और दो और घर बनवाए, अब रेंट भी आ रहा है।
10: पर डेवलपमेंट के पैसे
9: आपको नहीं लगाने, NZPMI सब संभाल लेगा।
6: NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट। फ्री साइट असेसमेंट के लिए विजिट nzpmi.go.nz या कॉल 0800-4NZPMI।
11: नया हाइब्रिड ढूंढ रहे हो तो हैवेल ही लो। राइट नाउ एंड्रू सिम्स मेलोकाउ में ब्रेड न्यू हैवेल H6 हाइब्रिड ड्राइव हुए सिर्फ 40,990 से, प्लस ऑन रोड कॉस्ट, नो डिपॉजिट फाइनेंस लो। अपनी ट्रेड इन के लिए जबरदस्त प्राइस पाओ और डिस्कवर करो कि क्यों ज्यादा किवीज हैवेल चूज कर रहे हैं। स्टाइलिश, स्पेशियस और टेक्नोलॉजी से भरा हुआ, वो भी हाइब्रिड एफिशिएंसी के साथ। आज ही विजिट करो एंड्रू सिम्स JWM मेलोकाउ। हैवेल हाइब्रिड, मोर फॉर योर मनी। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
0: The beat of Bollywood.
12: World's best, hamari koi branch nahi hai.
0: The breakfast show with Vijay and Pooja.
13: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manco. English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
0: Global headlines.
1: Aaj subah ke mukhya samacharon mein. नेपाल चाइना बॉर्डर पर पिछली बार आई फ्लैश फ्लड्स में मरने वालों की संख्या 955 हो गई है, जबकि 4,471 लोग अभी भी मिसिंग हैं। थिक मिट्टी में डूब चुकी हाइड्रो पावर टनल्स में फंसे सैकड़ों वर्कर्स को बचाने के लिए रेस्क्यू क्रूज और फॉरेन स्पेशलिस्ट लगातार सर्च ऑपरेशंस चला रहे हैं। यिरोंग में खराब मौसम, बढ़ते पानी और ग्लेशियर कोलैप्स के खतरे ने बेरिया लेक के पास सिचुएशन को और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। यूएस और ईरान के बीच एक महीने की शांति के बाद दोबारा मिलिट्री स्ट्राइक्स हुई हैं, जहां एक आइलैंड पर यूएस द्वारा ईरानियन रॉकेट लॉन्चेस पर हमले के जवाब में ईरान ने जॉर्डन और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में यूएस टारगेट्स पर मिसाइल्स दागे हैं। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ में बढ़ते तनाव और माइन लेइंग के दावों के बीच हुए इस हमले के कारण ग्लोबल ऑयल प्राइसेस लगभग 3% बढ़ गए हैं और डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर और हार्डर रिस्पॉन्स देने की धमकी दी है। दोनों देशों के बीच निगोशिएशंस फिलहाल रुके हुए हैं, जबकि यूएस ट्रेजरी ने ईरान के खिलाफ हार्श सेकेंडरी इकोनॉमिक सेंक्शंस लगाने की तैयारी कर ली है। गुजरात के वडोदरा स्पेशल पोस्को कोर्ट ने 2024 गैंगरेप केस के सभी 5 आरोपियों को आजीवन कारावास यानी उम्र कैद की सजा सुनाई है और हरेक पर ₹50,000 का जुर्माना लगाया है। माइनर सर्वाइवर के रिकवरी और लॉन्ग टर्म रिहेबिलिटेशन को सपोर्ट करने के लिए कोर्ट ने उसे 10 लाख का फाइनेंशियल कॉम्पेंसेशन देने का भी आदेश दिया है। ये घटना अक्टूबर 2024 की रात नवरात्रि गरबा से लौटते वक्त हुई थी, जहां आरोपियों ने माइनर के साथ गैंगरेप किया और उसका मोबाइल फोन भी लूट लिया था। फिजी में कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू कमीशन ने प्रेसिडेंट रातुनेंगामा ललमबलावु को रिपोर्ट सौंपकर 41 सीट हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और 19 सीट सेनेट के साथ नए ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन का सुझाव दिया है। फिजी विलेज के एक रिपोर्ट के अनुसार इस ड्राफ्ट में बोसेलेवु वाकातुरांगा की बहाली, ओपन सीट सिस्टम, फाइका को सिर्फ इन्वेस्टिगेटिव बॉडी बनाना और 6 मेंबर कमेटी द्वारा प्रेसिडेंट चुनने की रिकमेंडेशन शामिल हैं। टोटल 1,220 सबमिशंस और आम जनता के साथ मशवरे के बाद बनी इस रिपोर्ट को अब कैबिनेट के सामने रखा जाएगा, हालांकि अभी इसे पब्लिक नहीं किया गया है। सोकर लेजेंड 2022 वर्ल्ड कप विनर और 8 बार बलून डो विनर लाइनल मेसी ने 207 गेम्स में 125 गोल्स के साथ अर्जेंटीना के लिए इंटरनेशनल फुटबॉल से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। 39 साल के मेसी ने इंस्टाग्राम पर एक इमोशनल पोस्ट करते हुए लिखा कि उन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ दिया और अब यंग प्लेयर्स के लिए जगह बनाने का सही वक्त है। ये रहे सुबह के मुख्य समाचार।
0: Hollywood's most wanted.
2: गुंडी खड़ जाओ या सीधा अंदर आओ।
8: मैं लाऊं अपना A game.
0: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: अरिजीत सिंह और साथ में आप सुन रहे थे आज ये चार्ट बस्टर, इनफैक्ट पहला चार्ट बस्टर हमारा निकिता गांधी की आवाज 2017 में ये फिल्म जो है आई थी। आज चलिए फिल्मों के बारे में बातें करते हुए आपको बताना चाहते हैं दायरा फिल्म के बारे में। इसका ट्रेलर जो है ये रिलीज हो चुका है एंड इन दिस पर्टिकुलर मूवी आपको करीना कपूर खान और पृथ्वीराज सुकुमारन एक दूसरे के ऑपोजिट दिखने वाले हैं। दे गोना फेस ईच अदर इन दिस इंटरेस्टिंग अपकमिंग हिंदी लैंग्वेज क्राइम थ्रिलर फिल्म जिसे लिखा है या को रिटन बाय मेघना गुलजार और साथ ही साथ इसे प्रोड्यूस कर रहे हैं विनीत जैन एंड धवल जैन अंडर द बैनर्स ऑफ जंगली पिक्चर्स एंड पेन स्टूडियोज। तो देखने वाली बात होगी। पहली बात तो ये कि ये दोनों पृथ्वीराज सुकुमारन और साथ में करीना कपूर खान एक दूसरे के साथ काम करने जा रहे हैं फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम।
1: That's interesting.
0: Yes. And दूसरी चीज कि इसमें आपको मेघना गुलजार का जो क्रिएटिविटी है ये देखने को मिलेगा। She has done some amazing films. और last film इनकी जो मेरे ख्याल से आई थी was छपाक, if I'm not mistaken. आपको याद नहीं है वो कौन सी फिल्म है?
1: ना बिल्कुल नहीं।
0: That's the movie जो एसिड सर्वाइवर विक्टिम जो है लक्ष्मी इनकी लाइफ पर आधारित है जिसमें दीपिका पादुकोण ने काम किया था। तो इफ आई एम नॉट मिस्टेकन आई थिंक दैट वाज द मूवी जिसमें इन्होंने या जिस जो फिल्म उन्होंने बनाई थी। ओ नहीं, उसके बाद तो आई थी वो सैम बहादुर।
1: ओके,
0: सो सैम बहादुर जिसे उन्होंने डायरेक्ट किया था, छपाक उससे पहले आई थी जिसे डायरेक्ट किया था, और देन राजी, तलवार, 10 कहानियां, जस्ट मैरिड, फिलहाल ये सारी फिल्मों में वो कहीं ना कहीं उनका मैजिक देखने को मिला है। एंड नाउ इट्स टाइम टू सी दायरा। और दायरा के बारे में अपेरेंटली कहा गया है कि ये दरअसल इंस्पायर्ड बाय है द हैदराबाद रेप एंड मर्डर जो 2019 में हुआ था। कहीं ना कहीं उस रियल इंसिडेंट से इंस्पायर्ड है इस फिल्म की कहानी।
1: So, let's see, और क्या इस फिल्म के बारे में सामने आता है डिटेल्स जो है ये हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। एंड ऑपरेशन सफ़ेद सागर, इसके बारे में कुछ दिन पहले आपने कुछ बातें की थी।
0: हाँ जी, दैट इसे जो बनाया है जिन लोगों ने मिलकर दैट्स राजू श्रीवास्तव नेफ्यू एंड डॉटर।
1: ओह ओके,
0: और उन्होंने इनको क्रेडिट किया था एट द एंड राजू श्रीवास्तव जी को। तो पीपल स्टार्टेड रेजिंग क्वेश्चंस कि इनको क्यों क्रेडिट किया गया बिकॉज ही वाज नॉट पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। कहीं पर वो दिखे नहीं थे या उनकी आखिरी प्रोजेक्ट वो नहीं थी, बट क्यों क्रेडिट किया गया। देन द रीजन वाज रिवील्ड कि उनके जो नेफ्यू हैं वो इंडियन एयरफोर्स के लिए काम करते थे एंड व्हेन ही वांटेड टू क्विट दैट एंड फिल्मों में आना चाहते थे, डायरेक्ट करना चाहते थे, तो ही वॉज द पर्सन जिन्होंने इनको इंस्पायर किया था।
1: तो वहीं पर मनु ऋषि चड्ढा जो है इन्होंने ऑपरेशन सफ़ेद सागर में फॉर्मर पाकिस्तान प्रेसिडेंट और आर्मी चीफ परवेज मुशर्रफ का किरदार जो है ये निभाया है एंड ही इज वन अ लॉट ऑफ प्रेज जिस तरह से शायद उन्होंने इस रोल को अदा किया है। तो वहीं पर एक न्यूज़ एजेंसी के साथ मनु ऋषि चड्ढा ने कहा है एक इंटरव्यू के दौरान that he saw YouTube videos and there was some valuable advice from Nawazuddin Siddiqui.
0: Oh, okay.
1: जिन्होंने इनको help किया और guide किया था on how to portray the role.
0: That's very interesting. See, कब कहाँ कौन आपको inspire कर जाए आपको पता भी नहीं चलता ना। आज सुबह सुबह आपकी inspiration, motivation और साथ के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। Messages आपने जो हमारे पास भेजे हैं, राम राम, जय माता दी, हैप्पी ट्यूजडे एवरी वन, हैव अ ग्रेट डे, मिस्टर माटा माटा ने कहा है।
1: आपको थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए और सुबह सुबह हमें याद करने के लिए। उसके अलावा वेरी गुड मॉर्निंग मैंडी जी, थैंक यू सो मच आपके भी मैसेज के लिए।
0: और साथ में बॉबी मान जी का भी गुड मॉर्निंग मैसेज है, उन्होंने कहा है गुड मॉर्निंग पूजा एंड विजय, जय सिया राम, हनुमान जी के आशीर्वाद से आज का मंगल मंगलमय हो, जय जय जय हनुमान गोसाई, हैप्पी स्प्रिंग सीजन।
1: गुड मॉर्निंग एंड हैव अ ग्रेट डे विनीता, आपको भी ये दिन ये सुबह बहुत बहुत बार शुभ और मुबारक हो।
0: तो थैंक यू सो मच आप सभी के गुड मॉर्निंग मैसेजेस के लिए, आपके साथ के लिए। और याद रहे द ब्रेकफास्ट शो विजन पूजा जबकि आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं, तो ब्रेकफास्ट कैचअप जारी है और क्विक कैचअप जबकि आपके साथ हम कर रहे हैं। इफ यू गॉट एनीथिंग टू शेयर विद अस तो आप वो भी हमारे पास जरूर सेंड कर सकते हैं ऑन 5599।
2: ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा,
3: डोंट माइंड, लेकिन आप दोनों की जोड़ी बड़ी क्यूट है।
4: Get ready!
2: That's passengers, stand by. The next hum boarding call could be your ticket to paradise. Listen out and get ready for your chance to win 2 return air tickets to Vanuatu and $1,000 spending money.
4: Thanks to Solomon Airlines, flying 4 times each week, non-stop, from Auckland to Vanuatu. Visit flysolomons.com. Hum, accurate traffic.
5: Refreshingly juicy, yummy lemonade apples.
6: Quite a cloudy one today, just a few fine spells, a high of 16 degrees. Into the city, we're looking pretty fast most of the way and everywhere. Southern Motorway just starting to build around Manurewa, but quite quick, 20 minutes Manukau to the city, 32 from Drury. Northwestern, 17 minutes in from Massey, slowing down around Te Aritu and close to the city. Northern, building at Albany, 16 minutes in from Constellation Drive.
5: Hello Yellow, yummy lemonade apples, the yellow apple that's sweet and refreshingly juicy. Yummy lemonade.
0: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो
7: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स नोटरी पब्लिक बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स
8: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी लीजेस सब डिविजन इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 09279-9439 और विजिट legalassociates.co.nz
9: TradeDepot.co.nz. Spend $30 at Trade Depot and get fast free delivery. Kukar Smart QLED TVs from $249. Eurotech soundbars just $129. Cordless stick vacuums only $99. Shop online now at Trade Depot. Spend $30 and get fast free delivery anywhere in Auckland. Tiny T's and C's apply. TradeDepot.co.nz.
10: Auckland, it's time to sit back, relax and save big. The big sofa and recliner sale is on now at Lifestyle Furniture with up to 60% off. Stylish sofas, comfy lounge suites or the ultimate recliner. They've got something for every lifestyle. Recliner chairs start from just $399. Visit Lifestyle Furniture at Manukau, Mount Wellington or Westgate. Big style, big comfort, better prices. Hurry, up to 60% off on now.
11: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो बोली बस मेरा फोकस है हाँ।
12: अच्छा
11: बताओ तो आड़ा फोकस फोकस साड़ा कुछ नहीं
12: मिसेस सिंह
13: अरे पम्मी जी मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने
14: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन्स फोकस किचन्स यूनिट के 33 वॉन्सली रोड ओटाहूहू कॉल 09281-3050 और विजिट focuskitchens.co.nz
15: बॉलीवुड के सबसे बड़े हिट गाने
16: आसरा ले ले तू मजा
2: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
17: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manukau. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
1: अभी 25 मिनट रह गए हैं 7 बजने में आज फर्स्ट ऑफ सितंबर वेलकम टू स्प्रिंग यू नो मेंटली भी ये चीजें कितना असर करती है ना
0: हाँ अगर आपको ऐसे पता हो कि लाइक नॉट अगर पता हो पता होता है कि कब वेदर जो है ये सीज़न जो है ये चेंज होता है तो यू स्टार्ट फीलिंग दैट वे विंटर के टाइम पर ऑटोमेटिक ऐसे दिमाग में होता है कि यार अब तो बहुत ठंडी होगी एंड फील होता है वो यू नो इट्स क्वाइट अ वीर्ड बट इट डज हैपन स्प्रिंग आने वाला होता है तो एकदम हर और कलर्स आप फील करते हो यू नो इमेजिन करते हो वेजी गार्डन्स फ्लावर गार्डन्स हर और हरियाली ही हरियाली कलर्स ही कलर्स तो वैसी ही फीलिंग आती है
1: ओके तो आज फर्स्ट ऑफ सितंबर आज कई जगहों पर जिंजर कैट अप्रिसिएशन डे मार्क किया जाता है यूके में आज टोफू डे इट्स नाइस आई लाइक टोफू पहले मैं बहुत नहीं खाता था बट जब से खाया है आई लाइक इट
0: बहुत अच्छा
1: आज वर्ल्ड लेटर राइटिंग डे है इसके अलावा आज के दिन अगर देखें तो आज होटल एम्प्लॉई डे ये भी मार्क किया जा रहा है
0: okay.
1: उसके साथ आज अगर देखें तो पद्मलक्ष्मी इनका जन्म 1970 में हुआ था ये इंडियन बोर्न अमेरिकन ऑथर हैं एक्ट्रेस मॉडल टेलीविजन होस्ट और एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर साथ में जितेंद्र कुमार ये एक एक्टर हैं
0: हाँ
1: हाँ
0: इनको ज़्यादातर लोग आई थिंक जीतू भैया के नाम से ज़्यादा जानते हैं कोटा फैक्ट्री में ये दिखे थे पंचायत में ये दिखे है. He plays a very important role.
1: इनके साथ आज राम कपूर ये भी अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. मनोज पाहवा, इनका भी जन्म आज ही के दिन हुआ है. दीपक डोबरियाल,
0: ओके,
1: ये आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. इंजीनियर सोनम वांगचुक, आज इनका भी बर्थडे है.
0: वेरी नाइस.
1: फैजल खान, ये भी आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. और एक और इंडियन टेलीविजन एक्टर हैं आमिर अली, ये भी आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं. इनके साथ अंकित गेरा, इनका भी आज बर्थडे है.
0: So there you go. There's so many people जो आज अपना birthday celebrate कर रहे हैं. और अगर इनके साथ आपका भी special day आज ही mark किया गया है तो आप हमें बता सकते हैं. You can send your messages across to us on 5599 और आपको हम जरूर wish करते हुए चलेंगे अगले घंटे. फिलहाल 22 मिनट बाकी है 7 बजने में. और इधर आज का हमारा पहला सवाल, आज तीन नाम बताएंगे. पहले लेट्स सी क्या आप इन तीन नामों के बाद गेस कर पाते हैं कि ये किसकी फिल्म हो सकती है, कौन सी फिल्म हो सकती है. राधा, अजय देवगन, अभिषेक बच्चन एंड ईशा देओल.
1: अभिषेक बच्चन,
0: अजय देवगन, अभिषेक बच्चन एंड ईशा देओल.
1: ओके,
0: बाकी के तीन नाम थोड़ी देर बाद रिवील करूंगी, लेकिन अभी क्या इन तीन नामों से आप अनुमान लगा सकते हैं आज की हमारी बॉलीवुड मूवी ऑफ द डे कौन सी मूवी है. अजय देवगन, अभिषेक बच्चन एंड ईशा देओल.
12: लेट्स गो
18: स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट. Unlock your property's true sale value with NZPMI, your local development experts. For a free site assessment, visit nzpmi.co.nz or call 0800-4-NZPMI.
0: याद रहे अगर जवाब आपको मिल चुका है अभिषेक बच्चन, अजय देवगन एंड ईशा देओल, इन तीनों को अगर आपने किसी एक फिल्म में देखा है तो वो कौन सी फिल्म हो सकती है. नाम अगर याद है तो आप लिखिए BF space your answer your name 5599 पर. फिलहाल चलिए आज का स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट. यमला पगला दीवाना 2010 में ये फिल्म आई थी, इसे का ये गाना माँ लक्ष्मी, श्वेता पंडित और अली परवेज की आवाजों में.

0: Breakfast Show with VJ and Pooja.
1: Chubo jao, papi ho. Chubo jao.
2: March 2027. Ek kahani jo badlegi aapki zindagi.
3: Rusbe, tickets book ho gaye.
4: To phir der kis baat ki? Bali bula raha.
3: Sunset, beach club और थोड़ा सा सुकून भी
4: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन
3: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी
5: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड
6: हेलो एवरीबॉडी
2: दो शहर एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा
7: थोड़ा घूमे आओ अच्छा लगेगा आपको मन बहल जाएगा आपका भी
2: टेक्स ड्राइव ऑन 5599 फॉर द ऑल इंक्लूसिव टो प्राइस क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुस्वे ओनली ऑन हम Accurate traffic.
8: Auckland Home Show, 10 to 13 September.
9: Fine spells, a mostly cloudy one today, a high of 16. Little windy as well and could be impacting your drive coming in on the north and across the Harbour Bridge. In on the north and 21 minutes from Constellation Drive, slowing at Silverdale, Constellation to Glenfield and at Esmond. Northwestern 24 in from Massey, slow patches from Te Aratu, not too bad. Southern 28 in from Manukau, heavy at Papakura, slow patches to Mount Wellington.
8: Auckland Home Show and Garden Showcase, 10 to 13 September at Auckland Showgrounds.
10: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो
11: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स नोटरी पब्लिक बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स
12: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी लीजेस सबडिविजन इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटॉर्नी फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 09279439 और विजिट legalassociates.co.nz
13: डॉक्टर ने क्या बोला
14: बीपी और कोलेस्ट्रॉल दोनों बढ़ गए
13: गुड थिंग हम चेकअप के लिए गए वरना पता भी नहीं चलता
15: दैट कन्वर्सेशन इज हैपनिंग इन मोर टीवी होम्स देन यू थिंक हाय आई एम नितेश हीरा फ्रॉम अशोर वन माय जॉब इजंट टू जस्ट सेल पॉलिसीज इट इज टू हेल्प यू अंडरस्टैंड योर ऑप्शंस एंड मेक श्योर योर फैमिली इज प्रोटेक्टेड
16: बुक योर फ्री इंश्योरेंस रिव्यू टुडे कॉल अशोर वन ऑन 0800-77-HEERA दैट्स HIRA और विजिट ashore1.co.nz Northernville Advisory Limited Trading as Ashore One is a licensed financial advice provider
17: Shine Dental has a fresh new look with more space and the same caring team. New patients ke liye ultrasonic scale and polish from $99 or one tooth acrylic denture sirf $599 mein. Plus free dental examinations for new and existing patients. Free wins and ACC codes. Or under 18s ke liye free treatment. Visit Shine Dental at 574 Great South Road, Manukau. Book today on 09-277-6644. T's and C's apply.
0: The Breakfast Show with VJ and Pooja.
2: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras, Manukau. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
0: Breakfast Catch-Up. Throwback. Brought to you by 0800 Rachna. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
18: 13 मिनट बाकी है सुबह हमारे स्टूडियोज में 7 बजने में और अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ जो है ये पढ़ी एक ट्रैवलर हैं जो कि अपने ट्रैवल ब्लॉग्स वगैरह बनाते रहते हैं और अपने सोशल मीडिया अपडेट्स करते रहते हैं वे ही ट्रैवल सो रिसेंटली वो ईरान घूमने गए और वहाँ पर फ्यूल प्राइसेस देखकर वो एकदम हैरान हो गए ही इज एन इंडियन ट्रैवलर और उन्होंने इसका एक वीडियो जो है ये बनाया फ्रॉम अ पेट्रोल पंप और क्वाइट कॉन्ट्रास्ट उन्होंने जो डिटेल्स शेयर किए हैं बिकॉज ही वॉज शुक उन्होंने अपनी गाड़ी में पेट्रोल जो है ये भरवाई 33 लीटर्स ऑफ पेट्रोल और उन्होंने ये कहा कि उनके ट्रिप के लिए इतने पेट्रोल की ज़रूरत थी उनकी गाड़ी में और जब उन्होंने गाड़ी को 33 लीटर्स ऑफ पेट्रोल से भर लिया तो ही वाज स्टंड कि ही पेड फॉर दैट 33 लीटर्स ऑफ पेट्रोल व्हिच वाज अराउंड 270 रुपीज
19: ओके
18: 270 रुपए जो है इंडियन रुपीज ये और उनका ये कहना है कि इट्स बेसिकली 8 रुपीज पर लीटर पेट्रोल वहां पर और उनके लिए वो बहुत शॉकिंग था क्योंकि इंडिया में शायद एक बोतल ऑफ जो मिनरल वाटर होता है वो भी आपको इससे महंगे में मिलता है
19: तो इतना सस्ता था फिर
18: हाँ 270 इंडियन रुपीस इक्वेट्स टू $4.18 न्यूजीलैंड सेंट्स उसके उसका $4.80 का 33 liters आप अगर fill up कर रहे हो, wouldn't you be happy? Wouldn't you be shook? Wouldn't you be like कि यार एक कप कॉफी जो है इससे महंगे में मिलती है.
19: हाँ.
18: आप सोच में पड़ गए लगता है.
19: Yeah, exactly.
18: तो ये इसी तरह से ये इंडियन ट्रेवलर जो है ये भी एकदम हैरान हो गए और फिर उन्होंने ये सोचा कि ये तो बनाना पड़ेगा वीडियो इस पर. और when he made the video, that video went viral. Obviously for right reasons ना, क्योंकि इतने कम में पेट्रोल भरवाई उन्होंने, तो कौन नहीं हैरान परेशान होगा. हैरान भी होगा परेशान भी होगा. इतना सस्ता. Yeah, so that's what I just found out.
19: बहुत सस्ता है.
18: आप शौक शौक में अभी आप ऐसा कीजिए, शौक से बाहर आ जाइए, तब हम और बातें करेंगे. पर फिलहाल के लिए हमने आज की जो बॉलीवुड मूवी गेस करने के लिए क्लूज दिए थे, तीन नाम हमने बताए थे आपको. इफ यू रिमेम्बर द थ्री नेम्स.
19: हाँ.
18: क्या नाम थे?
19: अभिषेक बच्चन, अजय देवगन एंड समबडी एल्स.
18: ईशा देओल.
19: या
18: राइट. तो इसके बाद हमारे पास विधि ने अपना मैसेज भेजा है, फिजा का मैसेज आया है, और साथ में अविनाश इन्होंने मैसेज किया है.
19: या अविनाश फ्रॉम पापाकुरा, थैंक यू सो मच. क्या बात है, सिर्फ तीन ही लोगों को या तीन ही लोगों ने अटेम्प्ट किया है.
18: जी.
19: और सही है या गलत वो तो आपको बाद में हम बताएंगे, लेकिन अभिषेक बच्चन, अजय देवगन, ईशा देओल, I think I don't know the movie.
18: You think you don't know the movie. Interesting चीज ये है कि हमारे पास जो messages आए हैं उसमें से दो लोगों ने कहा है इंसान एक फिल्म आई थी, और
19: दो लोगों ने कहा है युवा.
18: इंसान जो मैसेज हमारे पास किया गया है ये फिल्म 2005 में आई थी.
19: अच्छा.
18: हाँ जी. तो हमने आपको क्लूज दिए थे, अब इंसान मूवी में अजय देवगन ये है.
19: हाँ.
18: ईशा देओल ये भी है.
19: हाँ.
18: लेकिन अभिषेक बच्चन नहीं है.
19: अच्छा नहीं है.
18: हाँ. तो वो तो जवाब नहीं हो सकता, बिकॉज अभिषेक बच्चन इज नॉट देयर. ना मैंने कहा था मैं बाकी के तीन नाम आपको रिवील करूंगी. द फाइनल थ्री नेम्स आर विवेक ओबेरॉय, रानी मुखर्जी एंड करीना कपूर. सो नाउ छह नाम हो गए.
19: ये तो मल्टी स्टार कास्ट हो गया एकदम फुल ऑन.
18: बट छह नाम हो गए ना,
19: अभिषेक बच्चन, अजय देवगन, ईशा देओल, विवेक ओबेरॉय और कौन था,
18: रानी मुखर्जी,
19: करीना कपूर खान.
18: यस.
19: या इट्स वेरी इजी नाउ. आई डोंट नो,
18: इट्स वेरी इजी. जितना बड़ा स्टार कास्ट है उतना छोटा इस फिल्म का नाम है.
19: अच्छा.
18: तो जल्दी से अपने आंसर्स आप हमारे पास भेजिए. हमने आपको सभी जो मेन कैरेक्टर्स के नाम ही रिवील कर दिए हैं. अब अपना आंसर जो है ये आप हमें टेक्स्ट कर सकते हैं, 5599 हमें बता सकते हैं आज की बॉलीवुड मूवी ऑफ द डे कौन सी फिल्म है. अजय देवगन, अभिषेक बच्चन, विवेक ओबेरॉय, रानी मुखर्जी, करीना कपूर और ईशा देओल. अपना आंसर BF लिख कर आप 5599 पर सेंड कर सकते हैं. सही या गलत जवाब ये हम आपको थोड़ी देर बाद जरूर बताएंगे. क्या आपने आज की बॉलीवुड मूवी ऑफ द डे पहचानी है या नहीं, ये भी आपके साथ हम जरूर देखेंगे. बाय द वे मैसेजेस आप सेंड कर रहे हैं, 7 बजे हम चेकआउट करेंगे सही आंसर. याद दिला रहे हैं दिस इज द फाइनल वीक फॉर आवर फादर्स डे कॉम्पिटिशन.
19: इसमें हिस्सा लेने का मौका है आपके पास, विजिट आवर फेसबुक पेज जहां पर डेट्स AI अपग्रेड में $300 कैश और डेट्स रिवेस ग्रिल में लाइव ओनिया आपको $500 जीतने का मौका. तो आज कल परसों तीन ही दिन आपके पास बाकी हैं टू गेट इनटू द ड्रॉ,
18: क्योंकि फ्राइडे को हम सिर्फ अनाउंसमेंट्स करेंगे विनर्स की, ना कि कॉम्पिटिशन में एंट्री देने के लिए आपको अपॉर्चुनिटी हम देंगे. इसीलिए अभी जब जब मौका मिले फ्राइडे से पहले अपने नामों को ड्रॉ में जरूर शामिल कराइए.

0: A very good morning and welcome to Morning Madness on Hum, playing Bollywood's biggest hits. The Breakfast Show with Vijay and Pooja aapke liye jari hai 104.2 FM aur Rover par aap hamare saath shamil hain. Is ghante to tamam cheezon ke bare mein baatein hongi aapke saath aur कुछ समय पहले एक खबर जो है ये आई थी एक इंडियन टीनेजर के बारे में, इकबाल शेख. आपको याद है इनकी कहानी?
1: जी नहीं.
0: ये आपने पढ़ी थी? नहीं पढ़ी थी तो बताइए. ये वेस्ट बंगाल में हुआ था जहां पर ये लड़का जो है पिछले 5 सालों से एक छोटे से तालाब में है.
1: ओह, आई थिंक मैंने इनके बारे

0: के जो अपने यू नो नेक गर्दन तक पानी में बैठा होता है, वेंट वायरल, जिसके बाद काफी डिबेट जो है ये शुरू हुआ उनके कंडीशन को लेकर। रेडिट ने कई रेडिट के कई यूजर्स ने इसको आइडेंटिफाई किया एज वन ऑफ दोज रेयर कंडीशंस जिसको erythromelalgia जो है ऐसा कुछ कहते हैं। It mostly affects the feet but can also affect other parts of the body and its common symptoms are burning sensation in the skin or redness. ये नहीं मालूम है कि ये क्यों होता है, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है it could be genetic. और इनकी स्टोरी जो है caught the attention of अनंत अंबानी who arranged for the 16-year-old to be transported over 1,300 miles Mumbai लेकर आए, जहां पर टीम ऑफ डॉक्टर्स जो है maybe उनके उनको डायग्नोज करके उनको ट्रीट जो है ये कर सके। और ये लड़का जो है वेस्ट बंगाल इंडिया में था फिलहाल।
1: राइट, तो इनके बारे में अगर कुछ और पता चलता है डेफिनेटली आपके साथ हम शेयर करेंगे, बिकॉज दिस पर्टिकुलर सिचुएशन इफ़ यू कम टू थिंक अबाउट इट इज़ बहुत डिफिकल्ट है यार। ऐसे यू नो चीज़ों से लोग गुजरते हैं जिसके बारे में पता भी नहीं चलता व्हाट्स द कोज, हाउ टू ट्रीट इट, तो काफ़ी मुश्किल होती है टू द पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम इट, और जो लोग उनको हेल्प करने के बारे में सोच रहे होते हैं और मेहनत कर रहे होते हैं टू फिगर आउट कि कैसे इनकी हेल्प करें ना। फिलहाल चलिए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हुए आपके लिए मॉर्निंग मैडनेस हम लेकर आ रहे हैं। पिछले घंटे जो सवाल हमने पूछा था बातों बातों में आपने जवाब दे भी दिया था और कई लोगों ने शायद ध्यान नहीं दिया इसीलिए मिस आउट कर गए। शुभम आपका मैसेज आया था, साथ में सनी है, नताशा है, जैनब आपने भी अपना मैसेज भेजा था, कुछ लोगों ने मैसेजेस भेजे लेकिन नाम नहीं लिखा, पर शुक्रिया आपके कोशिशों के लिए। तो हमने आपसे पूछा था कि आज की बॉलीवुड मूवी ऑफ द डे कौन सी मूवी हो सकती है, नाम बताए थे अजय देवगन, अभिषेक बच्चन, विवेक ओबरॉय, रानी मुखर्जी, करीना कपूर खान और ईशा ड्योल। सो द मूवी इज युवा, 2004 में ये फिल्म आई थी और ये मल्टी स्टार मूवी जिसे डायरेक्ट किया था नन अदर देन मणिरत्नम ने, डायलॉग्स अनुराग कश्यप ने लिखे थे लेकिन कहानी और स्क्रीन प्ले खुद मणिरत्नम के ही थे। तो फिल्म जो है अच्छी चली थी, वन ऑफ द बेस्ट मूवीज रही थी उस साल की ये, और एट द 50th फिल्म फेयर अवार्ड्स युवा ने कुल मिलाकर 6 अवार्ड्स भी जीते थे, इंक्लूडिंग बेस्ट फिल्म क्रिटिक्स, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर जो अभिषेक बच्चन को मिला था, बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस जो रानी मुखर्जी को मिला था, और ये एक ऐसी फिल्म थी जिससे अभिषेक बच्चन को काफ़ी रिकग्निशन भी प्राप्त हुई थी। सो युवा दैट वॉज द करेक्ट आंसर। फिलहाल 7 मिनट हो रहे हैं 7 बजकर, थोड़ी देर बाद आपकी राशि वाइब्स हम लेकर आएंगे।

0: 1-800-634-234.
1: राशि वाइब्स
2: कैसा रहेगा आज का आपका दिन। सबसे पहले मेष यानी एरीज, आज ऑफिस में आपके सुपीरियर्स का आपको काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। कुछ नई जिम्मेदारियां आपको मिल सकती हैं, कोई लंबे ट्रेवल पर आपको जाना पड़ सकता है। आज अपनी निजी जिंदगी में समझदारी से काम करना बहुत ज़रूरी होगा। बेवजह किसी चीज़ को लेकर बहस ना करें और अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस पर कंट्रोल बनाए रखें।
3: उसके बाद विशनी टूरिस्ट, आज आपके लिए कहा जा रहा है कि जहां पर आप नौकरी करते हैं वहां पर आपके जो कलीग्स हैं आपके साथ तालमेल बनाकर काम करने वाले हैं। बस थोड़े मोड़े छोटे मोटे आर्ग्यूमेंट्स जो है ये हो सकते हैं, इनसे आपको थोड़ा बचकर रहना है। और साथ में आपके लिए कहा गया है कि लव लाइफ में कुछ नए मोड़ आएंगे जिसके लिए आप एक्साइटेड थे, लुक फॉरवर्ड कर रहे थे, तो डेफिनेटली इसके लिए भी तैयार रहिएगा। और पेट से जुड़ी कुछ समस्याएं हो सकती हैं, इसीलिए लुक आफ्टर योरसेल्फ।
2: मिथुन यानी जेमिनी, आज समझदारी से, डायलॉग से कठिन काम बड़ी आसानी से आप पूरे कर लेंगे। कुछ नए ऑर्डर्स वगैरह बिजनेस में आपको मिल सकती हैं, कुछ गलत फहमियां थी तो ये भी दूर होंगी। पैसे हासिल करने के कुछ नए रास्ते आपको मिलेंगे और मेंटली यू विल बी एट पीस टुडे।
3: आज जितने भी बिजनेस पीपल हैं जिनका हॉरोस्कोप है मिथुन यानी कि जेमिनी, आपके लिए कहा गया है कि आज बड़ा मुनाफा यानी कि प्रॉफिट मिलने की संभावना है।
2: मिथुन,
3: हाँ
2: नहीं आपको कर्क,
3: ओ सॉरी माय बैड, कर्क यानी कैंसर, ये पिछले 2-3 दिनों से मैं यही कर रही हूँ। हाँ तो कर्क यानी कैंसर, आज आपके लिए कहा गया है कि नौकरी में कुछ चेंजेस आएंगे, कुछ जिम्मेदारियां आप पर आ सकती है, तैयार रहिएगा। और जितने भी बिजनेस पीपल हैं आपके लिए बताया गया है कि कुछ बड़ा मुनाफा यानी कि फायदा प्रॉफिट जो है कि आपके हाथ लग सकता है आज। इसके साथ साथ आपके लिए कहा गया है कि जीवन साथी का जो पूरा सहयोग आपको मिलेगा, अगर कुछ नए फैसले आप कर रहे हैं, कुछ बदलाव जीवन में चाहते हैं उसकी ओर आप कुछ मेहनत कर रहे हैं, तो इट्स अ वेरी गुड डे टू गेट दैट डन टुडे।
2: सिंह यानी लियो, आज आपके लीडरशिप क्वालिटीज को प्रेज किया जाएगा। बिजनेस में इन्वेस्टमेंट के लिए दिन बहुत अच्छा है। आज अचानक ही आपको कहीं से पैसे मिल सकते हैं। आज कुछ थकावट महसूस करेंगे या आंखों में कुछ जलन भी हो सकती है।
3: और उसके बाद कन्या यानी वर्गो, आपके लिए कहा गया है पेशेंस से काम ले, बहुत जरूरी है। स्पेशली आज आपकी वर्किंग लाइफ में आपकी पेशेंस को जरूर टेस्ट किया जाएगा। देयर माइट बी अ लॉट ऑफ थिंग्स जो हो रहा है आपके पास या आज होने वाला है, और इससे आपको थोड़ा तैयार रहना है, अपने आप को सावधान भी रखना है। दूसरी ओर ये भी कहा गया है कि आज आपके कुछ समस्याओं का हल मिलेगा, और ऐसी कुछ समस्याएं हैं दैट यू हैव बीन फेसिंग फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ, सो फाइनली चैन की सांस आप लेंगे।
2: वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो, नहीं धनु यानी सेजिटेरियस, अच्छा उससे पहले तुला बता देता हूँ आज ना।
3: जी बताइए।
2: आज टीम वर्क से अपने बड़े बड़े टारगेट्स आप अचीव कर सकेंगे। आज अगर कुंवारे हैं तो आपकी शादी की बातचीत आगे बढ़ सकती है। जोड़ों में कुछ दर्द आज आप महसूस कर सकते हैं।
3: और उसके बाद आज कहा गया है वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो के लिए कुछ नई नौकरी की तलाश आप कर रहे हैं, तो अच्छी खबर आपको मिल सकती है इस पर्टिकुलर मामले में। आपके लिए ये भी कहा गया है कि आज लव लाइफ में एक देखा जाए आपके जो पार्टनर्स हैं इनके साथ किसी बात को लेकर बहस हो सकती है, इसकी वजह से रिश्ते में कुछ क्लैरिटी आएगी या फिर कुछ तनाव आएगा। इट टोटली डिपेंड्स कि कैसे आप सिचुएशन को इवेलुएट करते हैं। वैसे बचत पर ध्यान दें, ये सलाह आपको दी जा रही है, अदरवाइज आगे चलकर आपको काफी स्ट्रगल करनी पड़ेगी।
2: धन यानी सेजिटेरियस, किस्मत का पूरा साथ मिलेगा, अटके हुए काम पूरे होंगे, कॉन्टैक्ट्स से जो बिजनेस पर्सन हैं अच्छा मुनाफा कमा सकेंगे, घूमने का प्लान बना सकते हैं, और आज हेल्थ भी आपका बड़ा बढ़िया रहेगा, एकदम फ्रेश फील करेंगे आप।
3: मकर यानी कैप्रिकॉर्न, आपके लिए कहा गया है कि जहां नौकरी करते हैं वहां पर किसी से बेवजह ना उलझे, अपने काम से काम रखे, अपने काम पर ध्यान दे, ये सलाह आपको दी जा रही है। बिजनेस में कुछ नई शुरुआत आप करने वाले हैं, प्रोबेबली यू वांट टू स्टार्ट अ न्यू ब्रांच, न्यू यू नो फ्रेंचाइज, कुछ अलग करना चाहते हैं, तो इट्स अ गुड डे, बस सही तरीके से आपको रिसर्च कर लेना है एंड देन गेट इन्वॉल्व्ड इन इट, ये सलाह आपको दी जा रही है। आज थकावट कमजोरी महसूस कर सकते हैं, इसीलिए तबीयत पर ध्यान दे, और अगर कुछ हेल्थ चेकअप वगैरह आपके पेंडिंग है, गेट दैट सॉर्टेड एज वेल।
2: कुंभ यानी एक्वेरियस, आज कॉलीग सपोर्ट देंगे, कुछ नए प्रोजेक्ट्स में सक्सेस हासिल करेंगे, लव लाइफ में सुख शांति बनी रहेगी, फाइनेंशियली दिन मजबूत और बढ़िया रहेगा आज आपका। हो सके तो कुछ योगा प्राणायाम आदि करें।
3: और आखिर में मीन यानी पाइसेस, आपके लिए कहा गया है कि आपकी मेहनत का फल आज जरूर मिलेगा। कुछ ऐसे एक्सपीरियंस्ड लोग हैं आपके प्रोफेशनल लाइफ में जो आपको जरूर अपनी सपोर्ट देंगे, सलाह देंगे, हियर देम आउट, और उससे काफी कुछ आपको सीखने को और समझने को मिलेगा। रुका हुआ पैसा आपको मिलेगा और इसकी वजह से आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन जो बिगड़ रही थी वो फिर से एकदम पटरी पर आ जाएगी। सो ये थे आज के आपके राशि वाइब्स। उम्मीद करते हैं दिन सभी का बहुत ही अच्छा, बढ़िया और कमाल का गुजरे। फिलहाल इट्स 18 मिनट्स आफ्टर 7। कमिंग अप नेक्स्ट आज का आपका सेलिब्रिटी अलार्म,
1: बॉलीवुड का असली ब्लॉकबस्टर,
0: पूरे शहर पे कब्जा होगा, राज होगा,
1: प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स।
4: अब तक डैड आपकी क्लास लेते थे, लेकिन अब बारी है रिवर्स ग्रिल की।
1: इस फादर्स डे हम पर डैड से होंगे मॉडर्न स्लैंग, पॉप कल्चर और टेक के सवाल।
4: हर सही जवाब को मिलेगी ड्रॉ में एंट्री और एक लकी डैड जीतेंगे $500 कैश।
1: साथ में सोशल मीडिया पर पार्ट लीजिए डैड्स AI अपग्रेड में और जीतिए $300। डैड को रेडी करो, खुश करो।
4: फादर्स डे ऑन हम ब्रॉट यू बाय आई विलेज एट विक्टोरिया, इंडियन किचन एंड बार, PFSL providing the best home loan advice for the last 20 years. Amma's Food, 100% authentic and pure as mother's love. And Indelible Homes, your building experts known for subdivisions.
5: And it's looking ugly out there on the roads with severe delays on all motorways into the city.
6: Can't wait for coffee? Then don't. Turn into Wild Bean Cafe at BP and grab a barista-made coffee in minutes. The perfect traffic jam remedy at BP.
7: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए, वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद। Bring home everyone's favorite Shan Foods recipe mixes, बॉम्बे बिरयानी हो या बटर चिकन, कोरमा या चना मसाला, रेसिपीज चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, शान recipe mixes हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती हैं। तो इंतजार किस बात का, आज ही अपने नजदीकी सुपरमार्केट से शान recipe mixes खरीदिए। शान Foods, असली स्वाद हर घर के लिए।
8: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो,
9: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
10: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 09279-9439 और विजिट legalassociates.co.nz।
11: If you're at the fit out stage of a build, Bunnings Trade is here to help. We've got what you need for your commercial and residential jobs with bathroom tapware, kitchens and appliances, and HVAC solutions. Call 0800 134 872 to get a quick quote today at Bunnings Trade.
12: What if your next holiday wasn't just a holiday, but the adventure everyone's still talking about? This Easter, Bali and Bangkok, one epic trip. 5-star all-inclusive stays, breakfast, lunch, dinner sorted, return flights from Auckland to Bali to Bangkok and back, sightseeing, activities, even dinner cruises in both cities all included. Come, explore with Sun Tours and a whole group of fellow travelers. Call 0800 Sun Tours for affordable prices. Spaces are limited. Your story starts here.
13: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
14: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manco. English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
1: Celebrity Alarm.
15: Hit it.
3: मॉर्निंग मैडनेस आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा, ऑल थैंक्स टू मेगा फाइनेंस जिनकी ओर से आपके लिए ब्रेकफास्ट शो पर मॉर्निंग मैडनेस का ये एक घंटा रहेगा, मतलब 7 से 8 बजे ना
2: जी जी
3: मॉर्निंग मैडनेस चलता है।
2: मॉर्निंग मैडनेस जिसमें बहुत सारी चीज़ें आपके लिए हम लेकर आते हैं, एंड वी वुड लाइक टू ऑफिशियली वेलकम मेगा फाइनेंस और उनकी पूरी टीम को। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा। मेगा फाइनेंस जो जिनके पास 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस इंडस्ट्री, और आपको बहुत ही लाजवाब सेवा जो है ये प्रदान करते हैं। अगर आप सोच रहे थे, आपका एक सपना था कि आपका खुद का एक घर हो न्यूजीलैंड में, और अब वो टाइम आ गया है, आपको लग रहा है कि नो दिस इज द टाइम टू मेक द मूव. घरों के दाम भी अभी अच्छे चल रहे हैं, इंटरेस्ट रेट्स भी उतने ज्यादा नहीं है, तो मेगा फाइनेंस की टीम से आप बातें कर सकते हैं परमेश और उनके साथियों से. वेरी इजीली आपको उनका कॉन्टेक्ट जो है ये मिल सकता है. ऑल यू गॉट टू डू इज आप मेगा लिखें और उसे 5599 पर हमारे पास भेजें. दे आर लोकेटेड इन लेस्ली और 0800-634-234 पर उन्हें आप कॉल कर सकते हैं, या फिर मेगा लिखें और 5599 पर हमारे पास आप भेजें. उनका जो क्या बोलते हैं वेबसाइट का लिंक आपको मिल जाएगा जहां पर उनका कॉन्टेक्ट, उनके सर्विसेज, नॉट ओनली होम लोन्स, रीफाइनेंसिंग एंड सभी तरह के सर्विसेज जो है परमेश्वर उनकी टीम आपको प्रोवाइड करती है. तो इजीली आप उनको एक्सेस कर सकते हैं, उनसे बातें कर सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं.
3: तो रिमेम्बर द नेम मेगा फाइनेंस, जिनके साथ आपका ड्रीम पूरा हो सकता है. फिलहाल चलिए हम आज के सेलिब्रिटी अलार्म आपके लिए लेकर आ रहे हैं. आवाज आपको सुनाएंगे आज के सेलिब्रिटी की, जो सुनते हुए आपको अनुमान लगाना है कि ये कौन है.
15: मेरे फादर भी 8 साल की उम्र में, जब पार्टीशन हुआ था, मेरे फादर और मेरी दादी पाकिस्तान से इंडिया आए रिवर्स के, नहीं वो हमारा देश है, वी आर गोइंग बैक. तो मेरी दादी और मेरे फादर जो 8 साल के थे, वो फुटपाथ से शुरुआत की, सामान बेचा, पाव बेचा, जो काम, पतंग, साबुन, क्या क्या करके, एंड फाइनली फिल्म में फर्स्ट टाइम बीआर चोपड़ा साहब की फर्स्ट फिल्म थी, उनको कहा कि भाई फिल्म में करोगे, तो उन्होंने फिल्म देखी नहीं थी. फिल्म क्या होता है, उन्होंने ये बोलना है, मतलब वो सब छोड़ो, पैसे कितने मिलेंगे.
3: तो आज के जो सेलिब्रिटी हमारे हैं, इनकी आवाज हमने आपको सुना दी, अब आपको अनुमान लगाना है कि ये कौन है. अगर आपने आवाज सुनते हुए इनकी आवाज को सुनते हुए इन्हें पहचान लिया है, तो आपको जल्दी से हमारे पास अपना जवाब सेंड करना है 5599 पर. आप BF लिखें, फिर आंसर लिखें और सेंड कर दें 5599. थोड़ी देर बाद हम ज़रूर देखेंगे कि क्या आप में से किसी ने भी सही तरीके से हमारे आज की सेलिब्रिटी की आवाज़ पहचानी है या नहीं. और दूसरी ओर आप जब अपने आंसर्स भेज रहे हैं, मेक श्योर अपना नाम जो ज़रूर लिखें, पर अगर कोई भी डाउट हो आपको बिकॉज यू हैव नॉट हर्ड द वॉइस क्लियरली, तो एक बार फिर आपको हम सुना रहे हैं. पे अटेंशन टू दिस.
15: मेरे फादर भी 8 साल की उम्र में, जब पार्टीशन हुआ था, मेरे फादर और मेरी दादी पाकिस्तान से इंडिया आए रिवर्स के, नहीं वो हमारा देश है, वी आर गोइंग बैक. तो मेरी दादी और मेरे फादर जो 8 साल के थे, वो फुटपाथ से शुरुआत की, सामान बेचा, पाव बेचा, जो काम, पतंग, साबुन, क्या क्या करके, एंड फाइनली फिल्म में फर्स्ट टाइम BR चोपड़ा साहब की फर्स्ट फिल्म थी, उनको कहा कि भाई फिल्म में करोगे, तो उन्होंने फिल्म देखी नहीं थी. फिल्म क्या होता है, उन्होंने ये बोलना है, मतलब वो सब छोड़ो, पैसे कितने मिलेंगे.
16: Bollywood's most wanted.
17: Gundi khad gao. Ya seedha andar aao.
18: Main laun apna A game.
19: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: 0800 634 234.
1: News headlines.
2: सुबह के मुख्य समाचारों में, नेपाल के फ्लैश फ्लड्स में गायब 5 न्यूजीलैंडर्स के कुछ परिवार काठमांडू पहुंच गए हैं और अपने अपनों को खोजने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। मिसिंग लोगों में सुहासिनी रेड्डी, हैमिल्टन के कपल मिहिर और किन्नरी पटेल और ऑकलैंड के डेजान कुजमिक शामिल हैं, जो फ्लड के वक्त कैलाश यात्रा के साथ बॉर्डर एरिया के पास थे। न्यूजीलैंड के मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स एंड ट्रेड के मुताबिक अभी तक किसी भी कीवी को की कोई वेरीफाइड खबर नहीं मिली है और ग्राउंड पर सिचुएशन काफी ब्लीक बनी हुई है। पे बार्गेनिंग और पब्लिक सर्विस कट्स के विरोध में अगले हफ्ते बुधवार को पूरे देश के लगभग 10,000 पब्लिक सर्वेंट्स स्ट्राइक पर रहेंगे। पब्लिक सर्विस एसोसिएशन के मुताबिक ये स्ट्राइक दिन में 1 बजे से शुरू होगी, जिससे DIA, NEMA, MEC, MBIE और MSD जैसे कई बड़े गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के साथ डिपार्टमेंट्स का काम प्रभावित होगा। PSAE नेशनल सेक्रेटरी ड्वेन लियो ने कहा कि ये स्ट्राइक गवर्नमेंट को एक क्लियर मैसेज देने के लिए है कि कम पे ऑफर्स और कट्स के बीच पब्लिक सर्वेंट्स बैक डाउन नहीं करेंगे। इंग्लिश प्रीमियर लीग का एक मैच फिलहाल एस्टन विला और आर्सेनल के बीच जारी है। आधे घंटे का खेल पूरा हो चुका है और अभी भी दोनों टीमें नील ओल से बराबर है। इस मैच पर और भी अपडेट्स आपके लिए हम लेकर आते रहेंगे। ये रहे सुबह के मुख्य समाचार।
3: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
4: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manco. English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
5: Forget packing your bags for now. Just keep your ears open for the next hump boarding call. You could be boarding a dream trip to Vanuatu with 2 return air tickets from Solomon Airlines and $1,000 spending money.
4: Thanks to Solomon Airlines, flying 4 times each week, non-stop, from Auckland to Vanuatu. Visit flysolomons.com.
6: Hum. Accurate traffic.
7: Fuel savings at gas today.
8: Fine at times. Lots of cloud today. High of 16. Little windy as well today. Coming in on the north and it's impacting your journey on the Harbour Bridge. 27 minutes Constellation Drive to town. Heavy on and off from there and heavy at Silverdale too. Northwestern 32 minutes in from Massey. Slow from Upper Harbour. Lots of heavier spots. Southern 50 minutes in from Manukau. Slow from Papakura. Heavy patches from Manukau. And southwestern heavy northbound to Puanui.
7: Save 15 cents per litre on fuel today at gas with your everyday rewards card.
9: Sona Sansa. पापा टोटो के गहनों के साथ आप भी चमक जाएंगे।
10: चूड़ी, कंगन, पायल, बाली, झुमके और चोकर, ये सोना वही सोना संसार है जहां दिल्ली से लेकर दुबई तक के सभी गोल्ड ज्वेलरी डिजाइन्स मिलते हैं, समझे?
9: सोना संसार पापा टोटो, जहां था वहां अभी भी है। शॉप इनसाइड विद आजा डिजाइन स्टूडियो, कॉर्नर ऑफ ग्रेट साउथ रोड एंड ईस्ट तमाकी लाइट्स, पापा टोटो।
11: सोना संसार, 138 ग्रेट साउथ रोड, पापा टोटो। सोना संसार, यू आर नेवर टू ओल्ड फॉर गोल्ड।
12: Please use your imagination for the following ad.
13: If I won Powerball, I'd plan to do something crazy late. And once I'd calmed down, I'd actually do something like...
12: Imagine winning $25 million this Wednesday. Play in store or online.
14: A safe night can change everything. That's why Contact donates the energy to power women's refuge. This winter, when you donate a safe night for someone seeking safety, we'll match it up to 5,000 nights. Donate now at safenight.nz.
15: डॉक्टर ने क्या बोला?
16: BP और कोलेस्ट्रॉल दोनों बढ़ गए।
15: गुड थिंग हम चेकअप के लिए गए, वरना पता भी नहीं चलता।
17: That conversation is happening in more TV homes than you think. Hi, I'm Nitesh Hira from Assured One. My job isn't to just sell policies, it is to help you understand your options and make sure your family is protected.
18: Book your free insurance review today. Call Assured One on 0800-77-HIRA. That's HIRA. Or visit assureone.co.nz. North and Bill Advisory Limited Trading as Assured One is a licensed financial advice provider.
19: Auckland, it's time to sit back, relax and save big. The big sofa and recliner sale is on now at Lifestyle Furniture with up to 60% off. Stylish sofas, comfy lounge suites or the ultimate recliner. They've got something for every lifestyle. Recliner chairs start from just $399. Visit Lifestyle Furniture at Manukau, Mount Wellington or Westgate. Big style, big comfort, better prices. Hurry, up to 60% off on now.
20: The beat of Bollywood.
21: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है।
3: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
4: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras, Manco. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
3: Birthday greetings.
0: Iska birthday bhai?
20: Mera bhi birthday hai, chalo line mein aa jao.
0: Happy birthday to you.
2: आज फर्स्ट ऑफ सितंबर को सबसे पहले ऑल द वे इन पापाकुड़ा प्रीता जयराम दास जी अपनी सालगिरह मना रही हैं. ये दिन आपको अनेकों बार शुभ और मुबारक हो. वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे. खुशी के इस मौके पर जितने भी परिवार वाले हैं आज सभी आपको शुभकामनाएं और बधाइयां दे रहे हैं. हमारी ओर से भी ये स्पेशल डे आपको मुबारक हो.
21: हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं आपको और हमारी पूरी हम टीम की ओर से ये स्पेशल दिन खास आपके नाम हम कर रहे हैं.

0: चलिए फिलहाल आपके लिए, जबकि स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट हम पेश कर रहे हैं, तो उससे पहले ही आपको हम याद दिला देते हैं आज का हमारा सेलिब्रिटी अलार्म जो आपके लिए हम लेकर आए थे। सेलिब्रिटी अलार्म में आज हमने आपसे पूछा था कि आवाज जो हमने आपको सुनाई थी बेसिकली कि वो किसकी आवाज है। आप अनुमान लगा पाए किसकी आवाज है वो?
1: या
0: अच्छा, आपको पता चल गया?
1: मेरे को पता चल गया, बिकॉज़ आई लाइक दैट पर्सन।
0: अच्छा, तो आई एम नॉट श्योर कि आप में से और कितने लोग हैं जिन्होंने इनकी आवाज़ जो है ये पहचानी है, बट अगर आपने इनकी आवाज़ नहीं पहचानी, अब तो खैर टाइम गया क्योंकि अब हम रिवील करने वाले हैं द करेक्ट आंसर ना। एंड आपने कहा कि आपको पता है कि ये कौन है, पता चल गया कि ये कौन है क्योंकि आपको बहुत पसंद है, तो आप ही बता दीजिए आज के हमारे सेलिब्रिटी।
1: जावेद जाफरी।
0: एब्सोल्युटली, सो जावेद जाफरी जो है इनकी आवाज़ आपके लिए हम लेकर आ रहे थे आज की सेलिब्रिटी अलार्म में। जितने लोगों ने हमारे पास इनका नाम भेजा, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और कुछ लोगों ने सही तो कुछ लोगों ने गलत आंसर्स भेजे थे, बट थैंक यू फॉर एटलीस्ट सेंडिंग इन योर मैसेजेस। 5860 8610 आपका जवाब आया, लोकेश है, साथ में गुंजन है, शुभम ने अपना मैसेज भेजा था, रितिका ने वैसे सिद्धार्थ मल्होत्रा कहा था, पर कोशिश करने के लिए थैंक यू सो मच रितिका। विधि है, राहुल पांडे है, विकाश है और साथ में अमन, इनका भी आंसर आया था। तो आज की आवाज़ तो आप पहचान गए, लेकिन कल आपके लिए हम एक बार फिर लेकर आएंगे एक और एक सेलिब्रिटी की आवाज़, और हमारी ओर से कोशिश यही रहेगी कि आप इनकी आवाज़ जो है ये पहचाने सेलिब्रिटी अलार्म में। फिलहाल डेड्स AI अपग्रेड हमारा फादर्स डे कॉम्पिटिशन जो आपके लिए लेकर आ रहे हैं, तो फ्राइडे को ड्रॉ हम करने वाले हैं, विच मीन्स आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, और अगर आपने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया है देन दिस इज़ योर टर्न टू पार्टिसिपेट। बहुत कम लोगों ने अभी तक अपनी एंट्रीज हमारे पास भेजी हैं, बट काफ़ी कमाल के इंटरेस्टिंग एंट्रीज जो है ये आई हैं, विच मीन्स जितने लोगों का हमारे पास अभी तक एंट्री जो है ये पहुँच चुका है उन्हीं का नाम ड्रॉ में जाएगा, जहाँ पर कोई एक उनमें से $300 कैश जीत सकता है।
1: तो अगर एंट्रीज आपने नहीं डाली है, यू गॉट सम टाइम, जल्दी जल्दी आप जाए हमारे फेसबुक पेज पर, देखें क्या आपको करना है। ऐसे ट्रेवल करते हुए अगर आप ड्राइव नहीं कर रहे हैं, कोई और ड्राइव कर रहा है, आप तो बैठे बैठे फोन पर ही अपनी एंट्री डाल सकते हैं।
0: बिल्कुल, छोटी सी चीज़ है यार, आपको क्या करना है, अपने डैड की कोई एक फोटो लेनी है और उसी फोटो को आपको किसी एक
1: AI जो पोर्टल है,
0: हाँ वहाँ पर जैसे ChatGPT हो गया, Gemini हो गया, इस पर डालिए और उसे एक प्रॉम्प्ट दीजिए कि आपके डैड की फोटो को उस तरह से सुपर हीरो के फोटो में कन्वर्ट करे जिस तरह से आप अपने डैड को एज अ सुपर हीरो इमेजिन करते हैं। जब आप प्रॉम्प्ट देंगे तो आपके डैड के इमेज को लेकर एक सुपर हीरो का इमेज जो है ये क्रिएट हो जाएगा। इट्स दैट सिंपल, पर आपकी इमेजिनेशन के हिसाब से वो क्रिएटिविटी आपको करनी है, दैट इज वाई आपको इतना काम करना पड़ेगा। एंड एज सून एज यू गेट दैट सुपर हीरो फोटो ऑफ योर डैड, आप बस इसे लेकर फेसबुक पेज विजिट कीजिए, वहां पर आपको मिलेगा एक पोस्ट फीचर्ड फोल्डर में, विच इज डेड्स AI अपग्रेड फादर्स डे कॉम्पिटिशन। बस उसी के कमेंट सेक्शन में आपको जाकर ये फोटो जो है ये पोस्ट करनी है, और साथ में आपको बस उस फोटो के साथ कैप्शन में लिखना है अपने डेड के लिए कोई एक मैसेज। इनवाइट करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स को ऑन फेसबुक टू लाइक दैट फोटो। एंड ये बात आप याद रखें कि अगर आप इस कॉम्पिटिशन में पार्ट ले रहे हैं, आपका हम FM का फेसबुक पेज फॉलो करना बहुत जरूरी है, और ये फादर्स डे कॉम्पिटिशन का पोस्ट भी आपको फॉलो करना है। दीज आर सम ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशंस दैट यू हैव टू मीट, सो ये जरूरी चीजें आप कर ले, दैट्स इट, यू आर पार्ट ऑफ द ड्रॉ, और बदले में आप ड्रॉ में शामिल होकर $300 जीत सकते हैं। याद दिला रहे आपको ज्यादा टाइम नहीं है, फ्राइडे को ड्रॉ हो जाएगा, सो इसी वजह से जितनी जल्दी आप अपनी एंट्री सेंड करेंगे उतना फायदा आपके हाथ में रहेगा।

0: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Don't mind, lekin aap dono ki jodi badi cute hai.
0: Throwback. Brought to you by 0800 Rachna. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
2: 10 मिनट रह गए हैं 8 बजने में और 8 बजने वाले हैं मतलब अगले घंटे बोर्डिंग कॉल जो है ये भी प्ले होगा. स्पेशल बोर्डिंग कॉल जो आपको एंट्री दिला सकता है इनटू द ड्रॉ जहां पर 2 रिटेनिया टिकट्स टू वनवातु आप जीत सकते हैं थैंक्स टू सोलोमन एयरलाइंस फ्लाइंग 4 times ईच वीक नॉन स्टॉप ऑकलैंड से वनवातु. आप flysolomons.com विजिट कर सकते हैं और उसके साथ हमारी ओर से $1,000 स्पेंडिंग मनी भी हम आपको देने वाले हैं. तो ये अगर आपको जीतना है सुनते रहें अगले घंटे किसी भी टाइम पर जो बोर्डिंग कॉल है ये प्ले होगा. और अगर पहले से आप चाहते हैं तो लिंक हासिल करके अच्छे तरह से सेफली सिक्योरली अपने फोन पर आप स्टोर कर ले ताकि जैसे ही बोर्डिंग कॉल आपको सुनाई दे वैसे ही आप जाकर वहां पर एंटर कर दे जहां लिखा होगा एंटर कोड नाउ. वहां पर आपको बस बोर्ड नाउ टाइप करना है और सबमिट करना है. टर्म्स एंड कंडीशंस भी है जो हम trova.nz पर आपको मिल जाएंगे. अभी तक तकरीबन 3 हफ्ते ये तीसरा हफ्ता जा रहा है इस कंपटीशन का. बहुत सारे लोगों ने अपनी एंट्री डाल दी है हजारों की संख्या में एंड जितने ज्यादा एंट्रीज आपकी उतने ज्यादा चांसेस होते हैं कि आप जीत सकते हैं.
3: बिल्कुल. और जैसे कि हमने आपको भी पूरा एक्सप्लेन किया है बट जस्ट इन केस अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमारे पास कॉल कर सकते हैं या टेक्स्ट कर सकते हैं. विल हेल्प यू अंडरस्टैंड इट फर्दर एंड क्लियरली ताकि आप इसमें फ्रीली पार्टिसिपेट कर सके. याद रहे अगले घंटे जो बोर्डिंग कॉल है ये प्ले होगा तो आपको बस ध्यान से सुनना है टाइमिंग के लिए.
2: और पहले से अगर आप लिंक चाहते हैं तो BC आप लिखें और उसे 5599 पर भेज दें. न्यूजीलैंड में आप कहीं भी रहते हैं ऑकलैंड में हैमिल्टन में नेपिया में न्यू प्लिमथ साउथ आइलैंड में कहीं भी आप रहते हैं आप इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं.
3: हाँ ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आपको सिर्फ ऑकलैंड में रहना होगा. आउट ऑफ ऑकलैंड भी आप रहते हैं आप हमें सुनते हैं रोवर ऐप के जरिए तो भी आप इसमें पार्ट ले सकते हैं क्योंकि अगर आप विजेता होते हैं तो आपके पैसे आप तक जरूर पहुंचाए जाएंगे. सॉरी पैसे यानी कि स्पेंडिंग मनी और रिटेन एयर टिकट्स जिसके जरिए आप वनवातु जाकर घूम सकते हैं.
2: और वो भी एक नहीं दो दो रिटेन एयर टिकट्स हैं क्योंकि आप अकेले नहीं जाएंगे. सो मेक श्योर बीसी लिखकर 5599 पर भेजते हैं. चलो देखो अभी एक काम करते हैं पता लगाते हैं कि आप में से कितने लोग हैं जिनको ये पता चल चुका है जिन्होंने सुन लिया है कि हमने ये कहा कि अगले घंटे बोर्डिंग कॉल प्ले होगा. अगर आप ये अच्छी तरह से सुन लिया है तो बीसी लिखकर 5599 पर भेज

0: all, but they, you know, didn't pay attention to that. But nonetheless, ये video जो है viral हुआ है, जिसकी बात चलकर कहा गया है कि एक debate छिड़ गया है over passenger etiquette. Social media post जो है ये किया गया है, जहाँ पर ये भी claim किया गया है कि family को blacklist कर दिया गया by the airline. लेकिन अभी तक, जैसे कि मैंने कहा, कोई confirmed ये verified information इस मामले में सामने नहीं आई है कि क्या सच में इन्हें blacklist किया गया है या फिर ऐसे ही इन खबरों के साथ अब associate होकर अफवाहें उड़ रही है. So no confirmation on the blacklist part, but हाँ, ये video definitely viral हुआ है. The family had been seen sharing a hearty meal एक फ्लाइट के अंदर, और उसके बाद चलकर एक डिबेट से जरूर छिड़ा है, जहाँ पर काफी बात हो रही है, जैसे कि हमने कहा, अबाउट द पैसेंजर एटिक्वेट.
1: ओके, सो लेट्स सी क्या और डिटेल है. एक और जो ट्रेंडिंग खबर आ रही है इज नॉट अबाउट समथिंग बट अबाउट समवन, और ट्रेंड कर रहे हैं इस बार रोहित शर्मा.
0: क्यों
1: रोहित शर्मा ट्रेंड कर रहे हैं? क्योंकि वो आ रहे हैं अब छोटे पर्दे पर.
0: Oh really, the cricketer?
1: Cricketer, yes.
0: क्या करने वाले वो?
1: टीवी पर नजर आएंगे.
0: हाँ, पर कैसे नजर आएंगे? कुछ तो करेंगे तब तो नजर आएंगे ना.
1: सोनी पिक्चर्स ने अनाउंस किया है कुछ कि जो वर्ल्ड कप विनिंग स्किपर हैं, वो अपना स्मॉल स्क्रीन डेब्यू करने जा रहे हैं, फैमिली फुल हाउस विद रोहित शर्मा. और इसके बारे में क्या कुछ और डिटेल्स हैं, ये थोड़ी ही देर में हम .rover.nz पर आपके लिए अवेलेबल होगा.
0: राइट, सो यू कैन गो एंड चेक इट आउट, बट वी'ल ट्राई एंड शेयर द इंफॉर्मेशन विद यू हियर ऑन आवर शो, द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा एज वेल इन अ वाइल. 7 मिनट हो रहे हैं 8 बजकर, ट्यूजडे 1st ऑफ सितंबर की ये सुबह आप सभी के नाम करते हैं.

0: attention, please. We are now inviting all passengers booked on flight HUM 104.2 to the tropical paradise of Vanuatu with Solomon Airlines to begin boarding immediately. Please have your phone ready, your Rova app open, and your excitement switched on for inspection. Your boarding pass for this exclusive flight is easy. Listen out for the special HUM boarding call on air. That's your cue to open Rova app and enter Board Now to lock in your entry to win two return air tickets to Vanuatu flying with Solomon Airlines plus $1,000 spending money. Vacation.
1: HUM boarding call, thanks to Solomon Airlines, flying four times each week, non-stop, from Auckland to Vanuatu.
2: Let's go.
1: Visit flysolomons.com. T's and C's apply.
3: बूढ़ा हो गया हूँ माते घर ढूंढते ढूंढते
2: इनको तो अब तक घर मिल गया होगा
4: अब हमारा क्या होगा
5: घर ढूंढना है तो लोन लेने की टेंशन से बचना फालतू की बातों से बचना
2: तो क्या करें
6: लोग कहते हैं इधर उधर जाने से बचना कॉल करो 0800 रचना दैट्स 0800-722-462 फॉर फर्स्ट होम बायर्स इन्वेस्टर्स बिजनेस लोन कमर्शियल लोन और कंस्ट्रक्शन
7: डॉक्टर ने क्या बोला
8: बीपी और कोलेस्ट्रॉल दोनों बढ़ गए
7: गुड थिंग हम चेकअप के लिए गए वरना पता भी नहीं चलता
9: दैट कन्वर्सेशन इज हैपनिंग इन मोर टीवी होम्स देन यू थिंक हाय आई एम नितेश हीरा फ्रॉम अ शोर वन माय जॉब इजंट टू जस्ट सेल पॉलिसीज इट इज टू हेल्प यू अंडरस्टैंड योर ऑप्शंस एंड मेक श्योर योर फैमिली इज प्रोटेक्टेड
10: बुक योर फ्री इंश्योरेंस रिव्यू टुडे कॉल अ श्योर वन ऑन 0800-77-HEERA दैट्स HIRA और विजिट ashurevan.co.nz Northernville Advisory Limited Trading as Ashur One is a licensed financial advice provider
11: Auckland, it's time to sit back, relax and save big. The big sofa and recliner sale is on now at Lifestyle Furniture with up to 60% off. Stylish sofas, comfy lounge suites or the ultimate recliner. They've got something for every lifestyle. Recliner chairs start from just $399. Visit Lifestyle Furniture at Manukau, Mount Wellington or Westgate. Big style, big comfort, better prices. Hurry, up to 60% off on now.
12: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो बोली बस मेरा फोकस है
13: हाँ। अच्छा
12: बताओ तुम्हारा फोकस फोकस साडा कुछ नहीं
13: मिसेस सिंह
14: अरे पम्मी जी मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने
15: मॉडर्न क्लासिक शेकर स्टाइल किचन्स फोकस किचन्स यूनिट के 33 वॉन्सली रोड ओटाहू कॉल 0928130500 और विजिट focuskitchens.co.nz
16: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
17: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manco. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
18: The Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton.
0: Gentlemen.

0: airlines, flying four times each week, non-stop, from Auckland to Vanuatu. Visit flysolomons.com. What's your take?
1: The Breakfast Show with Vijay and Pooja आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं 18 मिनट हो रहे से हमारे हमारे स्टूडियोज में वैसे 8 बजकर आज ही ट्यूजडे द 1st of September I was going to say 18th of September हाँ ट्यूजडे 1st of September है आज और अब आपको याद दिला दे हमारा हम बोर्डिंग कॉल जो ये प्ले हो चुका है
2: Yes, you need to head to Rova and enter board now. लेकिन अभी वक्त है
1: चलिए अब आपके लिए आज का व्हाट्स इट एक टॉपिक हम लेकर आ रहे हैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल आई केम अक्रॉस एंड आई रेड द आर्टिकल अंडरस्टूड द होल कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट फिर मैंने सोचा आज यही टॉपिक करते हैं आप सबसे भी जानेंगे आपकी राय आपका क्या कहना है इसके बारे में अपेरेंटली दिस पर्टिकुलर आर्टिकल जो है इसका हेडलाइन कुछ ऐसा है डू यू हैव द राइट टू टेल योर पार्टनर हाउ यू थिंक दे शुड लुक
2: Did you have the
1: right to tell your partner how you think they should look?
2: Yeah, of course.
1: तो मैंने ये आर्टिकल पढ़ा और उसमें एक्सपर्ट्स जो है उन्होंने एक पूरा यू नो एक्सप्लेनेशन दिया है अबाउट दिस होल सिचुएशन और क्या आप ये कर सकते हैं या नहीं तो दे ऑल्सो से येस येस यू कैन एक्सप्रेस योर प्रेफरेंस स्पेशली अगर आप एक हेल्थी रिलेशनशिप जो है ये शेयर करते हैं अपने पार्टनर के साथ वे यू कैन टॉक ओपनली यू माइट से आई रियली लव योर हेयर लाइक दैट और हैव यू थॉट अबाउट वेयरिंग दिस इंस्टेड मतलब आप अगर उनको कुछ पहनने का सजेशन देते हैं तो बट देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन गिविंग एन ओपिनियन एंड कंट्रोलिंग योर पार्टनर वो समझना जरूरी है एंड इफ यू आर सेइंग नो टू योर सजेशन रिजल्ट्स इन एंगर बेसिकली अगर वो मना कर देते आपके पार्टनर बोल देते कि नहीं मुझे ये नहीं पहनना एंड आपका रिएक्शन गुस्से वाला होता है इन रिस्पॉन्स टू दैट तो ऑफकोर्स क्रिटिसिज्म पनिशमेंट इमोशनल प्रेशर कंट्रोलिंग बिहेवियर ये सारी चीजें जो है सही नहीं है
2: Exactly.
1: Because this is not something that you can do. Rather than simply the whole thing being about fashion or the way they look, aap usko totally different aspect mein lekar chale jaate hain. So, aaj humne socha, kyun na isi par aap se baat cheet kare. Well, I totally agree with the article ki agar aapke paas kuch suggestions hain, aap ek certain way se pasand karte hain, aapke partner jab dress up karte hain, unka hair style ek certain tarike ka ho, to aap wo agar bol sakte hain when you're sharing a healthy relationship, It's all well and good. लेकिन अगर आपने ये नोटिस किया कि आप जब अपने पार्टनर को कुछ चीज़ें बोलते हैं उनके लुक्स के बारे में और वो उनको शायद नहीं अच्छा लगता बिकॉज दे ऑल्सो हैव अ राइट टू एक्सप्रेस कि नहीं मुझे नहीं पसंद मैं जैसा हूँ वैसा हूँ लेट इट बी तो आई थिंक यू शुडंट से इट यू शुड जस्ट लेट द पर्सन बी जैसे वो है
2: आई थिंक यू शुड से इट बट लेट द पर्सन डिसाइड
1: या दैट्स व्हाट आई सेड ना
2: नहीं आपने कहा देन यू शुडंट से इट
1: नहीं अगर पहली बार एक बार आपने बोला एंड यू हैव एक्सपीरियंस्ड इट पहले कॉन्वर्सेशन में कि शायद फॉर एग्जांपल द वे दे हेयर लुक्स जैसे वी हैड दिस कॉन्वर्सेशन हम इस सिचुएशन से गुजरे हैं इफ यू रिमेम्बर वी वर टॉकिंग अबाउट द फैक्ट कि जहां पर मैंने आपको आपके बालों को रंगने के लिए बोला था एक बार लाइक पुट सम ब्लैक कलर इन योर हेयर एंड स्टफ लाइक दैट एंड यू वर लाइक कि मुझे नहीं करना ये आई वॉन्ट टू हैव माई ग्रेस आई डोंट वॉन्ट टू कलर माई हेयर
2: Yeah, I like my salt and pepper look.
1: salt and pepper look, yeah. Yeah, George Clooney.
2: I learned this word, yeah, recently.
1: So, आपने कहा कि मुझे नहीं करना. I like it this way. मुझे नहीं बाल रंगने अपने. And I was like, yeah, all good. अगर आपको नहीं पसंद है, you don't want to do it, it's fine. I prefer कि शायद अगर आप थोड़ा color touch up कर लेते कभी-कभी, it's also good. But whatever you're okay with, I was okay with it as well. एक बार suggestion दिया. You were not in agreement. We were not in agreement. So, it's your hair. It has to be your choice. So we left the conversation there and उसके बाद कभी हमने इस चीज के बारे में ऐसे बात नहीं की आपको करनी चाहिए या this and that. But anyways, तो आज का हमारा टॉपिक यही है Do you have the right to tell your partner how you think they should look? उनके पहनने का तरीका कपड़े वगैरह जो पहनते हैं वो उनके ड्रेसिंग सेंस में अगर कुछ आप चेंजेस करना करने के लिए सजेशंस देना चाहते हैं या फिर यू नो किस तरह से अपने आप को वो ग्रूम करते हैं क्या आपको लगता है कि आपको इसके बारे में बातें करनी चाहिए अपने पार्टनर से या नहीं गुड मॉर्निंग
3: हाउ आर यू गाइस
1: एकदम बढ़िया आप कैसे हो
3: मैं भी ठीक थैंक यू फॉर आस्किंग आई थिंक आप जो बोल रहे थे ना अबाउट वन पार्टनर टेलिंग द अदर पार्टनर देयर ओपिनियन आई थिंक एज लॉन्ग एज वन द रिलेशनशिप स्ट्रांग है कैसा है एंड इंटेंशन बिहाइंड सेइंग दैट. अगर यू आर कमिंग फ्रॉम अ गुड प्लेस, लाइक यू आर एक्सप्रेसिंग इट इन अ वे दैट यू वांट इट बेटर, लाइक इट्स नॉट ओनली अबाउट क्लोथ्स एंड अबाउट द हेयर, राइट? समटाइम्स यू कैन गेट इवन पर्सनल टू, आई थिंक यू हैव पुट ऑन अ लिटिल वेट और आई थिंक यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ. एज लॉन्ग एज द इंटेंशन इज गुड, वेर इन यू केयर फॉर द पर्सन, इट्स कमिंग फ्रॉम अ गुड प्लेस, that also reflects. But if you are doing it, you know, sometimes in our community, you take jabs at one another. Wo phir acha nahi. I think that causes irritation, friction in the relationship. And that is not where I feel you should draw a line. You know, okay, then you don't get too personal. But I think if it's coming from a good place where you care and you are trying to motivate them, push them in a certain direction, be their best version, then why not?
1: Okay. Thank you so much, ma'am. Aapke call ke liye naam kya hai, by the way, aapka?
3: अमृता.
1: अमृता, थैंक यू, यू हैव अ वंडरफुल डे.
3: यू टू, बाय
1: बाय.
2: तो अब आपके पास भी मौका है, लेट अस सी आपके पास क्या है कहने को. गुड मॉर्निंग.
4: गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू गाइस?
2: गुड थैंक यू मैम, आप कैसी हो?
4: बिल्कुल थैंक यू. आई थिंक आई अग्री विद विद द आर्टिकल, आई डेफिनेटली डू. मुझे लगता है कि अगर आप यू नो इतने कंफर्टेबल है एक दूसरे के लिए, तो आपको बोलना चाहिए, बताना चाहिए अपनी ओपिनियन. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन पर थोप दो. सो कंट्रोलिंग इज डेफिनेटली नॉट देयर. बट व्हाट आई हैव नोटिस, आई डोंट नो स्पेसिफिकली हम लोगों की कम्युनिटी में क्या होता है कि हम लोग एक दूसरे के बारे में दूसरों के सामने जाके बोलने लग पड़ते हैं. लाइक यू नो यू इन अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स और ग्रुप ऑफ फैमिली और एनीथिंग, सो इंस्टेड ऑफ डूइंग इट पर्सनली और प्राइवेटली इनसाइड, आप वो मजाक में चाहे बोल रहे हो या गुस्से में बोल रहे हो, बट ये कभी कभी ऐसा होता है कि वो बातें जो है किसी और के सामने निकल जाती हैं कि ओ यू पुट ऑन वेट, ओ आई टोल्ड हर दिस, ओ आई टोल्ड हिम दिस. तो आई थिंक वो जो है ना वो गलत हो जाता है. आपको अपने पार्टनर से जो भी कहना है वो आपका हक है, आप कहिए, बताइए. उसके बाद वो मानते हैं या नहीं मानते हैं वो बिटवीन यू टू एंड उनके ऊपर, बट दिस इज समथिंग दैट शुड बी डन प्राइवेटली. एंड द अदर थिंग दैट आई रियली फील इज लाइक यू नो ड्रेसिंग अप एंड फीलिंग गुड एंड लुकिंग गुड इज वेरी बिग पार्ट ऑफ योर ओन पर्सनैलिटी. तो हम जब किसी से शादी करते हैं हम इसलिए ये नहीं करते हैं कि हम अपने आप को ही खो दें उसमें. यू नो यू शुड ऑलवेज कीप योर आइडेंटिटी टू योर सेल्फ. तो ओपिनियन लेना अच्छी बात है, लेकिन यू स्टिल फील गुड इन योर ओन स्किन, हाउ यू फील, यू नो आप कैसे ड्रेसअप हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, वो आपको सबसे पहले अच्छा लगना चाहिए अदर देन आपके पार्टनर को. बिकॉज ऑब्वियसली अगर वो आपका पार्टनर है, आपके साथ है, तो आपको उस खूबियों के साथ या अनखूबियों के साथ उसने एक्सेप्ट किया है. तो आई थिंक यू नीड टू बी मोर कम्फर्टेबल विद वॉट यू डू रादर देन कि उसने आपको क्या बोला और आपको कैसे करना है. बट शेयरिंग ओपिनियंस, यस एब्सोल्युटली, यू नो यू क्रिएट दैट बॉन्ड, यू क्रिएट दैट कंफर्ट स्पेस वे यू कैन टॉक टू ईच अदर, बट डू इट प्राइवेटली. बट अदरवाइज आई थिंक इट्स गुड हेल्थी वे ऑफ जस्ट कीपिंग द कम्युनिकेशन गोइंग, यू नो, अ बिट ऑफ अ क्या कहते हैं उसको, स्पार्क गोइंग. दैट ऑल्सो मेक्स द अदर पर्सन फील, oh, she's still interested in me, she's telling me, oh my god, you know, so that spark also ignites if you say things like this. So it's a healthy communication as long as you maintain the boundaries and you don't do it in front of others. That's my
1: great point. Very great. Nicely said, na?
2: Yeah, thank you so much. Thank you. You have a wonderful day.
4: Thank you.
2: Aur aapke paas bhi mauka hai to share what you feel.
1: Good morning, Parvinder.
5: गुड मॉर्निंग, कैसे हो?
1: बढ़िया जी, आप कैसी हो?
5: मैं भी अच्छी हूँ
1: जी.
5: ये ऐसे बताना पार्टनर को कि कैसा लग रहा है या बाल ये वो, जैसे मेरे हस्बैंड का तो पर्टिकुलर है, वो बाल और उसके दाढ़ी को लेके बहुत ओवर पोजेसिव है. हेयर कट कराना उसका जो है, जैसे अगर कोई भी पार्टी या कोई इवेंट होएगा, चाहे वो मेरे को इनवाइट किया किसी ने, मेरा कोई फ्रेंड हो ना, मैं चाहे ऐसे मुंह धोके भी चली जाऊं, पर वो मुझे पहले बोल देगा आज मेरी हेयर कट और दाढ़ी की अपॉइंटमेंट है क्योंकि हमने जाना है.
1: अपॉइंटमेंट है
5: अपॉइंटमेंट है उसका. तो मतलब दाढ़ी और बालों के बारे में तो कुछ नहीं बोल सकते, बट बाकी कपड़ों वपड़ों में मैं ही लेती हूँ ज्यादातर ना कपड़े हर जाप के. और कभी जब हमारा ऐसे मस्ती मजाक वाला मूड होता है, तो जैसे कभी अगर मैं घर में कम्प्लीटली डिफरेंट लगती हूँ,
2: अच्छा
5: मतलब जैसी मैं बाहर से आती हूँ वैसी मैं घर पे नहीं लगती तो वो मुझे बोलता है ऐसे मजाक में ना कितने लल्लू लगते हो आप घर पे
1: But you guys share that relationship ना कि आप एक दूसरे को ऐसे बोल सको
5: हाँ क्योंकि मैं बात बता रही है कि I know someone उनका हस्बैंड वाइफ है इंडिया में उनमें I don't know कितना बॉन्ड है कितना बॉन्ड नहीं है पर वाइफ ने ऐसे बोल दिया था कि ये बाल मुझे अच्छे नहीं लगते फौजी कट बिल्कुल छोटे छोटे ना तो that person got offended फैमिली में एक फैमिली की बात है ऐसे कोई वो नहीं है कि दूर की बात और किसी के सामने से बोल दिया फैमिली की बात थी तो उन्होंने ऐसे बोल दिया तो पर्सन गॉट ऑफेंडेड और कुछ बोला नहीं उस बंदे ने बट दो तीन घंटे तक वो जैसे होते हैं ना कुछ लोग कि मैं तो गुस्सा हूँ मुझे खुद आगे पूछो कि क्या हुआ है वो ऐसे वो बात नहीं कर रहा है रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है ना वाइफ बात कर रही है तो वो बस ऐसे कर रहा है तो वाइफ ने पूछा क्या हो गया हस्बैंड ने बोला मेरे तो बाल गंजे हैं ना जा जाके कोई और ढूंढ ले आई वाज शॉक्ड कि अरे बाप रे इतना बड़ा स्टेटमेंट कि जा कोई और ढूंढ ले मुझे बहुत अजीब लगा था मैंने फिर मेरे हस्बैंड को देखा मैं कहा शुक्र है तू ऐसा नहीं है
1: चलो यार थैंक यू परविंदर थैंक यू सो मच आपके कॉल के लिए एंड थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट एंड योर व्यूज टू थैंक यू टेक केयर बाय
5: बाय बाय
1: आज बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई जितने भी कॉलर्स थे सभी लेडीज ने ही कॉल किया सभी लेडीज ने व्यू शेयर किए आई मीन नॉट दैट वी डोंट अप्रिशिएट द लेडीज कॉलिंग वी डू अप्रिशिएट एंड बिकॉज आपने व्यूज शेयर किए आपने कॉन्वर्सेशन शुरू किया आपने कुछ बातें जो बताई बट इट वुड हैव बीन नाइस टू हियर व्हाट द मैन हैव टू से एज वेल ना
2: आई एम अ मैन आई सेड व्हाट आई
1: हैव टू से आई नो आप तो बोलेंगे ही बिकॉज यू हैव आई मीन यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू से इट आप यहीं पर है आप बोल सकते पर बाकियों के पास भी मौका है बट उन्होंने कॉल करके जैसे नहीं शेयर किया ना व्यूज वो मैं बोल रही हूँ तो आप टेक्स्ट कर सकते हैं अगर आप कॉल नहीं कर पाए ड्यू टू एनी रीजन्स आप टेक्स्ट कर सकते हैं बता सकते हैं ना व्हाट यू हैव टू से
2: 5599 पर क्या आप अपनी पत्नी को सजेशन देते हैं कि उन्हें कैसा दिखना चाहिए क्या पहनना चाहिए बाल कैसे बनाने चाहिए चेहरे पर जो मेकअप लगाते हैं वो कैसा होना चाहिए कभी आपने अपनी पत्नी को ऐसा इस इन चीज़ों से रिलेटेड कोई सजेशन दिया है जूते कैसे पहनने चाहिए विच वंस लुक गुड ऑन देम और अगर सजेशन दिया है तो रिएक्शन कैसा था दैट्स द इंटरेस्टिंग पार्ट ना
1: राइट वो आप हमें बता सकते हैं हमारे पास टेक्स्ट करते हुए 5599 पर मनदीप का कॉल आ रहा है देखते हैं इनको क्या कहना है गुड मॉर्निंग मनदीप
6: गुड मॉर्निंग जी नाम आपने पहले अनाउंस कर दिया तो मैं फंस गया आपको
1: अच्छा तो आप थोड़ा आपको क्या बोलते हैं फिल्टर करके बोलना पड़ेगा
6: हाँ जी बिल्कुल आई थिंक विजय एग्री करेंगे जब भी मेल साइड को अगर कॉम्प्लीमेंट या बताना होता है तो यू हैव टू फिल्टर इट डाउन कि अगेन अपनी वाइफ को मैं हमेशा कॉम्प्लीमेंट ही करता हूँ कभी कुछ खराब हो तो मुझे दिखता ही नहीं
2: चलो मनदीप थैंक यू सो मच ब्रदर यू हैव अ गुड वन
6: थैंक यू
2: थैंक्स बाय आप चाहे तो आप 5599 पर टेक्स्ट कर सकते हैं
7: हॉलीवुड्स मोस्ट वांटेड गुंडी खड़ जाओ या सीधा अंदर आओ मैं लाऊं अपना ए गेम Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Chup ho jao, papi ho. Chup ho jao.
2: Accurate traffic.
3: Milwaukee Power Rush is here.
4: Sunny patches, lots of cloud today, a high of 16. Into the city, Northwestern Motorway, 33 minutes, Massey to town. A fine to the causeway, but heavy from there to St. Luke's, then slow to the city. Southern 47 in from Mutoko, slow from Takanini, heavy Otahuhu to the city. Southwestern quite heavy northbound through Whitty. Northern 32 minutes in from Constellation, heavy from Greville to the bridge and at Silverdale.
3: Buy a Milwaukee Power Pack and get a bonus battery between 2nd and 9th September. T's and C's apply.
5: Craving ho rahi hai. थेक और क्रीमी दही की जैसे घर पर मिलती थी तो मिलवाते हैं आपको कशिश नेचुरल योगर्ट से जिसका हर स्पून है एकदम डिलाइटफुल 100% वेजिटेरियन जेलेटिन एंड ग्लूटेन फ्री परफेक्ट है स्मूदीज बनाने के लिए टैंगी टिप्स बनाने के लिए पनीर या चिकन मैरिनेट करने के लिए या बस सीधा टप से खाने के लिए क्योंकि ये है नेचुरली डिलीशियस ऑलवेज देसी अवेलेबल नाउ एट योर फेवरेट इंडियन सुपरमार्केट अक्रॉस न्यूजीलैंड ब्रिंग होम द टेस्ट ऑफ ट्रेडिशन कशिश नेचुरल योगर्ट
6: डॉक्टर ने क्या बोला
7: बीपी और कोलेस्ट्रॉल दोनों बढ़ गए
6: गुड थिंग हम चेकअप के लिए गए वरना पता भी नहीं चलता
8: दैट कन्वर्सेशन इज हैपनिंग इन मोर टीवी होम्स देन यू थिंक हाय आई एम नितेश हीरा फ्रॉम शोर वन माय जॉब इजंट टू जस्ट सेल पॉलिसीज इट इज टू हेल्प यू अंडरस्टैंड योर ऑप्शंस एंड मेक श्योर योर फैमिली इज प्रोटेक्टेड
9: बुक योर फ्री इंश्योरेंस रिव्यू टुडे कॉल अश्योर वन ऑन 0800-77-HEERA दैट्स HIRA और विजिट ashure1.co.nz नॉर्थ इंडियन एडवाइजरी लिमिटेड ट्रेडिंग एज अश्योर वन इज अ लाइसेंस्ड फाइनेंशियल एडवाइस प्रोवाइडर
10: हाँ कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर फर्स्ट होम तूने तो कहा था कि दो दो बैंक ने लोन देने से और एक फेमस ब्रोकर ने तो केस लेने से ही मना कर दिया था फिर ये घर कैसे
11: अरे ये तो लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला का कमाल है एक रियल एस्टेट वाले ने उन्हें सजेस्ट किया मैंने उन्हें फेसबुक पर ढूंढा और डायरेक्टली कॉन्टेक्ट किया
10: नेहा अब तो मुझे भी उनसे मिलवाओ
12: फर्स्ट होम बाया बनना है या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेनी है तो आज ही कॉल करें लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला को ऑन 0800 लॉजिक गुरु
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
2: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras, Monaco. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
0: The Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton.
13: सो रश आवा आपके लिए ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा हम लेकर आ रहे थे और इधर हमने आपसे कहा कि आप हमारे पास अपने मैसेजेस सेंड कर सकते हैं आज के बाद से टेक टॉपिक के लिए जो हमने आपसे पूछा सो कुछ मैसेजेस आए हैं वैसे अमित ने गुड मॉर्निंग मैसेज अपना जो है ये लिखकर भेजा है उन्होंने कहा गुड मॉर्निंग विजय भाई अमित फ्रॉम पापा टोए टोए
14: थैंक यू सो मच अमित आई होप यू हैव अ वंडरफुल डे
13: और इसके अलावा आपको बता दें कि आज एक और एक मैसेज आया है इन्होंने कहा है अभी तक सब लेडीज ने फोन किया सो व्हेनेवर आई ट्राई टू ड्रॉ अ लाइन टू माय वाइफ स्पेशली मॉर्निंग और इवनिंग्स बट हर बार लाइन तो सर्कल हो जाता है आई कुडंट अंडरस्टैंड दिस मैसेज आई वांट टू लाए मुझे नहीं समझ में आया बट मैंने दो तीन बार पढ़ा टू अंडरस्टैंड इट
14: करते हैं बट बात खत्म नहीं होती
13: प्रोबेबली वो भी हो सकता है या अगर आप हमें थोड़ा एक्सप्लेन कर सके एक और एक मैसेज है उन्होंने कहा है आई पर्सनली हैवन्ट सेड एनीथिंग अबाउट हर वेज ऑफ ड्रेसिंग और मेकअप बट शी इज द वन हु डिक्टेट्स मी व्हाट टू वेयर एंड व्हेन गोइंग आउट इवन कोट मीटिंग इट ओके आई डिडंट अंडरस्टैंड दैट
14: कोट मैचिंग इट
13: ओह कोट ओके सॉरी आई डोंट हैव मच ऑप्शन ऑन माय ओन किसी और का
14: मैसेज आया है माय गर्लफ्रेंड गॉट एंग्री आई टोल्ड हर शी डजंट लुक गुड विद द मेकअप ऑन
13: अच्छा इट डिपेंड्स किस तरह से आप बोलते हैं ना उस पर भी डिपेंड करता है बट थैंक यू आपके मैसेजेस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया इधर आपने हमारे साथ आज के व्हाट्स इट एक टॉपिक में पार्ट लिया थैंक यू सो मच थोड़ी देर बाद आपके लिए हम लेकर आएंगे आज का हमारा फादर्स डे कॉम्पिटिशन डैड्स रिवर्स ग्रिल इफ यू आर अ डैड बी रेडी टू गिव अस अ कॉल व्हेन वी ओपन द लाइंस 0800 हम 0800-004-866 पर कॉल करते हुए पार्ट लेने के लिए कंपटीशन में ताकि ड्रो में शामिल होकर आप $500 कैश जो है ये जीत सके
15: Let's go.
0: Straight from the heart. Unlock your property's true sale value with NZPMI, your

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: Speed, sirf rovapar.
1: Accurate traffic.
2: Auckland Home Show, 10 to 13 September.
3: Fine with a lot of cloud today, got a high of 16 degrees into the city. Northwestern motorway starting to ease, 28 minutes messy to town. Slow from the causeway, heavy through Point Chev. Southern 45 Manukau to town, slow from Manurewa, heavy Otahuhu to the city. Southwestern heavy northbound up to Puanui. Northern half an hour Constellation to town, slow at Silverdale, heavy on and off Greville to the bridge.
2: Auckland Home Show and Garden Showcase, 10 to 13 September at Auckland Showgrounds.
4: Shine Dental has a fresh new look with more space and the same caring team. New patients ke liye ultrasonic scale and polish from $99 or one tooth acrylic denture sirf $599 mein. Plus free dental examinations for new and existing patients. Free wins and ACC codes. Or under 18s ke liye free treatment. Visit Shine Dental at 574 Great South Road, Manukau. Book today on 09277644. T's and C's apply.
5: नया हाइब्रिड ढूंढ रहे हो तो हैवेल ही लो राइट नाउ एंड्रू सिम्स मेलुकाउ में ब्रांड न्यू हैवेल हाइव 6 हाइब्रिड ड्राइव होए सिर्फ 40,990 से प्लस ऑन रोड कॉस्ट नो डिपॉजिट फाइनेंस लो अपनी ट्रेड इन के लिए जबरदस्त प्राइस पाओ और डिस्कवर करो कि क्यों ज्यादा क्यूज हैवेल चूज कर रहे हैं स्टाइलिश स्पेशियस और टेक्नोलॉजी से भरा हुआ वो भी हाइब्रिड एफिशिएंसी के साथ आज ही विजिट करो एंड्रू सिम्स JWM मेलुकाउ हैवेल हाइब्रिड मोर फॉर योर मनी टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई
6: मिर्जापुर की गद्दी पे जो बैठेगा वही होगा सबसे बड़ा बाहुबली
7: भोकाल के लिए तैयार हो जाइए बड़े पर्दे पर मिर्जापुर द मूवी स्टारिंग पंकज त्रिपाठी अली फजल दिवेंदु एंड जितेंद्र कुमार
8: हमें एम्पायर चलाना नहीं है गुड्डू भैया बनाना है
7: मिर्जापुर द मूवी रिलीजिंग इन सिनेमास ऑन 4th सितंबर
9: खतरा चाहे जितना भी छोटा हो उसे जीवित नहीं छोड़ सकते
7: डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर फोरम फिल्म्स रेटिंग TBC
10: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
11: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras, Manukau. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
12: The Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton. Throwback. Brought to you by 0800 Rachna. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
13: फिलहाल 9 मिनट बाकी है हमारे स्टूडियोज में 9 बजने में और आपके लिए जबकि हमने कहा था आज का हमारा फादर्स डे कॉम्पिटिशन ये हम लेकर आएंगे जिसमें आप जरूर पार्टिसिपेट कर सकते हैं तो डेड्स रिवर्स ग्रिल के लिए आप तैयार हो जाइएगा 0800-004866 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं अगर अभी तक आपने हमारे इस कॉम्पिटिशन में पार्ट नहीं लिया है देन दिस इज द राइट टाइम टू डू सो और वंस आप हमारे एक सिंपल से क्वेश्चन का आंसर देंगे और ये क्वेश्चन कुड बी अबाउट द मॉडर्न स्लैंग पॉप कल्चर या फिर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड और अगर आपने सही सही जवाब दे दिया तो आपका नाम हम ड्रो में शामिल कर देंगे जैसे कल हमने पूछा था कि माओरी भाषा में फानाऊ शब्द जो है इसका क्या मतलब होता है और हमारे कॉलर ने सही सही आंसर भी दिया फिर उनका नाम भी ड्रो में गया और अब ये आपको बता दें कि कुछ ही दिन आपके पास बाकी है इसमें पार्ट लेने के लिए आज ट्यूजडे है टुमारो इज़ वेंसडे एंड देन थर्सडे So, just 3 more days. आज का दिन कल और परसों का दिन आप पार्ट ले सकते हैं बिकॉज फ्राइडे को ड्रॉ होगा और ड्रॉ में पता चलेगा कि किसने ये $500 जीते हैं
14: तो चले देखिए कौन है आज हमारे साथ वेरी गुड मॉर्निंग
15: आई मैं तो कल वाला पुनीत ही हूँ मैं एलिजिबल हूँ दोबारा नहीं हूँ एलिजिबल
14: नाम तो ऑलरेडी आपका ड्रो में आ चुका है
15: चलो चलो ठीक है फिर मैं हट जाता हूँ किसी और को मौका मिल जाएगा
13: चलो थैंक यू पुनीत एंजॉय योर डे
15: मेरा नंबर है ना आपके पास कैसे अगर मैं जीत गया तो मिलेगा कैसे मुझे
13: 6504 लास्ट फोर डिजिट्स है ना
15: बहुत अच्छी बात है लिख लो सेव कर लो जितवा दो
13: यही बताने के लिए कॉल करते लगता है थैंक यू पुनीत एंजॉय योर डे बाय गुड मॉर्निंग
14: कैसे हैं भाई
16: आई एम गुड हाउ आर यू
14: I'm good as well. क्या नाम है आपका
16: संपत
14: संपत
16: Yeah.
14: Okay, संपत कितने बच्चे हैं आपके
16: One. I'm a new dad.
14: Oh, you're a new dad.
13: Oh, congratulations.
16: Oh, thank you.
14: How's the experience?
16: I can't say.
13: मतलब इमोशनल तरीके से, आई कांट से यार.
14: ओके ओके,
16: फिजिकल एंड इमोशनल एज़ वेल, बोथ
13: बोथ.
14: कितने कितने दिन का हुआ है आपका बच्चा या बच्ची?
16: इट्स लाइक 13 वीक्स.
13: 13 वीक्स, ओह माय गॉड.
14: ओके चलो, तो आज सवाल भी यार मैंने जो
13: यार आप कुछ सिंपल ही पूछना.
14: अच्छा, मिलेनियल्स वो होते हैं जिनका जन्म 1981 से 1996 के बीच हुआ था. नो यार, इन 30 टू 45 ईयर ओल्ड्स. आप ये बताओ, जेन ज़ीज जो है उनका जन्म कब से कब तक के बीच होना चाहिए? अनफॉर्चुनेटली हमें आपका नाम ड्रो में शामिल करना पड़ेगा. इट वॉज द करेक्ट आंसर.
13: So it's 97 to 2012.
14: Yeah.
13: Oh, interesting. Yeah.
14: मुझसे कोई पूछता मैं तो नहीं बता पाता.
13: मैं भी नहीं बता पाती यार संपत. But thank you for calling. Thank you for taking part. आपका नाम हम ड्रो में शामिल करें. Wish you all the best. $500 अगर आप जीत गए, you will be contacted. But right now, once again, many many congratulations on becoming a new dad and for taking part too.
16: Thank you.
13: Thank you. Bye. तो याद रहे, आप भी कंपटीशन में हिस्सा ले सकते हैं. फादर्स डे कंपटीशन जारी है. फाइनल फ्यू डेज बिफोर द ड्रॉ हैपेंस ऑन फ्राइडे.

0: accurate traffic.
1: Trust the experts at Alloy Wheel Repair.
2: Lots of clouds, still a bit of sun today, a high of 16 degrees. Easing nicely on most motorways, a little bit heavy on the southern, 42 minutes Manukau to town. Slow from Manukau, but heavy all the way from Otahuhu. And southwestern, heavy northbound from the southern up to Puanui. Northwestern, 26 minutes in from Massey. Fine to Pātiki, heavy there to Point Chev and slow to Grey Lynn. Northern, 26 in from Constellation, heavy there and slow to the bridge.
1: Curbed your wheel? Restore it to factory finish today. Search Alloy Wheel Repair.
3: Hey Neha, congratulations on your first home. तूने तो कहा था कि दो-दो banks ने loan देने से और एक famous broker ने तो case लेने से ही मना कर दिया था। ये घर कैसे?
4: अरे ये तो लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला का कमाल है। एक रियल एस्टेट वाले ने उन्हें सजेस्ट किया। मैंने उन्हें फेसबुक पर ढूंढा और डायरेक्टली कांटेक्ट किया।
3: नेहा, अब तो मुझे भी उनसे मिलवाओ।
5: फर्स्ट होम बाया बनना है या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेनी है तो आज ही कॉल करें लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला को ऑन 0800 लॉजिक गुरु।
6: Auckland, it's time to sit back, relax and save big. The big sofa and recliner sale is on now at Lifestyle Furniture with up to 60% off. Stylish sofas, comfy lounge suites or the ultimate recliner. They've got something for every lifestyle. Recliner chairs start from just $399. Visit Lifestyle Furniture at Manukau, Mount Wellington or Westgate. Big style, big comfort, better prices. Hurry, up to 60% off on now.
7: Time check. Hum News, brought to you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
8: Morning, I'm Grace Cocker with the latest at 9. The AA is unhappy with the government's moves on fuel excise tax. It has been postponed until 2028 and will go up 5 cents instead of 12. Spokesperson Terry Collins says road repairs still need to be paid for somehow during this time.
9: All we've really done is kick a problem down the road, so it'll be a bigger problem. It just puts at risk the policies around and the certainty around funding our roading network.
8: Around 10,000 workers from across the public sector are preparing to walk off the job. The PSA union's Dwayne Leo says next week's strike should send a clear message.
10: This should be a real wake-up call for them. Coming into an election year, this is the way that they're treating their workforce, and it's indicative of wider issues across many public service agencies.
8: The iconic Waiwera Hot Pools has been granted resource consent by Auckland Council to undergo a much-needed facelift. Construction is planned for the thermal springs for early next year with an anticipated opening of mid-2028. The $58 million upgrade includes 29 pools spanning a range of temperatures, plus saunas, cold plunge, a mist walk and bathing trails. International financial advisory firm BDO found the development has the potential to attract more than 310,000 visitors annually. In sport, Springsboks coach Razzie Erasmus insists there is no bad blood between him and Dave Rennie. The All Blacks coach suggested South Africa were using illegal scrum tactics in the second test.
11: And I'm friends with him, but I understand what he's trying to do, and as long as that doesn't succeed.
8: Rugby with All Blacks Travel and Hospitality.com. Exclusive Bledisloe Cup packages selling now. And former Black Caps coach Mike Hessam will take charge of the Pakistan cricket team for next week's third test against host England.
7: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill. The beat of Bollywood.
12: World's best. Hamari good brands bhi hai.
7: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
13: सुपर सिटी ऑकलैंड में फिलहाल टेम्परेचर है 14.1 डिग्रीज, हाई 15 एक्सपेक्टेड है बाद में चलकर। ओवरनाइट टेम्परेचर 12 डिग्रीज तक आज रहेगा। मौसम के लिए कहा गया है क्लाउडी पीरियड्स रहेंगे विद आइसोलेटेड शावर्स, सनसेट 6:01 PM पर।
7: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
14: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras, Manukau. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
7: What's going on? Kya bakte ho?
15: Are kehna kya chahte ho?
16: आज की कहानी जो है ये बड़ी इंटरेस्टिंग है जब आप सुनेंगे अच्छी तरह से इसके बारे में। और ये जो कहानी है इसकी रिपोर्ट जो है ये आई थी जब मैंने पढ़ा हिंदुस्तान टाइम्स पर और कई अन्य जगहों पर ये रिपोर्ट आई थी। और वहाँ पर क्या हुआ है कि एक एप्लीकेशन जो है ये डाला गया था रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट के लिए इन बिहार। और बिहार में ये जो एप्लीकेशन है एक सिमिलर केस जो है ये आया था पोल बाउंड बिहार में, जहां पर डोगेश बाबू जो है इन्होंने सबमिट किया था रेसिडेंशियल, सबमिटेड द फॉर्म फॉर हिज रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, और इनके पापा का नाम था डोगेश के पापा, मम्मी का नाम था डोगेश की मम्मी.
13: ओके.
16: बिहार के नवादा डिस्ट्रिक्ट में ये स्टोरी सामने आई थी 29 जुलाई को, और अब इस पर इन्वेस्टिगेशन जो है ये चल रहा है, क्योंकि डोगेश बाबू जो है एक डॉग है.
13: मुझे ऐसे नाम से ही लग गया था जिस तरह से आप बोल रहे थे डोगेश.
16: हाँ. जब मैंने पूरी कहानी पढ़ी तब जाकर पता चला कि ये डोगेश नहीं डोगेश है.
13: और आपने डोगेश अभी बोला, दैट्स व्हाई आई कुड फिगर इट आउट, कि हो सकता है कि ये सिचुएशन हो. बट इंटरेस्टिंग ना, कैसे कैसे लोग हैं यार इस दुनिया में. 5 मिनट हो रहे हैं 9 बजकर इस समय हमारे स्टूडियोज में, आपके लिए लिख रहा है व्हाट्स गोइंग ऑन. बिफोर वी मूव ऑन, आपको याद दिला दे, it's normal to feel low sometimes, just like the weather changes. Pay attention to your feelings. Reach in and check how you're doing. Reach out and talk.

0: What's going on?
1: What's up?
2: What's up, Auckland?
3: चलिए व्हाट्सअप ऑकलैंड में आज आपके लिए जबकि हम लेकर आ रहे हैं कम्युनिटी न्यूज, एज इन हमारे आसपास हमारी कम्युनिटी में क्या कुछ हो रहा है। सबसे पहले ही आपको याद दिला रहे हैं कि कृष्ण जन्माष्टमी का जो पर्व है ये जारी है, बहुत से जगह पर मनाया जा रहा है इसी फ्राइडे तक। तो दिव्य शक्ति चैरिटेबल ट्रस्ट इनकी ओर से कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव में आप शामिल हो सकते हैं इसी फ्राइडे 4 सितंबर तक एट द केव 5x57 कैवेंडिश ड्राइव मैनिकाओ राइट ऑपोजिट वे हाउस, यहाँ पर हर रात 7:30 PM से।
4: रामकृष्ण मंदिर 25 मैनिकाओ में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व इसी शुक्रवार तक मनाया जाएगा। कथा रात 7:30 बजे शुरू होती है।
3: न्यूजीलैंड संगम की ओर से कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव है ये 4 सितंबर तक यानी इसी फ्राइडे तक मनाया जाएगा। डेकोर ऑफ एलिगेंस 16 लेमी ड्राइव मैनिकाओ में हर रोज 7:30 PM से।
4: श्री राम मंदिर पर 11 ब्रिक स्ट्रीट हेंडरसन में भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व जो है ये मनाया जा रहा है।
3: आउटियरोवा सनातन संगम संस्था की ओर से भी कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है इसी फ्राइडे 4 सितंबर तक 7 PM से। आप हर रोज इसमें शामिल हो सकते हैं वुमेन केयर ट्रस्ट बिल्डिंग 2 Sutton Crescent पापाटोईटोई पहुंचकर।
4: श्री सनातन धर्म ज्योति रामायण भजन भाग मंडली द्वारा पर्व श्री कृष्ण जन्माष्टमी का मनाया जा रहा है वैदिक सेंटर 32 ग्लेसगो एफ पापाटोईटोई में।
3: श्री हनुमान मंदिर नोट शो में कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव जो है ये मनाया जा रहा है 4 सितंबर तक और आप इसमें जरूर भाग ले सकते हैं। वैसे फ्राइडे को यानी अंतिम दिवस जो कृष्ण जन्म उत्सव है ये रात 12 बजे से मनाया जाएगा।
4: माँ दुर्गा मंदिर 4x3 ऑनस्लो एफ पापाटोईटोई में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है। रात 7 से 8:30 बजे तक कथा होती है। शुक्रवार को रात 8:30 से मध्य रात्रि तक श्री कृष्ण जन्म उत्सव मनाया जाएगा।
3: फिलहाल 14 मिनट हो रहे हैं 9 बजकर, याद दिला रहे हैं आपको भी आपके आसपास आपकी कम्युनिटी में भी कुछ इवेंट्स हो रहे हैं और आप चाहते हैं कि हम इनकी जानकारियां अन्य लोगों तक पहुंचाएं तो ईमेल्स अपने विद द डिटेल्स ऑफ द इवेंट आप हमारे पास सेंड कर सकते हैं buzz@humfm.com पर buzz@humfm.com पर।
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
5: Hey, देखो आ गए।
6: अब तक डैड आपकी क्लास लेते थे लेकिन अब बारी है रिवर्स ग्रिल की।
7: इस फादर्स डे हम पर डैड से होंगे मॉडर्न स्लैंग, पॉप कल्चर और टेक के सवाल।
6: हर सही जवाब को मिलेगी ड्रॉ में एंट्री और एक लकी डैड जीतेंगे $500 कैश।
7: साथ में सोशल मीडिया पर पार्ट लीजिए डैड्स AI अपग्रेड में और जीतिए $300। डैड को रेडी करो, खुश करो।
6: फादर्स डे ऑन हम ब्रॉट टू यू बाय आई विलेज एट विक्टोरिया इंडियन किचन एंड बार PFSL प्रोवाइड the best home loan advice for the last 20 years. Amma's food, 100% authentic and pure as mother's love. And Indelible Homes, your building experts known for subdivisions.
8: सुनो, बिल्स बढ़ते जा रहे हैं और महंगाई भी।
9: हाँ, मॉर्गेज भरना भी मुश्किल हो रहा है। सोच रहा हूँ घर बेच के छोटा घर ले लें।
8: घर बेचने से पहले NZPMI की पॉल से बात कीजिए। मेरे दोस्त ने भी की थी, अपनी जमीन पर नया घर और 2 और घर बनवाए, अब रेंट भी आ रहा है।
9: पर डेवलपमेंट के पैसे
8: आपको नहीं लगाने, NZPMI सब संभाल लेगा। NZPMI योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट। फ्री साइट असेसमेंट के लिए विजिट nzpmi.co.nz या कॉल 0800-4NZPMI।
10: Bathroom moisture from shower steam. It's a problem in most homes. So eliminate steam with a Shower Dome shower top. With Shower Dome, you get a warmer, drier bathroom and a lifetime guarantee. That'll give you the warm fuzzies. Showerdome.co.nz.
11: कभी कभी लो फील करना नॉर्मल है, बिल्कुल मौसम की तरह। कभी धूप, कभी बादल। अपनी फीलिंग्स पे ध्यान दीजिए। Reach in and check how you're doing. Reach out और किसी trusted professional से बात कीजिए। Support is available at Asian Family Services. Call Asian Helpline on 0800-862-342. That's 0800-862-342 for free and confidential mental health support.
12: At Bunnings, we've got gifts built for Dad, like the Jack Garden Upwall System, only $85.95. Ryobi OnePlus 18-volt pruning saw, tool only, just $149. That's Father's Day sorted at Bunnings.
13: Bunnings Warehouse.
12: Lowest prices are just the beginning.
14: बूढ़ा
2: क्या हो गया हूँ माते, घर ढूंढते ढूंढते।
13: इनको तो अब तक घर मिल गया होगा,
14: अब हमारा क्या होगा?
15: घर ढूंढना है तो लोन लेने की टेंशन से बचना, फालतू की बातों से बचना,
13: तो क्या करें?
16: लोग कहते हैं इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 0800 रचना, दैट्स 0800-722-462 फॉर फर्स्ट होम बायर्स, इन्वेस्टर्स, बिजनेस लोन, कमर्शियल लोन और कंस्ट्रक्शन।

0: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras, Monaco. English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
2: 18 minutes after 9 on Hum Playing Bollywood's Biggest Hits. आपके लिए The Breakfast Show with Vijay and Pooja हम लेकर आ रहे हैं एक बहुत ही interesting podcast episode जो ये release हुआ है Unfiltered with Sandy and Rusbe के साथ जो आप Rova पर या Spotify पर तो सुनी सकते हैं और अगर आपको इसका link चाहिए तो आप drive लिखकर 5599% कर सकते हैं 100 years of resilience, migration and identity कैसे यहाँ modern New Zealand में पंजाबी community जो है ये involved है in shaping the fabric of this modern New Zealand over the last century. ये पूरे का पूरा episode इसके बारे में है, जहाँ पर in this latest episode, Harjot Singh जो कि एक presenter and researcher है, और Gagan Sandhu जो कि director है, he's but basically these two people are the creators behind the groundbreaking documentary Punjab to Aotearoa, और इन्होंने कुछ untold stories जो है ये शेयर की है, stories of courage, sacrifice and belonging. From generations of Punjabis, जिन्होंने अपने सपने across the ocean carry किए to rebuild their life in New Zealand from scratch. तो अगर आपको ये पूरी की पूरी कहानी जाननी है, समझनी है, और एक particular community का जो contribution रहा है towards this beautiful country we all call home, तो आप definitely ये episode of Unfiltered सुनिएगा. और जैसे कि मैंने कहा, पूरे के पूरे एपिसोड के लिंक के लिए 5599 पर आप ड्राइव लिखकर भेज सकते हैं.
3: फिलहाल 19 मिनट हुए हैं 9 बजकर. जब भी आप हॉलीडे पर जाते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं हम में से जो ऐसी जगह की तलाश करते हैं जो रात को देर गई तक खुली हो. खासतौर पर वी आफ्टर मिडनाइट, एंड कुछ ट्रेवलर्स जो है ये नाइट लाइफ एक्सप्लोर करना किसी एक सिटी का ये पसंद करते हैं. इट्स सिंपली पार्ट ऑफ द आइटनरी. और बैंकॉक थाईलैंड ने इसके अराउंड एक बहुत अच्छा रेपुटेशन जो है ये बिल्ड किया है
2: नाइट लाइफ को लेकर.
3: इंडिया में मुंबई, दिल्ली, दे यूजुअली डोमिनेट द कॉन्वर्सेशन व्हेन इट कम्स टू नाइट लाइफ. लेकिन अभी टाइम आउट का लेटेस्ट रैंकिंग जो है ये निकला है, एंड इसमें इंडिया के एक शहर को 17th पोजीशन मिला है ग्लोबली.
2: ओके,
3: यस, एंड इट्स नॉट मुंबई और दिल्ली.
2: ओके, कौन सा शहर है ये?
3: बेंगलुरु.
2: या ओके,
3: बेंगलुरु जो है ये. मैं टॉप 20 आपको बता देता हूँ कौन कौन सी सिटी हैं. नंबर 20 मैक्सिको सिटी. नंबर 19 सिंगापुर. नंबर 18 एकरा. ये एकरा है का मुझे नहीं पता भाई.
2: ओके,
3: हाँ. और साथ में नंबर 17 जैसे मैंने कहा बेंगलुरु, एंड इसके अलावा नंबर 16 सोल इन कोरिया. नंबर 15 हैनोई.
2: ओके,
3: और नंबर 14 पर है मैड्रिड इन स्पेन. नंबर 13 एथेंस. नंबर 12 हांगकांग. नंबर 11 पोर्टो. नंबर 10 एम्स्टरडम.
2: ओके,
3: नंबर 9 बीजिंग. नंबर 8 ब्राइटन. नंबर 7 जोहान्सबर्ग. नंबर 6 मेडेलिन. नंबर 5 साओ पोलो. नंबर 4 मेलबर्न. नंबर 3 न्यूयॉर्क. नंबर 2 बर्लिन. एंड नंबर 1 बैंकॉक.
2: इंटरेस्टिंग.
3: आई एम सरप्राइज्ड कि
2: न्यूजीलैंड का कोई सिटी हो ही नहीं सकता भैया. न्यूजीलैंड में सब इतनी जल्दी सो जाते हैं, यहाँ पर सब कुछ इतने जल्दी बंद हो जाता है. इनफैक्ट लेट नाइट भी जो मॉल्स के होते हैं वो रात 9 बजे तक होते हैं. सिर्फ कुछ कुछ मॉल्स होते हैं जो थर्सडे फ्राइडे दोनों नाइट्स करते हैं. कुछ मॉल्स होते हैं जो सिर्फ एक नाइट करते हैं. मेरे को समझ में नहीं आता सैटरडे को क्यों यहाँ पर लेट नाइट्स नहीं होता, जबकि संडे मोस्ट ऑफ द पीपल, नॉट मोस्ट ऑफ द पीपल बट पीपल एक्चुअली they are on a break or something like that. Public holiday के time पर भी previous night अगर mall ज़्यादा देर तक खुली हो तो भी अच्छा है, but वो भी नहीं होता. So New Zealand में night life जैसी कोई चीज़ उतनी active
3: नहीं है. Night life है. Shopping के मामले में नहीं
2: है.
3: But exploring night life, there are a lot of things that are happening around the city. अगर आप जाएंगे अलग-अलग जगह पर.
2: Night में.
3: हाँ.
2: जैसे कि.
3: There are so many restaurants, bars, and
2: वो
3: सारी चीज़ें.
2: हाँ वो तो है. मैक्सिमम 12 बजे तक कुछ कुछ जगह पर ओपन होता है, कुछ जगह पर 1 बजे सुबह तक होता है. बट आई डोंट थिंक सो
3: सम ओपन अंटिल 3 इन द मॉर्निंग.
2: हाँ, बट उतनी चहल पहल नहीं होती ना.
3: ये आपको लगता होगा,
2: मुझे क्योंकि मैंने देखा हुआ है,
3: मैंने भी देखा हुआ
2: मैं रात को गई हूँ घूमने और रेयरली ऐसे कुछ जगह ओपन रहते हैं जहाँ पर आप
3: चलो सभी से पूछ लेते हैं।
2: मैं ऑकलैंड की बात कर रही हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आउट ऑफ ऑकलैंड। आउट ऑफ ऑकलैंड तो भाई कुछ कुछ टाइम पर ड्यूरिंग द डे चीजें बंद रहती है।
3: आप बताइए न्यूजीलैंड का लाइफ, नाइट लाइफ जो है ये कैसा है, मॉल्स एंड वो सारी चीजें, बस ईटरीज जो कुछ भी है, यहाँ का नाइट लाइफ कैसा आपको ठीक लग रहा है या फिर यू फाइंड इट बोरिंग?
2: आप ऐसे बताइए, नहीं अच्छा है, अच्छा है, काम चल जाएगा।
3: हाँ,
2: ये तीन ऑप्शंस दे रहे हैं,
3: काम तो चलाना पड़ेगा, वी डोंट हैव एन ऑप्शन।
2: तीन ऑप्शंस दे रहे हैं ना।
3: हाँ,
2: अच्छा है, नहीं अच्छा है, काम चल जाएगा, तो तीन ऑप्शन में से न्यूजीलैंड का नाइट लाइफ जिस किसी भी शहर से आप हमें फिलहाल सुन रहे हैं, अगर आपको रेट करना हुआ तो किस ऑप्शन के साथ आप न्यूजीलैंड के नाइट लाइफ को रेट करोगे?
3: तो 5599 पर आप टेक्स्ट कर दो। आई वाज सरप्राइज कि यू नो लास वेगास जैसे शहर का नाम जो है या नहीं है, व्हाट हैपेंस इन वेगास स्टेज इन वेगास ऐसा कुछ कहा जाता है ना,
2: राज्य कहा जाता है,
3: तो वो सारे शहर जो है नहीं, खैर जो भी हो, ये टाइम आउट का जो लिस्ट है ये हमने आपके लिए पेश किया। अब आप बताइए कैसा लगता है आपको न्यूजीलैंड का नाइट लाइफ।
2: राइट, 5599 पर अपने नाम के साथ आप जरूर हमारे पास अपने मैसेजेस सेंड कर सकते हैं।
0: Hollywood's most wanted.
4: Gundi ghad gao. Ya seedha andar aao.
5: Main laau apna A game.
0: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: यो यो हनी सिंह और साथ में इनके साथी की आवाज़ों में आपके लिए ये गाना हम लेकर आ रहे थे. चेन्नई एक्सप्रेस ये फिल्म आई थी 2013 में, उसका ये ट्रैक आज आपके लिए हमने पेश किया चार्टबस्टर्स में. बाय द वे दायरा फिल्म जो है इसका ट्रेलर रिलीज हो चुका है, जिसके बारे में आज सुबह भी हमने बातें की थी. अगर आपने नहीं देखी है तो आप ज़रूर ये ट्रेलर जाकर चेकआउट कीजिएगा. लुक्स वेरी इंटरेस्टिंग. और अपेरेंटली पृथ्वीराज सुकुमारन जो है इन्होंने कहा कि ये फिल्म इनिशियली जब इनको ऑफर हुई थी तो ये रिजेक्ट करने वाले थे इसे.
1: ओके.
0: क्योंकि वो वाराणसी जो फिल्म है ना, महेश बाबू और प्रियंका चोपड़ा उसमें काम कर रहे हैं.
1: अच्छा.
0: उस फिल्म की शूटिंग के लिए उनके डेट्स जो है कि ब्लॉक थे, एंड दैट्स व्हाई ही वाज लाइक कि वो नहीं कर पाएंगे. ही वाज अबाउट टू से नो टू दिस, बट फाइनली ही सेड यस एंड इट वेंट ऑन, और जिसके बाद चलकर अब ये इस फिल्म में दिखने वाले हैं. एंड ऑन द अदर हैंड अभी एक और एक फिल्म जो है ये नज़र आ रही है चर्चे में है बिकॉज ऑफ द कैरेक्टर कुणाल खेमू इज प्लेइंग. द फिल्म इज कॉल्ड वाइब और करीना कपूर खान साथ में कुणाल खेमू. रिश्ते में दोनों पता है ना आपको,
1: कुणाल खेमू और
0: करीना कपूर खान, हाउ दे आर रिलेटेड?
1: वो उनकी पत्नी की भाभी हैं.
0: हाँ जी. तो बहुत आर रिलेटेड एंड दे शेयर वेरी गुड इक्वेशन एज वेल. और ये दोनों अब बॉक्स ऑफिस पर क्लैश भी फेस करने वाले हैं. करीना कपूर खान की फिल्म दायरा और कुणाल खेमू की फिल्म वाइब एक ही साथ रिलीज होने वाली है.
1: ओके. अपार्ट फ्रॉम दैट पृथ्वीराज सुकुमारन के बारे में आपने बताया, आई थिंक उनकी एक फिल्म कल मैं देख रहा था, आई नो बॉडी.
0: I have no idea what this movie is.
1: Yeah, it was a good movie. वहीं पर from Gangs of Wasseypur से लेकर Manji, The Mountain Man से लेकर रात अकेली है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और तिग्मांशु धूलिया.
0: हाँ जी.
1: कई बार जो है they've come across in Hindi cinema.
0: हाँ.
1: लेकिन उनका association has largely been as fellow actors.
0: Okay.
1: This time around, they are coming as a director actor. कॉम्बिनेशन. दिग्मांशु धूलिया डायरेक्ट करेंगे नवाजुद्दीन सिद्दीकी को, और ये एक म्यूजिकल थ्रिलर में होगा. म्यूजिकल थ्रिलर आई डोंट नो कैसे ये होगा. ये फिल्म जो है इज बेस्ड ऑन वेटरन पोएट उदय प्रकाश की एक छोटी सी कहानी थी. वो फिर कभी दिखा नहीं.
0: अच्छा.
1: उसी पर ये कहानी आधारित होगी. सो यू कैन गूगल एंड फाइंड आउट. और द फिल्म विल मार्क सिद्दीकी सेकंड प्रोजेक्ट रूटेड इन स्लम लाइफ. इससे पहले सुधीर मिश्रा के सीरियस मैन में इन्होंने काम किया था इस एक फिल्म में.
0: ओके इंटरेस्टिंग. सो लेट्स सी ये कोलैबोरेशन क्या रंग लाती है, और जो भी अपडेट्स आने वाली फिल्मों के बारे में हमारे हाथ लगेंगी आपके साथ हम जरूर शेयर करेंगे. फिलहाल दिस इज व्हाट्स गोइंग ऑन स्पेशली आपके लिए ओनली ऑन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा. हम लेकर आ रहे हैं
2: मॉर्निंग्स मेड बेटर.
3: दो फ्रेंडा, चार टोस्ट, बटर जैम और एक स्पेशल चाय.
2: द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा.
4: 80s के रेट्रो गाने.

0: Download Rova to listen Hum 80s Jukebox.
1: Boat plus ute equals beaut. Get Dad a $5 The Real Deal instant Kiwi ticket for a chance to win a Toyota Hilux and Stabycraft 1450 Frontier combo. Get your Father's Day gift sorted at your local Lotto NZ store. R18 T's and C's apply.
2: It's Woolworths Mighty Meat Week. Get mighty cuts and mighty savings. Our New Zealand fresh beef mince, 1 kg, $17.99 each. And our New Zealand fresh chicken drumsticks, $4.79 a kg. Tea season exclusions apply.
3: The Breakfast Show with Weejay and Pooja.
4: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras, Monaco. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
5: What's going on?
6: आज डेली राउंडअप में सबसे पहले पुलिस ने पिछले हफ्ते मैनुकाओ में एक रोड रेज के बाद जो मारपीट का मामला सामने आया था और एक गाड़ी के विंडस्क्रीन पर गोली चलाई गई थी, इस संबंध में 3 लोगों पर चार्जेस लगाए हैं। डिटेक्टिव इंस्पेक्टर शॉन विकर्स ने बताया कि ये बहुत खुशनसीबी की बात है कि किसी को चोट चपेट नहीं लगी थी। 26th ऑफ अगस्त को शाम 5 बजे के वक्त पुलिस को रिपोर्ट मिली कि दो गाड़ियाँ जो है आपस में टकरा गई हैं ऑन रॉनवुड एव near the center of Manukau. और विकर्स ने बताया कि कॉन्फ्रेंटेशन जो है ये हुआ रॉनवुड एव पर आफ्टर एन इनिशियल अल्टरकेशन इन नियर बाय कार पार्क, उससे पहले जो है ये हुआ था और उसी से रिलेटेड ये चार्जेस जो है ये लगाए गए हैं।
7: वैसे कुछ अपडेट्स आ रहे हैं सामने एज फार एज दी यू नो कैमरा ग्लासेस आर कंसर्न्ड। प्राइवेसी एक्सपर्ट्स ने वॉर्न किया है और कंसर्न्स भी रेज कर रहे हैं अबाउट द ग्रोइंग पॉपुलैरिटी ऑफ स्मार्ट ग्लासेस विद बिल्ट इन कैमराज एंड AI। अनलाइक अ स्मार्टफोन, जब कोई ऐसे स्मार्ट ग्लासेस का इस्तेमाल करता है तो आप नहीं जान सकते, क्योंकि फोन जो होते हैं यूजली लोग होल्ड अप करते हैं टू टेक फोटोज और टू रिकॉर्ड, बट कैमरा ग्लासेस कैन बी मच मोर डिस्क्रीट। दैट मीन्स कि कोई पोटेंशियली आपके बाजू में चल भी रहा हो, आपके सामने चल रहा हो और वो सीक्रेटली आपको रिकॉर्ड कर सकते हैं विदाउट यू इवन रियलाइजिंग कि ये आपके साथ हो रहा है। प्राइवेसी एक्सपर्ट्स का कहना है कि न्यूजीलैंड में जो लॉज हैं दे आर नॉट कीपिंग अप विद दिस टेक्नोलॉजी। क्वेश्चंस बढ़ रहे हैं व्हेन इट्स ओके टू रिकॉर्ड समवन एंड व्हेन इट क्रॉसेस द लाइन। लेकिन देयर इज अनदर साइड ऑफ दिस स्टोरी एज वेल। फॉर पीपल जो ब्लाइंड है या फिर उनके विजन पावर्स जो है ये कम है, उनके लिए कहा गया है AI पावर्ड स्मार्ट ग्लासेस कुड बी इनक्रेडिबली यूजफुल, helping them understand their surroundings, recognize objects or navigate everyday situations. So, ये जो technology है, it's bit of a tug of war. Better accessibility एक और कुछ लोगों के लिए, तो वहीं पर privacy concerns on the other side कुछ लोगों के लिए।
6: एक्ट पार्टी का कहना है कि अगर वो चुनाव के बाद सरकार में आती हैं तो वो इंट्रोड्यूस करेगी फिजिकल प्रेजेंस रिक्वायरमेंट फॉर permanent residents. पार्टी की इमिग्रेशन प्रवक्ता डॉक्टर परमजीत परमार ने बताया है कि ये सिस्टम में एक बैलेंस लेकर आएगा और ये भी देखेगा कि जो पर्मानेंट रेसिडेंट वीज़ा होल्डर्स हैं उनका एक जेन्युइन कमिटमेंट हो इस देश के प्रति। द स्ट्रेंजेस्ट इमिग्रेशन पॉलिसी वी हैव इज़ दैट पर्मानेंट रेसिडेंट्स डोंट हैव टू बी permanently resident. ये उन्होंने कहा है। परमार ने कहा है कि इमिग्रेशन और देश जो है ये माइग्रेंट्स को के लिए वेलकम होना चाहिए, बट जो प्रिविलेजेस मिलते हैं permanent residents को, it must reflect and have a lasting connection to the country. Act to change New Zealand's resident system, और वो existing permanent resident visa category को हटाएगा and changing the existing resident visa to require holders to receive a 5-year travel facility. This would replace the current 2-year initial travel condition. Resident visa holders would need to be physically present in the country for at least 2 years, yani 730 days, within any rolling 5-year period. Or the 2-year period would not need to be continuous, lekin jo indefinite unconditional right to leave and re-enter the country hai use hata diya jayega. There would be exemptions for individuals working overseas for New Zealand employers, accompanying family members, मिलिट्री पर्सनल जो ओवरसीज में काम कर रहे हैं और वो जिनके विद सिटीजन स्पाउस या फिर अन्य कंपेलिंग ह्यूमैनिटेरियन रीजंस हो। रेडियो न्यूजीलैंड की एक रिपोर्ट के अनुसार परमार ने कहा है कि इस चेंज के जरिए एक क्लियर डिस्टिंक्शन होगा बिटवीन पर्मानेंट रेसिडेंस एंड सिटीजनशिप।
7: इंटरेस्टिंग। वैसे बहुत से यंग न्यूजीलैंडर्स हैव बीन हेडिंग ओवरसीज, लेकिन इकोनॉमिस्ट का कहना है कि इट इज नॉट सिंपली बिकॉज दे वांट टू लीव। अभी फिलहाल अगर देखा जाए यूथ अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी हाई है। सम कीवीज आर इनफैक्ट फॉलोइंग द जॉब एंड अपॉर्चुनिटीज वे एवर दे कैन फाइंड देम, अक्सर ओवरसीज इन दिस मैटर। नेशनल ने अनाउंस किया है प्लान टू रिड्यूस द स्टूडेंट लोन रिपेमेंट रेट, ताकि जो लोग न्यूजीलैंड में रह रहे हैं फ्रॉम 12% टू 10% वो बट ओवरसीज बोरोवर्स जो है उनके लिए नहीं, दे वुड फेस टफर पेनल्टीज एंड इंक्लूडिंग अ हायर इंटरेस्ट रेट इज वेल। लेकिन जो न्यूजीलैंड में स्टूडेंट लोन रिपेमेंट कर रहे हैं उनके लिए ये कम कर दिया गया है फ्रॉम 12% टू 10%। और दूसरी ओर प्लान अनाउंस किया गया है टू डू दैट। द इंटरेस्टिंग पार्ट इज इकोनॉमिस्ट ने कहा है कि स्टूडेंट लोन रिपेमेंट्स प्रोबेबली आरंट व्हाट डिसाइड्स वेदर समवन लीव्स न्यूजीलैंड। उनका मानना है कि देयर इज अ मच मोर लाइकली टू लुक एट वेजेस, जॉब्स एंड करियर अपॉर्चुनिटीज, एंड देयर आर साइंस कि द टाइड कुड बी टर्निंग, मोर कीवीज आर रिटर्निंग होम व्हाइल द नंबर ऑफ लीविंग हैज ड्रॉप्ड अकॉर्डिंग टू द रिकॉर्ड नंबर्स जो सामने आए हैं। सो द बिग क्वेश्चन इज, आर यंग कीवीज लीविंग बिकॉज दे वांट एन ओवरसीज एडवेंचर, या फिर क्यों कि न्यूजीलैंड जो है उन्हें इनफ अपॉर्चुनिटीज फिलहाल नहीं दे पा रहा है।
6: इंग्लिश प्रीमियर लीग का आज सुबह एक मैच खेला गया, आर्सेनल की जीत एस्टन विला के खिलाफ इसमें 1-0 से हुई है।
5: Let's go. Straight from the heart. Unlock your property's true sale value with NZP.

0: Breakfast Show with VJ and Pooja.
1: Chup ho jao, papi ho. Chup ho jao.
0: Throwback. Brought to you by 0800 Rachna. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
2: दो बातों का वक्त हो चुका है अब ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा. हर दिन जाने से पहले ये खास दो बातें आपके लिए होती हैं. उम्मीद है कि गौर से आप सुनते होंगे. आई डोंट नो हाउ मच ऑफ अ डिफरेंस डज इट एक्चुअली मेक.
3: इंटरेस्टिंगली कभी कभी हमें कुछ लोग ज़रूर मैसेज करते हैं, ये कहते हैं कि अच्छा लगता है ये सुनकर, काफ़ी इंस्पिरेशनल होता है कुछ लोगों के लिए. एंड इट्स गुड टू नो कि आप सुनते हैं, आपके लिए कुछ एक यू नो अटेंशन खींचता है ये आपका, या फिर आपके लिए कुछ एक डिफरेंस करता है. बिकॉज दैट्स व्हाट द इंटेंशन इज, दैट्स व्हाट द होल पर्पस इज ना.
2: एग्जैक्टली. तो आज की दो बातें जो हैं, पहली बात जो है इसे आप सुने अच्छी तरह से और उसके बाद आपको डिसाइड करना होगा कि आप क्या करना चाहते हैं, क्या आप सहमत भी हैं या इससे नहीं या नहीं. कहते हैं कि अकेले रहने से मत डरो, शेरों के झुंड नहीं होते और कमजोरों की भीड़ कभी इतिहास नहीं रचती.
3: वेरी इंटरेस्टिंग
2: कि आप शेर जो है शिकार करने के लिए झुंड का इंतजार नहीं करते, अकेले ही अपना काम निपटा देते हैं.
3: बिल्कुल.
2: और कमजोर कभी भीड़ में रहकर भी इतिहास नहीं रच पाते,
3: नहीं कर बना पाते या.
2: और आज की दूसरी बात ये आप अच्छी तरह से सुने
3: जी.
2: कहते हैं कि नमक चाटने से हड्डियां गलती हैं.
3: ओह इज इट,
2: शायद कहावत ही हो.
3: वैसे कहते हैं प्रोबब्ली.
2: नहीं, बहुत ज्यादा नमक खाने से असर पड़ता है आपके
3: हेल्थ पर, तो असर पड़ता है
2: हड्डियों पर, असर पड़ता है. तो कहते हैं कि नमक चाटने से हड्डियां गलती हैं और तलवे चाटने से जमीर.
3: या वेरी ट्रू. चलिए इसी के साथ साथ अब आपसे चाहेंगे इजाजत. जाने की जाने का समय हो रहा है. आप सभी के साथ उस समय के लिए थैंक यू सो मच. बहुत अच्छा लगा आज आपका साथ और आज का ये ब्रेकफास्ट शो का सफ़र. ऑल थैंक्स टू यू गाइस, क्योंकि आपका कंट्रीब्यूशन हमेशा इसे इतना इंटरेस्टिंग, इतना अच्छा जो है ये बना देता है. सो अब अपना और अपनों का ख्याल रखिए, बाकी का दिन इंजॉय करें. हम आपसे मिलेंगे कल एक बार फिर ठीक सुबह 6 पर ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा.

0: Factor.
1: Ladies and gentlemen, dil thaam ke baithiye kyunki aa rahi hai
2: My Time with Kashika.
3: मैं यही कह सकती हूँ कि जब चेरी ब्लॉसम होने लगती है तो ये फ्लावरिंग जो है आपके लिए खूबसूरत सा एक संदेश लेकर आती है कि ज़िंदगी में चहकते रहो, महकते रहो और जहाँ भी रहो खुश रहो। और ये स्प्रिंग का पहला दिन है जहाँ पर हमें लगता है मुड़ के पीछे नहीं देखना, क्योंकि ठंड के दिन ऐसे थे कि जहाँ अभी तक फ्लू हमें हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा। बट लेट मी टेल यू, ये जो चेरी ब्लॉसम कर चुकी है हमारे अपने ब्यूटिफुल से न्यूजीलैंड में, ये आप नोट कर रहे होंगे कि ये फ्लावर्स कितना खूबसूरत लग रहे हैं। ये सड़कों पे जब आप क्रॉस करते निकलते हैं तो कहीं ऐसी कोई सड़क है जहाँ पे आपको लगता है कि आपने इनको चेरीज को ब्लॉसम होते हुए देखा है। क्या आपको पता है कि कुछ लोग, एक ट्रेडिशन होता था इन पेड़ों के नीचे आके आउटडोर पिकनिक्स, फूड, इवनिंग लाइट, यू नो, कैंडल लाइट डिनर वगैरह किया करते थे। इस तरह की चीज़ें जो है जापान में, इट्स अ यू नो मीनिंग दैट दिस टाइम मीन्स रिन्यूअल, होप। एंड जिस तरह से एक शॉर्ट लाइफ है नेचर की, अब ये स्प्रिंग तो ब्लूम होगा ही होगा लेकिन इसके बाद फिर समर आ जाएगी। तो यही सब बातें आपको याद दिलाता है ये नेचर, ये प्रकृति। और इसी नोट पर, ये प्रकृति के साथ साथ मैं आपसे कहती हूँ, स्वीकृति करें आप मेरा आना यहाँ, यानी काशिका आपका साथ निभाने के लिए आ चुके हैं स्टूडियोज़ में 12 बजे तक। मेरा आपका साथ बना रहेगा कशिश फूड्स के सौजन्य से। थोड़ी देर बाद हमारा साथ निभाने के लिए अवाना कॉस्मेटिक्स एंड लेज़र से नीलू आ जाएंगी, इनका साथ ज़रूर निभाइएगा। कोई सवाल 5599 पे आप मेरे साथ ज़रूर टेक्स्ट करके शेयर कर सकते हैं। फिलहाल मैंने एक फ़ोटो अपनी शेयर की है, जैसे ही चेरीज़ को देखा मैंने पेड़ों पर, मैंने कहा ओ माई गॉड, दिस पिंक यू नो एटमोसफियर इज़ एक्चुअली मेकिंग मी फील मोर एंड मोर यू नो स्प्रिंगी, स्प्रिंग जो आ चुका है। आपकी भी कोई ऐसी लोकेशन या कोई फोटो ज़रूर शेयर करें फेसबुक के पेज पर, आ जाइए।

0: एक्सपर्ट्स अड्डा।
1: एक्सपर्ट्स अड्डा में मेरे पास हर ट्यूसडे के दिन नीलू जी आ जाती हैं और नीलू जी की मधुर आवाज़ सुनने के लिए हम भी बेताब रहते हैं, क्योंकि इस समय एक सवाल है जो गूंज रहा है टेक्स्ट प्लेटफॉर्म पे। एंड लेट मी फर्स्ट वेलकम हर। गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू?
2: गुड मॉर्निंग कृतिका जी, बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं?
1: मैं तो बिल्कुल बढ़िया हूँ। एंड स्प्रिंग स्टार्ट हो गई, देखिए
2: I know, इतना अच्छा लग रहा है, the days are getting little bigger and it's
1: yes,
2: so nice.
1: absolutely.
2: Yeah.
1: और ऐसे में लगता है कि हमारे जो moments होते हैं जब हमें बाहर जाना होता है, outings होती हैं, हमें बहुत ज़्यादा अपना ख्याल रखना पड़ता है। And ये change of weather जो होता है winter से spring की तरफ, हमारी skin काफ़ी different लगने लग जाती है ना?
2: जी बिल्कुल बिल्कुल 100%।
1: जी, और मेरे पास एक सवाल आया, but this because today spring started, but there's something which I'm not aware of, but शायद आपने कभी बात भी नहीं करी कि ये आप विंटर मसाज करते हैं क्या यहाँ पर आपके हवाना में? What is this?
2: Facial massage या body massage? Facial massage, right?
1: Face massage.
2: फेस मसाज, यस यस यस, फेस मसाज अभी बहुत पॉपुलर हो रहा है लेटली कशिका जी, क्योंकि देखिए जगह मैं अपनी 25 साल पुरानी कॉस्मेटोलॉजिस्ट की जर्नी देखूं तो एक जमाना था कि स्किन की बहुत पील होनी चाहिए थी, बोटॉक्स, फिर एक सीजन आया कोविड के थोड़ा सा पहले और एकदम बाद तक कि सिर्फ बोटॉक्स कराना है, फिलर्स कराना है। अब क्या हो रहा है कि भैया ओल्ड इज गोल्ड, तो अब लोग जा रहे हैं ट्रेडिशनल चीजों की तरफ, क्योंकि बोटॉक्स के भी लोगों को मजा नहीं आ रहा है, एक टाइम के बाद दैट स्टॉप्स वर्किंग, फिलर समटाइम मेक्स यू लुक वेरी आर्टिफिशियल। तो अब लोगों का जो लेटेस्ट ट्रेंड आया है वो आया है नेचुरल लुक का। तो नेचुरल लुक में मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूंगी कि आप स्किन केयर को छोड़ दें, स्किन केयर में जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स चाहिए, जो मैं हमेशा बोलती हूँ लेयरिंग, वो तो करना है, बट जो हमारी सुपरफिशियल स्किन है वो सबसे ज्यादा ड्राई या फिर डिहाइड्रेटेड हो जाती है बिकॉज ऑफ द वेदर। अगर अंदर आपका देखिए एक पौधा है, अगर पौधे का बेस में अगर हम पानी डाल रहे हैं तो उसकी बेस तो ठीक है, बट ऊपर तो धूप के कारण या सूर्य के कारण या सनलाइट के कारण वो ड्राई होगा,
1: राइट?
2: तो वही हमारी स्किन है। तो अगर हम नीचे अपने विटामिन सी ट्रांसेमिक सीरम्स डाल रहे हैं तो यू आर बीइंग टेकन केयर ऑफ, बट सुपरफिशियल जिसको हम ईजीएफ बोलते हैं, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, के लिए मसाजेस आर अ बूम। एंड अवाना इज वेरी फॉर्चुनेट टू कोलैब विद द शंकरा यूएसए विच इज अ टोटली होलिस्टिक ब्रांड, मतलब शंकरा यूएसए को अगर आप इंस्टाग्राम पे जो लोग फॉलो करते हैं शंकरा नेचुरल्स देखेंगे तो वो प्रोडक्ट्स हैं जो आप खा सकते हैं, इट इज दैट काइंड ऑफ प्योरिटी। उन्हीं ऑयल्स का हम त्रिदोषा ऑयल जो की वाता कफा पिता को सेटल करता है उसकी हम आपको फेशियल मसाज देते हैं, दैट इज फॉर 30 मिनट्स। तो उसमें क्या होता है तो नर्वस सिस्टम बहुत रिलैक्स होता है बिकॉज ऑफ लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ योर फेशियल मसल्स, और आधे घंटे में जब आप चालू करते हैं इतना रिफ्रेश होते हैं। जैसे वो मोस्ट पॉपुलर ट्रीटमेंट इज ऑन आवर वेबसाइट ऑल्सो, फॉर 30 मिनट्स इज ओनली फॉर $69, बट वो इतना रिफ्रेश कर देता है कि पीपल से वी डोंट नीड फेशियल फॉर अनदर 6 वीक्स।
1: अरे वाह,
2: क्योंकि वो पूरा आपके जो है मसल्स कल्पिंग पे काम करता है और वो ऑयल जो है वो एपिडर्मिस को इतना हेल्दी कर देता है तो स्किन एकदम रिफ्रेश्ड, फ्रेश और बहुत ज्यादा यंग दिखती है, बिकॉज द ऑयल वर्क्स ऑन द नर्वस सिस्टम एज वेल व्हाइल यू आर फेशियल मसाजिंग द फेस। तो क्योंकि आप रिलैक्स हो जाते हो नर्वस सिस्टम के लेवल पर तो फेशियल मसल भी जब रिलैक्स होती हैं तो दैट गिव्स यू द ग्लो जो कि बोटॉक्स नहीं दे सकता।
1: ओके, गॉट यू।
2: या इट इज अ वेरी रिलैक्सिंग फेशियल मसाज, टोटली नेचुरल, और ये बहुत ही पॉपुलर ट्रीटमेंट हमारा जा रहा है। इंट्रोडक्टरी प्राइस हमने बहुत ही कम रखा है बिकॉज ऑयल्स आर ऑल फ्रॉम यूएसए एंड दे आर वेरी एक्सपेंसिव, बट उसके कई बार लोगों को लगता है उसमें कांसा भी देना, तो मैं कांसा भी डालती हूँ अपने ट्रीटमेंट में, कांसा डिटॉक्सिफाइज स्किन, टेक्स आउट ऑल द इम्प्योरिटीज।
1: ओके,
2: तो अभी वही जमाना है कि गोइंग बैक टू नेचर एंड ट्रीटिंग योरसेल्फ एंड पैम्परिंग योरसेल्फ, और स्पेशली विंटर्स में इट्स अ बून टू गेट अ फेशियल ऑयल मसाज डन। 100% रिकमेंडेड,
1: 100% रिकमेंडेड। अच्छा एक बात बताओ, मैं नाराज हो रही हूँ।
2: बिल्कुल, कैसे?
1: ऑफर तो दो ना कुछ।
2: ऑफर बिल्कुल है उनको कि जब वो आते हैं तो 30 की जगह में 10 मिनट और बढ़ा दूंगी आपके कहने पे कशिका जी, कोई वरी नहीं है। और बाकी हमारे लेजर के ऑफर तो बहुत ही दमदार चल रहे हैं, इट इज $10 पर चिन, तो वो देख ही सकते हैं, दैट इज ओनली ऑन अ टर्म एंड कंडीशन, अप्लाई कंडीशन ऑन अ पैकेज, बट आप आइए एक बार एक्सपीरियंस करें। मतलब अवाना हैज लॉन्च दी अवाना आयुर्वेदा एज वेल एंड इज गोइंग वंडरफुल।
1: ओ ब्रिलियंट, तो भाई आपको पता है कि आपको कहाँ पहुँचना है। अवाना कॉस्मेटिक्स एंड लेजर जो है ये लेवल वन, इनकी क्लिनिक्स जो है लेवल वन सिल्विया पार्क शॉपिंग मॉल में है, और दूसरा है जो इनकी वो है ऑर्मिस्टन मॉल में, जहाँ झंडे फहराते हुए नज़र आ जाते हैं आपको बिल्कुल पैक एंड सेफ के बगल में। तो आप awana.co.nz की वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। 0800-128-821 इज देयर मैजिक नंबर जिस पर आप इनसे कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। नंबर सही बोला?
2: बिल्कुल सही बोला मैंने, बिंगो.
1: थैंक यू सो मच एंड कैच यू नेक्स्ट वीक.
2: थैंक यू कशिका, यू टेक केयर, बाय
1: बाय
2: बाय.
0: माय टाइम विद कशिका,
3: आजकल चल रहा है बहुत न्यूज में, आप भी तो नहीं.
4: We gotta go. Are you ready?
5: Come and take a trip with me.
6: Your attention, please. We are now inviting all passengers booked on flight HUM 104.2 to the tropical paradise of Vanuatu with Solomon Airlines to begin boarding immediately. Please have your phone ready, your Rova app open, and your excitement switched on for inspection. Your boarding pass for this exclusive flight is easy. Listen out for the special HUM boarding call on air. That's your cue to open Rova app and enter Board Now to lock in your entry to win two return air tickets to Vanuatu flying with Solomon Airlines plus $1,000 spending money. Vacation.
7: HUM boarding call thanks to Solomon Airlines, flying four times each week non-stop from Auckland to Vanuatu.
8: Let's go.
7: Visit flysolomons.com. T's and C's apply.
9: किसी प्रियजन को खोना परिवार या मित्र के लिए कठिन समय हो सकता है. जीवन में मृत्यु को छोड़कर सभी चीजें अनिश्चित है. हम सभी को मृत्यु की वास्तविकता का सामना करना पड़ता है और गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार सेवा के माध्यम से प्रियजन के जीवन की अंतिम यात्रा भी करना महत्वपूर्ण है. We are Auckland's one-stop funeral service provider where responsible options and prices are offered. Anne's Funeral Home and On-Site Cremations, 11 Boulderwood Place, Wiri. Call 24/7 on 0927-88600.
10: Pick up a treat and a Smeg bonus sticker at New World North Island when you get Lindt Lindor Pouch Packs, $9.99 each, or Oreo Cookies Select Size, 4 for $6. Now that's New World value. Sizes, limits, exclusions apply.
11: The all-new Mazda CX-5 is big. Big on room for growing families. Big on smart features for busy lives. Big on five-star peace of mind. It's big on everything that makes it New Zealand's favorite Mazda. Mazda.
12: Kabhi-kabhi low feel karna normal hai. Bilkul mausam ki tarah. Kabhi dhoop, kabhi badal. Apni feelings pe dhyan dijiye. Reach in and check how you're doing. Reach out aur kisi trusted professional se baat kijiye. Support is available at Asian Family Services. Call Asian Helpline on 0800-862-342. That's 0800-862-342 for free and confidential mental health support.
13: Commonwealth Vault keep your precious belongings safe and secure. With the value of gold, bullion and precious metals at an all-time high, it's more important than ever to ensure your assets are protected from theft and natural disasters. When you entrust your valuables to Commonwealth Vault, you have peace of mind, knowing they'll be safe, secure and protected. Commonwealth Vault, securing your valuables for a lifetime and beyond at the historic Public Trust Building on Oxford Terrace. Details at commonwealthvault.co.nz.
14: मिर्जा पुर की गद्दी पे जो बैठेगा वही होगा सबसे बड़ा बाहुबली.
15: भोकाल के लिए तैयार हो जाइए बड़े पर्दे पर. मिर्जापुर द मूवी स्टारिंग पंकज त्रिपाठी, अली फजल, दिवेंदु एंड जितेंद्र कुमार.
16: हमें एम्पायर चलाना नहीं है गुड्डू भैया, बनाना है.
15: मिर्जापुर द मूवी रिलीजिंग इन सिनेमास ऑन 4th September.
17: खतरा चाहे जितना भी छोटा हो उसे जीवित नहीं छोड़ सकते.
15: डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर फोरम फिल्म्स. रेटिंग TBC.

0: आज का ऑफिस शॉर्टआउट जा रहा है मूर्ति आपको, आप रामा रामा से मुझे सुन रही हैं और काफ़ी टाइम से सुनती चली आ रही हैं। यू इन्जॉय माई रेसिपीज, यू इन्जॉय माई टिप्स एंड ऑफ कोर्स यू इन्जॉय द टाइम दैट यू लिसन टू मी। सो अ बिग थैंक यू टू यू एंड अ शाउट आउट टू यू। आपने यार अपन पिक्चर देखी कि नहीं देखी पता नहीं, बट मुझे तो अच्छी लगी। एंड ये फिल्में कुछ ऐसी होती हैं जो हमें लगता है कि आगे इसका नेक्स्ट क्या होने वाला है, एकदम एग्जैक्टली ऐसे ही कुछ होता है। लेकिन अभी के लिए मिर्ज़ापुर, जिसको हम लोग एक वेब सीरीज़ के तौर पर देखते चले आ रहे थे, ये फिल्म भी रिलीज़ होने वाली है इसी फ्राइडे के दिन।
1: Top hit of the hour, brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: वाला बना दे.
1: Brought to you by Lifestyle Furniture, Manuko, Mount Wellington and Westgate. Up to 60% off on now.
2: The beat of Bollywood.
3: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
4: एक बात तो है दैट एक जगह थी जो खास तौर पे बंद हो गई थी काफ़ी अरसे पहले, वाइवेरा थर्मल स्प्रिंग्स. ये बहुत ब्यूटीफुल जगह थी. इट वॉज टॉर्न डाउन इन 2023 और फिर इसके रेनोवेशंस की बात चल रही थी. ये भी कहा गया था कि लिक्विडेशन में चली गई. लास्ट ईयर नवंबर में एक चीज़ अनवेल हुई थी, आई थिंक आई रिमेंबर टॉकिंग अबाउट इट इन माई टाइम, कि ये एक जो थर्मल अट्रैक्शन था रिस्टोर किया जा रहा है, जहाँ 28 पूल्स, 50 साथ में वेलनेस एक्सपीरियंस, सोना, रिफ्लेक्सोलॉजी, गार्डन, वॉक्स, पवेलियन, ये सब कुछ था. और अब ये, वैसे ऑकलैंड से 40 किलोमीटर्स दूर पर है ये, बट ये एक अमेजिंग जगह है जो लगता है 58 मिलियन के रीडेवलपमेंट के बाद 2028 के मिड के आसपास ये खुलने वाला है. इसका रिसोर्स कॉन्सेंट भी आ चुका है. सो काम जो है इसका अर्ली 2027 में शुरू भी होने वाला है.

0: एक बात तो है, दिस इज नॉट गोइंग टू गो ऑन फॉर एवर, बट इट्स अ मैटर ऑफ डेज. व्हाई आई एम सेइंग दिस इज फॉर द ट्रिप ऑफ वनुआटू. वनुआटू एक इतना खूबसूरत ट्रॉपिकल देश है जहाँ आप जब जाएंगे तो आप इन्जॉय कर सकते हैं. सोलोमन एयरलाइंस जो है आपको ये लेके जाने वाली है. दो रिटर्न है टिकट्स हैं और साथ साथ $1,000 स्पेंड करने के लिए भी कैश देने वाली है. लेकिन ये सब करने के लिए आपको क्या करना है, अभी भी आपने अनाउंसमेंट सुना, बेसिकली दिस इज अ रिमाइंडर. ये बोर्ड नाउ जब कभी भी मैं आपके लिए प्ले करूँगी ड्यूरिंग माई शो, उस समय आपको फटाफट हमारे रोवा के ऐप के पास भागना है और क्लिक करना है सबमिट बटन और अपनी एंट्री ऐड कर देनी है. दैट्स अबाउट इट. एक फ्लाइट आपकी मिस नहीं होनी चाहिए टू गो टू वनुआटू, बिकॉज ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है हम जो बात दोबारा नहीं करने वाले. एंड नाउ इट इज़ सितंबर आ गया, मैटर ऑफ डेज. सो बिग थैंक यू टू सोलोमन एयरलाइंस जो 4 बार हफ्ते में नॉन स्टॉप ऑकलैंड टू वनुआटू फ्लाई करते हैं. वैसे ज़्यादा जानकारी अगर आप चाहते हैं इनकी एयरलाइन के बारे में, flysolomons.com के ज़रिए आपको पता लग सकती हैं. हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस समझने के लिए यू हैव टू जस्ट गो ऑन आवर वेबसाइट या फिर रोवा ऐप के ज़रिए आपको पता चल सकता है.
1: March 2027, एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी.
2: रुज़बी, टिकट्स बुक हो गए
3: तो फिर देर किस बात की, बाली बुला रहा है.
2: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी.
3: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती. बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन,
2: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी.
4: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड.
5: हेलो एवरीबॉडी.
1: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा.
6: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी.
1: टेक्स ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टोल प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी. बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुज़बे, ओनली ऑन हम.
2: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए, वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद. ब्रिंग होम एवरीवन्स फेवरेट शान फूड्स रेसिपी मिक्सेस. बॉम्बे बिरयानी हो या बटर चिकन, कोरमा या चना मसाला रेसिपीज, चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, शान रेसिपी मिक्सेस हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती है. तो इंतजार किस बात का, आज ही अपने नजदीकी सुपर मार्केट से शान रेसिपी मिक्सेस खरीदिए. शान फूड्स, असली स्वाद हर घर के लिए.
7: रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम.
8: हाय, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कि क्राइंग विंडोज, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है.
7: मॉइस्चर और वेंटिलेशन का प्रॉब्लम लगता है.
8: और पता है, मेरे बच्चों को एस्मा और एलर्जी भी हो गई है.
7: और दैट्स नॉट गुड. हम आपके सभी प्रॉब्लम्स रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम से सॉल्व कर सकते हैं. इससे आपका घर रहेगा वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर. और हम मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और तोशिबा हीट पंप्स के ऑथराइज्ड डीलर्स भी हैं.
9: कॉन्टैक्ट रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम ऑन 0800-787-111. रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम्स, सॉल्विंग वेंटिलेशन प्रॉब्लम्स फॉर ओवर 18 years.
10: सुनो, बिल्स बढ़ते जा रहे हैं और महंगाई भी.
11: हाँ, मॉर्गेज भरना भी मुश्किल हो रहा है. सोच रहा हूँ घर बेच के छोटा घर ले लें.
10: घर बेचने से पहले NZPMI की पॉल से बात कीजिए. मेरे दोस्त ने भी की थी, अपनी जमीन पर नया घर और 2 और घर बनवाए. अब रेंट भी आ रहा है.
11: पर डेवलपमेंट के पैसे
10: आपको नहीं लगाने, NZPMI सब संभाल लेगा. NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट. फ्री साइट असेसमेंट के लिए विजिट nzpmi.go.nz या कॉल 0800-4-NZPMI.
12: MediaWorks Complaints. How can I help?
13: Yeah, hi. You guys made some ads for my local business.
12: Nice.
13: And you talked me into creating this funny character.
12: Great.
13: And now everybody comes into the shop asking for Bobby.
12: Are you?
13: Yes.
12: Are you Bobby the Baker?
13: Yes.
12: What's that thing you do again?
13: Stop it.
12: You bring the mouth.
13: Stop it.
12: I'll bring the pie.
13: Stop it, please.
12: Okay.
13: Yeah, sure. I might have 3 stores now, but Bobby's more famous than me.
12: So what's the problem?
13: My name's Bruce.
14: Advertise with
15: MediaWorks.
12: New Zealand listens to us.
16: My Time with Kashika, brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better. Dream Diary.
0: I can totally relate to this. Lekin aap ka kal text aaya tha. Sorry, I could not reply back to you, but I was about to leave. But aapka tha ki you saw your father crying. To ye often ye kai baar aisa hota hai ki ये सिंबलाइज करता है कि आपकी वनरेबिलिटी, कि आपकी एक कोई ग्रीफ या कोई दुख होता है आपके अंदर, या फिर किस तरह से आप के लिए आपके फादर कुछ आपको एक मैसेज देना चाहते हैं. एक कोई आपके अंदर की सैडनेस है, आपके फादर के अंदर की जो सैडनेस है वो आप फील कर पाते हैं और आप उनके जो एक्सप्रेशन है रोते हुए, वो आप दरअसल क्या होता है, यू मिरर इट. और आप कभी कभी जो उनकी इमोशनल नीड होती है उनको शायद निग्लेक्ट कर चुके हैं, और ऐसे में वो निग्लेक्ट किया हुआ जो एक मोमेंट होता है शायद वो आपको बार बार ध्यान आने लग जाता है. तो ये एक यू नो फादर्स जो हमेशा एक रिप्रेजेंट करते हैं स्टेबिलिटी कंट्रोल, किसी को रोता हुआ देखते हैं ना तो डेफिनेटली वो उस चीज़ को संभालने की कोशिश करते हैं, आपको स्ट्रांग बनाने की कोशिश करते हैं. आई नो ये ड्रीम कुछ डिफरेंट था, बट अगले घंटे पर हम बात करने वाले हैं अबाउट फादर्स डे के प्रमोशन के बारे में, जहां पर मैं आपकी एंट्री लेने वाली हूं. सो बिल्कुल तैयार रहिएगा, टेलीफोन लाइंस खुल जाएंगे आपके लिए, जहां आप मुझे बताएंगे अपने फादर के बारे में किस तरह से उन्होंने अपने आप को अडेप्ट किया टू द मॉडर्न वर्ल्ड.
16: Lock your property's true sale value with NZPMI, your local development experts. For a free site assessment, visit nzpmi.co.nz or call 0800 4NZPMI.

0: by 0800 Rachna. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
1: जिस फिल्म का मैं गाना आपके लिए बजाने वाली हूँ, दरअसल ये पर्टिकुलर फिल्म जो थी, ये एक रीमेक थी, थेवर मगन. आई डोंट नो इफ हैव प्रोनाउंस्ड इट राइटली और नॉट, बट इसका एक रीमेक था, हिंदी में बना था, जिसमें कमल हसन ने लीड रोल अदा किया था. और उसके बाद वो उस फिल्म को हिंदी में बनाना चाहते थे, और हिंदी में बनाने के लिए उन्होंने कहा दिलीप कुमार से ज़्यादा अच्छा कोई इस आर्टिस्ट को पोर्ट्रे नहीं कर सकता, जो शिवाजी गणेशन जी ने पोर्ट्रे किया था इन दी ओरिजिनल फिल्म. दिलीप कुमार जी ने एकदम रिफ्यूज़ कर दिया, वो टोटली डिसल्यूजन हो गए, और फिर उन्होंने ये स्क्रिप्ट जो थी अनिल कपूर को दी. इस फिल्म का म्यूज़िक कंपोज किया था अनु मलिक जी ने, लेकिन गाने इस फिल्म के क्या कमाल के थे, एक से बढ़कर एक. और ये फिल्म थी नन अदर देन विरासत. विरासत फिल्म का ये कमाल का गाना मैं आपके लिए अब लेकर आ रही हूँ. ऑफकोर्स इस फिल्म के लिए बहुत सादा एक यू नो अवार्ड्स वगैरह भी इस फिल्म को मिले थे, एंड पीपल लव द सॉन्ग्स, पीपल लव द एक्टर. टबू को भी बहुत अच्छा इसमें एक ऑफर भी मिला था, एंड बेस्ट एक्टर अनिल कपूर फिल्म फेयर अवार्ड्स का इन्होंने जीता भी था. तो यस, लेट्स हियर दिस ब्यूटिफुल ट्रैक, कुमार सानू एंड चित्रा.

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: मौसम की बात करें तो ये स्प्रिंग का मौसम जो है देखो शुरू हो चुका है, लेकिन दी When we talk about the temperature, the highs of 15 overnight, temperature of 12. आज का forecast बताया जा रहा है. Isolated showers expected है. बादल शाम तक बढ़ते चले जाएंगे. It feels like 15 degrees right now.
0: My time with Kashika, brought to you by Kashish Foods. Eat better, live.

ब्लूम इज ऑन इट्स वे और ऐसे में ये वेव चली है चेरीज की और ऐसे चेरी ब्लॉसम जो होने लग जाता है तो डेफिनेटली ऐसा लगता है कि ओ माय गॉड ये किस तरह से लोग सेलिब्रेट करते हैं जब स्प्रिंग आने लग जाता है। आई नो ये एक रिन्यूअल, एक होप और एक जो नेचर, जो शॉर्ट लिफ्ट नेचर होता है ना, कई हर मौसम बदल से चार चार महीनों बाद बदलता चला जाता है, तीन तीन महीनों में बदलता चला जाता है, वो याद दिलाता है कि जैसे भी है इसे जियो, इस मौके को खो बिल्कुल मत। तो जब ऐसी ही बातें होती हैं तो याद दिलाना पड़ता है आपको, वो मौके भी बिल्कुल मत खोइएगा जहाँ पे आपके लिए हम बोर्डिंग कॉल जो है हम कभी भी अनाउंस कर सकते हैं और आपको वनुआटू जाने के लिए ये खूबसूरत मौका मिलेगा। क्लिक करेंगे आप, सबमिट करेंगे, आपके लिए वो एंट्री आपकी कबूल की जाएगी। अच्छा, इसके साथ साथ फादर्स डे के मौके पे अब देखिए टाइम बहुत कम रह गया, आज ट्यूसडे हो गया, आपका फ़ोन आएगा कल वेडनेसडे, परसों थर्सडे, मतलब मेरे पास अब तीन दिन बचे हैं मेरे माय टाइम के लिसनर्स को आगे बढ़ाने के लिए, जहां देखने के लिए कि आप में से कोई क्या वो $500 कैश लेके जाएगा या फिर वो $300 जो फेसबुक के पेज पर हमारे चल रहे हैं। चलो इसके बारे में बाद में बात करते हैं। कशिश फूस के सौजाने से आपका साथ निभाने के लिए मैं काशिका बस मिड मॉर्निंग मज़ा में भी आपका साथ निभा रही हूँ, 12 बजे तक आपका मेरा साथ बना रहेगा। कशिश फूड्स तो आपके लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें और त्योहारों के मौके पे चीज़ें लाते हैं जो आपको जाके ग्रोसरी शॉप्स पर मिल भी जाते हैं। तो चलिए गाना बजाती हूँ। बचाओ क्या, ऐसा हो जाता है ना कि हम भूल जाते हैं कि फादर्स डे तो है, अरे काशिका तुम ये कैसे भूल गई कि इसी फ्राइडे के दिन जन्माष्टमी भी है। अरे हाँ जन्माष्टमी भी है, तो क्यों ना एक बहुत ही खूबसूरत सा गाना सुने और उसके बाद कुछ कम्युनिटी मैसेज भी पढ़ें आपके लिए। लेकिन उसके पहले फादर्स डे के मौके पे आपकी एंट्री लेनी है एज आई प्रॉमिस्ड।

0: Kashika. Brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better.
1: Eat better, live better, and I can always say smile better. और ख़ास तौर पर जब हमारे रोल मॉडल हमारे सामने होते हैं, हम उनको कोशिश करते हैं कि अपने ही रंग में रंगें. अब ऐसा कभी हुआ है आपके साथ कि जब आप अपने फादर को वो आप मॉडर्न स्लैंग, पॉप कल्चर, टेक सावी बना देते हैं तो क्या होता है? तो आप 0800-4866 पर मुझे कॉल करें और बताइए कि मैं आपके फादर का नाम ड्रॉ में डालूं कि नहीं डालूं. क्या वो आप फादर हैं जो दरअसल अपने बच्चों की वजह से बदल गए? क्या आप वो एक मदर हैं जो अपने स्पाउस को देखा है अपने कि बच्चों के लिए वो बदले हैं, या क्या आप वो ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अपने फादर को बदलने में बहुत मेहनत की और बहुत स्ट्रगल किया? 0800 हम पर आप मुझे कॉल करें. एक लकी डैड $500 कैश लेके जाने वाले हैं. एंड लेट्स ट्राई एंड सी व्हाट वी कैन फिगर आउट फ्रॉम व्हाट योर कॉन्वर्सेशन इज गोइंग टू बी अबाउट. बट हो सकता है ये $500 आपके लिए बहुत मायने रखते हैं. हमारी टर्म्स एंड कंडीशन समझने के लिए आप हमारे फेसबुक के पेज पर या हमारे आप वेबसाइट रोआ ऐप पर भी जा सकते हैं. और इसके साथ साथ आपको एक मौका मिलता है हमारे सोशल मीडिया पे जाने के लिए भी, जहाँ पर AI जनरेटेड एक सुपर हीरो की फ़ोटो आपको क्रिएट करनी है अपने फादर के ओरिजिनल फ़ोटो के साथ. बस आपने फोटो क्रिएट की. अच्छा, कॉल आ रही है. अगर तो आएगी तो आई विल पिक अप द कॉल. 0800-4866 इज द नंबर. 0800-4866. ओके, याद रहे. कंटिन्यू काशिका. ओके, सो उसके बाद आपने एक फ़ोटो जनरेट की. फ़ोटो जनरेट करने के बाद आपने वो कंपटीशन जहाँ पे हमने की है वहाँ पर आपने उसे पोस्ट कर दी. अब आपको आपके फादर को टैग करना है. दैट्स अबाउट इट. और नहीं, दैट्स नॉट अबाउट इट. आपने टैग कर दिया, ठीक है. आपने टैग करने के बाद अपने फादर को, उसके बाद अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली वगैरह को भी आपको बोलना है चलो मेरी पोस्ट को आप लोग लाइक करो. एंड जब आप उसके पेज को, फोटो को लाइक करने लग जाते हैं तो ये आपकी लाइक्स बढ़ती चली जाती हैं. दैट्स अबाउट इट. एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके जो फ्रेंड्स एंड फैमिली जो भी आपके हैं जिनको आप टैग कर रहे या आप उनसे कह रहे लाइक करो, उन्हें हम के पेज को भी लाइक करना पड़ेगा, ठीक है. $300 कैश समझो वहाँ पे भी आ गए. अब $500, $300, बताइए कितना कुछ आपके फादर के लिए भर भर कर हम दे रहे हैं. लेकिन अब आप भर भर के मुझे कॉल कर सकते हैं. 0800 हम पर 4 सितंबर के दिन ये ड्रॉ होने वाला है. आने वाले संडे के दिन आपके फादर को सेलिब्रेट करने का सुनहरा मौका भी आपके पास आने वाला है ना.
2: अब तक डैड आपकी क्लास लेते थे, लेकिन अब बारी है रिवर्स ग्रिल की.
0: इस फादर्स डे हम पर डैड से होंगे मॉडर्न स्लैंग, पॉप कल्चर और टेक के सवाल.
2: हर सही जवाब को मिलेगी ड्रॉ में एंट्री और एक लकी डैड जीतेंगे $500 कैश.
0: साथ में सोशल मीडिया पर पार्ट लीजिए डैड्स AI अपग्रेड में और जीतिए $300. डैड को रेडी करो, खुश करो.
2: फादर्स डे ऑन हम ब्रॉट टू यू बाय आई विलेज एट विक्टोरिया, इंडियन किचन एंड बार, BFSL प्रोवाइड the best home loan advice for the last 20 years. Amma's Food, 100% authentic and pure as mother's love. And Indelible Homes, your building experts known for subdivisions.
0: Professional Financials है साथ आपके. Loan और Insurance एक छत के नीचे. No broker charge, बस trusted advice. हर deal बनाए perfect right.
3: Refinance के लिए compare करें different banks. Loan process was simple and frank.
0: Business Finance या Income Protection हो, हर step पर guidance perfect हो. सब कुछ मिलेगा यही. अपना future secure बनाए.
3: Professional Financial Solutions, your future, our priority. Call 09-846-9934 or search PFSL. T's and C's, lending and credit criteria apply.
4: Do you know why so many of your neighbors are installing a shower dome shower top? Just watch the demo video at showerdome.co.nz. You'll see how a shower dome stops steam misting up your mirrors, stops mold and mildew, and saves energy. No extractor fans required. The best thing you can do for your home is install a shower dome. Available now from your local installer.
5: Showerdome.co.nz.
6: सुनो, बिल्स बढ़ते जा रहे हैं और महंगाई भी.
7: हाँ, मॉर्गेज भरना भी मुश्किल हो रहा है. सोच रहा हूँ घर बेच के छोटा कर ले लें.
6: घर बेचने से पहले NZPMI की पॉलिसी बात कीजिए. मेरे दोस्त ने भी की थी, अपनी जमीन पर नया घर और दो और घर बनवाए. अब रेंट भी आ रहा है.
7: पर डेवलपमेंट के पैसे
6: आपको नहीं लगाने, NZPMI सब संभाल लेगा.
8: NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट. फ्री साइट असेसमेंट के लिए विजिट NZPMI.co.nz या कॉल 0800-4NZPMI.
9: Pick up a treat and a Smeg bonus sticker at New World North Island when you get Lindt Lindor pouch packs, $9.99 each, or Oreo cookies select size, 4 for $6. Now that's New World value. Sizes, limits, exclusions apply.
10: Farmers has the best gifts for Dad, with great grooming products, skincare and the latest fragrance, and casual styling from top to toe. There's coffee machines, cocktail makers and barbecue sets too, plus Lego sets for grown-ups. Farmers has the best gifts for Dad.
11: TradeDepot.co.nz.
12: Spend $30 at Trade Depot and get fast free delivery. Kuka Smart QLED TVs from $249. Eurotech soundbars just $129. Cordless stick vacuums only $99. Shop online now at Trade Depot. Spend $30 and get fast free delivery anywhere in Auckland. Tiny T's and C's apply.
13: Trade Depot.

0: क्रॉसवर्ड स्टोरी।
1: देखो टेक्स्ट आप कर लेते हो, इतने होशियार हो, लेकिन कॉल क्यों नहीं करी। ओके, तो अब जब मैं बात करती हूँ फादर्स डे के बारे में, आपने टेक्स्ट किया, ही प्रोटेक्ट्स एंड कम्फर्ट्स हिज फैमिली, ही प्रोटेक्ट्स एंड कम्फर्ट्स हिज फैमिली। आई थिंक दिस इज सो ब्यूटिफुल, इजंट इट? आई जस्ट लव इट, एक्चुअली सो ट्रू, या लॉट ऑफ डीप मीनिंग इन इट। बिग थैंक यू आपको। एंड 1061, अरे हमारी फ्रीक्वेंसी से मिलता जुलता, 1061 था ना, 1061 आपका लास्ट डिजिट है। थैंक यू, थैंक यू फॉर दिस। नाउ कमिंग टू, जैसे मैंने आपसे कहा था, कृष्ण कन्हैया ये भी जन्म लेने वाले हैं। अब ये जो सेलिब्रेशन है चल रही हैं, ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, दिव्य शक्ति चैरिटेबल ट्रस्ट कैवेंडिश ड्राइव मैनेकाओ में हर रोज 7:30 बजे से इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, जन्माष्टमी के महोत्सव को। इसके अलावा रामकृष्ण मंदिर 25 ऑनस्लो एवेन्यू मैनेकाओ में भी 7:30 बजे से इसका आयोजन किया जा रहा है। डेकोर ऑफ एलिगेंस 16 लैम्बी ड्राइव मैनेकाओ में न्यूजीलैंड संगम द्वारा भी कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव चल रहा है। श्री राम मंदिर में कृष्ण जन्माष्टमी का ये महोत्सव भी चल रहा है, जहां आप पहुँच सकते हैं। आउटरिवा सनातन संगम संस्था यहां पर भी एक बहुत ही खूबसूरत आयोजन किया जा रहा है एट सैटर्न क्रिसेंट। श्री हनुमान मंदिर जो है नॉर्थ शोर में कृष्ण जन्माष्टमी के उत्सव पर बहुत खूबसूरत आयोजन कर रहे हैं, और 4 तारीख को दोपहर सुबह 12 बजे से रात 12:30 बजे तक, मतलब सुबह सुबह जन्म का भी उत्सव सेलिब्रेट करने वाले हैं। और ऐसे ही मौके में माँ दुर्गा टेंपल पापा टोयटोय 4/3 ऑनस्लो एवेन्यू पापा टोय में भी 7:30 बजे से 8:30 बजे फ्राइडे के दिन, और फिर 8:30 से यहाँ पर 12 बजे तक कृष्ण जन्माष्टमी का महोत्सव किया जाने वाला है।
0: टॉप हिट ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, बिल्ड योर ड्रीम्स।

तो जब बात कर रही हूँ अबाउट लैक ऑफ स्किल्स, फियर ऑफ जॉब लॉस, और किस तरह से बिजनेस स्लो डाउन कर रहे हैं आफ्टर यूजिंग एआई, ये इनके ऑपरेशंस में ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है. और एक जो सर्वे के ज़रिए पता चला है, 200 बिजनेस लीडर्स ऑर्गेनाइजेशन में जो हैं, वहाँ पे जहाँ पे 100 एम्प्लॉयज़ थे, हैव फाउंड 95% पीपल दे आर यूजिंग एआई. अब ये जो बात है, ऑर्गेनाइजेशंस आर गोइंग इन बिग वे टू अडॉप्ट एआई और उसकी स्ट्रैटेजीज, और लोग जो है जब उस पर ज़्यादा डिपेंड होने लग जाते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि एक ये थ्रेट बन जाएगा. जिस तरह से पहले जब कंप्यूटर आया था तो लोगों को लगता था कि कंप्यूटर टेक ओवर कर लेगा और जॉब्स हमारी पिकअप कर लेगा, ठीक इसी तरह से लगता है अब एआई आएगा हमारी जॉब्स पिकअप कर लेगा. ऐसा होता है कि नहीं होता है? बट येस, देयर आर लॉट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस विच आर मूविंग टूवर्ड्स एआई.

0: time with Kashika.
1: Wow.
2: How?
1: Adbhut.
3: बातें तो बहुत अद्भुत होती हैं, लेकिन एक बात तो ये है कि रोहित शर्मा इज सेट टू मेक अ टीवी डेब्यू. माय गुडनेस, आई वुड लव टू वॉच हिम. और मिर्ज़ापुर जो है ये एक ऐसी यू नो बिग स्क्रीन पर जब ये आएगी तो एक इसकी जो फ्रेंचाइज थी बहुत हिट गई थी और ये इसके सीजन सबको बहुत ज़्यादा पसंद भी आए थे. तो अब ये मूवी के तौर पर जब आ रही, इसके गाने भी लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं. लेकिन एक गाना मुझे ज़रूर गाना है और नमस्ते कहना है उन्हें, जो कि एक प्रिंसिपल थे. नेपाल के फ्लड्स के दौरान हुआ क्या था कि एक स्कूल में एक प्रिंसिपल जो थे वहाँ पहुँचे और उन्हें पता चला कि एक वार्निंग आ गई है कि पानी जो है बहुत जल्द आने वाला है और वो स्कूल की तरफ बढ़ रहा है. तो उन्होंने क्या किया, देखा कि बच्चे जो स्कूल में ऑलरेडी आ रहे थे या आ गए थे, तो उन्होंने उन बच्चों को कहा जल्दी से इवैक्यूएट करो, ऊपर की तरफ चले जाओ. जो बच्चों के लिए बच्चों की बसेस आ रही थी स्कूल की, उन ड्राइवर्स को कॉल करके कहा कि तुम बसेस को टर्न कर लो, इस तरफ मत आओ. द एंटायर स्कूल इमेजिन, ये इवैक्यूएट करवा दिया उस प्रिंसिपल ने. और उसने उन प्रिंसिपल ने बहुत सारे बच्चों की जान भी बचाई. सो आई विल कॉल हिम अ नेशनल हीरो डेफिनेटली. अराउंड 900 या 1000 स्टूडेंट्स, और इनका नाम है राजेंद्र दावड़ी. अब मैं डेफिनेटली कहना चाहती हूँ कि ये त्रिशूली वैली वाला जो पानी था बहुत ही खतरनाक था, लेकिन चाहती हूँ हम सब जितना भी बन सके उनकी किसी भी तरीके से आप डोनेट कर सकते हैं. बहुत सारे लोग इसमें डोनेशन में आगे बढ़ रहे हैं, तो कोशिश कीजिए उनके इस मूवमेंट को ज्वाइन करने के लिए, जहाँ के प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड में नेपाल के लिए बहुत बड़ा एक सहयोग मिलेगा. आपका एक योगदान बहुत इम्पोर्टेंट है.
4: The Drive Show with Sandy and Rusby.
5: ये वही इंसान है जो 600 का हेडफोन खरीद के बैठा हो.
6: ये गलत बोल दिया यार.
5: और पहनता भी नहीं है उसको.
6: अब बाल जा रहे हैं ना मेरे यार, वो पहन के यार क्या करूं मैं. अभी बेचने के लिए कोई लेगा क्या? रुस्बे प्री ओन्ड हेडफोन्स 750 में सिर्फ.
5: इंटरेस्ट
7: ब्रांड हो गया.
6: अभी ब्रांड हो गया ना.
5: रुस्बे के बाल लगे उस.
4: The Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us, Manukau and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us, Manukau and Pukekohe, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
8: मिर्जापुर की गद्दी पे जो बैठेगा वही होगा सबसे बड़ा बाहुबली.
9: भोकाल के लिए तैयार हो जाइए बड़े पर्दे पर. मिर्जापुर द मूवी स्टारिंग पंकज त्रिपाठी, अली फजल, दिवेंदु एंड जितेंद्र कुमार.
10: हमें एम्पायर चलाना नहीं है गुड्डू भैया, बनाना है.
9: मिर्जापुर द मूवी रिलीजिंग इन सिनेमास ऑन 4th September.
11: खतरा चाहे जितना भी छोटा हो उसे जीवित नहीं छोड़ सकते.
9: डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर फोरम फिल्म्स. रेटिंग TBC.

0: gentlemen. We've got airplane tickets with your name on them. This is the boarding call for Solomon Airlines flight number HUM 104.2 FM to Vanuatu. Boarding is now in progress. Yeah. Please proceed to Rova and enter board now.
1: Thanks to Solomon Airlines, flying four times each week, non-stop, from Auckland to Vanuatu. Visit flysolomons.com.
2: Rescue me, recycle me.
3: रेस्क्यू मी रिसाइकिल मी में कल आपके साथ जब बात हो रही थी तो आपने कहा कि देखो कशिका, कुछ ऐसे एक रूल्स होते हैं रिसाइकिल करने के लिए किसी चीज़ को. तो आपने बताया कि ये रूल्स बहुत डिफरेंट होते हैं, बट आई एम ट्राइंग टू जस्ट लोकेट माय यू नो नोट्स विच आई हैड सेड. क्विक रूल है 2-2 का, आई थिंक सो 2x2 या समथिंग लाइक दैट. एक ऐसा एक रूल आपने बताया था जो आपने कहा कि डेफिनेटली वी शुड बी फॉलोइंग दैट, जिसमें हम कहते हैं कि दो घंटे तक कोई बाहर बहुत ज़्यादा सामान रखा होता है तो हमें यू नो नहीं खाना चाहिए. इसी तरह से जैसे आई फाउंड इट टू बहुत यू नो गर्म खाना है, कुक्ड फूड है, आप रेफ्रिजरेटर में आप उसको ठंडा होने दीजिए, उसके बाद दो घंटे के बाद उसे रखिए. कभी रेफ्रिजरेटेड फूड जो आपका होता है दो दिन के बाद आप बिल्कुल मत खाइए. और दो महीने तक कभी लेफ्ट ओवर्स होते हैं जिनको आप फ्रीज कर देते हैं. इफ़ यू ईट डोंट ईट देम इन टाइम तो प्लीज़ डोंट. एंड नाउ दैट टाइम इज़ 2 months. लेफ्ट ओवर आइटम्स जो भी हैं आपके सिर्फ 2 महीने तक ही आप उनको रख सकते हैं फ्रीज़र में, इसके बाद आप इसे नहीं रख सकते. वी हेट वेस्टिंग फूड, इसलिए आप कहते हैं स्टोर करते हैं फूड. डेफिनेटली आप स्टोर कीजिए, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है. हाँ, बट अब एक मेमोरी में एक चीज़ को स्टोर करा था आपने, करेक्ट, यू आर सो राइट. एंड आपके लिए घंटी बज चुकी है जब आप फटाफट बोर्डिंग गेट की तरफ जाइए, यानी कि हमारे रोवा ऐप की तरफ आप जाइए. फटाफट डाउनलोड नहीं किया जल्दी से डाउनलोड कर लो, क्योंकि ये आपका सुनहरा मौका है बोर्ड करने के लिए. डोंट मिस योर फ्लाइट. आप जाइए, क्लिक कीजिए सबमिट और आपका नाम ड्रॉ में चला जाएगा. 30 minutes टू गो और इन 30 minutes के अंदर अंदर आपको ये बोर्ड कर लेना है. आपको ये फ्लाइट लेने के लिए सुनहरा मौका मिल रहा है. वनुआटू टू सोलो वनुआटू के लिए 2 return है टिकट्स $1,000 कैश के साथ. ओके, अगर आपको ये लिंक अभी तक नहीं मिला तो आप BC लिख के भेजिए. बी बोर्डिंग कॉल का सी, सो BC लिख के भेजिए 5599 पे और ये लिंक आपको ऑटोमेटिकली कॉम्पिटिशन के पेज लिंक पर लेके जाएगा. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, गो गो फॉर इट.
2: दिल से दिल तक, अनलॉक योर प्रॉपर्टीज ट्रू सेल वैल्यू विद NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स. फॉर अ फ्री साइट असेसमेंट विजिट nzpmi.co.nz और कॉल 0800-4NZPMI.
3: याद रखिएगा कि 100 years ऑफ रेजिलियंस, माइग्रेशन एंड आइडेंटिटी, किस तरह पंजाब की जो कम्युनिटी है ये मॉडर्न न्यूजीलैंड में उसने अडेप्ट किया. 100 साल पूरे हो गए. इनसे बातचीत की है नन अदर देन ड्राइव शो के सैंडी और रुजबे ने, जहाँ पे हरजोत सिंह जो रिसर्च की है, गगन संधु, इन्होंने ये एक ग्राउंड ब्रेकिंग डॉक्यूमेंट्री क्रिएट की, पंजाब टू आउटरोवा. वो सेक्रीफाइस, वो करेज और वो जेनरेशन की कहानी वो सुनाने वाले हैं. 5599 पे ड्राइव लिख के भेजें.

0: दुबई 0800 रचना, इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 0800 रचना, दैट्स 0800-722-462 फॉर फर्स्ट होम बायर्स, इन्वेस्टर्स, बिजनेस लोन, कमर्शियल लोन और कंस्ट्रक्शन.
1: एक बहुत ही फेमस सिंगर, आई वॉज ऑल्सो फॉलोइंग हिम फॉर क्वाइट सम टाइम, ये सिंगर लियोनेल रिची, इनको ICU में ऐड किया गया द सेंट लुई, जहाँ पे इनको हॉस्पिटलाइज किया गया आफ्टर हिज शो. ही कुड नॉट कंप्लीट हिज शो एंड ऑन संडे, एंड आफ्टर दैट ही वॉज पुट ऑन टू द ICU बिकॉज ही कुड नॉट यू नो ही फेल टू फिनिश हिज शो. चलिए आई वी प्रे फॉर हिम, दैट्स द ओनली थिंग आई कैन से दैट. एंड कोशिश करते हैं दैट आई एम श्योर यू मस्ट बी रिमेम्बरिंग हिम डेफिनेटली, जितने भी लोग उनको फॉलो करते थे. सो इसी नोट पर उनके लिए प्रे करते हुए कीजिए स्वीकार काशिका का नमस्कार. आज का दिन कहलाता है मंगलवार, आपका दिन और भी मंगलमय बनाने के लिए यहाँ आपका साथ निभाने के लिए आ रहे हैं नन अदर देन केतन. इनका साथ ज़रूर दीजिएगा. मैं अभी के लिए चलती हूँ, कल सुबह 10 बजे आपसे मुलाकात करती हूँ. मेक श्योर आप अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा, जो भी हो देखा जाएगा, लेकिन अपना ख्याल सबसे पहले रखना है, बाद में लेफ्ट राइट सेंटर किसी और का. दिस इज काशिका साइनिंग ऑफ फ्रॉम द हम स्टूडियोज. टेक केयर, सी यू टुमारो, बाय.